0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बिमल मुखर्जी का सितार वादन राग भतियार में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने को हैं। अब समाचार होंगे, पहले हिंदी में, उसके बाद आप अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहतनाज। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फालता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया रद्द करने का असाधारण कदम उठाया है। इस विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को नए सिरे से वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 24 मई को की जाएगी। आयोग ने बताया कि यह निर्णय 29 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अपराधों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन की खबरों के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन को जानबूझकर काले टेप से ढक दिया गया था, जिससे मतदान में बाधा आई। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में प्रवेश करते और दूसरों की ओर से वोट डालते हुए पाया गया। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनः मतदान हुआ। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु में कल सुबह 8 बजे से सभी 62 निर्धारित मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती शुरू होगी। मतगणना के लिए कुल 10,545 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। इनके सहयोग के लिए 4,624 सूक्ष्म पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के मौजूदा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे तक समाप्त होगी। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वर्ष 2019 से नीट यूजी परीक्षा का आयोजन कर रही है। एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद खत्म करने के मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष में कल नई दिल्ली में आयोजित शौर्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के अतुलनीय शौर्य ने इसे भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्ण अध्याय बना दिया है। भारत ने पिछले साल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस ऑपरेशन का लक्ष्य पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्थित आतंकी ढांचे को निशाना बनाना था। इन हमलों के कारण 4 दिनों तक भीषण झड़पें हुई, जो बाद में 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने की सहमति के साथ समाप्त हुई। रक्षा मंत्री ने कहा कि सशस्त्र बलों ने

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 6:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं चिंतन, फिरोज शाह मेहता के जीवन से प्रेरक प्रसंग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के चिंतन कार्यक्रम में आइए जानते हैं फिरोज शाह मेहता के जीवन से कुछ प्रेरक प्रसंग और उनके विचारों के बारे में। वार्ताकार हैं शंभुनाथ पांडे।
2: सर फिरोज शाह मेहता एक जाने माने स्वतंत्रता सेनानी, न्यायविद और पत्रकार थे। फिरोज शाह मेहता की शिक्षा, उनकी कानूनी विशेषज्ञता, राजनीतिक सक्रियता, प्रेस सतर्कता और उनके द्वारा उस समय नगरपालिका में किए गए सुधार आज भी प्रेरणादायक हैं। विशेषकर आधुनिक भारत में जहां शिक्षा, सामाजिक न्याय और राजनीतिक भागीदारी महत्वपूर्ण है, ऐसे में फिरोज शाह मेहता के विचारों की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। उनका जन्म 4 अगस्त 1845 को मुंबई में एक मध्यम वर्गीय पारसी परिवार में हुआ। उन्होंने सन 1864 में एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से स्नातक किया। 6 माह के अंदर ही स्नातकोत्तर की उपाधि ऑनर्स के साथ प्राप्त की। इस सफलता ने उन्हें युवावस्था से ही प्रेरणा दी। 1868 में आपने लंदन से बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात भारत लौटकर उन्होंने अपनी विधिक सेवा शुरू की। ब्रिटिश वकीलों के प्रभुत्व के बीच उन्होंने अपनी सहज विद्वत्ता और वकालती कौशल से अलग पहचान बनाई। फिरोज शाह मेहता बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे। 1890 में वे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। 1910 में फिरोज शाह मेहता ने एक समाचार पत्र शुरू किया जो आगे चलकर काफी प्रसिद्ध हुआ। उनके द्वारा प्रकाशित बॉम्बे क्रॉनिकल दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे व्यवहार की कहानी कहता था, जिसके कारण गांधी जी ने वहां एक निष्क्रिय प्रतिरोध आंदोलन चलाया। फिरोज शाह मेहता गांधी जी से उम्र में बड़े थे, अतएव गांधी जी से काफी पहले लंदन में बैरिस्टर की पढ़ाई कर मुंबई के जाने माने वकील बन गए थे। ऐसे में जब दक्षिण अफ्रीका में अपने आंदोलनों के बाद मशहूर होकर गांधी जी भारत आए, तो 12 जनवरी 1915 को उनके स्वागत में आयोजित जनसभा की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की थी। तब गांधी जी तिलक और गोखले से भी मिले थे। गांधी जी ने इन मुलाकातों के बारे में लिखा था, सर फिरोज शाह मेहता मुझे हिमालय जैसे, लोकमान्य तिलक समुद्र जैसे और गोखले गंगा जैसे लगे। गंगा में नहा सकता हूँ, हिमालय पर चढ़ा नहीं जा सकता और समुद्र में डूबने का डर है। फिरोज शाह मेहता उदारवादी राजनीतिज्ञ तो थे, लेकिन कई बार स्पष्टवादी भी थे। गांधी जी जब नए नए लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई करके लौटे थे, तब किसी बात पर उनकी एक पदाधिकारी से झिकझिक हो गई और बात यहाँ तक बढ़ गई कि गांधी जी उस पदाधिकारी के खिलाफ मानहानि का दावा करने की बात करने लगे। तब गांधी जी ने वकील मित्रों की सहायता ली। फिरोज शाह मेहता उन दिनों राजकोट में थे, उनसे भी सलाह मांगी गई तो फिरोज शाह मेहता ने कहलवाया कि ऐसे अनुभव तो सभी बैरिस्टरों वकीलों को हुए होंगे, तुम अभी नए हो, विलायत की खुमारी सिर पर सवार है, कभी कभी परिस्थितियों के साथ समायोजन करना भी सीखो। हालांकि आजादी के बाद गांधी जी देश की आजादी में फिरोज शाह मेहता से कहीं बड़े कद के साबित हुए, लेकिन ऐसी

0: घटनाओं से सीख लेकर के ही वे भी आगे बढ़े। फिरोजशाह मेहता शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। उन्होंने भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। वे एक ऐसे राजनीतिज्ञ थे जिनका सम्मान जनता और सरकार दोनों करती थी। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना की और भारतीयों के लिए समान रोजगार अवसरों की वकालत की। फिरोजशाह मेहता ने सामाजिक सुधारों के लिए अथक प्रयास किया। वे मुंबई नगर पालिका के सदस्य और अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने 1872 के नगर सुधार विधेयक का मसौदा तैयार किया, जिससे नगर निगम का रूप और नागरिक अधिकारों की व्यवस्था स्थापित हुई। उन्हें बॉम्बे का बेताज बादशाह भी कहा जाता था। महान उदारवादी राजनीतिज्ञ व समाजसेवी फिरोजशाह मेहता ने शिक्षा, कानून, सामाजिक सुधार और मीडिया को संयोजित करते हुए ये प्रेरणा दी कि दृढ़ संकल्प शक्ति, समाज सेवा व विचारशील नेतृत्व के माध्यम से एक व्यक्ति राष्ट्रीय बदलाव ला सकता है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, फिरोजशाह मेहता के जीवन से प्रेरक प्रसंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 6:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं रामचरितमानस का बालकांड भाग 44।

कैलाश पर्वत पर शिवजी के विश्राम स्थल शीतल मंद सुगंधित पयार देने वाले बरगद के नीचे शिव तथा पार्वती विराजमान हैं। पार्वती श्री रामचंद्र के ब्रह्म होने के संबंध में अपनी जिज्ञासा प्रकट करती हैं, वो कारण जानने की जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करते हैं। श्री राम के अवतार की कथा, उनका उदार बालचरित, जनक सुता से विवाह तथा ये जानने की कि किस दोष के कारण उन्हें राज्य छोड़ना पड़ा, राम के वनवास, रावण वध तथा उस प्रकरण की अन्य लीलाओं के अतिरिक्त वो ये भी जानना चाहती हैं कि वो कौन सा तत्व है जिसके अनुभूति में ऋषि मुनि निमग्न रहते हैं, भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का रहस्य क्या है। इन ढेर सारे प्रश्नों द्वारा प्रकट जिज्ञासा के अतिरिक्त वो सभी तथ्य भी जानना चाहती हैं जो अनपूछे रह गए हों। पार्वती के सहज निष्कपट प्रश्न सुन महादेव आनंद विभोर हो गए। श्री राम की प्रीति तथा भक्ति से उनका शरीर पुलकित हो गया और आंखों में प्रेमाश्रु उमड़ आए।

अक्षदनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। गिरमितिया समुदायानाम् उपस्थितेः कारणादेव एतेषां देशानां भारतेन सह विशिष्टः सम्बन्धः अस्ति। विदेशमन्त्रालयेन स्वीये वक्तव्ये उक्तं यत् यात्रावधौ डॉ जयशंकरः त्रिदेशानां नेतृत्वैः सह मेलनं करिष्यति। आईपीएल इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां चेन्नईस्थे एमए चिदंबरम क्रीडांगणे चेन्नई सुपर किंग्स दलेन मुंबई इंडियंस दलम अष्टस्तोभिः पराजितम्। हैदराबादस्य राजीव गांधी अन्ताराष्ट्रिय क्रीडांगणे मध्याह्ने 3:30 सनराइजर्स हैदराबाद दलम कोलकाता नाइट राइडर्स दलम सम्मुखीकरिष्यति। तत्रैव अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे सायं 7:30 गुजरात टाइटन्स दलम पंजाब किंग्स दलम सम्मुखीकरिष्यति। इति वार्ताः।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा क्षेत्र का मतदान रद्द कर दिया है। इस क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को पुनर्मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। आयोग ने बताया कि यह निर्णय 29 अप्रैल को हुए मतदान में गंभीर चुनावी गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद लिया गया। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसे गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की भी घटना सामने आई है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 मतदान केंद्रों पर कल फिर वोट डाले गए। मगराहाट पश्चिम के 11 और डायमंड हार्बर के 4 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी स्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। तमिलनाडु में इसके लिए 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे। 4,624 सूक्ष्म पर्यवेक्षक भी तैनात किए गए हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के वर्तमान निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरामानिया को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बनाए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को मजबूत करेगी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि उनके योगदान से सभी क्षेत्रों में नवाचार और विकास को गति मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंक का खात्मा करने को मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में शौर्य कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के अतुलनीय शौर्य ने इसे भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बना दिया है। भारत ने पिछले 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। श्री जैन इससे पहले बैंक में कार्यकारी निदेशक थे। वे 3 मई 2026 से 3 वर्ष की अवधि के लिए इस पद पर रहेंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। परीक्षा केंद्र में दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश किया जा सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परीक्षार्थियों के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। अमेरिका की किफायती स्पिरिट एयरलाइंस ने 34 वर्ष बाद अपना कारोबार बंद करने की घोषणा की है। यह एयरलाइंस प्रतिदिन सैकड़ों उड़ानें संचालित करती है। इसमें लगभग 17,000 लोगों को रोजगार मिलता है। एयरलाइंस ने कहा

8 रन बनाकर मैच जीत लिया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अहमदाबाद में एक अन्य मैच में गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में कल फ्रांस ने भारत को 3-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। पहले सिंगल्स में भारत के आयुष शेट्टी फ्रांस के क्रिस्टो पोपो से हार गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

संगीतिका कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऐश्वर्या आनंद के गाए भजन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7:30 हुए हैं, वक्त है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का।

हर सुबह नई रोशनी नया ख्वाब लाती है, सपनों को पूरा करने की नई राह दिखाती है। फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, चमकते सूरज की तरह दमकते रहिए। इसी के साथ आज मैं हूं आप सभी के साथ आपकी होस्ट और दोस्त रिया प्रकाश। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग।

सुबह की ये हंसी वादियाँ कुछ खास है, हवाओं में आज मीठी सी बात है। दिल से दुआ है आपकी हर सुबह खुशनुमा हो, इस प्यारे से दिन की यही तो शुरुआत है।

हर सुबह हमें एक नया मौका देती है कल की गलतियों को सुधारने का। तो मुस्कुराइए और दिन की शुरुआत कीजिए बुलंद हौसलों के साथ।

उठिए देखिए सुबह का नज़ारा, हवा में खुशबू है और मौसम है प्यारा। हंसते रहिए, खुश रहिए हर पल, यही है हमारी शुभकामनाएं आपके लिए हर दिन।

श्रोताओं, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो अपने हौसलों से डरते नहीं। मेहनत की राह पर अगर चलें तो मंजिल खुद पास आएगी। हौसला रखिए, हर मुश्किल आसान बन जाएगी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 8 बजने को है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के फालता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर इस महीने के 21 तारीख को पुनर्मतदान का आदेश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर निर्णायक कार्रवाई के माध्यम से आतंकवाद खत्म करने के सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक। भारत आने वाला एक और LPG टैंकर हॉर्मुज जल डमरू मध्य में सुरक्षित पार किया। अमरीका जर्मनी से अपने 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर सहित देश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। देश के मध्य भागों में गरज के साथ आंधी आने और बिजली गिरने की आशंका। और मध्य प्रदेश के पोल वॉल्टर कुलदीप कुमार ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा क्षेत्र का मतदान रद्द कर दिया है। इस क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को पुनर्मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया को रद्द करने का एक असाधारण कदम उठाया है। 21 मई को सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक बूथ भी शामिल हैं, पर फिर से मतदान होगा। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। चुनाव आयोग ने बताया कि यह फैसला 29 अप्रैल को मतदान के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की रिपोर्टों के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्टों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन शामिल है। कई बूथों पर बैलेट यूनिट के बटनों को जानबूझकर काली टेप से ढक दिया गया था, जिससे ठीक से मतदान नहीं हो पा रहा था। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में प्रवेश करते और दूसरों की ओर से वोट डालते हुए पाया गया। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता और अविरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कौशलेंद्र।
1: पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 मतदान केंद्रों पर कल फिर से वोट डाले गए। मगराहाट पश्चिम के 11 और डायमंड हार्बर के 4 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी स्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। तमिलनाडु में इसके लिए 62 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया कि मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे।
3: मतगणना प्रक्रिया को लेकर पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ड्यूटी पर तैनात हर व्यक्ति को QR कोड वाला एक फोटो ID कार्ड जारी किया गया है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि मतगणना केंद्रों पर किसी भी तरह की गलत पहचान या धोखाधड़ी ना हो। मतगणना कक्षों और EVM स्ट्रांग रूम के प्रवेश द्वार पर सबसे अंदरूनी सुरक्षा की कमान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के हाथों में होगी। स्थानीय और राज्य पुलिस के अलावा सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए मतगणना केंद्रों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 65 कंपनियां तैनात की गई हैं। राज्य में 4,87,98,833 मतदाताओं में से 85.10% मतदान दर्ज किया गया है। महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ते हुए 2,52,59,596 वोट डाले, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,35,34,720 रही। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे समाप्त होगी। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वर्ष 2019 से NEET UG परीक्षा का आयोजन कर रही है। एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित

0: जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंक का खात्मा करने के मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में शौर्य कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के अतुलनीय शौर्य ने इसे भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बना दिया है।
1: शौर्य केवल शारीरिक शक्ति या युद्ध कौशल का नाम नहीं है। शौर्य हमारे मन की वह अटल अवस्था है जहां राष्ट्र प्रेम के आगे सारे सुख, सारे मोह, सारे भय यह व्यर्थ हो जाते हैं। शौर्य वो दिव्य भाव है जहां हमारा एक सैनिक अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के स्नेह के बंधन से ऊपर उठकर मां भारती की रक्षा का व्रत लेता है।
0: भारत ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। कार्यक्रम में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और उप रक्षा प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ उपस्थित थे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली, CBS और सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल जैसी तकनीकों को अपनाने से आपदा से निपटने की तैयारी में काफी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कल सेल ब्रॉडकास्ट चेतावनी प्रणाली के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि इससे शासन व्यवस्था में सुधार होगा और प्रत्येक नागरिक तक समय पर और प्रभावी ढंग से सूचना पहुंच सुनिश्चित होगी। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली का शुभारंभ किया था। इसे दूरसंचार विभाग के अंतर्गत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से स्वदेश में ही विकसित किया है। प्रणाली का कल पूरे देश में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज सुबह जमैका के किंगस्टन पहुंचे। श्री जयशंकर जमैका, सूरीनाम और त्रिनिदाद और टोबैगो की सरकारी यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि जमैका के विदेश मंत्री कमीना जे स्मिथ ने कहा कि वे अगले 2 दिन में जमैका के नेताओं, व्यापारियों और प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस 10 मई तक अपनी यात्रा के दौरान डॉ. जयशंकर 3 देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। भारत आ रहे मार्शल आइसलैंड ध्वज के LPG टैंकर MT सर्वशक्ति ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित पार कर लिया है। इसमें 46,313 मीट्रिक टन LPG है और 18 भारतीयों सहित चालक दल के 20 सदस्य सवार हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस टैंकर के 13 मई तक विशाखापट्टनम पहुंचने की उम्मीद है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और भारतीय ध्वज वाले जहाजों से जुड़ी कोई घटना दर्ज नहीं की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका जर्मनी में सैन्य उपस्थिति में काफी कमी करेगा। इससे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मस के साथ अमेरिका का विवाद और बढ़ गया है। श्री ट्रंप यूरोपीय सुरक्षा के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पेंटागन ने शुक्रवार को पहले घोषणा की थी कि वो जर्मनी से लगभग 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। शनिवार को इस कदम के कारण के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और कहा कि इससे भी बड़ी कटौती होने वाली है। इससे पहले जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा कि जर्मनी में अमेरिकी सैनिकों की नियोजित कटौती से यूरोप को अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। माली में सुरक्षा बलों ने लक्षित हवाई हमलों में 200 से अधिक हमलावरों को मार गिराया है। सरकारी टेलीविजन के अनुसार शुक्रवार को सुबह ये हमले सशस्त्र आतंकियों के एक बड़े समूह को निशाना बनाकर किए गए। ये आतंकी पड़ोसी सीमा क्षेत्र से आए थे और हमलों की तैयारी कर रहे थे। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में गरज के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, बिहार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, रायलसीमा, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिम बंगाल में गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। इस बीच दिल्ली में कल रात मौसम में अचानक बदलाव आया और बारिश ने भीषण गर्मी से राहत दिलाई। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: भुवनेश्वर में इंडियन इंडोर पोल वॉल्ट प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के कुलदीप कुमार ने पुरुषों के पोल वॉल्ट में 5.41 मीटर ऊंचाई की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीत लिया। कुलदीप कुमार ने पहले ही प्रयास में ये उपलब्धि हासिल कर देव कुमार मीणा के 5.41

0: 4.0 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। उधर डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में आज फ्रांस का सामना चीन से होगा। सेमीफाइनल में कल फ्रांस ने भारत को 3-0 से हराया था। इस बीच उबर कप के फाइनल में आज चीन का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। इधर आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। चेन्नई में कल पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में चेन्नई ने 18 ओवर और एक गेंद में 2 विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाकर मैच जीत लिया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से और गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने आज अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री सारंगी ने कहा कि इस दिन सौर ऊर्जा का उपयोग करके अधिकतम बिजली प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है।
2: सूर्य किरण हम लोगों के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसका इतने सालों तक हम लोग व्यवहार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज उसका व्यवहार करके देश में 150,000 मेगावाट का इंस्टॉलेशन हो चुका है और भी आगे बढ़ना है हम लोगों को।
1: भारतीय सेना का एक दल भारत कंबोडिया द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास CINBX2 के दूसरे संस्करण के लिए कंबोडिया रवाना हो गया है। सेना ने बताया कि अभ्यास कल से 17 तारीख तक नॉम फॉर मारियास प्रांत के शाही कंबोडियाई वायुसेना प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया जाएगा। अभ्यास में कंपनी स्तर के संयुक्त प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। श्री जैन इससे पहले बैंक में कार्यकारी निदेशक थे। वे 3 मई 2026 से 3 वर्ष की अवधि के लिए इस पद पर रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद लवलीन। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना में केंद्रीय कर्मियों की पर्यवेक्षक के रूप में तैनाती का निर्वाचन आयोग का निर्देश बरकरार रखने को लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। अमर उजाला कहता है, मतगणना कर्मियों के चयन के लिए आयोग स्वतंत्र, आदेश की जरूरत नहीं। देशबंधु ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा तृणमूल कांग्रेस को झटका बताया है। अब आपात स्थिति में पलक झपकते ही अलर्ट होगा देश, दैनिक जागरण की पहली खबर है। पत्र ने आगे लिखा है, केंद्र ने लॉन्च किया सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम, बिना इंटरनेट भी पहुंचेगा फ्लैश मैसेज। हिंदुस्तान ने इसे सुर्खी दी है, करोड़ों मोबाइल में गूंजी इमरजेंसी वाली घंटी। पश्चिम एशिया में संघर्ष के असर को जनसत्ता ने बॉक्स में देते हुए लिखा है, लगातार 3rd महीने कीमतें बढ़ीं। पत्र ने इसे संकट और चिंता बताते हुए लिखा है, खाने के दाम बढ़ने से रोजगार पर विपरीत असर की आशंका। दैनिक भास्कर की खबर है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से 7 की जगह 2.5 घंटे में पहुंचेंगे, चार धाम यात्रा 5 से 6 दिन में पूरी हो जाएगी। पत्र ने चार धाम यात्रा के दौरान यमुनोत्री से बद्रीनाथ तक के सफर की जानकारी विस्तार से दी है। नवभारत टाइम्स ने बदलता मौसम शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में 2050 तक ज्यादा होने लगेगी बारिश, गर्म दिन हटेंगे लेकिन रात तपेगी। राजस्थान पत्रिका की विशेष खबर है, सोच का बोझ, हर रात 28 मिनट की नींद खो रहे हैं लोग, पढ़ाई करियर और आर्थिक स्थिरता की चिंता। पत्र के अनुसार दुनिया में 28 करोड़ लोग डिप्रेशन से और 30 करोड़ से ज्यादा एंजाइटी से हैं परेशान, जिसका प्रमुख कारण ओवरथिंकिंग। समुद्र के भीतर फहराया सबसे बड़ा तिरंगा, हिंदुस्तान ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, अंडमान निकोबार में दुनिया का सबसे लंबा चौड़ा ध्वज फहराकर बनाया गया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, स्वराज द्वीप पर गोताखोरों ने पूरा किया अभियान। पंजाब केसरी के अनुसार, कश्मीर को पीछे छोड़ विदेश में धमाल मचाएगा लद्दाख का पश्मीना। पत्र कहता है कि पहले लद्दाख के चरवाहे कच्चा ऊन कम दामों पर बेच देते थे, अब कुछ बड़े बदलावों के साथ लद्दाख में ही आधुनिक संयंत्र और फिनिशिंग यूनिट लग रही है, जिससे लद्दाख के शॉल ग्लोबल हब बनने की तैयारी में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के फालता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर इस महीने के 21 तारीख को पुनर्मतदान का आदेश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर निर्णायक कार्यवाही के माध्यम से आतंकवाद खत्म करने के सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक। भारत आने वाला एक और एलपीजी टैंकर ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य सुरक्षित पार किया। अमेरिका जर्मनी से अपने 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर सहित देश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया, देश के मध्य भागों में गरज के साथ आंधी आने और बिजली गिरने की आशंका। और मध्य प्रदेश के पोल वॉटर कुलदीप कुमार ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। इलेक्शन कमीशन ऑर्डर्स रीपोलिंग अक्रॉस ऑल 285 पोलिंग स्टेशन एट भालटा असेंबली कंस्टिट्युएंसी इन वेस्ट बंगाल ऑन द 21st ऑफ दिस मंथ। Operation Sindoor reflects government's unwavering resolve to eliminate terrorism through decisive action, says Defence Minister Rajnath Singh. Another India-bound LPG tanker safely crosses Strait of Hormuz. United States to pull over 5,000 troops out of Germany. IMD forecasts heavy rainfall over some parts of northeastern and peninsular India. Central plains to witness thunderstorms and lightning today. And Madhya Pradesh pole vaulter Kuldeep Kumar breaks national record at Bhubaneswar. And now the news in detail. The Election Commission has taken the extraordinary step of cancelling the entire voting process in the Phalta Assembly constituency of South 24 Paragana's district in West Bengal. Fresh polling will be held on the 21st of this month across all 285 polling stations, including auxiliary booths. Counting of votes will be held on the 24th of May. More from our correspondent.
4: The Election Commission has taken the extraordinary step of cancelling the entire voting process in the Phalta Assembly constituency of South 24 Paragana's district in West Bengal. Fresh polling will be held on 21st May across all 285 polling stations, including auxiliary booths. Counting of votes is scheduled for 24th May. In its statement, the Commission explained that the decision followed reports of severe electoral offences and large-scale subversion of the democratic process during voting on 29th April. Observer reports highlighted serious irregularities, including tampering with electronic voting machines, intimidation of voters, and violations of polling rules. In several booths, ballot unit buttons were deliberately covered with black tape, preventing proper voting. Unauthorized individuals were also found entering polling stations and casting votes on behalf of others. Missing or inconsistent video footage further raised concerns about transparency. Shondipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
3: Counting of votes for the assembly elections held in West Bengal, Keralam, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry will be taken up tomorrow morning. In Tamil Nadu, a total of 10,545 counting personnel will be deployed on counting duty, supported by 4,624 micro-observers. Our correspondent reports that 234 counting observers, one for each assembly constituency, will oversee the proceedings and ensure strict adherence to extant instructions of the Commission.
5: Security has been tightened due to the counting process on Monday all over the state. Each and every individual on duty at the counting center have been issued a photo ID card with QR code to ensure that there will be no misrepresentation. A security perimeter starting from 100 meters around each counting center has been established. The second entry gates of the counting premises will be secured by the state armed police. The innermost security at the entrance to the counting halls and the EVM strong rooms will be managed by the central armed police forces. In addition to the local and the state police, 65 companies of the central armed police forces have been deployed at the counting centers to further strengthen security arrangements. The state has registered 85.10% votes with 4,87,98,833 voters. Joy, Akashvani reporting from Chennai.
3: In West Bengal, election officials said that all arrangements are in place at 77 counting centers across the state, with multi-layered security in place to ensure transparency. The Supreme Court has declined to interfere with the Election Commission's decision to appoint only central government employees as counting supervisors in West Bengal elections. A bench comprising Justice B.S. Narasimha and Justice Joy Mallya Bagchi directed that the Commission's guidelines must be strictly followed. The ruling comes as a setback for Trinamool Congress, which had challenged the move. Defense Minister Rajnath Singh has described Operation Sindoor as a reflection of the government's unwavering resolve

0: ये आकाश आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके में तमाम 285 पोलिंग मराकज पर इस महीने की 21 तारीख को दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत के पुख्ता अज्म की अक्कासी करता है। भारत आने वाला एक और एलपीजी टैंकर बहिफाजत आबनाए हुरमुस से गुजर गया है। अमरीका ने जर्मनी से 5,000 से ज्यादा फौजियों को वापस बुलाने का फैसला किया है। भारतीय महकमा मौसमियात ने मुल्क के शिमाल मशरिकी और जजीरानुमा इलाकों के कुछ हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मुल्क के वस्ती मैदानी इलाकों में आज गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। और मध्य प्रदेश के पोल वॉल्टर कुलदीप कुमार ने भुवनेश्वर में नया कौमी रिकॉर्ड कायम किया है। अब खबरें तफसील से। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल के जनूबी 24 परगना जिला के फाल्टा असेंबली हलके में वोटिंग के पूरे अमल को रद्द करने का गैर मामूली इकदाम किया है। इस महीने की 21 तारीख को फाल्टा असेंबली हलके के तमाम 285 पोलिंग मराकज पर दोबारा पोलिंग कराई जाएगी। वोटों की गिनती 24 मई को की जाएगी। मजीद तफसील हमारी नामा निगार से।
1: इंतखाबी कमीशन ने गैर मामूली कदम उठाते हुए मगरबी बंगाल के जनूबी 24 परगना जिले के फाल्टा असम्बली हलके में वोटिंग के पूरे अमल को रद्द कर दिया है। 21 मई 2026 को तमाम 285 पोलिंग मराकज में दोबारा पोलिंग कराई जाएगी। वोटों की गिनती 24 मई 2026 को की जाएगी। चुनाव कमीशन ने अपने बयान में वजाहत की कि यह फैसला 29 अप्रैल 2026 को वोटिंग के दौरान शदीद इंतखाबी धांधली और बेजाबतगी नीज जमहूरी अमल को बड़े पैमाने पर मुतासिर करने की रिपोर्ट्स के बाद किया गया है। इंतखाबी मुशाहिदीन की रिपोर्ट्स में संगीन खिलाफ वर्जियों की निशानदेही की गई, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में छेड़छाड़, वोटरों को धमकाना और पोलिंग कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ शामिल हैं। कई बूथ्स पर बैलेट यूनिट के बटन को जानबूझकर स्याह टेप से ढांप दिया गया था, जिससे दुरुस्त वोटिंग मुमकिन नहीं हो सकी। गैर मजाज अफराद को भी पोलिंग स्टेशनों में दाखिल होकर दूसरों की जानिब से वोट डालते हुए पाया गया। वीडियो रिकॉर्डिंग के गायब या गैर मुतालिक पाए जाने पर भी शफाफियत के हवाले से खदशात मजीद बढ़ गए थे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता और अविरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: मगरबी बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके पुदुचेरी के असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती कल सुबह शुरू होगी। तमिलनाडु में वोटों की गिनती तमाम 62 काउंटिंग सेंटरों पर कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। वोटों की गिनती के लिए अमले के कुल 10,545 अफराद को तैनात किया गया है, जबकि उनकी मदद के लिए काउंटिंग ड्यूटी पर 4,624 माइक्रो ऑब्जर्वर्स को भी तैनात किया गया है। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि हर एक असेंबली हलके पर 234 काउंटिंग ऑब्जर्वर्स तैनात रहेंगे और गिनती के अमल की निगरानी करने के साथ इंतखाबी कमीशन की जानिब से दी गई हिदायत पर सख्ती से अमल को यकीनी बनाएंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: रियासत भर में पीर को होने वाली वोटों की गिनती के पेश नजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वोटों की गिनती की ड्यूटी पर तैनात हर एक शख्स को QR कोड के साथ एक फोटो ID कार्ड जारी किया गया है, ताकि काउंटिंग मराकज पर कोई गैर मजाज शख्स दाखिल ना हो सके। जहां भी काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं, उसके 100 मीटर के दायरे से सिक्योरिटी इंतजाम शुरू हो जाते हैं। काउंटिंग मराकज़ में दाखिले के दूसरे दरवाजे पर रियासती मुसल्लह पुलिस तैनात रहेगी, जबकि काउंटिंग हॉल्स और EVM स्ट्रॉन्ग रूम्स में दाखिले से मुतालिक अंदर और बाहर की तमाम सिक्योरिटी का जिम्मेदार मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्सेज के पास रहेगा। इसके अलावा इलाकाई और रियासती पुलिस, मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्सेज की 65 कंपनियां काउंटिंग मराकज पर मजीद सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए तैनात की गई हैं। रियासत में 4,87,98,833 राय दहिंदगान ने अपने हक की रायदही का इस्तेमाल किया और 85.10% पोलिंग दर्ज की गई थी। रियासत में वोटिंग के इस अमल में खवातीन ने मर्दों से ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तमिलनाडु से जो एक रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: मगरबी बंगाल में इंतखाबी हुक्काम ने कहा है कि शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए रियासत भर में सभी 77 काउंटिंग मराकज़ पर सिक्योरिटी के कसीर सतही इंतजाम किए गए हैं। मगरबी बंगाल के जनूबी 24 परगना जिले के 15 बूथों पर कल हुई दोबारा पोलिंग में 90% लोगों ने वोट डाले। दो असेंबली हल्कों में हुई दोबारा पोलिंग आमतौर पर पुरअमन रही। इंतखाबी कमीशन ने मुतालिका रिटर्निंग अफसरान और मुशाहिदीन की तरफ से मौसूल होने वाली रिपोर्टों की बुनियाद पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल के इंतखाबात में काउंटिंग सुपरवाइजर के तौर पर सिर्फ मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन को तैनात करने के इंतखाबी कमीशन के फैसले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉय माल्या बागची पर मुश्तमिल एक बेंच ने हिदायत दी है कि कमीशन के रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला तृणमूल कांग्रेस की जानिब से कमीशन के इस फैसले को अदालत में चैलेंज करने के बाद आया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को मौसर कार्रवाई के जरिए दहशतगर्दी के खात्मे के मोदी हुकूमत के पुख्ता अज़्म की अक्कासी करार दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुसल्ह अफवाज की गैर मामूली बहादुरी ने भारत की फौजी तारीख में एक सुनहरी बाब का इजाफा किया है। जनाब सिंह ने यह बात कल नई दिल्ली में ऑपरेशन सिंदूर के एक साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनाकिदा शौर्य नामी तकरीब से खिताब करते हुए कही।
2: शौर्य केवल शारीरिक शक्ति या युद्ध कौशल का नाम नहीं है। शौर्य हमारे मन की वह अटल अवस्था है जहां राष्ट्र प्रेम के आगे सारे सुख, सारे मोह, सारे भय यह व्यर्थ हो जाते हैं। शौर्य वो दिव्य भाव है जहां हमारा एक सैनिक अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के स्नेह के बंधन से ऊपर उठकर माँ भारती की रक्षा का व्रत लेता है।
0: मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम CBS और कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल जैसी टेक्नोलॉजीज को अपनाने से कुदरती आफात से मुतालिक तैयारी को मजबूत करने, हुक्मरानी को बेहतर बनाने और हर शहरी तक बरवक्त और मौसर रसाई को यकीनी बनाने में नुमाया तौर पर मदद मिलेगी। जनाब शाह ने यह बात कल सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम के आगाज के मौके पर अपनी नई ख्वाहिशात पेश करते हुए कहीं। हुकूमत की जानिब से जारी किए गए एक बयान के मुताबिक इस निज़ाम के जरिए शहरियों को उनके इलाकों में हंगामी सूरतेहाल और कुदरती आफात के सिलसिले में आगाह किया जा सकता है। टेलीकॉम के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने CBS का आगाज किया। इस निज़ाम को वजारत दाखिला और आफात से मुतालिक बंदोबस्त की कौमी अथॉरिटी के तआवुन से टेली कम्युनिकेशन के महकमे के तहत सेंटर फॉर डिवेलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT के जरिए भारत में ही तैयार किया गया है। कल मुल्क की सतह पर इस सिस्टम को कामयाबी के साथ टेस्ट किया गया, जिसके दौरान मुल्क भर में मोबाइल फोन्स पर इमरजेंसी अलर्ट मैसेजेस भेजे गए। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए कौमी अहलियत और दाखिला टेस्ट नीट का इम्तिहान आज मुनक्किद होगा। इम्तिहान दोपहर 2 बजे शुरू होगा और शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। नीट के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के मुताबिक इम्तिहान के मराकज में आखिरी दाखिला दोपहर 1:30 बजे तक दिया जाएगा। नीट UG 2019 से इम्तिहानात कराने वाली कौमी एजेंसी NTA के जरिए मुनाकिद किया जा रहा है, जो सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत और तालीम की वजारत की मंजूरी से अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए होता है। NTA ने उम्मीदवारों के लिए मखसूस हिदायत जारी की हैं। एडमिट कार्ड के साथ उम्मीदवारों को एक असल तस्वीर वाला शिनाख्ती सबूत जैसे वोटर ID, आधार कार्ड या राशन कार्ड भी साथ लाना ज़रूरी होगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है।
3: जनादेश 2026।
4: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुद्दुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
3: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताज़ा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
4: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
3: जनादेश 2026।
0: मार्शल आइलैंड के परचम बरदार LPG MT सर्वशक्ति ने 46,313 मैट्रिक टन LPG भारतीय कार्गो के साथ 20 अमले के अरकान, जिनमें 18 भारतीय शामिल हैं, बहिफाजत आबनाए हुरमुज़ उबूर कर लिया है। सरकारी जराये के मुताबिक जहां

0: आज की इस माह की 13 तारीख को विशाखापट्टनम पहुंचने की तवक्को है। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की वजारत ने गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि खित्ते में तमाम भारतीय मल्लाह महफूज हैं और भारतीय परचम बरदार जहाज़ों को पेश आने वाले किसी भी वाक़े की इत्तला नहीं मिली है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि जमैका, सूरीनाम और ट्रिनिडेड एंड टोबैगो के सरकारी दौरे पर हैं, आज सुबह जमैका की राजधानी किंगस्टन पहुंच गए। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि जमैका की वजीर खारजा कैमीना जे स्मिथ ने उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि वो अगले 2 दिन के दौरान जमैका की क्यादत, कारोबारी बिरादरी और वहां मुकीम भारतीय बिरादरी से मुलाकात के मुंतजर है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि इस महीने की 10 तारीख तक जारी रहने वाले इस दौरे में डॉक्टर जयशंकर मजकूरा तीनों मुल्कों की क्यादत से मुलाकात करेंगे। अपने हम मनसबों के साथ बातचीत में दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी मामलात समेत बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू होगी। उनके इस दौरे का मकसद जमैका, सूरीनाम और ट्रिनिडेड एंड टोबैगो के साथ भारत के सियासी रवाबित को मजीद मजबूत बनाना और दैरीना दोस्ताना ताल्लुकात को फ़रोग देना है। ये दौरा आलमी खित्ते जनूब के मुल्कों के दरमियान बाहमी तआवुन और तरक्की के मुश्तरक अज़्म की भी अक्कासी करता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका जर्मनी में अपनी फौज की मौजूदगी को नुमाया तौर पर कम करेगा, जिससे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ तनाज़े मजीद बढ़ गया है, क्योंकि वो यूरोपीय सलामती के लिए अमरीकी अहद बस्तगी को कम करने के ख्वाहां हैं। पेंटागन ने जुमे को इब्तदाई तौर पर ऐलान किया था कि वो जर्मनी से तकरीबन 5,000 फौजी वापस बुलाएगा, लेकिन जब हफ्ते के रोज उनसे इस इकदाम की वजह पूछी गई तो जनाब ट्रंप ने कोई वजाहत पेश नहीं की और कहा कि इससे भी बड़ी कमी आने वाली है। उन्होंने फ्लोरिडा में नामानिगारों को बताया कि अमरीका फौज में बहुत ज्यादा कटौती करने जा रहा है और वो 5,000 से कहीं ज्यादा फौजियों को वापस बुला रहे हैं। इससे पहले जर्मनी के वजीर दिफा बोरिस पिस्टोरियस ने आज कहा कि जर्मन में अमरीकी फौज की मनसूबाबंद कमी यूरोप को अपनी दिफाई सलाहियतें मजबूत करने पर मजबूर करेगी। उन्होंने यूरोप में जोर दिया कि वो अपनी सलामती की ज्यादा जिम्मेदारी उठाएं और इस बात का जिक्र किया कि जर्मन अपनी फौज और इंफ्रास्ट्रक्चर को वसत दे रहा है। इत्तलात नशरियात की वजारत ने मारूफ नगमानिगार, मुसन्निफ और मवासलात के माहिर परसून जोशी को भारतीय पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती का चेयरमैन मुकर्रर किया है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज शिमाल मशरकी रियासतों अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम ने जनूबी रियासतों केरला, तमिलनाडु और पुदुचेरी में शदीद बारिश की पेशगोई की है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में गरज चमक और झालाबारी का इम्कान है। मध्य प्रदेश में नुमाइंदगी करने वाले कुलदीप कुमार ने नेशनल मेंस पोल वॉल्ट में 5.41 मीटर का नया रिकॉर्ड कायम करते हुए भुवनेश्वर में जारी इंडियन इंडोर ओपन कंबाइंड इवेंट्स और पोल वॉल्ट मुकाबले के पहले दिन सोने का तमगा जीता। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले बेशतर अखबार ने मगरबी बंगाल में जारी इंतखाबी अमल से मुतल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप की इस सिलसिले में शह सुर्खी है, मगरबी बंगाल में वोटों की गिनती के लिए सिक्योरिटी इंतजाम मजीद सख्त, जबकि अखबार इंकलाब ने बंगाल में 15 बूथों पर दोबारा पोलिंग में 90% वोटिंग की खबर को नुमाया किया है। इसी अखबार की एक और खबर है, आफात से मुतालिक मुलगीर मोबाइल इंतबाही निज़ाम का आगाज़, शहरियों को फौरी अलर्ट्स की सहूलत। हिंदुस्तान एक्सप्रेस लिखता है प्रसून जोशी प्रसार भारती के चेयरमैन मुकर्रर। अखबारात ने बहरिया के सरबराह एडमिरल दिनेश त्रिपाठी के म्यांमार दौरे से मुतल्लिक खबर को भी अहमियत के साथ शाया किया है। अखबारात की अहम बैनुल अक्वामी खबरें इस तरह हैं, मकसद हासिल किए बगैर जंग ख़त्म नहीं करेंगे ट्रंप का बयान, अमेरिका के साथ नई जंग का इम्कान मौजूद है ईरानी फौज का बयान।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके में तमाम 285 पोलिंग मराकज पर इस महीने की 21 तारीख को दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत के पुख्ता अज्म की अक्कासी करता है। भारत आने वाला एक और LPG टैंकर बहिफाजत आबनाए हुरमुज से गुजर गया है। अमरीका ने जर्मनी से 5,000 से ज्यादा फौजियों को वापस बुलाने का फैसला किया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने मुल्क के शिमाल मशरकी और जजीरा नुमा इलाकों के कुछ हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। 8:45 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम साहित्य की।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य की। आज के संक में आप सुन सकेंगे व्यंग गोष्ठी। प्रतिभागी हैं श्री सुभाष चंद्र, श्रीमती निशा भार्गव, श्री लालित ललित और डॉक्टर अर्चना चतुर्वेदी। गोष्ठी का संचालन कर रहे हैं डॉक्टर लालित ललित।
2: मित्रों, तनाव इतना बढ़ चुका है, उस तनाव को दूर करने के लिए हास्य होना बहुत जरूरी है। आप देखते हैं कि हम लोग पार्कों में भी जाते हैं, वहाँ भी खिलखिला के हंसते हैं, बुजुर्ग मस्ती करते हैं और उल्लास करते हैं। उसी आनंद को बिखेरने के लिए आज हम मौजूद हैं। मेरे साथ यहाँ उपस्थित है वरिष्ठ व्यंगकार निशा भार्गव, उनसे अनुरोध करेंगे कि पहली पारी वे खेले, उनको आमंत्रित करते हैं। निशा भार्गव
3: जी, धन्यवाद लालित ललित जी। मैं जो अपना व्यंग सुना रही हूँ उसका नाम है गोल गप्पाड़ा। सदाचारी जो देखन मैं चला, सदाचारी न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना खुद से भ्रष्ट न कोई।
2: क्या बात,
3: इसे एक बड़ी उपलब्धि जानकर ढोंगी राम खुश हुए और सोचने लगे, संतों का कहना है विद्या खर्च करने से ही बढ़ती है, बिना खर्चे घट जाती है, तो क्यों न वह भी भ्रष्टाचार विद्या को खर्चें और बढ़ावा दें, भ्रष्टाचार का पतन न हो और वह उत्थान की ओर अग्रसर हो। ऐसा विचार रखते हुए ढोंगी राम ने सोचा, एक शोध करते हैं और खोज करते हैं कि वह किस किस को भ्रष्ट कर सकते हैं। इस खोज में वह पसीना पसीना हो गए, परंतु असफल रहे। व्यक्ति भ्रष्ट हो फिर भी असफल हो जाए, यह विसंगति उन्हें भ्रष्टाचार की दुर्गति लगी। ढोंगीराम ने पाया कि भ्रष्टाचार में कोई उनसे 20 है, कोई 19 है, किंतु यह व्याप्त हर क्षेत्र में है। एक भी ऐसा व्यक्ति उनके संपर्क में नहीं आया जिसे वे भ्रष्ट कर पाते। हालांकि यह उन्हें ज्ञात था कि धरती पर बहुत से सदाचारी भी हैं, किंतु उनका एक से भी सामना नहीं हुआ। यह उनके ज्ञान पर लानत थी। उन्हें लगा कि भ्रष्टाचार के प्रचार प्रसार में वह पिछड़ गए या संभवतः लेट हो गए, लोग उनसे पहले ही बाजी मार गए थे। ढोंगीराम हिम्मत वाले व्यक्ति थे, भ्रष्टाचार की संपूर्णता उनमें सिमटी हुई थी। उन्होंने भ्रष्टाचार अभियान और धीरज की लगाम तनिक भी ढीली नहीं छोड़ी। सोचने लगे, धरती पर ना सही परलोक में ही इस अभियान को चलाया जाए, तो इस अभिमान के प्रणेता ढोंगीराम विचारों की कसरत करते करते सो गए। दनादन खर्राटे भरने लगे, प्रत्येक खर्राटा एक एक योजना की खबर दे रहा था जो उनके दिमाग में चल रही थी। योजनाओं के चक्रव्यूह में यमराज आ फंसे और ढोंगीराम से बोले, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। धर्मात्मा ढोंगीराम तनिक भी ना घबराए, न थरथराए, बल्कि कड़क कर बोले, नहीं चलूंगा तुम्हारे साथ, कर लो जो करना है। यमराज सोचने लगे कि उन्हें देखकर तो लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, लोग गिड़गिड़ाते हैं। यमराज ताव में आकर बोले, वैसे तुम्हारी मृत्यु में अभी 2 घंटे बाकी हैं, किंतु तुम्हारी अकड़ देखकर मैं तुम्हें अभी इसी वक्त ले चलूंगा, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। ढोंगी राम मस्खा लगाते हुए कुछ नम्र होकर बोले, महाराज, यमराज आप तो बहुत कर्तव्य पारायण हैं, अगर मुझे परलोक न ले जा पाए तो क्या दंड पाएंगे, जीवन भर की कमाई दांव पर लग जाएगी, यमराज ने कहा। ढोंगी राम मुस्कराए, सोचने लगे, ये सही समय है भ्रष्टाचार का तीर छोड़ने का। बोले, यदि उस नुकसान का दुगना पैसा मैं तुम्हें दे दूं, तुम्हारा प्रमोशन भी करवा दूं, तो यमराज जी सोच में पड़ गए, क्योंकि ढोंगीराम का जादू चल रहा था। बोले, हाँ, मुझे यमराज नाम पसंद नहीं, मेरा नाम कर्मराज, धनराज या धर्मराज करवा दें तो नगदी लेकर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ढोंगीराम बोले, माना कि आपने जीवन दान के बदले में मैं तुम्हारी आजीवन कमाई का दुगना देने को तैयार हूँ और प्रमोशन करवाने का भी वायदा करता हूँ, किंतु क्या तुम मुझसे वार्तालाप, संलाप, साठ गांठ और जोड़ तोड़ की बात नहीं करोगे। विशुद्ध दिल वाले यमराज बोले, जरूर करेंगे, वार्तालाप ना नहीं करेंगे। ढोंगीराम ने बातचीत के दौरान यमराज से कहा, महाराज आजकल तो आपके पास फ्री समय बहुत बचता होगा, पृथ्वी लोक की तरह आपाधापी नहीं होगी, आपका काम तो डॉक्टर, अस्पताल, आत्महत्याएं, मिलावट, विस्फोटक, आतंकवादी, दुर्घटनाएं आदि ही पूर्ण कर देते हैं। आपको तो मृतक की डिलीवरी लेने पृथ्वी पर कम ही आना पड़ता होगा, क्योंकि अब तो आपको बैकुंठ में बैठे बैठे ही फ्री होम डिलीवरी मिल जाती है। गर्दन हिलाकर यमराज ने ढोंगी राम की बात पर सहमति की मुहर लगा दी और बुदबुदाते हुए बोले, हाँ इसीलिए मैं ओवरवेट हो रहा हूँ। यमराज ने हामी भरने की तर्ज पर फिर गर्दन हिलाई और सोच विचार कर बोले, ढोंगी राम तुम महापंडित हो और दूरदृष्टा भी, मेरी संगति से तुम्हें पूरा लाभ मिलने की संभावना है। मेरा नाम लेकर तुम लोगों को मौत का डर दिखा दिखा कर अपने भ्रष्टाचार अभियान की सदस्यता में बढ़ोतरी करने में सफल हो जाओगे। तो इस ढोंगी राम और यमराज ने हाथ से हाथ मिलाया और वादा किया कि वे हाई टेक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे, ना होगा कोई छोटा भ्रष्ट ना बड़ा भ्रष्ट, सब समान होंगे, ना होगा अमीर भ्रष्ट ना गरीब भ्रष्ट, सब समान होंगे, ऊंचे भ्रष्ट नीचे भ्रष्ट आदि के श्रेणीकरण को हटाकर सबको टॉप लेवल पर पहुंचाने की दोनों ने ठानी। यमराज जो मौत का प्रस्ताव लेकर आए थे, वह सम्मन जारी ही नहीं हुआ। इहलोक से परलोक तक ढोंगी राम की डिलीवरी स्थगित हो गई। कब तक के लिए कौन जाने, परलोक में क्या हंगामा होगा नहीं मालूम, दोनों की दोस्ती क्या रंग लाएगी नहीं मालूम। अलबत्ता भ्रष्टाचार की जीत की ढोंगी राम को बधाई, बहुत बहुत बधाई,
4: बहुत
3: धन्यवाद।
2: हमें बड़ा आनंद आया इस रचना को सुन के कि निशा भार्गव जी की रचना जो गोल गपाला है उसमें फ्री होम डिलीवरी पर बहुत जोर दिया गया कि यमराज हो, और इस तरह आजकल हम लोग कई तरह की डिलीवरी पर देखते हैं, लेकिन अच्छी रचना। निसंदेह हमारे श्रोताओं ने बड़ा आनंद लिया होगा कि यमराज के काल में भी किस तरह की होम डिलीवरी की हम चर्चा करते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक अच्छी रचना हमारे श्रोताओं के सामने रखी। और मेरे सामने दूसरा नाम मैं जिसे आमंत्रित करना चाहूंगा, ये व्यंग के क्षेत्र में सरेलता पाठक समीक्षा तेलन सूर्य बाला जिस तेजी से लिख रही है उतनी ही तेजी से हमारे बीच में अर्चना चतुर्वेदी है, उनसे कहूंगा कि एक तड़कती फड़कती रचना हमारे श्रोताओं के सम्मुख रखें।
4: धन्यवाद लालित जी। मेरी रचना का शीर्षक है मेमोरियल टूर्नामेंट। रात के 9:30 बजे थे, हम आराम से पलंग पर पसर कर टीवी के सामने बैठकर अपनी आंखों की आयु कम कर रहे थे, बाकी समय ये काम मोबाइल के जरिए करते हैं। अचानक दरवाजे की घंटी बजी, हम अपनी भारी भरकम काया को लेकर हिलते, तब तक पत्नी द्वारा सताए हुए पति टाइप दिखने वाले हमारे तार से बिजली से पतले पिया अर्थात हमारे एकमात्र पति देव उठकर दरवाजे तक पहुंच चुके थे।
2: एकमात्र पिया क्या हुआ?
4: अपनी भारी भरकम काया और उससे भी भारी अपनी आलसी प्रवृत्ति के कारण हम अपनी जगह से भले ही नहीं हिले पर हमारे कान दरवाजे तक पहुंच चुके थे। दरवाजा खुलते ही एक साथ कई मर्दाना आवाजें आईं। अब हमारे कान पूरी तरह खड़े हो चुके थे, अब आंखें भी उधर कुछ कुछ पहुंच गई थीं। आखिर कौन लोग हैं जो इस वक्त दिल्ली की जनवरी वाली सर्दी में रात में रजाई का मोह छोड़कर हमारे यहाँ पधारे हैं? आवाजों पर ध्यान केंद्रित किया तो इतना तो समझ में आ गया कि आवाजें कॉलोनी के ही लोगों की हैं। हम ध्यान लगाकर सुन ही रहे थे तभी किसी ने हमारा नाम लिया, और अपना नाम सुनकर सिर्फ हमारे कान ही नहीं इस बार हम भी रजाई छोड़ फुर्ती से खड़े हो गए। पतिदेव ने उन्हें सोफे पर बिठा दिया था और कुछ और बातें हुई जिसमें हमारा नाम शामिल था। अब हमारे पतिदेव उनकी बात सुनकर हमारी तरफ आने के लिए बढ़े। ये सब ड्राइंग रूम की दीवार पर चिपके हमारे कान सुनने के साथ साथ देख भी रहे थे। अपना नाम सुनते ही हमारे शरीर में रक्त का जो संचार हुआ और हमने फुर्ती से उठकर अपने कपड़े ठीक किए, बाल संवारे, तभी पतिदेव की आवाज आई, सुनो बाहर आओ, वे लोग तुमसे ही मिलने आए हैं। ये वही लाइन थी जिसका हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। अब कान तो ड्राइंग रूम से वापस आ चुके थे लेकिन हम ड्राइंग रूम तक पहुंच चुके थे। हमारे स्वागत में वे सब खड़े हुए, नमस्कार अभिवादन संपन्न होते ही हमने कुशल गृहिणी की तरह चाय पानी पूछ डाला, पर पतिदेव तो ज्यादा कुशल निकले, वे नाश्ता और पानी की ट्रे लेकर हाजिर थे। अब उन्हें देखकर हम बेफिक्र अंदाज में धप से सोफे पर फैल गए और बाकी लोगों को भी बैठने का इशारा किया। जी कहिए कैसे आना हुआ, हमने टिकते ही प्रश्न उनकी ओर उछाला। जी भाभी जी, वो अपने यहाँ बैडमिंटन टूर्नामेंट है तो हम आपको मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाना चाहते हैं, एक महाशय बोले, सुनकर हमारी बाछा खिल गई। अब जब हमारी कॉलोनी में इतनी प्रसिद्ध लेखिका रहती हो तो किसी बाहर वाले को काहे बुलाए हैं, दूसरे भले मानस जी उबाचे, और पति देव द्वारा लाए काजू की कटोरी से चार चखाजू मुंह में ठूंस लिए। हम अपनी तारीफ सुनकर कुछ और फूले, तभी एक और आवाज आई, भाभी जी हम देखते हैं आपकी फोटो अखबार में आती रहती है। अबे फोटो नहीं आर्टिकल भी तो आता है, दूसरे ने काजू के साथ बिस्किट पर भी हाथ साफ करते हुए अपना ज्ञान बघा रहा। अब बाकी सब हमारी तारीफ में मशगूल हो रहे। जी

0: व्यंग होता है, हमने बोलना चाहा, फिर चुप रहने में ही भलाई समझी। जब अखबार वालों को बताना पड़ता है लेखक व्यंगकार है, तो हम इन्हें व्यंग क्या ही समझा पाएंगे।
1: अच्छा।
0: हम बस किसी बड़े साहित्यकार की मुद्रा में गर्दन में थोड़ी अकर लाते हुए एकदम तन कर बैठ गए और चेहरे पर सिर्फ 100 ग्राम मुस्कान चिपकाते हुए हमने कुछ देर अपनी तारीफें बड़े स्टाइल से सुनी। फिर बात आगे बढ़ाने के लिए हमने कार्यक्रम का समय और रूपरेखा पूछना शुरू किया। सब समझ आने पर हमने पूछा, ये जो आरपी सिंह मेमोरियल टूर्नामेंट है, उन आरपी सिंह जी के बारे में कुछ बता दीजिए, ताकि मैं अपनी स्पीच अर्थात भाषण में उनके बारे में बोल सकूं।
1: बढ़िया बढ़िया।
0: अभी हम आगे कुछ बोल पाते तभी सबने एक साथ पकड़कर एक जीते जागते इंसान को जबरदस्ती खड़ा कर दिया और एक समय बोले, भाभी जी यही है आरपी सिंह, इन्हीं की स्मृति में हो रहा है कार्यक्रम। है क्या? हमें जोर का झटका जोर से ही लगा और हम झटके से खड़े हो गए। अरे भाभी जी आप खड़ी क्यों हो गई, बैठिए ना। असल में जी वो इसने टूर्नामेंट के लिए सबसे ज्यादा रुपये दिए हैं ना, तो हमने इसकी स्मृति में कार्यक्रम रख दिया। वे लोग हंसते हुए सिंदाज में बोले, मानो कोई बड़ा दिया मार लिया हो। पतिदेव हम एक दूसरे का मुंह देखने लगे, हमें गुस्सा आ चुका था। पतिदेव ने सारा भी किया शांत रहने का, पर हमें एक बार गुस्सा आ जाए तब तो हम अपने आप की भी नहीं सुनते। और ये तो बात ही गुस्से वाली थी।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
0: दिमाग खराब है आप लोगों का। हम भन्ना कर बोले, जी क्या हुआ भाभी जी, वे हड़बड़ाए, स्मृति का मतलब नहीं पता आप लोगों को, वो भी हिंदी भाषी प्रदेश में। हम जोर से बोले, जी वो जी, वे हकलाए, जिंदा आदमी की स्मृति में टूर्नामेंट रख रहे हैं, हद है बेवकूफी की, स्मृति मरने के बाद होती है। हम पिनपिनाए, क्या इसका ये मतलब होता है, हम तो बचपन से उस दोस्त की स्मृति में कार्यक्रम रखते हैं जो सबसे ज्यादा रुपये देता था। वे एक साथ बोले, ये अच्छा है जो पैसा दे उसी को मार दे, और सिर्फ मारते नहीं है बकायदा उसकी याद में टूर्नामेंट भी करवाते हैं। जीता जागता इंसान पैसे देकर अपनी स्मृति में खुशी खुशी कार्यक्रम करवाकर खुश भी है। वाह भाई साहब, आप वाकई धन्य है। मुझे माफ करें, मैं इस तरह के महामूर्ख सम्मेलन में कतई नहीं आ सकती, कहकर मैं दरवाजे के पास हाथ जोड़कर खड़ी हो गई ताकि वे लोग तुरंत निकल जाएं। जी भाभी जी, महामूर्ख सम्मेलन नहीं है, वो तो हम होली पर करवाते हैं। चलते चलते एक बुद्धिमान जी बोले, सच कहूं उस वक्त मन तो उन सबको कूटने का था उनकी बेहुदा हरकत पर ऐसा काम हो नहीं सकता था, सो हाथ जोड़कर उनसे विदा ली। उनके जाते ही पतिदेव जोर से हंसे, ये सही था, जीते जागते आदमी की स्मृति में कार्यक्रम तुम्हारी साहित्य की दुनिया से प्रेरित लगता है, जहाँ जीवित लोगों पर पत्रिका के अंक निकलते हैं, जीते जी अपने नाम से पुरस्कार देते हैं और भी बहुत से ऐसे कार्य करते हैं जो पहले साहित्यकार की मृत्यु के बाद होते थे। देखना जल्दी ही जीते जी स्मृति कार्यक्रम भी होने लगेंगे। पतिदेव हंसे, हा हा हा, वैसे मुख्य अतिथि को कोई मृत आत्मा बुलाना चाहिए था ना, क्या कहती हो तुम? आप भी ज्यादा मजे मत लीजिए, अपनी दुखी आत्मा को संभालकर हम भी खिसियाई सी हंसी में हंसने लगे। आखिर मुख्य अतिथि बनते बनते जो रह गए थे, सामने टेबल पर पड़ा मेमोरियल टूर्नामेंट का पैम्पलेट फड़फड़ाकर हमें मुंह चढ़ा रहा था और हम चुपचाप उदासी भरे गीत गा रहे थे।
1: निसंदेह अद्भुत रचना थी, और इस रचना में अर्चना जी ने कई सारे विषयों को लपेट दिया, विशेषांक से लेके
3: कई सारे लोगों को
1: सुनीति तक। और मुझे लगता है कि जो विषय जो चुना, बिल्कुल नया विषय चुना, कि वो व्यक्ति जीवित है और उसके जीवित होने के प्रमाण हमारे सामने हैं, लेकिन उसकी याद में कार्यक्रम हो रहे, उसकी याद में टूर्नामेंट हो रहे। बहुत बहुत आनंद आया और अच्छी रचना आपने सुनाई।
4: ललित जी, आप इससे पहले कुछ आप और कहें, मैं आपको बता दूं कि हम लोग सब सुन रहे हैं जिन व्यक्ति से, जो संचालन कर रहे हैं हमारे कार्यक्रम का, ललित ललित जी। ललित ललित कविता और व्यंग में खासा दखल रखते हैं, उनकी इतनी किताबें आ चुकी हैं कि वो एक टेबल पर समाती नहीं है, हास्य व्यंग और कविता तीनों पर उनका दखल है। तो आज तीसरे व्यंगकार के रूप में ललित हमारे सामने है, तो मैं चाहूंगा ललित जी अपनी रचना का पाठ करें। ललित ललित।
1: शुक्रिया सुभाष जी, मैं सीधे सीधे अपनी रचना पे आता हूँ
2: जी।
1: देवी का गजोदर और पांडे जी की इलो इलो। कहते हैं जब प्रेम किसी से होता है तो अपने आप ही दिल की घंटी बजने लगती है। आज पांडे जी छुट्टी वाले दिन घर बैठे थे, राम प्यारी ने कहा कि सुनो जी आज ब्रेड पकोड़े बनाती हूँ, पर एक ही शर्त पर मिलेंगे, इसी को ब्रेकफास्ट और दोपहर का लंच समझना। बस फिर क्या था, पांडे जी ने हमेशा की तरह हथियार डाल दिए। ब्रेड पकोड़े भीतर गए तो नींद तो आ जाएगी, पर दिमाग में पांडे जी के देवी का गजोदर घूम रही थी। पांडे जी ने सोचा कि हाईवे हो और देविका का साथ हो तो क्या कीजिएगा, इश्क हो जाएगा जबरदस्त तरीके वाला। आइए पांडे जी को जरा क्रिएटिव कराते हैं। पांडे जी को आज अपने पिता की याद आई, पता नहीं क्यों। आइए उन्होंने जो लिखा पहले साझा करते हैं
2: जी।
1: जब पिता नहीं रहते तब उनका कमरा वीरान रह जाता है, उनकी पसंदीदा पुस्तकें एक एक करके घर से विदा हो जाती है, उनकी शेप का डिब्बा अपनी जगह से अलग थलग हो जाता है, उसमें से घर के ही सदस्य अपनी पसंद की चीजें ले लेते हैं, कोई कंघा, कोई ब्लेड, कोई पेस्ट के साथ कैंची ले जाता है। डिब्बा बन जाता है छोटे बच्चे का एक अस्थाई बैंक, जिसमें वह रख लेता है पेंसिल, कलर्स और स्टेशनरी का सामान। पिता की गर्मी

0: और सर्दी के कपड़े किसी गरीब व्यक्ति को दिए जाते हैं तो मफलर उनकी याद समझकर बेटी रख लेती है, टोपी बेटा पहन लेता है, इससे उसको यह फील होता है कि दादाजी का साथ बना रहेगा। बेटा परसों से बंद लोहे का संदूक खोलता है तो अनावश्यक कागजों को हटाया जा सके। उस संदूक में मिलते हैं उनकी पहली नौकरी से लेकर वर्तमान तक के लेटर्स, जिसमें उच्च अधिकारियों के द्वारा प्रशंसा और नियुक्ति के संदर्भ में पत्र है। बेटा सोचता है कि उसके पिता कितने कर्मठ और समर्पित थे अपने जीवन में। हर बेटे में उसके पिता गाहे बगाहे झांकते हैं, उसके मन में, उसके विचारों में, उसकी कलम में। बेटा अचानक से बड़ा हो जाता है, घर का मुखिया बन जाता है। जो जिम्मेदारी पिता निभाते थे आज बेटा निभा रहा है। बेटा सोचता है पिताजी आखिर क्यों गए उम्र से पहले उस डगर पर जहाँ सभी ने जाना है लौट कर नहीं आना। पिता के साथ सब गया, मीठी खट्टी बातों का पिटारा, कभी गुस्सा हो जाता, खाने से कन्नी काट लेता। पिता आते और कहते गुस्सा होना स्वाभाविक है, लेकिन भोजन का अनादर कभी मत करना। रह रहकर बातें बहुत याद आती हैं। यही जीवन है, यही वास्तविकता है, पांडे जी ने लिखा और मधुर स्मृति में खो गए। तभी राम प्यारी की आवाज आई, वह और चीकू शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, कुछ जेब हल्की करो। पांडे जी को जेब हल्की करना मंजूर था, शॉपिंग के लिए जाना नहीं। बहरहाल शॉपिंग करना और धूप से इश्क करना पांडे जी को मंजूर नहीं था। इसलिए पांडे जी ने अपने दफ्तरी मित्रों से पूछा क्या करोगे छुट्टी वाले दिन। अधिकांश ने कहा सोएंगे और घूमेंगे। पांडे जी सोचने लगे कि सोने से क्या होगा, पर साहब यह सभी का मौलिक अधिकार है, किसी के टंटे में क्यों पड़ना, जिसको जो करना है वह करे। पांडे जी सोचने लगे कि देवी का गजोदर के साथ कहां जाया जाए। उन्होंने ये सोचकर एक पोस्ट फेसबुक पर लगा दी। लगी आज जरूरत से ज्यादा विद्वान लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया। कोई कहता मनाली जाओ, कोई कहता हरिद्वार जाओ, जितने लोग उतनी सलाह। पांडे जी ने आत्ममंथन किया कि घर से बाहर जाओगे तो खर्चा होगा, बेमतलब की टेंशन क्रिएट होगी। पांडे जी ने राम प्यारी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, बेशक आप घूम आओ वे नहीं जाएंगे। उधर चीकू खुश कि पापा नहीं जाएंगे, यानी जाएंगे तो हर बात में पाँव पी करेंगे। तभी राम प्यारी ने कहा सुनिए जी आप घर पर रहना, मैं हर चीकू मार्केट जा रहे हैं, दो एक घंटे में लौट आएंगे। पांडे जी ने कहा आराम से जाओ, मैं घर पर हूँ, आप चिंता ना करो। राम प्यारी के जाने के बाद पांडे जी ने दूध वाली चाय बनाई और सोचा कि वे भी बनाकर देखते हैं आखिर राम प्यारी को इस तरह की चाय क्यों पसंद है। बस कहीं से पांडे जी ने पढ़ लिया था कि दूध वाली चाय पीने से सांवला रंग गोरे रंग में तब्दील होता। पांडे जी ने सुबह पार्क के साथियों को भी बताया। लोकल दुकानदार ओपी का दूध का चक्कर बढ़ गया, जिसके यहाँ 2 लीटर जाता था अब 3 लीटर जाने लगा। कमाल की मार्केटिंग है साहब, जो उछाल दो सब उसके पीछे दीवाने हो जाते हैं। यही दुनिया है और दुनियादारी भी। तभी देवी का गजोदर का मोबाइल आया। पांडे जी ने कह दिया कि प्लान कर लो श्रीनगर का, और वैसे भी वंदे भारत शुरू हो गई है, ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा। देवी का ने कहा कि पांडे जी खर्चे की बात नहीं है, ऐसा करते हैं कि जाते समय वंदे भारत से चलेंगे और वापसी में हवाई जहाज से आ जाएंगे। पांडे जी ने भी अपनी सहमति दे दी। और बाय द वे ये इलू इलू कभी भी किसी भी उम्र में हो सकता है और जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। जैसे राधेलाल शर्मा को हुआ, उसकी पोल पट्टी खुल गई, और चुप्पी प्रसाद भट्ट को हुआ, उसके पर्चे बट गए। बात को समझने की जरूरत है भाई साहब। देवी का गजोदर पांडे जी को अच्छे से समझती है और पांडे जी देवी का गजोदर की आत्मा से वाकिफ है। और इसको प्रेम मानिए, इश्क मानिए या कुछ और मानिए, एक बात तो तय है, दोनों में लोचा गजब का है। समझे भाई साहब? ऐसा कह लीजिए फेविकोल का जोड़ है जो आसानी से छूटता नहीं। जय राम जी।
1: जय राम जी के
0: मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपनी रचना को छोटा किया क्योंकि समय की भी मांग है, और हमारे बीच में वरिष्ठ व्यंग्यकार सुभाष चंद्र जी मौजूद हैं, और सुभाष जी को सुनना अपने आप को सुनना है और एक समय को सुनना है। और मुझे ये लगता है कि सुभाष जी इस दौर के सबसे ज्यादा सक्रिय व्यंग्यकार हैं, जिन्होंने अच्छे अच्छे राधेलाल बिठा दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सुभाष जी, आपका स्वागत।
2: धन्यवाद ललित। मेरी रचना का शीर्षक है प्रदीप की शादी और एसी।
0: क्या बात,
2: कुल जमा 40 साल पहले की बात है। अपन को नई नई अफसरी मिली थी, पहली पोस्टिंग थी पटना। वहाँ मुझे प्रदीप बाबू मिले टाइपिस्ट के रूप में। प्रदीप बाबू बातों में हीरो और काम में पूरे जीरो थे। काम का पेट वो बातों से भरने की कोशिश करते थे, बहानेबाजी में तो मास्टरी थी, रोज नए बहानों की फसल काटनी। एक दिन प्रदीप मेरे पास आया और बोला साहब अपना टेबल ग्लास और पेन सेट दे दो। मैंने पूछा क्यों, बोला साहब मुझे अफसर लगना है। मैंने कहा मतलब साहब अभी नहीं बता सकता। मैं बोला तो ठीक है मैं भी अभी नहीं दे सकता। क्यों, मेरी मर्जी। ठीक है साहब किसी से कहिएगा मत, लड़की वाले देखने आ रहे हैं, उनके सामने थोड़ा सा नक्शा जमाना है। अबे यार, नक्शा तो जमा जमाया है, परमानेंट नौकरी है, अच्छी वाली तनख्वाह है। मैंने शरारती घोड़े खुले छोड़ दिए। उसने आंखों में दीनता और दोनों हथेलियों में फेविकोल का जुगाड़ कर लिया और हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मालिक साहब, किसी से कहेंगे तो नहीं? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मुझे मजा आ रहा था तो प्रदीप शर्माते हुए थोड़ा सा बोला, साहब वो बात यह है कि मैंने लड़की वालों को बोला है कि मैं यहाँ का सबसे बड़ा अफसर हूँ, मतलब रीजनल मैनेजर। मैं चौंक गया। अबे यार, तुम तो टाइपिस्ट हो, तुमने खुद को अफसर बताया, वो भी कौन, रीजनल मैनेजर, आरएम, पर ऐसा क्यों भाई? प्रदीप थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोला,

0: मेरा ये शीशा ले लो, पेन सेट ले लो, पेन सेट और टेबल क्लास मैंने दिया, रिवॉल्विंग चेयर जो थी अकाउंटेंट साहब ने दे दी, एडमिन अफसर ने चार चपरासी दे दिए, और इत्तेफाक से बिल्ली के भागो छीका टूट गया। मतलब डिप्टी आरएम साहब को टूर पर साउथ जाना पड़ गया। अब प्रदीप पहुंच गए उनके पास, बोले साहब अपना रूम दे दीजिए। प्रदीप ने उनसे रूम भी ले लिया। अब सारी बात हो गई, अब पूरा मामला टन टन हो गया। अब रह गए थे 2 दिन लड़की वालों के आने में। परेशानी ये थी कि सारी बात तो ठीक है, रूम मिल गया, टेबल ग्लास मिल गया, चपरासियों का इंतजाम हो गया, सारे काम हो गए, पर दिक्कत थी आरएम साहब की। आरएम साहब का क्या जुगाड़ किया जाए? तभी पुनीत और राघव को कुछ याद आया। पुनीत चूंकि हेड ऑफिस से ट्रांसफर होके आया था और वो वहां सबको जानता था, तो उसने क्या काम किया कि उसने चेयरमैन के पीए की आवाज में फोन लगाया आरएम साहब को, और बिल्कुल लड़की की आवाज में बोला, सर ऐसे ऐसे आपको चेयरमैन साहब ने बुलाया और आपको बहुत बड़ा काम सौंपने वाले हैं। आरएम साहब बोले, अरे लेकिन साहब से बात तो कराइए। नहीं नहीं साहब, अभी मीटिंग में अभी बात मत कीजिएगा, आप अभी रात की ट्रेन पकड़िए और कल यहाँ पहुंच जाइए। अब पटना से दिल्ली आने में देर तो लगती है। साहब रात को आरएम साहब भी निकल गए। अब हो गया मामला खोमचा, पूरा जम गया। अब तो गए कोतवाल, अब डर काहे का। अब तय ये हुआ कि बड़े साहब की नेम प्लेट उतारी जाए और उस पर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव रीजनल मैनेजर की नेम प्लेट लगा दी जाए। सारा खेल आरएम के दफ्तर से खेला जाए। पर ना ना, उनकी जो पीएस थी मिस बनर्जी, वो नहीं मानी। बोली कि ज्यादा जिद करोगे तो साहब के सामने सारी बात पोल पट्टी खोल दूंगी। तो मजबूरी में डिप्टी रीजनल मैनेजर साहब के कमरे में खोमचा जमाया गया। उनके रूम के बाहर प्रदीप श्रीवास्तव की नेम प्लेट लग गई। 2 चपरासी कमरे के बाहर तैनात हो गए। गलियारों में तीर के निशान लग गए। 4 बोर्ड लगा दिए जिन पे लिखा था, बड़े साहब श्री प्रदीप श्रीवास्तव का दफ्तर इधर है। इसके अलावा सबको हिदायत दे दी गई कि जब प्रदीप बाबू मेहमानों को लेकर आएंगे तो सभी लोग झुककर सलाम करेंगे और ऐसे डरने का अभिनय करेंगे जैसे साक्षात सांप देख लिया हो। जब तक मेहमान दफ्तर में रहेंगे तब तक यही हाल रहेगा। अब एक चीज और हुई कि देखिए, उनकी शर्त है लड़की वालों की, बड़े साहब दमंग पूरे हों। इसलिए प्रदीप ने सबको समझा दिया कि साहब मैं सबको एक एक बार डांटूंगा, प्लीज बुरा मत मानना, बाद में चाहे मुझे गाली दे लेना, बाद में चाहे पीट लेना, पर उनके सामने कुछ मत करता। ठीक है साहब, सारा मामला तैयार हो गई, मेहमानों का इंतजार का काम शुरू हो गया। मेहमानों ने ठीक 12 बजे एंट्री ली। वे संख्या में 4 थे, इधर समर्पित मेजबानों की संख्या पूरी 40 थी। सब हुआ, मेहमानों की खूब खातिरदारी हुई, कई तरह की मिठाइयां आई, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, चाय, सब चकाचक। प्रदीप बाबू का रौब भी खूब चला। मेहमानों के आते ही झुक झुक कर सलाम हुए। प्रदीप बाबू ने सबको बुरी तरह लताड़ा, मुझ पर तो खासी कृपा रही। मेहमानों के सामने खूब डांट पिलाई। मैं अभी सर झुकाए यस सर करता रहा, पर बाद में सोच लिया, बेटा अभी आने वाली एनुअल रिपोर्ट के लिखने का मौका, तेरा वो हाल करूंगा, याद रखे। पर साहब सब हुआ पर रिश्ता पक्का ना हुआ। लड़की के बाप को फोन किया गया। लड़की के बाप ने कहा, देखिए सब ठीक है, प्रदीप बाबू अफसर हैं, बड़का अफसर है, जो मिलता उसी को डांटते हैं, मतलब बहुत रौबदाब है, पर उतना बड़का अफसर नहीं ना है जितना हमको चाहिए। तो झाजी ने इधर से पूछा कि क्यों, ऐसा क्या हुआ? उधर से जवाब आया, देखिए हम जानते हैं बड़का जो अफसर लोग होता है, उनका रूम में ठंडी हवा फेंकने वाला मशीन होता है, क्या बोलते हैं उसको, एसी, वो साहब के रूम में नहीं ना है, तो बड़का अफसर कैसे हुए? ना ना, हम अपना बिटिया का शादी छोटका अफसर से नहीं ना करेंगे जिसका कमरा में ठंडी हवा का मशीन तक नहीं है, कहकर फोन काट दिया गया। इस वार्तालाप को सुनते ही दफ्तर में वो छा गया जिसे सन्नाटा कहते हैं। अब प्रदीप बाबू के कुंवारे सपने बिना हाथों में मेहंदी रचाए सो गए। सारे दफ्तर को दुख।
1: क्या बात है, क्या बात है।
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुभाष जी, बहुत शानदार रचना आपने सुनाई हमारे श्रोताओं को, और उसके विषयों का तारतम्य इतना गजब था कि कहाँ से पकड़े। लेकिन मुझे लगता कि बड़ी प्रेरक रचना थी कि 500 बीघे वाली जो बात आपने अपनी रचना में उठाई, अद्भुत है। और मुझे लगता है कि निसंदेह हमारे श्रोता बहुत सारे प्रेरक वाली भूमिका में भी होंगे, और निसंदेह ये रचना पाठ जो है हमारे श्रोताओं को पसंद आएगा। आप सभी के प्रति मैं आकाशवाणी की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया,
1: धन्यवाद जी।
3: अभी आप व्यंग गोष्ठी सुन रहे थे। प्रतिभागी थे श्री सुभाष चंद्र, श्रीमती निशा भार्गव, डॉक्टर लालित ललित और डॉक्टर अर्चना चतुर्वेदी। गोष्ठी का संचालन कर रहे थे डॉक्टर लालित ललित। और आइए अब सुनते हैं इस सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियाँ। आलेख है श्री दिनेश वत्स का, वाचन स्वर कीर्ति बैद। ग्रीष्म ऋतु में सूरज के तपन से जहाँ एक तरफ धरती जल रही है और दूसरी तरफ तेज हवाओं के साथ लू के थपेड़े लोग सह रहे हैं, तो साहित्यिक गतिविधियाँ, कवि सम्मेलन और कवि गोष्ठियाँ भी उतनी ही गर्मजोशी के साथ आयोजित की जा रही है। 24 अप्रैल को राजधानी में अंतर संस्था की तरफ से

0: कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पुण्यतिथि पर 81वीं काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता कवित्री वंदना कुंवर रायजादा ने की। दोहाकार मनोज कामदेव मुख्य अतिथि रहे। संस्था की अध्यक्ष डॉ. पूनम माटिया ने संचालन किया। गोष्ठी का आरंभ पूजा श्रीवास्तव ने सरस्वती वंदना से किया। काव्य गोष्ठी में डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि दिनकर युग चेतना के कवि हैं। युग चेतना का श्रोता अतीत से जुड़ा होता है। कवित्री अंशु जैन ने राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर की ओजपूर्ण कविता का वाचन कर श्रोताओं में जोश भर दिया। विपत्ति में, विरोध में अडिग रहो, अटल रहो, विषम समय के चक्र में साहसी रहो, प्रबल रहो, तप है जो जला है जो, चमक उसी में आई है, समस्त ताप तम में भी बड़े चलो, सफल रहो। कवित्री डॉ. पूनम माटिया ने कुछ यूं कहा, बदगुमानी थी यकी पर सफर हमने किया, जुल्मतों में नूर को यूं बेशतर हमने किया, तोड़ दी दहलीज पर ही हसरतों की गुल्ल के, ख्वाहिशों के काफिले को दर बदर हमने किया। वंदना कुंवर जायदा ने कहा, सूख रहे हैं फूल पत्तियों से रिश्ते, मिले हाशियों पर सुर्खियों से रिश्ते। मनोज कामदेव ने अपनी रचना से श्रोताओं का दिल जीत लिया। बगुले हैं हड़ताल में, मछली सोचे आज, रक्षा करने आ गए भेष बदल कर बाज। तो कवित्री पूजा श्रीवास्तव ने अपनी रचना के माध्यम से श्रोताओं की तालियां बटोरी। उन्होंने कहा, ये दुनिया में कैसी मची खलबली है, किसी एक जिद पे कायमात अड़ी है। कार्यक्रम में कर्नल प्रवीण त्रिपाठी, नवांकुर साहित्य संस्था के अध्यक्ष अशोक कश्यप तथा अंतस के संरक्षक नरेश माटिया की गरिमामयी उपस्थिति ने गोष्ठी को और भी जीवंत बना दिया। अध्यक्ष उद्बोधन में वंदना कुंवर रायजादा ने रचनाकारों की प्रशंसा करते हुए दिनकर के साहित्य की प्रासंगिकता पर बल दिया। अंत में मुख्य अतिथि मनोज कामदेव ने सभी कवियों के रचना कौशल की सराहना की। वरिष्ठ उपाध्यक्ष अंशु जैन द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ इस सफल साहित्यिक आयोजन का समापन हुआ। शनिवार 30 अप्रैल को जाने माने कवि और गजलकार लक्ष्मीशंकर वाजपेयी के कविता संग्रह कवि के मन से का लोकार्पण साहित्य अकादमी सभागार में संपन्न हुआ। इस अवसर पर वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. ममता कालिया, वरिष्ठ गजलकार श्री बाल स्वरूप राही, वरिष्ठ कवि और मीडियाकर्मी श्री लीलाधर मंडलोई, वरिष्ठ लेखक और रंगकर्मी श्री प्रताप सहगल, वरिष्ठ कवि और प्राध्यापक डॉ. जितेंद्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ गजलकार और समीक्षक डॉ. ओम निश्चल, वरिष्ठ कवि और समीक्षक डॉ. संजीव कुमार और युवा शायर डॉ. रहमान मुसव्विर उपस्थित थे। इस अवसर पर अनेक साहित्य प्रेमी कवि और लेखक उपस्थित रहे। शनिवार 2 मई को दोपहर कनॉट प्लेस स्थित इंडिया लाइव बिल्डिंग सभागार में वरिष्ठ कवि और संपादक श्री कामता प्रसाद मौर्य के प्रथम कविता संग्रह मुंह तो खोलो का लोकार्पण समारोह संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ कवि डॉ. कुसुम वियोगी, प्रोफेसर हंसराज सुमन, प्रोफेसर रजत रानी मीनू, प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन, श्रीमती अमित धर्म सिंह आदि ने भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉ. कुसुम वियोगी ने कहा कि कामता प्रसाद मौर्य की कविताएं समाज के आखिरी कोने पर बैठे व्यक्ति को जागृत करती है। श्री कामता प्रसाद मौर्य ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस संग्रह को पढ़ने की गुजारिश की। अभी आप साहित्यिक गतिविधियां सुन रहे थे। आलेख था श्री दिनेश वत्स का। इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, अब समय हुआ है कार्यक्रम हमारे अतिथि का। हमारे अतिथि में आज आप सुनेंगे साहित्यकार और साहित्य अकादमी से सम्मानित डॉ. दिविक रमेश की भेंट काजल सूरी से। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता काजल सूरी।
2: हमारे अतिथि क्रम में आइए सुनते हैं जाने माने साहित्यकार श्री दिविक रमेश से एक भेंट वार्ता। इनसे भेंट कर रही हैं काजल सूरी।
3: नमस्कार श्रोताओं, हमारे अतिथि कार्यक्रम में मैं काजल आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ हैं जाने माने साहित्यकार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार डॉक्टर दिविक रमेश जी। सर, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: तो सर, सबसे पहले मैं आपसे, मेरा जो सवाल है वो ये है कि आपका जो सफर है वो कैसे शुरू हुआ लेखन के क्षेत्र में? आप एक शिक्षाविद भी रहे हैं, तो क्या कहेंगे किस तरह से आपका सफर शुरू हुआ?
4: देखिए, लगभग 13-14 साल का रहा हूँगा
3: जी,
4: तो मैंने लिखना शुरू किया था
3: जी।
4: अब वो लिखा हुआ कितना महत्वपूर्ण है ये अलग बात है, हालांकि मेरी फाइल में, मेरी

0: कॉपी में वो सुरक्षित है। और उसका कारण मैं समझता हूँ, बिछो भी कह सकते हैं, नई दुनिया में आना भी कह सकते हैं,
1: जी
0: मैं दिल्ली के देहात में जो गांव है
1: जी
0: हरियाणा की सीमा पर, तो हरियाणी
1: जी
0: यानी समझिए हरियाणवी संस्कृति या बोली में पला बढ़ा हूँ
1: जी
0: मैं, मेरा बचपन हुआ है।
1: जी
0: तो वहाँ से मुझे आगे की पढ़ने के लिए, रहने सहने के लिए मेरे ननिहाल भेज दिया गया, जो कि
1: जी
0: दिल्ली के करोल बाग में वो
1: जी
0: क्षेत्र पड़ता था, देवनगर।
1: जी
0: स्पष्ट है कि मैं 5वीं क्लास पास करके वहाँ आया तो मुझे
1: जी
0: अपनी माँ भी याद आती थी, मेरे पिता भी याद आते थे, पिता को हम चाचा कहते थे,
1: जी
0: और मुझसे जो दो छोटी बहनें उस समय थीं, बड़ी बहन तो शादीशुदा थी, तो वो छोटी बहनों से बड़ा लगाव होता ही है, वो याद आते थे, एक तो ये कारण। और दूसरा ये कि मैं जब यहाँ आया तो मैं वहाँ गांव का जैसे बच्चा होता है
1: जी
0: वैसा ही था, वही बोली थी, वही तरीका था।
1: जी
0: तो दिल्ली के जो आसपास के, मेरे घर के आसपास के जो बच्चे थे वो मुझे स्वीकार ही नहीं करते थे, यानी एक बड़ा समय लगा उनका हिस्सा बनने में। लेकिन इसमें ये एक था, साहित्यिक अभिरुचि के थे मेरे नाना जी, उनके पास पुस्तकालय भी था, कुछ साहित्यकार भी आते थे, तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि शायद वो कारण रहे होंगे कि मैंने जो है अपने गांव को दिमाग में रख करके, अपने आसपास को दिमाग में रख करके लिखा। जहाँ तक मुझे याद है लिखी तो पहले कहानी गई थी
1: जी
0: लेकिन फिर छोटी छोटी कविताएं लिखी, जिसने मुझे मेरे गांव में मेरी अपनी गाय है वही दिमाग में ही लिख दी, छोटा
1: जी
0: बाद में छोटा भाई है तो उसकी उसको लेकर के लिख दिया, कुछ इस तरह की चीजें लिखी गई। कहने को उनको वो कविताएं लिखी गई लेकिन वो कविता थी या नहीं थी अलग बात है।
1: जी
0: लेकिन उसी समय मुझे बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिला अपने नाना जी से, जिन्होंने मुझे मेरे लेखन को सराहाया और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। तो यहाँ से शुरू हुआ था। तो स्कूल में भी थोड़ा मुझे ये हुआ कि मेरे अध्यापकों ने भी मेरी तरफ ध्यान दिया और मेरे जो लिखा था उस लिखे को एक तरह से उन्होंने पहचाना। ये अलग बात है कि मैं बहुत अधिक नहीं बढ़ पाया कि कुछ कारणों से, उस सेटबैक भी पहुंचा कि मुझे कहा गया कि अपनी कविता सुनाओ एक समारोह में, वो सुना नहीं पाया मैं, यानी मुझे बुलाया नहीं गया मंच पे। लेकिन उस वक्त भी मेरे नाना जी ने मेरा साथ दिया और कहा कि ये तो सब बाधाएं आती रहती हैं। और उस आसपास भी वातावरण कुछ ऐसा था, हमारे घर में तो आते ही थे कुछ साहित्यकार, जैसे भवानी प्रसाद मिश्र आदि का मेरे को नाम याद है, और चौराहों पर जो है ना कुछ कवि सम्मेलन जैसे हुआ करते थे, उनको भी सुनने के मुझे छूट थी। आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान रहा है,
1: क्या बात,
0: उसमें बाल साहित्य यानी बाल बच्चों के प्रोग्राम जो है रेगुलरली नियमित रूप से मैं सुनता था, छोटा सा रेडियो होता था वो, उन दिनों टेलीविजन तो था नहीं, और अखबारों का बड़ा योगदान है, बाल साहित्य छपता था, पढ़ने का मुझे शौक हो गया। तो इसके बाद जो है बस आगे बढ़ते चले गए और यूँ समझिए कि बीए में भी मुझे जो ना एक दो अध्यापक ऐसे मिले जिन्होंने मुझे मेरे साहित्यकार रूप को प्रोत्साहित किया, और मैं गीत नुमा कुछ लिखा करता था
1: जी।
0: गंगा प्रसाद विमल मेरे एक अध्यापक थे जिन्होंने मुझे
1: जी।
0: फ्री वर्स या मुखचंद की और वो लेके आए, और करते कराते शायद 1900 जहाँ तक मुझे याद है एक पत्रिका होती थी मणि में
1: जी,
0: जो कलकत्ता से निकली थी, और उसमें एक कविता छपी थी मेरी एक सूत्र, जो कि ठीक की थी विमल जी ने ही,
1: जी
0: मतलब उस समय के अध्यापक ऐसे होते थे कि वो आपको प्रोत्साहित भी करते थे, आपकी चीजों को अपने तरीके से
1: बताते
0: थे, जिसको सलाह उर्दू में तो ये काफी है चीज, लेकिन हिंदी में भी इस तरह के अध्यापक होते थे। तो जो एक सूत्र है मणिमय के मई 1970 में छपी थी और ये पत्रिका कोलकाता से निकलती थी, मतलब उस समय कलकत्ता ही बोलेंगे, अब कोलकाता कहेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो यहाँ से फिर शुरू हुई। और फिर मैं काजल जी, हमारा वो जो समय था, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली में था, दिल्ली विश्वविद्यालय से मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा हुई है, मैं उसको आज भी आज तक का स्वर्णिम काल कहता हूँ, यानी इतने हमारे आसपास अध्यापक भी और नए लोग भी थे जो कि साहित्य में और कलाओं में रुचि रखते थे, वो तरह एक तरह का विस्फोट था उस समय। आप ये सोचिए कि मेरा जो नाम दिविक रमेश है, ये दिविक वैसे ही वातावरण से आया था, हमारा एक सामूहिक संग्रह छपा था, जिसका नाम दिविक था, दिल्ली विश्वविद्यालय

0: लिखता, अब तक मैं रमेश शर्मा के नाम से लिखता था, और उसके बाद जो है दूसरा दैनिक निकला था जिसका मैं संपादक भी हो गया था, उसमें मैं दैनिक रमेश हो गया था। उन्हीं दिनों मुठियों बंद आकार, वो तो साहित्य जो सभा होती है यानी विभाग की, हिंदी विभाग की, उसी से निकला था वो संग्रह। और संपादक मंडल में एक मैं भी था रमेश शर्मा के नाम से, रामदास मिश्र जी थे और एक दो लोग थे। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि वो ऐसा वातावरण था, कॉलेजों में कविता प्रतियोगिताएं होना, कहानी प्रतियोगिताएं होना, ऐसे संकलन निकलना, उन्होंने भी बहुत मदद की होगी कि हमारा जो रचनाकार रूप है वो आगे बढ़ता चला जाए। ये है संक्षेप में मैंने बताया आपको।
1: तो बाल, अब जिस तरह से आपने कहा, आपने कहा अपना पूरा सफर बताया, लेकिन जो बाल साहित्य की जिस तरह से आपने बात की कि आप आकाशवाणी के बच्चों के प्रोग्राम सुना करते थे, उसे आपको बहुत सुनना बहुत अच्छा लगता था, तो बाल साहित्य लिखने की प्रेरणा आपको कैसे, आपने बाल साहित्य ही क्यों चुना जिसके लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, क्या कहेंगे?
0: देखिए मैं तो बड़ों के लिए लिखता था पहले शुरू से ना, और मेरा पहला जो संग्रह था वो रास्ते के बीच आया था, जिसके लिए कविताओं का चयन जो है वो शमशेर बहादुर सिंह जी ने किया था। और इस संग्रह के आने के पीछे भी आकाशवाणी का बहुत योगदान।
1: अरे वाह।
0: वो यूं कि आप जब देखिए उस समय शायद गिरजाकुमार माथुर जी थे आकाशवाणी में और वो प्रयोग करते थे, कम से कम दो कार्यक्रम तो मुझे याद आ रहे हैं। यूं समझिए कि बावलंकर हॉल में, इतना बड़ा हॉल
1: पहले वहीं हुआ करते थे प्रोग्राम,
0: उसके सामने मतलब सबके दर्शकों के सामने जो है रिकॉर्डिंग होती थी
1: जी।
0: ऐसे ही शायद किसी एक आध जगह और ऐसे ही हुआ था
1: जी।
0: तो मैं तो बहुत युवा था, जुड़ा तो था मैं यहाँ युवाणी प्रोग्राम से, बराबर आता था लेकिन बहुत युवा था। तो पता नहीं कैसे मेरी कविताएं भी चुनी गई थी वहाँ मावलंग के हॉल में सबके सामने सुनाने के लिए और वहीं रिकॉर्ड भी होनी थी। जब वो प्रोग्राम समाप्त हो गया तो जिन्होंने चुनी थी, जिनको ये दायित्व तो दिया गया था, उनमें एक अजित कुमार थे, एक शमशेर बहादुर सिंह जी थे
1: जी।
0: तो मुझे तब तक पता ही था कि शमशेर जी जिस दिल्ली के जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहीं वो भी रहते हैं। तो ऐसे ही मैंने उनको प्रणाम किया और जब कहा तो उन्होंने कहा अरे भाई मुझे अच्छी लगी थी आपकी कविताएं, मैं देखता रहता हूँ छोटी पत्रिकाओं में काफ़ी छपती हैं, तो आप एक साथ सब कविताएं मुझे पढ़वाइए। और मैंने हाथ से लिखा करते थे हम, प्रतियां भी हाथ से ही बनाई जाती थी, दो दो तीन तीन बार ऐसा कोई और तो था ही नहीं, ना कंप्यूटर था ना कुछ था। तो उनको मैंने दे दी, उन्होंने जब मैंने दी तो उन्होंने चयन किया, मुझे बहुत सारी चीज़ें समझाई भी और वो संकलन बना था रास्ते के बीच, और रास्ते के बीच पहला ही संकलन था जिसपे सोविटलैंड नेहरू अवार्ड मिला था मुझे।
1: अरे वाह, क्या बात, क्या बात।
0: आप ये देखिए, तो वो तब तक मैं बड़ों के पत्रिकाओं में भी खूब छपने लगा था, ये धर्मयुग वगैरह में, साप्ताहिक हिंदुस्तान, आपको ध्यान होगा,
1: कादंबरी वगैरह, बिल्कुल।
0: तो छोटी पत्रिकाओं से आया मैं लेकिन बड़ी पत्रिकाओं में भी मेरी पहुंच हो चुकी थी, और रास्ते के बीच निकलने के बाद तो एकदम से
1: बिल्कुल हो
0: गई। ऐसा हुआ कि मैं क्या कहूँ, बहुत हाथों हाथ लिया गया।
1: क्या बात,
0: आप यानी केदारनाथ अग्रवाल जैसे कवि ने उस समय की जो बहुत बड़ी मैगजीन थी अजमेर की, लहर से आती लहर, उसमें लगभग 15-20 पृष्ठ का लेख लिखा था एक संग्रह पर,
1: आपके संग्रह पर। क्या जी, बात, वाह।
0: केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा
1: जी।
0: और वो उनकी पुस्तक है विवेक विवेचन, उसमें आज भी आप पढ़ सकते हैं। तो कहने मतलब ये कि ऐसा वातावरण था। ऐसे में जो है जो मैंने पहले लिखा था बचपन में वो तो एक तरफ हो गया,
1: एक तरफ हो गया जी बिल्कुल,
0: तो मैं तो इधर ही बढ़ रहा था। तो ऐसे में जो है ना एक सज्जन मुझे मिले, मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही उनका देहांत हुआ है। वो लंदन से जुड़े हुए थे, देवेंद्र कुमार
1: जी, जी।
0: उनको भी साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है और बड़े अच्छे कथाकार और कवि रहे हैं। उन्होंने एक तरह से मुझे चुनौती दी, उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए लिखिए, नंदन के लिए लिखिए और हम आपको बहुत और भी अधिक प्रसिद्ध करेंगे, और मैंने उस चुनौती को स्वीकार किया।

0: लेकिन मैं जो सोचता था बड़ा आसान है बाल साहित्य लिखना, मुझे पसीने छोड़ गए।
1: अरे
0: छः महीने तक मैं ठीक ठाक नहीं लिख पाया। मैं सोचता था बड़ा आसान है, जब मर्जी लिख लो, लेकिन जो मुझे भी संतोष दे सके और मेरे पाठक को भी,
1: जी
0: ऐसा लिखने में मुझे बहुत बाधाएं आई। खैर, 6 महीने बाद जो है कुछ कविताएं लिखी गई जो मैंने धर्मयुग में छपता ही था, वहाँ ही भेजी, लंदन में भी भेजी। और धर्मयुग में मेरी कविता जो है मुन्ना बन बैठा दादा जब, 12 फरवरी 1978 के अंक में छप गई, यानी वो छपने वाली पहली कविता थी।
1: पहली कविता थी आपकी।
0: और मेरी पहली कविता जो है पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में ले ली गई,
1: वाह क्या बात,
0: वहीं से।
1: वाह वाह।
0: तो एक तो ये समझिए कि मुझे बचपन में जो प्रोत्साहन मिला नाना जी से,
1: बिल्कुल।
0: एक इस तरह के जो प्रोत्साहन मिले,
1: वाकई वाकई
0: हैं,
1: वाकई,
0: चाहे केदार जी ने दिया हो, चाहे शमशेर जी
1: बिल्कुल।
0: ने दिया
1: ये
0: हो,
1: अपने
0: चाहे
1: आप में
0: पत्रकार हो
1: पुरस्कार
0: गया।
1: हैं, प्रोत्साहन तो है ही, पुरस्कार है ही अपने आप
0: जी,
1: में। जी
0: तो फिर मैं जो है, फिर उसके बाद नंदन के संपादक जो होते थे जयप्रकाश भारती जी, उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। वो मुझे बहुत मानते भी थे। अपने मुंह से मैं क्या कहूँ, उन्होंने बहुत बड़े सभागार में, किसी शायद बल्गेरियन एम्बेसी, उन दोनों करवा करते थे सांस्कृतिक कार्यक्रम। उन्होंने ये बोल दिया कि अगले 20-25 वर्ष के जो श्रेष्ठ कवि हैं वो देवी के रमेश रहेंगे बाल साहित्य में।
1: वाह वाह
0: अब ये उनका कहा हुआ है, मेरा
1: जी,
0: कहा हुआ नहीं है। उसको लेके बहुत सारे
1: लेकिन
0: लोगों
1: उनकी
0: को
1: बात सच साबित हुई।
0: वो हो गई, लेकिन बहुत सारे लोगों को उस समय बड़ी तकलीफ हुई थी सुन करके। वो तो मुझे कम, उतनी सी कम उम्र में सृजनात्मक साहित्य पर सोविटलैंड नेहरू अवार्ड मिला पहला,
1: वाह जी,
0: उससे भी हुई थी कुछ लोगों को,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन खैर वो अलग बात है।
1: जी,
0: तो बस उसके बाद जो है मेरा पहला बाल कविता संग्रह जो निकला, जोकर मुझे बना दो जी, वो 1980 में छपा। और पहला कहानी संग्रह धूर साधुर किसान, उन दोनों में थोड़ा सा लोक की तरफ भी झुका हुआ था।
1: जी।
0: वैसे आज तक भी मुझे लोक से ताकत लेने में बड़ा अच्छा लगता है, कविताओं में भी,
1: लोक
0: भाषा,
1: साहित्य में तो हमारी जड़ें होती हैं, हमारी रूट्स
0: हाँ,
1: होती हैं,
0: भाषा के स्तर पर
1: बिल्कुल
0: भी, शब्दावली के स्तर पर
1: बिल्कुल।
0: भी। तो वो छपा 1984 में, बस वो चल निकला तो चल निकला।
1: सफर चल पड़ा। घड़ी हमसे कह रही है कि कार्यक्रम का वक्त खत्म हुआ है, लेकिन डॉक्टर देविक रमेश से हमारी बातचीत का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ, तो लेकिन वक्त को देखते हुए बातचीत को यहीं विराम देते हैं। अगले कड़ी में एक बार फिर से डॉक्टर देविक रमेश से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए काजल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे अतिथि। हमारे अतिथि में आज आपने सुनी डॉक्टर दिविक रमेश से बातचीत, भेंटकर्ता व प्रस्तुति काजल सूरी। और अब समय हुआ है पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महका। कुछ ही पलों में सुनेंगे आप ये कार्यक्रम।

पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक लैके मैं हाजर हाँ हरजीत कौर। स्रोतियो अज असी तुहानू सुनील कुमार दी एक वार्ता सुनवावांगे सोशल मीडिया अते समाजिक रिश्ते ते नाल ही अज असी तुहानू एक आवाज च आशा भोसले दे गाए गीत सुनवावांगे ते नाल नाल आशा भोसले दी जिंदगी ते गायकी बारे भी कुछ गल्लां तुहाडे नाल सांझियां करांगे। तुसी प्रोग्राम अखीर तक सुनदे रहना, पर पहला कुछ गल्लां सेहतमंद जीवन शैली बारे करते हाँ। सेहतमंद जीवन शैली का मतलब है सेहतमंद आदतां अपनाउणा ताकि बीमारियां तो दूर रह के निरोगी काया दे मालक बनिए। जिन्हां नूं बीमारी है वह भी सेहतमंद जीवन शैली अपना के बीमारियां तो निजात पा सकते ने। सेहतमंद शरीर, चंगी खुराक, शरीरक गतिविधियां मनुख दी

0: सेहत ते कल्याण लई जरूरी अते वडमुली देने। एदे वास्ते निकियां निकियां गल्लां हन जिन्हां ते अमल करके सेहत निरोई रखी जा सकती है। पहला तां खाण पीण ते ध्यान दिओ। कुलचे मोमोज पैटिस छड़ के घर दा बनिया ताज़ा खाना खाओ, समय ते खाओ, जिन्नी भुख होवे उन्ना खाओ। कोल्ड ड्रिंक्स की थां ते देसी पेय पदार्थ लो। खाना संतुलित खाओ जिन्हां च सारे विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, हर पोषक तत्व मौजूद होवे। भोजन ज्यादा मसालेदार ते वधेरे घिओ वाला ना होवे। बेमौसमी खाद्य पदार्थ ना खाके मौसम दी सब्जी, फल, सुके मेवे, दुध ते दुध तो बनिया चीजा भरपूर खाओ। इस तरह का खाना डायबिटीज, दिल दे रोग, ब्लड प्रेशर आदि रोगों तो दूर रखता है ते किडनी, लीवर, आंदरा, फेफड़े सारे अंदरूनी अंग सही काम करते ने ते ताकत बनी रहती है। दूजा, रोजाना कसरत करना जरूरी है। योगा, हल्की एक्सरसाइज तो अलावा रोजाना डांस करना, एरोबिक्स, पैदल चलना, दौड़ लाना, तैरना ये चंगियां कसरतां ने। चंगी नींद लेना भी अपने आप नूं सेहतमंद रखण लई बहुत जरूरी है। फिर अजकल जिन्हों वेखो मानसिक तनाव नाल घिरिया है। मैडिटेशन, कसरत, लंबे साह लेना, आराम करना आदि भी तनाव नूं दूर करता है। ज्यादा दवाइयां भी नहीं खानियां चाहीदियां। नशे तो दूर रहना तो लाजमी है। अखीर च यही कहांगे कि सेहतमंद रहना कौन नहीं चाहता, पर चंगी नरोई सेहत रखण लई सेहतमंद जीवन शैली अपनाउण दी लोड़ है। ते हुण असीं तुहानूं सुणवा रहे हां इक वार्ता, सोशल मीडिया अते समाजक रिश्ते। वार्ताकार ने सुनील कुमार।
1: असीं इक अजिहे दौर विच विचर रहे हां जिथे तकनालोजी साडी रोजमर्रा दी जिंदगी दा अनिखड़वां अंग बन चुकी है। खास करके सोशल मीडिया ने साडे संचार दे ढंग, रिश्तियां दी बणतर अते समाजक जीवन दे तरीके नूं बुनियादी तौर ते बदल के रख दिता है। सस्ते अते सौखियां इंटरनेट दी उपलब्धता कारण अजकल हर व्यक्ति अपने मोबाइल फोन राहीं संसार नाल जुड़िया होया है। सोशल मीडिया सिर्फ संचार दा साधन नहीं, सगों इह साडी सोच, विहार अते रिश्तियां नूं भी प्रभावित करदा है। अज लोक एक दूजे नाल हजारां लखां मीलां दीआं भूगोलिक दूरियां दे बावजूद जुड़े रहिंदे हन, अपने विचार सांझे करदे हन अते समाजिक सरगर्मियां विच हिस्सा लैंदे हन। पर सवाल यह है कि यह तब्दीली साडे समाजिक रिश्तियां नूं मजबूत कर रही है जां कमजोर। आधुनिक युग विच तकनालोजी ने मनुख जीवन दे हर खेतर नूं प्रभावित किया है। खास करके सोशल मीडिया ने साडे जीवन दे ढंग नूं पूरी तरह बदल दिता है। तकनालोजी एक चंगा नौकर है पर माड़ा मालक, यह कहावत सोशल मीडिया ते पूरी तरह लागू हुंदी है। सोशल मीडिया अधीन कई डिजिटल प्लेटफार्म हन जिथे लोग अपनी जानकारी, विचार अते भावनावां सांझियां करदे हन। यह लोगों नूं एक दूजे नाल जुड़न दा मौका दिंदा है। इन्हां डिजिटल मंचां विच मुख तौर ते सोशल नैटवर्किंग ऐप्स, मैसेजिंग ऐप्स, फोटो वीडियो शेयरिंग ऐप्स, माइक्रो ब्लॉगिंग आदि शामिल हन। जे असीं सोशल मीडिया दे सकारात्मक पक्ष की गल करिए तां सोशल मीडिया ने संचार नूं तेज अते आसान बनाया है। पहलां लोक जिथे दूर बैठे रिश्तेदारां जां दोस्तां मित्रां नाल गल्लबात करन अते सूचना दे आदान प्रदान करन लई चिट्ठियां जां कासदां उपर निर्भर हुंदे सन, जिस विच बहुत समां लगदा सी। अज कल सकिंटां विच ना केवल गल्लबात बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसां राहीं अपने परिवार दे जीआं नाल जां अपने पेशेवर जीवन विच अपने अफसरां, साथी कर्मचारियां अते गाहकां नाल गल्लबात अते सूचना दा आदान प्रदान करना संभव है। सोशल मीडिया भ्रिष्टाचार, धक्केशाही, जबर जनाह वर्गे अपराधां तों वी बचण बचाउण विच समाज दी मदद करदा है। खाली समय विच तुसीं दुनिया दे किसी भी खेतर दे रहन सहन, भाषा, सभ्याचार संबंधी जानकारी हासिल करके अपने समय दा सदुपयोग कर सकते हो ते अपना समाजिक दायरा वधा सकते हो। सोशल मीडिया नाल ना सिर्फ पुराने रिश्ते दोबारा जुड़दे हन सगों नवें संपर्क भी बनते हैं। विद्यार्थी, पेशेवर अते वख-वख खेतरां दे माहर लोक एक दूजे नाल जानकारी सांझी करदे हन, एक दूजे तो सिखदे हन अते अपने ज्ञान दे घेरे नूं विशाल करदे हन, जिस नाल मैडिकल, सिक्ख्या, तकनीक अते सियासत दे खेतर विच जानकारी सांझी करके एक खिते विच होया विकास बड़े ही घट समें विच संसार दे हर कोने विच पहुँच सकदा है अते कल्याणकारी भी साबित हुंदा है। सोशल मीडिया अनेकां अजिहे मंच उपलब्ध करवाउंदा है जिथे हर बंदा अपनी राय प्रगट कर सकदा है। कलाकार, लेखक अते विद्यार्थी अपनी प्रतिभा नूं दुनिया दे सामने रख सकदे हन अते इस्तेमाल करके रुजगार चला सकदे हन अते नाल ही अपना समाजिक दायरा विशाल कर सकते हैं। समाजिक जागरूकता वधाउण विच भी

0: सोशल मीडिया की वड्डी भूमिका है। कई समाजिक मुहिमां, सेहत संबंधी जानकारियां अते सिक्ख्या नाल जुड़ियां गल्लां नूं वड्डे पद्धर ते फैलाउण विच भी सोशल मीडिया वड्डी भूमिका अदा करता है। सोशल मीडिया समाजिक मुद्दियां ते जागरूकता फैलाउण विच रोल अदा करता है, जिवें कि वातावरण सुरक्षा, सेहत अते सिक्ख्या आदि। असी जाणदे हां कि मनुख इक समाजिक प्राणी है, उसकी खुशी अते तरक्की काफ़ी हद तक उसके रिश्तों ते निर्भर करती है। परिवार, दोस्त, रिश्तेदार अते सहकर्मी ये साढ़े जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। जिथे सोशल मीडिया ने सारे संसार नूं ग्लोबल पिंड बना के रख दिता है अते लोकां नूं आपस विच जोड़ दिता है, उत्थे इसका माड़ा पक्ष यह है कि इसका हदों वध इस्तेमाल असली जिंदगी विच रिश्तियां विच दूरी भी पैदा कर रहा है। अजकल असी अक्सर वेखते हाँ कि एक ही घर विच बैठे लोग अपने अपने मोबाइल फोनों विच रुझे रहिंदे हन। परिवारक गलबात घट हो रही है। माँ प्यो, दादा दादी अते बच्चों विचकार आपसी गलबात अते लगाओ घटन नाल भावनात्मक दूरी वधदी जा रही है। रात नूं एक छत उत्ते इकट्ठियां सौना, बातां पाउणियां, कहानियां सुन सुनाउण दा दौर तां बहुत पिछे छड्ड आए हाँ। खास करके महानगरां विच समें दा वड्डा हिस्सा मापिआं लई रोजी रोटी दे जुगाड़ विच रुझे रहिणा अते बच्चों दा पढ़ाई लिखाई दा जोर अते बाकी कसर सोशल मीडिया ने पूरी कर दित्ती है। नतीजन हुण तां हालात इह हन कि एक घर विच इक छत हेठ रहिंदे होए भी परिवार दे जीआं दी कई कई दिन तक आपस विच गलबात नहीं हुंदी, जिस दे नाल ही वर्चुअल संपर्क असली रिश्तियां दी थां नहीं लै सकदे। मनुखी रिश्तियां दी नेड़ता, गहराई, भावनावां अते समझ सिर्फ सामने बैठ के गलबात करन नाल ही पूरी तरह विकसित हुंदी है। सोशल मीडिया दा इक माड़ा प्रभाव इह वी है कि नौजवान अक्सर अपने जीवन दी तुलना दूजिआं नाल करन लग पैंदे हन। लोक अपनी जिंदगी दे सिर्फ चंगे पलां नूं बना सवार के सांझा करदे हन, जिस नाल वेखण वालिआं नूं लगदा है कि होरां दी जिंदगी ज़्यादा खुशहाल है। इह मनोविज्ञानिक दबाव पैदा कर सकदा है अते रिश्तिआं विच असंतुष्टी दा कारण बणदा है। इस लई जरूरी है कि असीं इस गल नूं समझिए कि हर व्यक्ति दी जिंदगी विच उतरा चढ़ा आउंदे हन। टैक्सट मैसेजां दा कई वार गलत अर्थ निकलण करके भी आपसी रिश्तिआं विच खटास पैदा हो जाती है, जां घर परिवार विच रिश्तिआं विच तनाव पैदा हुंदा है अते परिवार टुटण किनारे भी पहुँच जाते हैं। नौजवान वर्ग सोशल मीडिया का सब तो वध इस्तेमाल करता है। यह उन्हां लई सिखण सिखाउण, मनोरंजन अते अपने विचार प्रगट करन दा वड्डा मंच भी है, पर इसकी लोड़ तो वध वरतों पढ़ाई अते समाजिक जीवन ते नकारात्मक प्रभाव पा रही है। मापिआं अते अध्यापकां दी जिम्मेवारी है कि वह बच्चों नूं संतुलित वरतों बारे जानकारी देण अते उन्हां नूं असली जिंदगी दे रिश्तिआं दी महत्ता समझाउण। सानू चाहिदा है कि असली रिश्तिआं नूं पहल देईए, परिवार अते दोस्तां नाल समां बिताईए अते सोशल मीडिया नूं सिर्फ एक सहायक माध्यम वजों वरतीए। अंत विच इह कहा जा सकदा है कि सोशल मीडिया साढ़े जीवन का अटुट हिस्सा बन चुका है। ये साढ़े उत्ते निर्भर करता है कि असी इसका किवें इस्तेमाल करते हाँ। सौ हथ रस्सा सिरे ते गंढ वाली गल करिए सोशल मीडिया ने साढ़े जीवन विच क्रांति लै आंदी है, पर नाल ही इह सानू एक जिम्मेवार वरतोंकार बनन की भी मंग करती है। सानू भुलना नहीं चाहिदा कि समाजिक रिश्ते साढ़े जीवन की बुनियाद हैं। इन्हां नू मजबूत बनाई रखने लई जरूरी है कि असी तकनालोजी अते मनुखी संबंधां विच संतुलन बनाई रखिए। सानू यह भी समझना पैना है कि असली खुशी स्क्रीन ते नहीं सगों रिश्तियां विच हुंदी है।
1: सोशल मीडिया अते समाजक रिश्ते, हुणे तुसीं सुनील कुमार दी ए वार्ता सुन रहे सी। पिछले दिनी प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले अपने करोड़ां प्रशंसकां नू छड के इस दुनिया तो चली गई। जिथे इन्हां ने हजारां हिंदी फिल्मी गीत गाए, उथे आशा भोसले ने पंजाबी फिल्मी गीतां नू भी अपनी मिठी आवाज दित्ती है। अज उन्हां दे चुनिंदा फिल्मी गीत असीं तुहानू सुनवाउण जा रहे हां। पहला थोड़ा जिहा तुहानू आशा भोसले दी जिंदगी बारे दसदे हां। इन्हों का जन्म 8 सितंबर 1933 नूं सांगली महाराष्ट्र विच होया। जिवें कि तुसी जानते हो, लता मंगेशकर इन्हों की वड्डी भैन सन, उषा मंगेशकर छोटी भैन सन ते हृदयनाथ मंगेशकर इन्हों के भरा सन। आशा भोसले का जन्म ही संगीत नाल जुड़े परिवार विच होया सी। आशा भोसले के पिता दीनानाथ मंगेशकर मशहूर गायक ते नायक सन। इन्हां ने छोटी उम्र च ही आशा भोसले नूं शास्त्र

संगीत दी सिक्ख्या दे दी सी। आशा भोसले ने फिल्मी ते गैर फिल्मी तकरीबन 16,000 गीत गाए ते इन्हां दी आवाज दे दीवाने पूरी दुनिया विच हन। ते आशा भोसले दा नां संगीत दी वी सब तो उच्ची हस्तियां विच शामिल है। इन्हां ने 14 तो वध विदेशी भाषावां विच गीत गाए जिन्हां चों इक पंजाबी है। आशा भोसले ने हिंदी गीतां तो बाद सब तो वध गीत पंजाबी च ही गाए। उन्होंने पंजाबी दियां 98 फिल्मां दे 232 गीत गाए। 1949 च पंजाबी फिल्म बनी लच्छी जिस च आशा भोसले ने गीत गाए। संगीत हंसराज बहल ने तैयार किया सी। ए गीत लोकां दे बहुत मन पाए। फिर 1950 च पंजाबी फिल्म मुटियार च 4 हिट गीत आशा भोसले ने रिकॉर्ड किए। इस तो बाद तां आशा भोसले कोल पंजाबी म्यूजिक डायरेक्टर दी लैन ही लग गई। ते आओ फिर उन्होंने गीतां दा आनंद माणदे हां। एक फिल्म बनी मन जीते जगजीत। फिल्म बहुत चली सी। इसका एक गीत आशा भोसले ने बहुत ही सोहना गाया है। जदों जदों भी बनेरे बोले कां मैनू तेरी सौए मेरे सजना मैं आंट सियां पानियां वे आजा दिल जानियां। इंदरजीत हसनपुरी जिन्होंने पंजाबी फिल्मों के सैकड़ा गीत लिखे ने ये गीत भी उन्होंने ही लिखा हुआ है। आओ ये गीत सुनिए आशा भोसले की आवाज़ में।

0: जदों जदों भी बने रे भोले का मैनू तेरे सोवे मेरे सजना।
1: श्रोतियो जीजा जी फिल्म दे गीत भी आशा भोसले ने गाए ते पंजाबियां वल्लों पसंद कीते गए। चन परदेसी च भी एक गीत बड़ा वधिया गाया सी। फिर जी चौधरी करनैल सिंह दी फिल्म दी एक कवाली प्यार पौना सौखा ते निभाना औखा ए, ए तुसी बड़ी वारी साडे रेडियो तो सुनी होएगी। आशा भोसले ने बड़ी वधिया पेश कीती सी। 1950 ते 60 दे दहाके च पंजाबी फिल्मां च आशा भोसले ने रोमांटिक दे नाल नाल दर्द भरे गीत गा के श्रोतियां दा दिल जित लिया सी। 1976 च फिल्म बनी चंगे मंदे तेरे बंदे। इसका एक गीत तुहानू आशा भोसले की आवाज विच सुनवांदे हां। गीतकार ने तेजेंद्र ते संगीतकार सुरिंदर कोहली।

में शहीदे मोहब्बत च भी आशा भोसले दे गीत बड़े मशहूर होए सी। फिर एक फिल्म आई गोरख तंदा। प्रकाश साथी ने इस फिल्म दे सारे गीत लिखे सन, पर एक गीत प्रकाश साथी ने जिन्ना वधिया लिखिया उन्ना ही वधिया आशा भोसले ने गाया। आओ इस गीत का आनंद माणदे हां। जरा हौली हौली चूड़ियां चढ़ा वे चूड़ियां चढ़ाउण वालिया, मेरा रुक रुक जांदा इसा वे चूड़ियां चढ़ाउण वालिया। इस गीत विच आशा भोसले दे गले दी अदायगी वेखना।

फिर एक होर फिल्म आई तेरी मेरी एक जिंदड़ी, बहुत मशहूर हुई सी, जिस दे सारे गीत लोकां दे मन पौंदे सन, पर आशा भोसले दे गाए इस गीत ने स्रोतियां नू रुआ दिता सी। गीत सी अग लगे महलां नू कुली यार दी स्वर्ग दा झूटा। आओ सुनिए एक गीत।

2000 विच आशा भोसले नूं दादा साहिब फालके पुरस्कार नाल सन्मानित किया गया ते 2008 च इन्हां नूं पद्म विभूषण उपाधि नाल नवाजिया गया। 12 अप्रैल 2026 नूं सुरां दी मलिका आशा भोसले ने आखरी सा लिया ते सारियां दियां अखां सिल्लियां हो गईयां, पर सदियां ताईं आशा भोसले दे गाए गीत लोकां दे दिलां ते राज करदे रहणगे। उम्मीद है तुहानूं साडा इह प्रोग्राम पसंद आया होएगा ते हुण हरजीत कौर तुहाडे तों इजाजत चाहुंदी है।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। 10 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फौलता विधानसभा क्षेत्र का मतदान रद्द कर दिया है। इस क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को पुनर्मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। आयोग ने बताया है कि यह निर्णय 29 अप्रैल को हुए मतदान में गंभीर चुनावी गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की भी घटना सामने आई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती कल कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। चुनाव अधिकारी ने कहा है कि मतगणना केंद्रों पर सभी तैयारी पूरी हो गई है और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। तमिलनाडु में इसके लिए 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे। 4,624 सूक्ष्म पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक

0: निरीक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के वर्तमान निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुद्दुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
1: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताज़ा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
2: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
1: जनादेश 2026।
0: स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे समाप्त होगी। परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना जरूरी होगा। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के आग लगने की घटना में 4 लोगों की मृत्यु हो गई। दमकल विभाग ने बताया है कि आग बुझाने के लिए 14 गाड़ियां मौके पर भेजी गई हैं। आग पर काबू पा लिया गया है। इस बीच शाहदरा पुलिस उपायुक्त राजेंद्र प्रसाद मीणा ने संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि घटनास्थल से अब तक 4 शव मिले हैं। उन्होंने बताया कि तलाशी अभियान जारी है। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ये प्रेस की स्वतंत्रता पहलों को प्रोत्साहित करने और विकसित करने तथा विश्व स्तर पर प्रेस की आज़ादी की स्थिति का आकलन करने का एक अवसर है। इस वर्ष का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। इस वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पुष्टि करने और पत्रकारिता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित प्रौद्योगिकी तथा नव मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भविष्य के लिए सूचना व्यवस्था मजबूत करने के व्यवहारिक तरीकों के लिए एकजुट करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में यूनेस्को के 1991 में 26वें महासभा सम्मेलन में अपनाई गई एक सिफारिश के बाद की थी। ये अवसर प्रेस की स्वतंत्रता के मूलभूत सिद्धांतों को मान्यता देने और विश्व स्तर पर प्रेस की आजादी का मूल्यांकन करने का है। ये दिन प्रेस की आजादी और स्वायत्ता के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ये सरकारों को प्रेस की आजादी की प्रतिबद्धता का सम्मान करने की याद दिलाता है और मीडिया पेशेवरों के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और पेशेवर नैतिकता के मुद्दों पर चिंतन करने का भी दिन है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं लद्दाख और जम्मू कश्मीर में गरज के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, बिहार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, रायलसीमा, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिम बंगाल में गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं इस बीच दिल्ली में कल रात मौसम में अचानक बदलाव आया और बारिश ने भीषण गर्मी से राहत दिलाई। शहर के कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई जिससे लोगों को राहत मिली। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The Election Commission has taken the extraordinary step of cancelling the entire voting process in the Falta Assembly constituency of South 24 Parganas District, West Bengal. Fresh polling will be held on the 21st of this month across all 285 polling stations, including auxiliary booths.

क्या बात है, आज तो संडे है, लगता है बड़ी फुर्सत से आपने अपनी सुबह की शुरुआत की होगी। देखिए मैं भी ना पूरी आलस में हूँ क्योंकि आज संडे है और लगता है कि सारे काम आराम आराम से धीरे धीरे किए जाएं। और संडे मतलब फन डे, बहुत सारा काम वैसे तो, क्योंकि मैं तो इसे फन डे के साथ साथ एक काम वाला दिन भी मानती हूँ, क्योंकि सारे घर की जो सफाई का अभियान होता है वो भी हम संडे को ही करते हैं। अब समझ नहीं आता, कई बार हम बोलते हैं फन डे, कई बार बोलते हैं भाई बहुत सारा काम है। तो आप इस संडे को किस तरह से देखते हैं, क्या नज़रिया है आपका, ज़रूर बताएं हमें भाई। इस दिन बस इतना होता है, ना ऑफिस की टेंशन ना काम की जल्दी, आराम आराम से काम करो, आराम आराम से खाओ, मनपसंद पकवान बनाओ और बनवाओ, और बस मिलकर परिवार के साथ खाओ और खिलाओ। और घर पे अगर रिश्तेदार आ जाएं तो उनकी, या फिर दोस्त आ जाएं तो उनके साथ भी गाना बजाना, खाना, मस्ती, हंसी ठहाके, ये सब कर लें। बच्चे हों घर में तो और ज़्यादा मज़ा, क्योंकि बच्चों की तो फरमाइशें ही पूरी नहीं होती। तो भाई आज का दिन जो होता है ना, वो होता है बस अपनी मर्जी का दिन, अपनी मर्जी के मालिक हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। मम्मी पापा भी कहते हैं अरे भाई आज ही एक ही दिन है, कर लो जो करना है, टीवी देखना है, मस्ती करनी है, खेलना है, सब करो। लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहेंगे कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो जब भी आप कुछ खेलें, बाहर जाकर कुछ काम करने लगें, तो कोशिश करें तेज़ धूप में ना खेलें और ना ही बाहर जाएं। अगर बाहर मजबूरी में जाना भी पड़ जाए ना आज संडे वाले दिन, तो कोशिश करें शाम को जाएं, और धूप में जाना पड़ गया तो छाता लेकर जाएं और साथ में एक छोटी पानी की बोतल भी ज़रूर रखें। कैप लगाकर जाएं, चश्मा लगाकर जाएं धूप का, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी है। ज़रा सी तबीयत नासाज हो गई, लू लग गई, गर्म हवा लग गई, तो फिर भाई बहुत महंगा पड़ जाएगा, ये तो आप जानते ही हैं। तो भाई आज मस्ती का दिन है, बातें ही बहुत सारी करें, और हमने आपसे पूछा ही है कि आप हमें बताएं कि आज इस दिन आप सभी जितने भी दोस्त इस वक्त हमें सुन रहे हैं, आप इस दिन को कैसे देखते हैं, फंडे के रूप में या काम वाले दिन में? मतलब आपको लगता है कि हाय क्यों संडे आता है, आज सारे घर की सफाई करनी पड़ेगी और भी बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, यहां जाना पड़ेगा, और सच में सोच सोच के लगता है कि एक एक ही दिन क्यों मिलता है भाई, और भी दिन होने चाहिए। अगर ये सब आप सोचते हैं, इसके बारे में आपका क्या नजरिया है, जरूर बताएं। हमारी मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। भाई आज का जो शो है वो खास होने वाला है, धीरे धीरे हमारे शो के पिटारे में क्या क्या निकलेगा ये तो आपको सुनने को मिलेगा ही। तो इसके लिए करना आपको सिर्फ इतना है, बने रहना है पूरी 11 बजे तक अपनी दोस्त सुषमा के साथ। जी हाँ, मैं हूँ आपकी दोस्त सुषमा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, और एक बहुत ही खूबसूरत गीत आप सबके लिए मेरी तरफ से। अपना फन फिल्म से है ये गीत, थोड़ा थोड़ा अंदाजा आप सबको हो ही गया होगा।

तो नई ताजगी, खिली धूप और इतवार का ये साथ एक बार फिर से सभी का है बहुत बहुत स्वागत। और इस खास सफर में है मुझे आप सबके साथ का इंतजार।

हाँ आज है संडे, रविवार। और रविवार के इस दिन की बहुत ये खूबसूरती होती ये है कि सभी मिल बैठकर बातें करते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं और पुरानी यादों में भी खो जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि रविवार का जो दिन है ना, वो पुरानी यादों में खोने का दिन भी है, प्यार बांटने का दिन है, प्यार पाने का दिन है। और देखिए कितना हसीन गीत जो आपने हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही सुना। और दोस्तों आपको बताऊँ कि आज एक और ख़ास दिन है, पता है कौन सा? जी हाँ, हंसने का दिन है भी, वर्ल्ड लाफ्टर डे है आज। और रविवार के इस खूबसूरत जो सुबह है, इसमें हंसने हंसाने की बात ना हो तो फिर काम नहीं चलेगा। और ख़ास तौर पे आज वर्ल्ड लाफ्टर डे है, और वर्ल्ड लाफ्टर डे पे मैंने तो एक बहुत ही खूबसूरत गीत आप सबके लिए निकाला है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये गीत ज़रूर पसंद आएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो विश्व हंसी दिवस यानी वर्ल्ड लाफ्टर डे की शुरुआत हुई, भारत में इसे किस तरह से मनाना शुरू किया, इसके बारे में भी आपको जरूर बताऊंगी। हो सकता है आपको, हमारे जितने साथी हैं उनको बहुत पता होगा, बहुत सारे साथियों को, लेकिन कुछ साथी ऐसे भी होंगे जिन्हें शायद नहीं पता होगा। तो आपको बता दूं कि 1998 में विश्व हंसी दिवस यानी वर्ल्ड लाफ्टर डे की स्थापना हुई थी, और इसका पहला उत्सव जो मनाया गया था वो 10 मई 1998 को मुंबई में आयोजित किया गया था। और इसका आयोजन जो किया था वो किया था डॉक्टर मदन कटारिया ने। इन्होंने हंसी योग आंदोलन की स्थापना की, और इन्होंने ही भारत में विश्व हंसी दिवस के दिन से ही शुरुआत की हंसी योग की, जिसके बाद आपने देखा होगा बहुत सारी खबरों में खबरें आती थी, न्यूज़पेपर्स में खबरें पढ़ी होंगी, हा हा हा हा सारे लोग इकट्ठा होते हैं और ठहाके लगाकर योग करते हैं, क्योंकि लोगों का हंसना इतना मुश्किल हो गया है। बस मुंह पर एक उदासी सी बना के रखते हैं, हल्की सी स्माइल कर देंगे अगर कोई बोले भी, खुल के कोई हंसता ही नहीं है। और खुलकर हंसने से कितने सारे फायदे होते हैं हम सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम हंसने में बड़ी ही कंजूसी कर देते हैं। भी हंसने में कंजूसी ना करें, आप कोशिश करें जो बाहर खाते हैं ना उसमें थोड़ी कंजूसी कर दें, लेकिन हंसने में दरिया दिली दिखाएं, खूब हंसे, ठहाके लगाकर हंसें, और अपने आस पास के भी जो लोग हैं उन्हें खूब हंसाएं। और देखिए हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत गीत है, और इस गीत को सुनकर तो हमेशा आपके चेहरे पर भी हंसी आ ही जाती है।

और आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों कि जब इस दिवस की स्थापना की गई थी तो इसका उद्देश्य था कि इस हंसी के माध्यम से सबका आपस में भाईचारा बढ़े, दोस्ताना व्यवहार हो और लोग खुश रहें, हंसे मुस्कुराते रहें। और आज इस क्लब के साथ यानी हंसी योग आंदोलन का जो स्थापना की गई थी, इस क्लब के साथ 115 से अधिक देशों में इस तरह के क्लब हैं, जुड़े हुए हैं और पूरे विश्व में इस दिन को मनाया जाता है।

0: गारे गारे
1: ये जर बड़े दे
0: गारे गारे
1: ये सूर बदल दिया
0: गारे गारे
1: ये हमक बटवा दिया
0: गारे गारे
1: ये सूर की तरह दिए ये सूर ये इन्ना आया है तो ये
2: एक चतुर नार अम
1: पकड़ कर रख गे
2: मेरे मन के द्वार ये भूसत जात हम मदत जात अरे चतुर नार।

दोस्तों आज का दिन जो है वो मुस्कुराने खिलखिलाने हंसने का है, तो मुस्कुराहटें मुफ्त हैं, इसलिए जितना हो सके उतना बांटिए और इसी मुस्कुराहट के साथ आप यूं ही बने रहें हमारे साथ और सुनते रहें हमारा ये खास प्रोग्राम आपकी अपनी पसंद का। जी हाँ, आपकी अपनी पसंद, जिसमें हम लेकर आते हैं बहुत ही खूबसूरत नगमे। और जो अगला गीत है ये भी बहुत ही खूबसूरत है।

जी, तो हम यही चाहते हैं कि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खिलखिलाते रहें, और हंसने मुस्कुराने के साथ साथ ही हम ऐसे ही ज़िंदगी में आगे भी बढ़ते रहें। और दोस्तों, हमारे पास बहुत सारी मेल्स भी आना शुरू हो गई हैं जिन्हें हम शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और छोटा सा प्यारा सा गीत है जो कि आपके चेहरे पर हंसी मुस्कुराहट जरूर लेकर आएगा।

बहुत ही खूबसूरत गीत, ये गीत आपने सुना नमक हलाल फिल्म से, और अगर आपको इसका पिक्चराइजेशन पूरा याद आ चुका होगा तो बहुत ही अच्छे से अमिताभ बच्चन ने इतने खूबसूरती के साथ ना हंसी मजाक किया, इतना अच्छे से डांस किया ना कि मज़ा आ जाता है। किशोर कुमार जी की आवाज़ में ये बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे, और दोस्तों एक के बाद एक और खूबसूरत नगमे आने वाले हैं आपके राह में, और हमारे पिटारे से एक एक जो नगमा है वो निकल रहा है। लेकिन एक चीज और कहेंगे भाई, कहते हैं जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे उससे फिर पूछो वो कब हंसे। खैर ये सब मजाक की बातें हैं, और आज है लाफ्टर डे, और हम चाहते हैं हमारे श्रोता जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, वो कम से कम आज तो खुलकर मुस्कुराएं भी, अपने आप को बांध के ना रखें। इन्हीं गीतों को थोड़ा, अगर आपने फिल्में देखी होंगी तो इन गीतों की कुछ या फिल्मों की लाइनों को याद करके ही मुस्कुरा जाएं। अगर आपको हमारे प्रोग्राम्स में ये गाने पसंद आ रहे हैं तो आप हमें अपनी ज़रूर कुछ ना कुछ बात लिख कर भेज सकते हैं, आप कब हंसे, कितना हंसना आपको पसंद है। और एक बात हमने आपसे और पूछी थी, क्या याद है आपको? नहीं याद है, चलिए मैं अभी इंतजार कर रही हूँ आपकी मेल्स का, और अब आपकी ही मेल्स लेने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले एक बात और कहना चाहती हूँ कि कहते हैं ना कि संडे संडे को सब मिले होते हैं, तो कोशिश करें कि एक ऐसा मैसेज जब आप आपस में मिलें, चाहे दोस्त हों, मित्र हों, बच्चे हों, घर के बड़े बूढ़े, तो एक ऐसा कुछ नया रेगुलेशन बनाएं अपने लाइफ में। हर बार चाहे महीने में एक बार कुछ अच्छा रेजोल्यूशन लें आप कि हमें चिड़ियों को पानी पिलाना है, उन्हें दाना खिलाना है, किसी की मदद करनी है, चारा देना है पशुओं को, बेघर पशुओं की हेल्प करनी है, मददगारों की मदद करनी है, वो किसी भी तरह से भी हेल्प हो सकती है। जिन्हें बच्चों को पढ़ने की जरूरत है उन्हें किताबें मुहैया करानी है, उन्हें ड्रेस देनी है, जैसे भी, तो इससे क्या होगा कि आप अपने जो बड़े हैं घर के, जब इस तरह की शुरुआत करेंगे तो बच्चों के अंदर भी एक पॉजिटिव चीज जाती है, और उन्हें भी लगता है कि सोसाइटी के प्रति भी हमारा कर्तव्य है। और इस तरह की सच माने, आप यकीन मानेंगे कि जब आप इस तरह की शुरुआत करेंगे, अपने घर के बच्चों को इस तरह के संस्कार देंगे, तो वो जो अपने आसपास लोगों की मदद करेंगे, बुजुर्ग होने तक वो याद रखेंगे, मेरे दादा दादी ने, मेरे मम्मी पापा ने, या किसी ने भी जो घर के बड़े हैं उन्होंने इस तरह से शुरुआत की, और आज भी हम इसे पालन कर रहे हैं। और ये एक छोटे छोटे योगदान होंगे लेकिन सोसाइटी में बड़े महत्वपूर्ण होंगे। और अब हम शामिल कर रहे हैं मेल, जो सबसे पहले हमारे लकी श्रोता हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, आज उन्हीं का मेल सबसे पहले हमने लिया है, और ये लिखते हैं कि संडे के दिन मैं अपनी बालकनी में गमलों में पानी डालना और उसकी कटाई और छटाई करता हूँ। और स्टेशन रोड जमशेदपुर से इन्होंने एंजल भाटिया, सोनू और पप्पी भाटिया के साथ अपना संदेश हम तक पहुंचाया है। सतीश अनेजा जी का भी संदेश हमारे पास पहुंच गया, ये लिखते हैं कि हम लोग संडे को अक्सर घूमने जाते हैं, आज चंडीगढ़ का मौसम ऐसा हो चुका है जैसे सर्दी ने यू टर्न ले लिया हो, अच्छी बारिश हुई, ठंड हो चुकी है, सुखना झील पर घूमने जाएंगे और मस्ती करेंगे। वाह वाह, आपके तो मजे आ गए, हमारे यहाँ तो बहुत सारी गर्मी है, लेकिन हाँ कल रात को थोड़ी सी छींटाकशी दिल्ली में भी हुई है, तो यहाँ पर भी मौसम थोड़ा थोड़ा सुबह ठंडी हवाएं थी, इतना कह सकते हैं कि थोड़ा बदला बदला है, अब दिन में क्या गुल खिलाएगा ये हम नहीं कह सकते। और आप तो अपने परिवार के साथ खूब इंजॉय करें, और घूमते घूमते हमारे सभी साथियों तक भी वो ठंडी ठंडी हवाएं जरूर पहुंचाएं यादों के जरिए। गांव चौधरीवास हरियाणा से मांगेराम सतौड़ और रितु सिंह जी ने भी अपना संदेश हम तक पहुंचाया, और ये लिखते हैं कि कार्यक्रम सुन रहे हैं, हमें पसंद आ रहा है, इनको गीत बहुत पसंद आ रहे हैं और कार्यक्रम भी अच्छा लग रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप इसी तरह से सुनते रहें और हमारी ऐसे ही तारीफ करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि और बेहतर आपके लिए कुछ पेश करें हम। और हर बार भी यही कोशिश रहती है कि हर रविवार आपका दिन भी खास बने और हमारा भी, क्योंकि देखिए हम एक दूसरे के पूरक हैं, अगर आप खुश होते हैं, आपका दिल मनता है, अच्छे गीत आपको सुनने को मिलते हैं, तो हमारा भी मन प्रफुल्लित होता है और हमें भी अच्छा लगता है। और ये जो संदेश हमारे पास आया है ये है सुभाष योगी, सुशील योगी, बब्बू डब्बू, राजू मिगलानी, कृष्णा कॉलोनी हांसी से इन्होंने ये संदेश भेजा है और अपनी पसंद का गीत ये सुनना चाहते हैं। सुधाकर जाधव जी ने भी संदेश भेजा है और ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से, ये अपने साथी डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव और संचित बायाल, प्रथमेश देशमुख,
सर्वद देशमुख और कुमारी प्रणाली अपने अन्य साथियों के साथ इन्होंने संदेश भेजा और ये लिखते हैं कि आज हास्य दिन है। आज के दिन हम सब दोस्त मिलके मौज मजे करते हैं और एक दूसरे को चुटकुले सुनाकर हंसाते हैं। वाह वाह, बहुत ही बढ़िया, इससे अच्छी क्या चीज हो सकती है। जाफराबाद से इन्होंने ये संदेश भेजा है हमारे पास। देखिए, हंसना अच्छी चीज है, आधे से ज्यादा बीमारियां जो है वो ठीक हो जाती हैं। तो कोशिश करें अपने आसपास हमेशा हंसी खुशी का ही माहौल बनाकर रखें। तुलसी मस्किन जी हैं, इन्होंने भी अपना संदेश हम तक पहुंचाया और ये लिखते हैं कि हैप्पी संडे, यही साथी यही मीत, दर्द काटे गीत संगीत। मुझे संडे के दिन म्यूजिक बहुत पसंद है और मैं इस दिन संगीत को भरपूर सुनता हूँ। बिहारी कॉलोनी से एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी से इन्होंने संदेश भेजा है। बीना मस्किन, आशीष राजा और चंडीगढ़ से कुछ साथी हैं इनके, राहुल खुराना, रचित खुराना और केशु रिधान। देखिए, इन्होंने अपनी दोस्ती का फर्ज भी निभा दिया है, एक ही मेल में सबको निपटा दिया है। यही

है ना, हम भी हंसना है, हंसाना है, तो ऐसे खुश रहें, मस्त रहें। चरणदास जी का भी संदेश आया है और इन्होंने राजू अग्रवाल केशव विवेक चौधरी वास से इन्होंने संदेश भेजा है, कुछ नहीं लिखा है, बहुत ही अच्छे से श्रोता है। कहते हैं भाई बस मेरा नाम शामिल कर लीजिए, गाना सुनवा दीजिए। अनिल मोहन, उषा मोहन और टिल्लू नायक जी ने भी संदेश भेजा है हमें पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से। इन्होंने अपने साथी मधु नायक का कैथल हरियाणा से भी संदेश लिखा है और इन्हें प्रोग्राम पसंद आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वड़िंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, इन्होंने भी संदेश भेजा और ये कहते हैं किसी भी गीत में हमें शामिल करें। नवी हसन जी ने भी संदेश भेजा है मारहरा दरवाजा एटा से, और नवी हसन जी ने अपने साथी शहनवाज, नवेद हसन, सुहेल हसन, अनस रईस और यशव के साथ संदेश भेजा, अपनी पसंद की फिल्म का गीत भी इन्होंने सुनना चाहा है। रविंद्र जी ने भी संदेश भेजा है और ये लिखते हैं कि संडे आमतौर पर आराम और खुशी का दिन होता है, लोग इस दिन को अपनी पसंद के अनुसार बिताते हैं। ये लिखते हैं कि जैसे कि सुबह देर तक सोना, आराम करना, परिवार के साथ समय बिताना, दोस्तों से मिलना और घूमने जाना, फिल्में देखना, गाने सुनना, पूजा पाठ और आध्यात्मिक कार्य अपने अपने शौक अपने अपने ही अंदाज से ही पूरा करते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, आप क्या करना पसंद कर रहे हैं आज ये भी आप हमें जरूर बताएं। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से इन्होंने रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा के साथ अपना संदेश हम तक पहुंचाया है। और भी साथियों के संदेश हम शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बहुत ही खूबसूरत गीत है खून भरी मांग से, बहुत ही सुंदर गीत है ये नितिन मुकेश और साधना सरगम की आवाज में। आप इस गीत को जरूर पसंद करेंगे ये मुझे यकीन है, पूरा विश्वास है। जी हाँ, हंसते हंसते आगे बढ़ना है, बीच में गीत भी सुनवाने और साथियों के मेल्स को भी शामिल करना है। जैसे अनिता मुखी, सिमरन मुखी ने भी शांति नगर सोनीपत से संदेश भेजा है और

0: हमने बोला कि आदरणीय जी जो हमारे साथी हैं लिखते हैं कि हमारे साथी के लिए हम सबके लिए, तो ये लिखते हैं कि रविवार यानी परिवार का घर में एक साथ होना, घर की साफ सफाई का दिन और कृपया कार्यक्रम में हमारे अनुरोध पर भी गीत सुनवाएं।
1: होठों से बिजली चमके जब जब

हाँ, हंसना हंसाना बहुत ही पुण्य का काम है। कहते हैं कि हंसना मुफ्त में जब हंसी मिलती है तो दोस्तों इसको हंसने में कंजूसी क्यों, खूब हंसे, खिलखिलाते हंसे। वैसे भी आज संडे है और ऊपर से है लाफ्टर डे, आज तो कोई ना कोई बहाना चाहिए हंसने का। अब ये बहाना नहीं चलेगा कि हम नहीं हंसेंगे, भी मुस्कुराना है, खिलखिलाना है, हंसना हंसना है और मुस्कुराने का सिलसिला यूं ही जारी रखते रहें आप आज दिन भर। अभी 11 बजे तक तो आप मेरे साथ हैं, तब तो मैं आपको हंसाने का कोई मौका नहीं छोड़ूंगी। और आप खूबसूरत गीतों को भी सुने और थोड़ी थोड़ी मुस्कुराहट इन गीतों को सुनते सुनते भी जरूर अपने चेहरे पर लाएं। और कहते भी है ना कि अपने अंदर का जो बच्चा है ना, जो हमेशा बहुत खिलखिलाकर हंसता है, मुस्कुराता है, जोर से ठहाके लगाता है, उस बच्चे को हमेशा जिंदा रखें। हंसें, खिलखिला के हंसें, ये मत सोचे सामने वाला कि हाँ बेहुदा भी नहीं हंसना है, लेकिन हमेशा छोटी छोटी बातों पर खुश रहना और हंसना जरूर सीखें और जरूर हंसें। देखिए हमारे पास जो अगला संदेश मैं शामिल कर रही हूँ अपने इस कार्यक्रम में, वो है खैल बाजार पानीपत से नीटू मल्होत्रा और लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक जी ने लिखा है, ये बहुत अपने पापा जी का नाम भी लिखकर भेजते हैं। और शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का और कोयल सिक्का की तरफ से भी हमें संदेश मिला है। ये कहते हैं कि आप शायद उसी मेल को शामिल करते हैं जिसमें आपके कार्यक्रम की तारीफ होती है। भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारी स्क्रीन पर जो जो मेल्स आती हैं, और भैया आप ही अपने साथियों से गुजारिश करें, एक मेल भेजने के बाद अगर आप शांत रहेंगे तो सबकी मेल को आसानी से शामिल कर पाएंगे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारे पास बिना किसी भेदभाव के जो भी संदेश आते हैं उन्हें हम शामिल करते हैं दिल खोल के। तो ये तो अपने दिमाग से आप बहम निकाल दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान और पूजा परिहार का संदेश आया है। ये लिख रहे हैं कि इन्हें भी कार्यक्रम पसंद आ रहा है और इन्होंने भी गुजारिश किया कि हमारा संदेश शामिल कार्यक्रम में, तो लीजिए आपका प्रोग्राम में हम शामिल कर चुके हैं। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से एक संदेश है हमारे पास सुधाकर राजे जी का, और प्रशांत राजे, संचित प्रथमेश, इनका संदेश हम पहले शामिल कर चुके हैं, मुझे याद आ गया। और ये लिखते हैं कि आज संडे से हम घर के कामों में ये लिखना चाह रहे हैं कि हाथ बढ़ाते हैं और शाम को हॉस्टल में खाना खाने जाते हैं। भैया ये तो बहुत बढ़िया है, काम करो, घर पे खाना खाओ, हॉस्टल में बढ़िया बढ़िया, बहुत खूब। और मोहम्मद सईद आवासी जी ने भी निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और आवासी परिवार के सभी

सभी सदस्यों की तरफ से अपना संदेश हम तक पहुंचाया है ऊपरकोट मोहल्ला चुखंटी बुलंदशहर से। दिलावर खान जी ने भी संदेश भेजा है, लिखते हैं कि हैप्पी संडे, हंसी सबसे सस्ती और बेहतरीन दवा है, इसे बांटने में कंजूसी ना करें, आज जमकर हंसें। आज ही नहीं, हम तो कहते हैं भाई रोज हंसें, खिलखिलाकर हंसें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और इन्होंने लिखा है रघुवीर नगर से अपनी साथी हसीना बानू और एलिजा नायब और लड्डू के साथ ये संदेश भेजा है। तो आप लड्डू और अपनी हसीना बानू जी के साथ आप जरूर अपने परिवार के साथ खुशियां बांटें, खिलखिलाएं, मुस्कुराएं। छोटे अंसारी जी ने भी हमें संदेश भेजा है पंचू सराय संभल से, और आलम अंसारी के साथ इन्होंने संदेश भेजा है, और ये कह रहे हैं कि इन्हें गाने पसंद आ रहे हैं और कार्यक्रम भी अच्छा लग रहा है, शुक्रिया आपका। दिलावर खान जी का भी संदेश आया है जिसे हम अभी अभी शामिल कर चुके हैं, क्योंकि देखिए आप ही के साथ ही बार बार बहुत सारी संदेश भेजते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी मेल्स दब जाती हैं, ढूंढने में हमें भी टाइम लगता है। कालानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा ने संदेश भेजा है और ये कहते हैं कि कोई भी गीत हमें सुनवाएं, उसमें शामिल करें। चरण दास जी ने भी संदेश भेजा है, इन्हें खून भरी मांग फिल्म का जो गीत है ये बहुत अच्छा लगा और बहुत बार देखी है इन्होंने। राजू अग्रवाल, केशव दक्ष चौधरी वास से इन्होंने ये संदेश हमें पहुंचाया है। अगला गीत जो है साथियों वो भी बहुत ही खूबसूरत है, अपनी बारी का भी इंतजार कर रहा है। जी हाँ, मुझे लगता है आपको अंदाजा हो ही गया कि कौन सी फिल्म का गीत है ये, बहुत ही खूबसूरत गीत गोलमाल फिल्म से। अहमद फूल वाले जी ने भी संदेश भेजा है, ये लिखते हैं कि वर्ल्ड हंसी दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज संडे को हम सब परिवार इकट्ठा होते हैं क्योंकि इस दिन हमारे घर को छुट्टी रहती है और खासकर हमारी दोनों नवासी की छुट्टी स्कूल से होती है और छोटे लड़के की भी काम से छुट्टी है, इसलिए संडे को सब परिवार घर पर रहते हैं और नए नए व्यंजन का आनंद मौसम के अनुसार लेते हैं।

बहुत ही खूबसूरत संदेश दे रहा है ये गीत। इस गीत को अपने जीवन में जरूर उतारें, क्योंकि एक एक पल को बहुत अच्छे से हमें जीना चाहिए, खुश रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। और ये जो संदेश हमने पहले पढ़ा, छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, सदफ आरजू, जूही इकबाल और इमरान, कापस हिड़ा बॉर्डर्स नई दिल्ली से आमना नसरीन और आसमा पुरी राबिया मनसा के साथ इन्होंने ये संदेश भेजा है।

0: जी हाँ, एक एक पल आगे चला जाता है, गुजरता है वक्त, और पीछे मुड़ के जब देखते हैं तो पूरी जिंदगी खत्म होने को होती है। लेकिन अगर हम अच्छे दिनों को याद करें, कितने दिन हमने मुस्कुराए, वो शायद हमें बहुत ही कम नज़र आएंगे, क्योंकि हम हमेशा अच्छाइयों को कम लेकिन बुरी चीज़ों को दिल पे लगा के रखते हैं। तो अब बस अपनी गांठ बांध के रख लें अपने पल्लू में कि भाई मुझे तो हमेशा हंसना है, खिलखिलाना है, मुस्कुराना है, आसपास सबकी मदद भी करनी है और खुश रहना है, मस्त रहना है। यही जीवन का संदेश, और ऐसे ही ज़िंदगी को हम जी सकते हैं दोस्तों। एक एक पल मुश्किल होगा, भारी होगा, अगर हम यही देखते रहें, यही इंतज़ार करते रहें, जब खुशियाँ आएंगी तब हंस लेंगे, जब अच्छे दिन आएंगे तब हंस लेंगे, तो अच्छे दिन कभी नहीं आते, अच्छे दिन खुद निकालने पड़ते हैं, और एक एक पल में से एक एक पल को जिया जाता है। और एक अगला जो मेल हमारे पास आया है, ये है इंदिरा नगर भवरपुर से, राधेश्याम देवांगन और चंपा देवांगन जी ने हमें ये भेजा है। और साथ ही साथ आप सिटी लाइट फिल्म से ये बहुत ही खूबसूरत गीत अरिजीत सिंह की आवाज में भी सुन रहे हैं। किसी न किसी को अपनी मजा मुस्कुराने की जरूर बनाए, क्योंकि होठों पर हंसी होना, चेहरे पर मुस्कान रहना दूसरे को भी प्रसन्न कर देती है, उसका मन भी खुश कर देती है। दिग्दर्शन गौर जी का भी संदेश आया है मेरठ कैंट से, और इन्होंने कविता गौर के साथ ये संदेश भेजा है। अपनी पसंद के गीत इन्होंने सुनना चाहे हैं, साथ ही हम कोशिश करेंगे जिन साथियों की अभी तक मेल शामिल नहीं हो पाई उन्हें शामिल करें। हीरामणि वर्मा जी हैं, इन्होंने दंतरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से संदेश भेजा है, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखे लाल वर्मा के साथ। रामेश्वर जी का भी संदेश हम तक पहुंचा है, और ये लिखते हैं कि आपका प्रोग्राम बार बार सुन रहे हैं, क्या मेरा मेल शामिल नहीं करेंगी? जी जरूर, देखिए शामिल कर रही हूँ, हम भी कोशिश करते हैं कि सबकी मेल को शामिल करें। मुंगिशापुर कानपुर देहात से इन्होंने ये संदेश भेजा है, उमाकांती कठेरिया कमलेश और अपनी पुत्र बधु निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा वेद बाबू और समस्त परिवार के सदस्यों की तरफ से तो आपका मेल शामिल हो चुका है। फारूक अली जी ने भी संदेश भेजा है, फरहीन फरहान फारिया और तहरिया के साथ, कस्बा गुन्नौर यूपी से। जयराम सिंह जी हैं, इन्होंने संघ मित्रा श्रोता संघ से संदेश भेजा, वार्ड नंबर 1 पोफाली जीवा यवतमाल से। हमारा भी मन खुश होता है जब हम देखते हैं कितनी दूर दूर से हमारे श्रोता जुड़े हैं और इतना कीमती समय निकालकर हम तक संदेश भेज रहे हैं। और देखिए आवासी जी, आपकी मेल में शामिल कर चुकी हूँ, फिर भी आप बार बार संदेश भेज रहे हैं, तो ऐसे में क्या है कि हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जिनके संदेश मैं शामिल नहीं कर पाई हूँ। जैसे संदीप मक्कर जी हैं, इनका संदेश भी मैं शामिल नहीं कर पाई, लेकिन लीजिए ज्योति मन्नत और भरत कमल, इन सब के साथ आपने संदेश भेजा है, पिंगा वाला चौक गोरया जलंधर से आपकी मेल शामिल हो चुकी है। सुनील पाठक जी, चरण दास, अनिल मोहन जी और अन्य हमारे साथी हैं, उनकी मेल्स को भी हम शामिल कर चुके हो। और श्रोताओं, घड़ी इशारा कर रही है कि अब समय ज़्यादा नहीं है, तो मुझे आपसे विदा लेनी होगी, और जाते जाते सिर्फ यही कहूँगी, हंसी मुफ्त में मिलती है, मुफ्त में लें और मुफ्त में ही हंसी को बांटें। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खिलखिलाते रहें, और अगले रविवार को भी ऐसे ही हमारे साथ ज़रूर मुलाकात करें। नमस्कार, और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं

0: की सूचना दी है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की भी घटनाएं सामने आईं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कल कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे। 4,624 सूक्ष्म पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के वर्तमान निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
1: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
2: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
1: जनादेश 2026।
0: दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के भीषण आग में 9 लोगों की मृत्यु हो गई। आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि आग 4 मंजिला इमारत में लगी।
3: इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा। टोटल 9 इसमें चार्ड बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आग लगने की दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। श्री संधू ने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि घायलों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता सुनिश्चित की जाए और प्रभावित लोगों को तत्काल राहत तथा सहायता प्रदान की जाए। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होगी और शाम 5 बजे समाप्त होगी। परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज श्रीकाकुलम जिले के सोमपेटा मंडल में मुलापालेम गांव के उदय एक्वा उद्योग का दौरा किया। यहां राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड की परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। इस दौरान स्थानीय लोगों के लिए मछली उत्पादन बढ़ाने, आय के स्रोत बढ़ाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने पर विचार विमर्श किया गया। श्री नायडू ने कहा कि श्रीकाकुलम जिले को प्रमुख एक्वा केंद्र के रूप में विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ये प्रेस की स्वतंत्रता के प्रयासों को प्रोत्साहित करने और विकसित करने तथा विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने का अवसर है। इस वर्ष का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में यूनेस्को के 1991 में 26वें महासभा सम्मेलन की सिफारिश के बाद विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की थी। IPL क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। कल चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से पराजित किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Election Commission has taken the extraordinary step of cancelling the entire voting process in the Phalta Assembly constituency of South 24 Parganas district in West Bengal. Fresh polling will be held on the 21st of this month across all 285 polling stations, including auxiliary booths. Counting of votes will be held on the 24th of May. Counting of votes for assembly elections held in West Bengal, Keralam, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सबरस। सबरस में आज आपने सुने ललिता मोहन शाह, सुचिता और शुभा मुद्गल के, तथा साथ ही आपने सुने गुरदास मान के गाए गीत। और श्रोताओं, अब समय हुआ है सुरभंजरी का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। सुरभंजरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे परोमिता मुखर्जी का राग अहिल्या बिलावल में वायलन वादन। तबले पर आपका साथ दे रहे हैं उस्ताद अख्तर हसन।

0: सुरमंजरी में अभी आप सुन रहे थे परोमिता मुखर्जी का राग अहिल्या बिलावल में वायलिन वादन। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे थे उस्ताद अख्तर हसन।
1: नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। नए कानूनों के बारे में जानने के लिए NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें।
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और 12:10 पर समय रहेगा ग्रामीण महिलाओं के कार्यक्रम का, जिसमें आज आप बहुत सारे कार्यक्रम अलग अलग विषयों पर चर्चा सुनेंगे। आपके साथ रहेंगी यमुना और कमलेश मुद्गल। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और 1:10 पर आप सुनेंगे एक ही फिल्म से। ये कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी नंदा इसर। और आपको बता दें कि 12 बजने को है, सबसे पहले आप सुनेंगे हिंदी में और फिर अंग्रेजी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं की सूचना दी है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की घटनाएं भी सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कल कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर होगी। तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे। 4,624 सहायक पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के वर्तमान निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
3: जनादेश 2026।
4: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
3: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
4: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
3: जनादेश 2026।
2: संसदीय कार्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल सरकारी एजेंसियों, निर्वाचन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मीडिया पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब न्यायपालिका को भी निशाना बना रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि इन दलों को ये एहसास नहीं है कि वे देश के लोकतंत्र की नींव पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता इन दलों को ऐसा सबक सिखाएगी जो वे कभी नहीं भूल सकेंगे। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। आग लगने की घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया।
5: इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा। टोटल 9 इसमें चार्ड बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई।
2: उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग लगने की दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होगी और शाम 5 बजे तक चलेगी। परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मूल के विद्यार्थी भी आज स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। दुबई और शारजाह में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की निगरानी दुबई में भारत का महावाणिज्य दूतावास कर रहा है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ओपेक प्लस समूह के 7 देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, कजाकिस्तान, रूस और ओमान अगले महीने प्रतिदिन लगभग 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाएंगे। भू राजनीतिक संकट और संयुक्त अरब अमीरात के समूह से अलग होने के बाद ये लगातार 3रा महीना होगा जब ओपेक प्लस देश तेल का अधिक उत्पादन करेंगे। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ये प्रेस की स्वतंत्रता के प्रयासों को प्रोत्साहित करने और विकसित करने तथा विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने का अवसर है। इस वर्ष का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
6: This is Akashvani. The news are read by Abhishek Mukhopadhyay. Counting of votes for the assembly elections held in West Bengal, Kerala, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry will be taken up tomorrow morning. In Tamil Nadu, a total of 10,545 counting personnel will be deployed for counting duty, supported by 4,624 micro-observers. Our correspondent reports that 234 counting observers, one for each assembly constituency, will oversee the proceedings and ensure strict adherence to extant instructions of the commission. In West Bengal, election officials said that all arrangements are in place at 77 counting centres across the state, with multi-layered security in place to ensure transparency. Union Parliamentary Affairs Minister and Senior BJP leader Kiran Rijiju alleged that all opposition parties have continuously attacked the government agencies, election commission, electronic voting machines, media, and now targeting the judiciary. In a social media post, Mr. Rijiju said, these parties don't realize that they are attacking the core of the country's democracy. He further added that people of the country will give them a befitting

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं ग्रामीण बहनों का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

0: गृहलक्ष्मी कार्यक्रम, इस कार्यक्रम को लेकर के इस समय आपके साथ आपसे बातें करने के लिए मौजूद है कमलेश और
1: यमुना।
2: क्या बात है।
1: और देखो, जब मैं आ रही थी कार्यक्रम के लिए, तो कई बार ये होता है कि हम इतने एकदम अपने में मगन हो जाते हैं, और आज भी हो गए मगन।
0: रामायण
1: तभी तो बड़ों का फर्ज होता है छोटों का समझाना, छोटों का फर्ज होता है हाँ बड़ों

0: कह दिया तो बाप मानना ठीक है ना?
1: वही है ना, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, ऊपर से गलती मेरी निकाल के मुझे ही डांट रही है, होते बड़े बुजुर्ग का कायदा है
0: भाई। ये देखो ऐसा ही तो होना चाहिए, तभी तो देखो हंसी ठहाके गूंजते हैं, तभी एक दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। तो देखो ये जब थोड़ी बहुत हम एक दूसरे से अगर हंसी ठट्ठा नहीं करेंगे तो कार्यक्रम में जान भी नहीं आएगी। तो बहनों सबसे पहले स्वीकार कीजिए हम दोनों का
1: राम राम। और कार्यक्रम के पिटारी में बहुत कुछ है आज, और गीत संगीत का भी मनोरंजन आप उठाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हंसने की बात आई, ठहाकों की बात आई, तो हंसना क्यों जरूरी है, इस पर भी थोड़ी सी बात कर लें।
0: तो पहले हंस के तो दिखा दो क्योंकि कहते हैं ना कि आजकल हम कहीं पर भी जाएं तो हम कई बार इंग्लिश में बोलते हैं फेक हंसी हंस रहे हैं हम तो, लेकिन हम कहेंगे कि भाई हमें फेक हंसी क्यों हंसनी है, हमें तो छोटी छोटी बातों में से हंसी के फव्वारे उठा लेने हैं और अपनी जिंदगी में हंसी को कायम रखना है।
1: बिल्कुल, और हंसना इसलिए भी ज़रूरी है कमलेश, क्योंकि यह मानसिक तनाव को जो है मेरे कम करता है, चेहरे पर एक तरीके से चमक लाता है, लेकिन फेक वाली नहीं होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि जो दिल से निकले और वाकई अपने मन को तो प्रफुल्लित करे ही और दूसरे को भी सुकून पहुंचाए, ऐसा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम बात करते हैं शारीरिक स्वास्थ्य की, तो शारीरिक स्वास्थ्य में सबसे बड़ी बात है खुलकर हंसने से फेफड़ों में ऑक्सीजन का संचार बढ़ता है और मांसपेशियाँ जो हमारी होती हैं वो आराम में पहुँचती, माने रिलैक्स मिलता है उनको।
0: अच्छा, जब मैं अभी आपसे बात कर रही थी, बहनों से बात कर रही, तो मुझे एक ना चुटकुला याद आ गया, हालांकि है तो ये चुटकुला नहीं है, लेकिन हमने ना इसको चुटकुले की तरह से ना हमारे गांव में बोला जाने लग गया। अब एक ताई जी थी, देखो जो ताई जी सुन रही हैं तो कृपया बुरा ना माने, क्योंकि इसको हम सबने ना चुटकुले के रूप में ले लिया है। तो कई दिन हो गए उनको दिल कर रहा था कि भाई जलेबी खानी है। अब बच्चों को कहें कैसे जलेबी खानी है, जलेबी खानी है, भाई आजकल तो बच्चे हमसे ज्यादा ख्याल रखते हैं, नहीं आपको ये मीठा नहीं खाना, नहीं आपको इतना नमक नहीं खाना, नहीं आपको ये नहीं खाना। ठीक है, अच्छी बात भी है। अब ताई जी ने क्या सोचा कि ऐसे तो बच्चे मुझे जलेबी खाने नहीं देंगे, तो उन्होंने एक ना तरकीब आजमाई। उन्होंने क्या कि थोड़ी सी देर बाहर निकली और जो पड़ोसन थी उसके घर पे जाके कहती, अरे अरे मुझे पकड़ो, अरे अरे मुझे पकड़ो, जा जा जा जा जा आ पकड़ो। अब वो, अरे ताई जी क्या हुआ, ताई जी क्या हुआ, ताई जी क्या हुआ। अब ताई जी जो हैं वो कुछ बोले ना, बस ये बोले जाए जा जा जा जा जा जा जा जा। अब कहे जा से हम कुछ समझे नहीं, तो इतने में उनका जो पोता था भागता हुआ कि दादी दादी क्या हुआ, तो जा जा जा जा जा जा। अरे दादी क्यों इतनी आप एक्टिंग कर रही हो, मैं आपको जलेबी ला कर दे देता हूँ, आप ना अपने घर पे ही चलो। तो देखो ये सही बात थी या गलत बात थी, लेकिन जब भी कुछ ऐसी बात होती है हंसी की तो कहते हैं कि भैया अगर कोई चीज मांगनी हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन भाई हम तो यही कहेंगे कि अपने घर में आराम से आप चीजें खाइए, बच्चे हमारा ध्यान रखते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और जहाँ तक हंसी की बात है, जब हम हंसते हैं तो देखिए हमारे हृदय भी स्वस्थ रहेगा, इम्यून सिस्टम हमारा अच्छा बनेगा, सबसे बढ़िया बात ये कि रिश्ते हमारे अच्छे बनते हैं।
1: बिल्कुल, आप जो कह रही, रिश्ते अच्छे बनते हैं ये सबसे बड़ी बात होती है। जो हंसता हुआ जो हमारा चेहरा होता है, नूरानी चेहरा, वो वाकई उसकी बात ही कुछ अलग होती है, क्योंकि जो चेहरे की मुस्कुराहट होती है, जो एक ग्लो आता है जब हम किसी से मिलते हैं, तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। और कमलेश कुछ कहना चाह रही हो क्या?
0: हाँ हाँ बिल्कुल कहना चाह रही हूँ, मैं यही बात कह रही हूँ कि जब हम बात करते हैं नूरानी चेहरे की, कई बार तो हम किसी का भी चेहरा देखते हैं तो उसके चेहरे को देखते ही रहते हैं कि देखो इसके चेहरे पर हमेशा ही स्माइल बनी रहती है, कभी भी हमने इसको जो है गुस्से में नहीं देखता, और जो आज का दिन है वो तो है ही हंसी का। तो आइए हम सब हंसी की जो ताकत है उसका जश्न मनाएं, क्योंकि अगर हम शांतिपूर्ण दुनिया चाहते हैं तो हंसी को हमें एक साधन के रूप में देखो अपनाना ही होगा, क्योंकि जब आपको बेहतर नींद चाहिए तब भी आपको हंसना होगा। आपने कभी ध्यान से देखा कि जब आप तनावग्रस्त होते हैं और ऐसे में अगर कोई आपको हंसा देता है, ऐसे में कोई ऐसी छोटी सी भी हंसी की बात को बता देता है, तो आप जो हैं सारा तनाव भूल जाती हैं, और जब चेहरे की बात करते हैं तो बस भाई फिर तो कहना ही क्या।
1: हाँ, तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा कैसा लग रहा है गीत के माध्यम से सुनते हैं।

0: देखो कमलेश, हर किसी को आज़ादी पसंद होती है, किसी भी मामले में हो, चाहे बोलने की हो, चलने की हो, खाने पीने की, सोने जगने की हो, लेकिन कुछ लिमिट में जो होता है वो ज़रूरी होता है लिमिट उसके लिए लगाना। और ख़ास करके जब प्रेस की आज़ादी की बात होती है तो आज कुछ खास ऐसा ही दिन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस।
1: और इसके ऊपर जब हम बात करते हैं तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है, इसका महत्व यह है कि जो मीडिया की स्वतंत्रता है उसका क्या उद्देश्य है, और इस पर हम चर्चा भी करें। और जो मीडिया हमें खबरें देता है उनकी खबरें कैसी होनी चाहिए, और जो खबर वो देता है क्या वो सटीक है, कहीं ऐसी तो नहीं है भ्रामक है, कहीं ऐसी तो नहीं है कि जनता को गुमराह कर रही हो, तो इन सब बातों पर भी ध्यान देना चाहिए।
0: जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बात हो रही है तो आज 3 मई को ये मनाया जा रहा है, जो कि मीडिया की स्वतंत्रता की हम बात करें, पत्रकारों की सुरक्षा की भी हम बात करें, और प्रेस के जो बुनियादी जो सिद्धांत है उसके जश्न मनाने का ये दिन है। और ख़ास करके संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित यह दिन लोकतांत्रिक समाज में स्वतंत्र मीडिया के महत्व और उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति ये प्रतिबद्धता अपनी दोहराती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम प्रेस के जरिए, प्रेस में सारी चीज़ें आ जाती हैं, हम अगर अखबार पढ़ते तो उसमें बहुत से ऐसे न्यूज़ होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं और जानकारी से भरपूर होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी आ जाती हैं जो मन को झकझोर देता है,
1: बिल्कुल
0: या कुछ ऐसी गलत बातें आ जाती हैं जिससे बाद में कट किया जाता है ये कहकर कि ये भ्रामक समाचार था और गलती से चला गया। तो कभी ये होता, ये हमारी भी ड्यूटी बनती है कि जब हम प्रेस की चीज़ों को पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो उस पर पूरा फोकस करने के साथ साथ ये भी देखें कि वाकई यह न्यूज़ सत्य है कि नहीं है। तो एक ऑथेंटिक तरीके से पता करने का भी जरिया आपके मन में होना चाहिए कि ये सही समाचार आप तक पहुंच रहा है कि नहीं, क्योंकि फेसबुक की बात करें या हम और चीज़ों की बात करें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें बन करके आ जाती हैं जो वाकई वो सत्य नहीं होते हैं। तो कोशिश से हमारी ये भी होनी चाहिए कि आज़ादी जो हमें प्रेस की दी जा रही है उसके तहत हम जो भी प्रस्तुत करें वो सही ढंग का हो और जनता तक हम सही बात पहुंचा सकें।
1: और कई बार ये भी देखा गया है कि अगर जो बात सही कहता है उसके ऊपर जो है कई बार लांछन भी लगा दिए जाते हैं कि भी तुमने ये बात कैसे कह दी, तुम तो इस काबिल ही नहीं थे, तुम कहाँ से ये खबरें लेकर आए। तो जो पत्रकार हैं उनकी जो कहते हैं ना कि उनकी भी जो सुरक्षा है उसको हमें सुनिश्चित करना ही होगा। और कई बार ये भी होता है कि पत्रकारों पर हमले हो गए हैं तो उसकी जानकारी भी उनको होनी चाहिए, उसकी
0: बिल्कुल
1: निगरानी भी रखनी चाहिए, और पत्रकारों के क्या क्या अधिकार हैं उनके उनके अधिकार मालूम भी होने चाहिए, क्योंकि जब उनको अधिकार मालूम होंगे तभी तो वो स्वतंत्र रूप से और सजग होकर कार्य
0: अपना
1: कर
0: काम कर
1: पाएंगे।
0: सकेंगे। और सबसे बड़ी बात है उनकी सुरक्षा को लेकर के भी बहुत ही गंभीर बात है कि सुरक्षा उनको प्रोवाइड कराया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी सुरक्षा अगर सही रहेगी, वो सुरक्षित रहेंगे, तभी तो हमारे तक ये समाचार आएगा कोई ना कोई।
1: बिल्कुल, और आज का दिन कुछ जो पत्रकार हैं उनके लिए बहुत ही सम्मानित करने वाला दिन भी होता है कि उनको सम्मान दिया जाता है कि उन्होंने युद्ध के जो समाचार थे वो इतने अच्छे तरीके से पहुंचाए, या कहीं पर आपदा थी उसके समाचार इतने अच्छी कवरेज उन्होंने करी, अपने जान को जोखिम में डालकर उन्होंने ये कार्य किया, तो उनको आज के दिन जब सम्मानित किया जाता है तो सच में यमुना बहुत ही अच्छा लगता है।
0: और हम यही कहेंगे कि सब कुछ जनता का है, ये हमारा प्रजातांत्रिक देश है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आपका इसी से संदर्भ से रिलेटेड कुछ हम आपको सुनवाते हैं। ये

0: बिल्कुल, रुपए पैसे आने सब कुछ जनता का है, ये प्रजातांत्रिक हमारा देश है। और बहुत सी आज़ादी हमें भी है कुछ बातचीत करने का, कुछ कहने का, और बहनों के बीच हम आ चुके हैं। और जो कार्यक्रम चल रहा है इस समय, गृह लक्ष्मी और आपके साथ हैं,
1: कमलेश मुद्गल और मेरे साथ हैं
0: यमुना। तो आप आगे जो बातचीत का सिलसिला है, जानकारी से भरपूर कुछ ना कुछ आपके लिए हम लेकर आते हैं। और खास करके इस हमारे गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में बहनों को कैसे सहायता प्रदान की जाए, कैसे उन्हें आगे बढ़ाया जाए, इससे संबंधित कुछ बातचीत भी है। कमलेश क्या बताना चाह रही हूँ?
1: मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आज हम अपने बहनों के लिए लेकर आए हैं एक बातचीत, स्वयं सहायता समूह द्वारा ग्रामीण महिलाओं का विकास। डॉक्टर निशी शर्मा, पूर्व प्रधान वैज्ञानिक पूसा, उनसे बात कर रही हैं शिव नंदन लाल। तो बहनें सुनेंगे बातचीत।
2: श्रोताओं नमस्कार। कोई भी कार्य जब हम करते हैं, अकेले करते हैं, तो निश्चित तौर पे उसमें हमें उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर उसी कार्य को हम समूह में करें तो उसमें सबके अपनी राय भी होती है और कई लोगों के अपने विचार भी होते हैं, और उससे क्या है कि आपस में एक दूसरे का फायदा भी होता है। तो आज हम बात करेंगे कि जो स्वयं सहायता समूह हैं उनके द्वारा किस तरीके से ग्रामीण महिलाओं का विकास किया जा सकता है और ये किस तरीके से देश के विकास में भी भागीदार हैं। और इसकी विस्तार से जानकारी के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर निशी शर्मा जी को, जो कि प्रधान वैज्ञानिक रह चुके हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर निशी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि ये स्वयं सहायता समूह क्या है।
3: जैसा कि इसका नाम बताता है, अपनी सहायता के लिए समूह। और ये समूह वैसे तो महिलाएं पुरुष कोई भी बना सकता है, पर देखा गया है कि ज्यादातर जो महिलाएं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हैं, वो थोड़ा सा पिछड़ी हुई हैं पुरुषों की अपेक्षा। जैसे सामाजिक रूप से वो बाहर नहीं निकल पाती हैं, अपनी आवाज नहीं उठा पाती हैं समाज में, तो ये उनके समूह होते हैं, अपने लिए ही वो सहायता करते हैं। जैसे ये समूह होता है, 10 से 20 महिलाएं मिलके एक जैसे आर्थिक सामाजिक बैकग्राउंड से आती हैं, वो ये अपना समूह बनाती हैं। स्वयं सहायता समूह की जो शुरुआत होती है वो ये होती है, क्योंकि महिलाओं को सबसे अधिक आवश्यकता होती है पैसे की, अपना घर चलाने के लिए, अपने बच्चों को चलाने के लिए, अपने घर में अच्छा भोजन के लिए, छोटी मोटी जरूरतों के लिए। तो इसमें सबसे पहले ये शुरू करती हैं, एक नियम बनाती हैं, क्योंकि ये एक अनौपचारिक समूह होता है। वो अपना फिक्स करते हैं कि हर महीने हम कितना धनराशि जमा करेंगे आपस में, और जो जमा करते हैं एक प्रेसिडेंट, एक सेक्रेटरी, ट्रेजरर, इसके नियम होते हैं। मीटिंग करती हैं आपस में हर महीने, हर हफ्ते, जो इनको सुविधा होती है, ये अपना धन इकट्ठा करती हैं आपस में मिलके।
2: तो लगभग इसमें जैसे एक समूह में कितने मेंबर तक रहते
3: बीस
2: हैं?
3: मेंबर तक, 10 से 20 तक, एक समान विचार की होती हैं, एक सा ही उनका आर्थिक तय की उनको जरूरत होती है, तो पहले अपने पैसे इकट्ठे करती हैं।
2: यानी जरूरत पड़ने पर सारे इकट्ठी भी हो जाते हैं, मतलब एक मोहल्ले की
3: एक
2: हो
3: मोहल्ले
2: या
3: की जो
2: कि
3: आसपास रहती हैं, एक गांव में हैं, वो इकट्ठी होती हैं। जो आपस में होते हैं ना, जो जान पहचान की महिलाएं होती हैं,
2: जी
3: उनका प्रेशर एक दूसरे के ऊपर होता है। तो ऐसा देखा गया है कि कोई इसके अंदर डिफॉल्टर नहीं होता, सब अपना ऋण टाइम से देती हैं, वापस करती हैं। और जैसे जैसे वो पैसा बढ़ता है, तो ये अपने एक समूह का, जब लगता है कि 1-2 साल

0: गए, हमारा समूह सही चल रहा है, अपना एक नाम रख के, अपनी एक आइडेंटिटी रख के, जो वहाँ का स्थानीय बैंक है उस स्थानीय बैंक के साथ ये लिंक करके ये अपना आगे कार्यक्रम बढ़ा सकती है।
1: तो इसका कहीं रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है?
0: हाँ, ये बैंक के साथ होता है, तो जो स्थानीय बैंक होता है, ये एक नाबार्ड की स्कीम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, तो उसके अंडर ये स्थानीय बैंक से लिंक करती हैं, जिसको सपोर्ट एक नाबार्ड करता है।
1: तो ये तो बात हो गई, जैसे महिलाएं आपस में थोड़ी थोड़ी बचत करके इकट्ठा करते हैं, एक दूसरे को लोन देती हैं। लेकिन बात जहाँ तक आती है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं, तो महिलाएं कुछ आपस में मिलके कुछ सामान भी तो बनाती होंगी, उसको भी तो वो कहीं ना कहीं बेच के कुछ पैसे इकट्ठा कर सकती हैं।
0: जब पहली परिस्थिति होती है, उनका ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, जब
1: जी
0: धीरे धीरे होने लगती हैं, तो इनको सपोर्ट करने के लिए जो लोकल ग्रामीण संस्थाएं होती हैं, एनजीओ होती हैं, कई वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो इनको सपोर्ट करती हैं। फिर जो उस क्षेत्र का जो लोकल क्राफ्ट होता है, उनकी कला होती है, चाहे भोजन बनाने की चीज़ें हों, या आर्ट का काम हो, या कढ़ाई बुनाई का हो, इस तरह के जो भी वो वहाँ पे कारीगरी सीख सकते हैं अपने घर में बैठ के और बना सकती हैं, वो उनको उसकी प्रशिक्षण देते हैं, तो ताकि वो उनका स्किल डेवलप हो। और आपने देखा होगा कि ये सपोर्ट करने के लिए हमारी सरकार, जैसे अभी दिल्ली में ही 2 दिन से लगा है सरस मेला, तो सरस मेला में हम देखेंगे अलग अलग प्रदेश से जो स्वयं सहायता समूह हैं, उनकी महिलाएं आई हैं और वो आके अपना सारा जो सामान है वो यहाँ बेच रही हैं,
1: अपने हाथ का बनाया हुआ,
0: अपने हाथ का बना हुआ, उनको एक मार्केट प्लेस बना है। ऐसे ही हम अलग अलग प्रदेशों में भी जाते हैं, तो वहाँ भी जो मार्केट है, इनको एक दिन दिया जाता है। जैसे अभी मैं पीछे सोलन गई हुई थी, तो वहाँ हिमाचल के सोलन डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज हैं, चाहे वो वहाँ पे उन्होंने खाने का सामान बनाया है, घी बनाया है, वहाँ की लोकल सब्जियाँ हैं उसको प्रोसेस करके, पैकिंग करके वो बेच रही हैं वहाँ पे शहरी लोगों को, तो इस तरह की इनको मार्केट प्लेस दिए जाते हैं ताकि ये अपना आगे बढ़ें और अपना कमाएं।
1: जी, जैसे आपने मेले का जिक्र किया, और भी कृषि मेले भी होते हैं, लोकल लेवल पर भी मेले होते हैं, वहाँ भी महिलाएं अपने उत्पाद लगाती हैं। लेकिन जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि लखपति दीदी, तो वो क्या हैं और किस तरीके से उनका इसमें योगदान है?
0: जी, लखपति दीदी भी एक हमारी सरकारी योजना है, उसमें से कुछ जो महिलाएं हैं, जो हर समूह में से एक महिला को आगे बढ़ाया जाता है, उसको एक फाइनेंशियल, जैसे वित्तीय ट्रेनिंग दी जाती है कि पैसे को कैसे संभालना है, फिर उसको स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है, कोई कौशल दिया जाता है, जब वो कौशल और वो सब सीख जाती है, फिर उसको उद्यमिता की तरफ बढ़ाया जाता है। इसमें कोशिश ये रहती है कि ग्रुप में महिलाएं हैं, उनको इतना आगे बढ़ाया जाए कि उनकी जो सालाना इनकम है वो 1 लाख से ऊपर हो, तो उनको हम लखपति दीदी कहते हैं। तो अभी आपने पीछे देखा होगा ड्रोन दीदी, वो कुछ महिलाओं को चयन करके उनको ड्रोन की ट्रेनिंग दी गई और उन्होंने अपना इसको उद्यम बना के कृषि के अंदर पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड स्प्रे का था, फर्टिलाइजर का था, ड्रोन के द्वारा उन्होंने ये उद्यम बनाया और जिसके कारण उनकी इनकम बढ़ी।
1: जी बिल्कुल, सरकार तो अपना कार्य कर रही है, लेकिन इसमें महिलाओं को आगे आने की ज़रूरत है, और निश्चित तौर पे जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं उसमें बहुत बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं। लेकिन ये स्वयं सहायता समूहों को और आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आजीविका मिशन है, ये क्या कुछ कर रहा है?
0: राष्ट्रीय आजीविका जो योजना है, मिशन है, इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में। उससे पहले स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना के नाम से एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स को ही दिया जाता था। आगे जाके इसको मिशन मोड में बनाया गया, क्योंकि इसके अंदर प्राथमिकता दी जाती है महिलाओं को आजीविका कमाने के लिए, उनको स्किल देने के लिए, जो स्वयं सहायता समूह ग्रुप की मेंबर्स हैं। अगर अकेली महिला जाती है, उसको बड़ा मुश्किल होता है कि वो कहाँ जाए, कैसे जाए, स्वयं सहायता समूह उनके लिए एक माध्यम हो जाते हैं कि वो अपनी जो सरकार की योजनाएं हैं उन तक पहुंचने के लिए। जैसे बैंक से अगर उनको लोन भी लेना है, अपना आजीविका कमानी है, स्वयं सहायता समूह को अगर लोन लेना है, तो बैंक उनसे कोई कोलेटरल नहीं लेता है, गारंटी नहीं लेता है, वो एक जो उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो अपने आप में एक गारंटी है, तो इसलिए उनको एक बहुत आसानी से लोन मिलता है और उनको कम इंटरेस्ट पे मिलता है, और अगर वो टाइमली पेमेंट कर भी देती हैं महिलाएं अपने लोन का, तो उसमें भी उनको ब्याज में कुछ रियायत दी जाती है।
1: जी बिल्कुल।

0: आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं पुराने ज़माने में किसी साहूकार के पास जाते थे,
1: बिल्कुल
0: लेकिन अब बैंक आगे आ गए हैं। और आपने कई बार नाबार्ड का जिक्र किया है, तो नाबार्ड किस तरीके से महिलाओं की, स्वयं सहायता समूहों की मदद करता है? क्योंकि ज़्यादातर सुनने में आता है कि हमें नाबार्ड से सहायता मिली है।
1: बिल्कुल
0: जिस स्वयं सहायता समूह की महिला से हम बात करते हैं, जिससे मिलते हैं, वो यही कहते हैं कि मुझे नाबार्ड ने बहुत सपोर्ट किया है।
1: नाबार्ड बैंक का जो मेन फंक्शन है सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, बैंक लिंकेज प्रोग्राम है जिसमें उनको लोन और क्रेडिट एक्सेस तो देता ही है। इसके साथ साथ जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं,
0: जी
1: बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं उनको माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट के लिए, और उस ट्रेनिंग उसमें उनकी कौशलता बढ़ाने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करने के लिए कि वो आगे बढ़ें, और उनके लोकल बैंक हैं उनको भी रीफाइनेंस करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए। तो नाबार्ड का कहें कि एक तरह से बहुत बड़ा रोल है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मजबूती देने के लिए, उनको वित्तीय सहायता देने के लिए, आर्थिक सहायता देने के लिए और उनका कौशल बढ़ाने के लिए।
0: तो जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाना चाहते हैं, या जैसे जिनका एक समूह बन गया, अब वो सोचते हैं कि हम ग्रुप को बहुत बड़ा बनाएं, तो क्या उसके अलावा भी दूसरा समूह बना सकती हैं?
1: कितने भी समूह बन सकते हैं, अपने समूह को वो बहुत बड़ा नहीं कर पाती हैं क्योंकि इसमें एक लिमिटेशन होती है,
0: जी
1: क्योंकि
0: जी जी
1: फिर उसकी फिर एक कंपनी लॉ और ये सब लगते हैं, छोटा ही समूह होता है। अब समूह की भी फेडरेशंस होती हैं, तो जैसे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखें समूह की फेडरेशन बन जाती हैं, हर समूह के
0: हाँ,
1: रिप्रेजेंटेटिव्स
0: कई
1: होते
0: कई
1: हैं।
0: महिलाएं कहते हैं कि हमारे पास 200 ग्रुप हैं स्वयं
1: हाँ, वो
0: सहायता
1: ग्रामीण
0: समूह।
1: स्तर पे होते हैं, फिर ब्लॉक स्तर पे होते हैं उनकी फेडरेशन होती हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं।
0: इनका क्या कार्य होता है?
1: जो समूह हैं ग्रामीण लेवल पे हैं, फिर जो ग्रामीण लेवल पे बहुत सारे समूह मिलके उनके रिप्रेजेंटेटिव मिलके वो एक अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो जाते हैं, एक एक समूह का एक एक रिप्रेजेंटेटिव उसके अंदर होता है, जो वो पूरी स्कीम्स होती हैं जो भी प्रोग्राम होते हैं वो, ताकि सबके पास इंफॉर्मेशन आए। तो वो एक समूह नहीं बनता, अलग अलग होता है, पर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इनके ग्रुप्स में होते हैं
0: मतलब
1: आगे
0: जो भी
1: फेडरेट।
0: सूचना है हर
1: हाँ,
0: व्यक्ति तक पहुंच जाते
1: पहुंच
0: हैं।
1: जाती है, और इनकी फेडरेशन में भी उनके फिर अलग अलग जो प्रोग्राम्स होते हैं वो देखते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट में इन विलेजेस के अंदर हम ये काम कर सकते हैं, वो चीज़ प्रमोट करते हैं, मार्केट प्रमोट करते हैं, स्कीम्स प्रमोट करते हैं, तो वो तरह से इनकी एकता में शक्ति हो जाती है।
0: जी बिल्कुल, एकता में शक्ति होती है और इससे महिलाओं का अपना विकास होता है। लेकिन ये जो स्वयं सहायता समूह है, देश के विकास में इनका क्या योगदान है?
1: हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है वोकल फॉर लोकल, तो इसमें महिलाएं जो हैं हमारे जो लोकल क्राफ्ट है, जो टैलेंट
0: उत्पाद
1: है,
0: जी
1: उत्पाद है, वो उसको आगे बढ़ा रही हैं। जो भी छोटी छोटी उनके गांव के स्तर पे हो सकती हैं, कृषि के उत्पाद हो गए, डेयरी के उत्पाद हो गए, टेक्सटाइल के हो गए, वहाँ के हस्तशिल्प हो गए, और ये ऐसे ऐसे काम कर रही हैं, जैसे कई महिलाएं हैं कि सैनिटरी पैड्स बना रही हैं रिमोट एरियाज में जो वहाँ
0: हाँ,
1: की
0: बैट्स
1: बालिकाओं को
0: हैं
1: नहीं मिल पाते, और मिड डे मील में भी काम करती हैं, और पौष्टिक वहाँ के आहार होते हैं उनको बना के बेचती हैं।
0: बिल्कुल। जब उनका परिवार आगे बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पे उसका प्रभाव देश पर भी पड़ेगा।
1: बिल्कुल पड़ेगा।
0: तो डॉक्टर निशी जी, आपने आज बहुत अच्छी जानकारी दी कि किस तरीके से स्वयं सहायता समूह द्वारा महिलाएं अपना भी विकास कर सकती हैं और देश के विकास में भी भागीदार बन सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: स्वयं सहायता समूह द्वारा ग्रामीण महिलाओं का विकास कैसे हो सकता है, वो कैसे आगे बढ़ सकती हैं एक समूह बना करके, इस विषय पर अभी बहुत ही विस्तार में जानकारी दी डॉक्टर निशी शर्मा, जो कि पूर्व प्रधान वैज्ञानिक हैं पूसा नई दिल्ली में, और इनसे बातचीत कर रहे थे शिवनंदन लाल। कोनाया की निगाहों में चमक जाग उठी।

0: हम आ गए।
1: बिल्कुल आ गए हैं, हमारी बहनों को भी मालूम है। और अगर जिन बहनों ने अभी अभी हमें सुनना आरंभ किया है, तो हम बता दें कि हम हैं गृह लक्ष्मी के अंदर कमलेश मुद्गल, और मेरे साथ है।
0: यमुना गर्ग।
1: और जब हम अपनी बहनों से बात करते हैं, तो उनके लिए नई नई जानकारी हम लेकर ही आते हैं। और आज अगर हम बात करें कि हमारी जो बहनें हैं, उनकी जो कहना चाहिए कि सफलता है, उसका परचम जो है दूर दूर तक लहरा रहा है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो हमारी बहनें हैं, उनके हाथ में बहुत ही हुनर है। और बार बार जब हम उनको बोलते हैं कि आपके हाथ का हुनर है, तो उसको आगे लेकर जाइए, दुनिया को बताइए कि आपके हाथ में ये हुनर है, तो हमारी बहनें धीरे धीरे करके अब आगे बढ़ रही हैं।
0: बिल्कुल। और आज हम ऐसी योजना की बात करने जा रहे हैं, महिला ई हॉट। इसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट है, और खास करके महिला उद्यमियों जो कि स्वयं सहायता समूह, SHG जो समूह है, और NGO को अपने जो हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं उसको लेकर के मार्केट तक पहुंचाने की सारी प्रक्रिया उसमें बताई गई है। खास करके जो देखा जाए तो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उसका भी यूज करती हैं वो। और बात करें किसी कमीशन की, तो ऑनलाइन सीधे उपभोक्ताओं को बेचने का अवसर प्रदान करना है, और इस पर उत्पादों को सूचीबद्ध करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता है।
1: तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और कई बार ये भी देखा हमने यमुना, कि हमारी बहनें जो हैं अपने घर में बहुत सारे काम करती हैं, चाहे वो अचार बनाती हैं, पापड़ हैं, बढ़िया हैं, या जैसे अब गर्मी का मौसम चल रहा है तो कुछ बहनें घर पर ही चिप्स बनाती हैं। आप भी तो बनाती हो, मैंने कई बार देखा जब आप लेकर आती हो तो,
0: हाँ
1: है
0: तो
1: ना।
0: वो
1: लेकिन आपने भी
0: है, नहीं
1: मार्केटिंग
0: शुरू की, वो बताओगी ना, तो मैं भी इसमें
1: शुरू
0: सोच रही मैं भी ऐसा कुछ करना
1: हाँ,
0: शुरू कर
1: तो
0: दूं,
1: यही
0: घर
1: तभी
0: बैठे
1: तो
0: बढ़िया व्यापार है।
1: भाई, यही तो मैं कह रही हूँ कि आपस में जब दो सखियाँ मिलती हैं, तो एक दूसरे का हुनर उन्हें मालूम होता है, तो उस हुनर को निखारने के लिए भी आगे कैसे बढ़ना है। जब हम बहनों को जानकारी दे रहे हैं, तो भी आपके आपके लिए भी तो जानकारी
0: अरे
1: है
0: बहुत
1: ना।
0: सी ऐसी बहनें हैं ना जो ठंडी का सीजन आता है ना, तो क्या करती हैं कि ऊन मंगा लेती हैं,
1: बिल्कुल
0: आप मुझे ऊन दे दो, मैं आपको स्वेटर बुन के दे दूंगी, और भगवान जी के छोटे छोटे कपड़े सिल के देती हैं, छोटे छोटे सिलाई का काम कर लेती हैं, घर बैठे

0: भी ब्लाउज हुआ, पेटीकोट हुआ, बहुत से ऐसे सामान है जो सिल के देती, तो घर बैठे ही बहुत कुछ कर सकती है।
1: और गर्मियों की जब अगर हम बात करें तो गर्मियों में तो है ना कुछ सजावटी सामान बना लेती हैं, हस्तशिल्प की कितनी सारी चीजें हैं, जूट के भी उत्पाद बना लेती हैं और जो खाने की चीजें होती है वो बना लेती है। गर्मियों में बड़ी जल्दी चीजें सूख जाती हैं तो वो भी पापड़ वगैरह वो सब बना के रख लेते हैं कि भैया जल्दी धूप तेज है तो फटाफट जो है वो चीजें सूख जाएंगे। और सबसे बढ़िया बात यह कि ये मोबाइल के माध्यम से इसमें सब कुछ हो जाता है, तो एक जो मोबाइल है वो आपके कितने काम की चीज बन गया है।
0: हमने ये देखा कि एक मेरी बहन है, मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि आपकी साड़ी अगर हो तो उसका मैं लहंगा बनवा सकती हूँ,
1: अच्छा
0: बहुत सुंदर चुनर भी उस पर बना दूंगी। हमने कहा ठीक है, कितने पैसे लग जाएंगे, हालांकि यहाँ पे नहीं बताऊंगी कितने पैसे लिए,
1: पता है वो थोड़ा गुप्त रहना चाहिए।
0: लेकिन इतना बेहतरीन उसने उन्हें बनाया कि उस साड़ी का क्या उन्होंने ग्लो दिया, क्या तरीका उन्होंने गोटा वोटा लगा के, तो जो चुनरी है वो बीकानेर की चुनरी को भी फिल कर दिया।
1: सच में
0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरती से।
1: तो आपने तो मुझे वो गीत याद ही दिला दिया, तो मंगवा दो जरा बीकानेर की चुनरी।

0: और कहते हैं ना कि जब मौसम खराब हो तो सावधानी बरतना बहुत जरूरी होता है, खास करके स्वास्थ्य को लेकर के।
1: और जब स्वास्थ्य की बात आती है तो हम तो अपनी बहनों को

0: हमेशा बताते ही रहते हैं, हमेशा हम आते ही उनको कहते हैं कि बहनों आपने खाना खाया, खाली पेट तो नहीं हो, और आजकल तो पानी की जो मात्रा है उसका तो आपको बहुत ही ध्यान रखना है, उसमें नींबू पानी भी पीना है आपको, छाछ भी पीना है, नारियल पानी भी पीना है, और दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक आप धूप में ना जाएं तो बढ़िया है, और अगर जाना ही पड़ा तो अपना सिर ढक कर जाएं और साथ में अपनी छतरी भी लेती हुई जाएं।
1: आप जो कह रही हैं जाने की बात ना, तो रुका तो जा नहीं सकता क्योंकि शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, तो इधर से उधर एक जिले से दूसरे जिले भी जाना है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भी जाना है,
0: खुशियां तो मनानी ही है।
1: और खास करके जब शादी का मौसम होता है तो गीत संगीत खूब होता है, आप तो समझती हो महिला संगीत भी होता है, हम लोग भी नाचते गाते हैं, तो बहुत से ऐसे चीजें होते हैं, ऐसे हमारे रस्म रिवाज होते हैं जिसको लेकर के हम चलते हैं खास करके शादियों में। तो अपने स्वास्थ्य का तो ध्यान रखें, साथ साथ मनोरंजन का भी ध्यान रखें, और हम भी थोड़ा सा गुनगुनाएंगे।
0: अच्छा,
1: बन्ना के बारे में।
0: अरे बनने की बात कर रही हो तो चलो हम भी साथ में गुनगुनाते हैं।

0: और अब हम आ गए हैं भारत की वीरांगना क्रम में रानी चेन्नम्मा के बारे में बताने के लिए। तो कर्नाटक के कित्तूर राज्य की रानी थी, पहली महिला थी और स्वतंत्रता सेनानी थी। 1824 में इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया था। घुड़सवारी तलवारबाजी में ये निपुण थी और अपने गोद लिए हुए पुत्र को उत्तराधिकारी न मानने पर अंग्रेजों से युद्ध इन्होंने किया था और उसके बाद में ये वीरगति को प्राप्त हो गई थी।
1: अद्वितीय दृढ़ निश्चय और स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता का परिचय इन्होंने दिया। तो देश पर जान लुटाने वालों के प्रति हम नमन करते हैं।

0: आपको चलते चलते अपना हम ईमेल का पता बता देते हैं, feedback@gmail.com, और जो हमारा पत्राचार का पता है, कृषि एवं गृह कांश, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, नई दिल्ली, पिन कोड है 110001।
1: और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।
0: तो इसी के साथ आज का हमारा गृह लक्ष्मी कार्यक्रम समाप्त होता है। बहनों, राम राम, राम।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण बहनों का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं की सूचना दी है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की भी घटनाएं सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कल कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे।
2: जनादेश 2026।
3: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
2: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
3: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
2: जनादेश

0: 26
1: दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया।
2: इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज्ड व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा। टोटल 9 इसमें चार्ड बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग लगने की दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल सरकारी एजेंसियों, निर्वाचन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मीडिया पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब न्यायपालिका को भी निशाना बना रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि इन दलों को यह एहसास नहीं है कि वे देश के लोकतंत्र की नींव पर हमला कर रहे हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में 1975 में देश पर इमरजेंसी थोपी गई। कांग्रेस सरकार में संवैधानिक पदों और एजेंसियों के शीर्ष पद पर सीधे सरकार के स्तर से नियुक्ति की जाती थी, जबकि अब ये नियुक्तियां समितियों द्वारा की जाती हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि देश की जनता कांग्रेस पार्टी की हकीकत जानती है और इन दलों को ऐसा सबक सिखाएगी जो वे कभी नहीं भूलेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री से विकसित बिहार के लक्ष्य को साकार करने पर चर्चा हुई। श्री चौधरी ने बताया कि रेल मंत्री से मुलाकात में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, बेहतर रेल संपर्क और बिहार के समग्र विकास में तेजी लाने पर विचार विमर्श हुआ। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे समाप्त होगी। परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मूल के विद्यार्थी भी आज नीट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। दुबई और शारजाह में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की निगरानी दुबई में भारत का महावाणिज्य दूतावास कर रहा है। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ये प्रेस की स्वतंत्रता के प्रयासों को प्रोत्साहित करने और विकसित करने तथा विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने का अवसर है। इस वर्ष का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

इस प्यारे से गीत के बाद फिल्म की कहानी शुरू करते हैं। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर महेंद्रू यानी बलराज साहनी से, जो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश है अपनी बेटी चंदा यानी प्रिया राजवंश के साथ, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। एक हादसा, एक गलती और चंदा की जिंदगी बदल जाती है। कभी कभी एक पल पूरी जिंदगी बदल देता है। अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसमें छुपा है दिल का दर्द और जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

इस दुख भरे प्यारे से गीत के बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सालों बाद चंदा अब ऐसी दुनिया में है जहां खुशियां सिर्फ दिखावा है, और तभी उसकी मुलाकात होती है सोमेश यानी नवीन निश्चल से, एक अमीर घर का लड़का जिसने अपने उसूलों के लिए सब छोड़ दिया। धीरे धीरे चंदा और सोमेश के बीच प्यार पनपता है। फिल्म की कहानी जारी रहेगी लेकिन इस खूबसूरत कव्वाली के बाद।

0: मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए।
1: इस खूबसूरत कव्वाली के बाद दोस्तों कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी अपने सबसे भावुक मोड़ पर पहुंचती है। चंदा अपने प्यार यानी सोमेश को छोड़ देती है अपने फर्ज के लिए, अपने रिश्तों के लिए, और अंत में वो अपने पिता की बाहों में दम तोड़ते हुए सोमेश से आखिरी वादा लेती है। क्या था वो आखिरी वादा, ये जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म हंसते जख्म ज़रूर देखनी चाहिए। तो फिल्म के बारे में और भी बातें करेंगे, लेकिन पहले शामिल कर लेते हैं अपने दोस्तों के मेल जिसका बेसब्री से इंतज़ार है। तो पहला मेल हमें आया है हिंगोली महाराष्ट्र से, जिसे भेजा है शाहजी बोखड़े, नंदा हनुमान बोखड़े ने। और अगला मेल हमें मिला है सुदर्शन मुखी, अनीता सिमरन मुखी जी का, शांति नगर से। इन्होंने लिखा है कि रिस्पेक्टेड नंदा इसर जी, वेरी हैप्पी एंड हेल्दी संडे, आपको भी बहुत बहुत हैप्पी एंड हेल्दी संडे, गुड आफ्टरनून, आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, आपको इस फिल्म के गीत भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया। और अगला मेल हमें आया है रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी जी का। और एक और मेल हम शामिल कर रहे हैं, संदीप मक्कर जी ने हमें ये मेल भेजा है, इनके साथ हैं ज्योति मक्कर, मन्नत भारत और कमल सहनी। और ये मेल हमें आया है पिंगावाला चौक गुरैया जलंधर से। और अगला मेल हमें भेजा है ग्राम भोईनापार लाटा बोर्ड जिला बलोच छत्तीसगढ़ से, देव नारायण साहू, योगिता, गीतिका, चंचल रानी साहू, उमाबाई, गंगाराम साहू जी का। इनको भी ये फिल्म हंसते जख्म बहुत पसंद आ रही है, उसकी कहानी भी इनको बहुत पसंद आ रही है, और ख़ासकर इनके गीतों की तो तारीफ इन्होंने बहुत की है। अगला मेल हमें मिला है अनिल मोहन जी का, नमस्कार जी, बेहद पसंद आ रहा है आपका प्रोग्राम, बधाई स्वीकार करें, स्वीकार करते हैं आपकी बधाई हम। ये मेल हमें मिला है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, इनके साथ है उषा मोहन और टिल्लू नायक कैथल हरियाणा से। और एक और मेल हम शामिल कर लेते हैं, ये हमें मेल आया है दत्तरेंगी से भगवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, इनको भी आज की फिल्म की कहानी बहुत पसंद आई और उसके साथ साथ गीत भी बहुत पसंद आए, धन्यवाद हमारा प्रोग्राम इतने ध्यान से सुनने के लिए। अगला मेल हमें आया है राजकुमार डूडी जी का, गांव फरासी जिला हिसार से, और इनके साथ है प्रमोद कुमार, इनको भी कहानी फिल्म की कहानी सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, और इन्होंने लिखा है कि बहुत बढ़िया जानकारी दे रही हैं और गीत भी बहुत बढ़िया सुना रही हैं, तो धन्यवाद आप सभी का। एक और मेल हमें अभी अभी आया है, कार्यक्रम एक ही फिल्म से आप चर्चा कर रहे हैं, 1973 में रिलीज़ हुई चेतन आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म हंसते जख्म, जो अपने दौर की एक बेहतरीन फिल्म थी, इसके

नगमे आज भी सदाबहार गीतों की श्रेणी में आते हैं। इस फिल्म में बेहतरीन अभिनय किया था नवीन निश्चल और प्रिया राजवंश, बलराज साहनी और जीवन ने, और गीतकार कैफी आजमी। इतनी सारी जानकारी देने के लिए धर्मेंद्र छिप्पा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनके साथ है कपिल, ईशान और पूजा परिहार। ये मेल हमें मिला है भोपालगढ़ राजस्थान से। तो आप इसी तरह से हमारे प्रोग्राम को सुनते रहिए और हमें मेल भेजते रहिए। आपका मेल भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी मेल हम शामिल करेंगे। अगर किसी का मेल मैं शामिल ना कर पाऊँ तो उसके लिए आपसे मैं माफ़ी चाहती हूँ। और चलते चलते आप ये प्यारा सा गीत इस फिल्म का सुनते जाइए, फिल्म हंसते जख्म का।

0: फिल्म हंसते जख्म को कोई अवार्ड तो नहीं मिला, परंतु इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और ये फिल्म उस समय की सबसे हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म का रीमेक बना पाकिस्तान में सन 1993 में। फिल्म का नाम था अरूसा। और अब वक्त है उस आपसे विदा लेने का। दोस्तों, हंसते जख्म हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार त्याग भी होता है और सच्चा अभिनय दिल तक पहुंचता है। इसी के साथ अपनी दोस्त नंदा इस्सर को अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई फिल्म एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपने से भी छुपाई थी धड़कन अपने सीने। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। पछमी बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम ते केन्द्र शासित प्रदेश पुडुचेरी च हुईयां विधानसभा चोणां लई वोटां दी गिनती कल सवेरे कीती जावेगी। संसदीय मामलों के मंत्री ते बीजेपी दे सीनियर नेता किरेन रिजिजू ने इल्जाम लगाया विरोधी पार्टियां सरकारी एजेंसियां चोण कमिश्नर इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनां ते मीडिया नूं निशाना बनाउण तों बाद हुण लगातार न्यायपालिका नूं निशाना बना रहीआं ने। पंजाब बीजेपी दे प्रधान सुनील जाखड़ दी अगवाई हेठ वफद वल्लों राजपाल गुलाब चंद कटारिया नाल मुलाकात, पंजाब च संविधानक दुरव्यवहार बारे एक मंग पत्र सौंपिया। प्रेस आजादी पहलकदमियां नूं उत्साहित करन लई अज विश्व प्रेस आजादी दिवस मनाया जा रहा है। पंजाब ते चंडीगढ़ के कई शहरां च अज गरज चमक नाल दरमियानी तो भारी बारिश हुई। मौसम विभाग वल्लों 5 मई तक सूबे च मीह ते गड़ेमारी बारे ओरेंज अलर्ट जारी। आईपीएल क्रिकेट विच अज सनराइजर्स हैदराबाद दा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स नाल दोपहर 3:30 बजे अते पंजाब किंग्स दा मुकाबला गुजरात टाइटन्स नाल शामी 7:30 बजे होगा। ते हुण खबरां विस्थार नाल। पछमी बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम ते केन्द्री शासित प्रदेश पुडुचेरी च हुईयां विधानसभा चोणां लई वोटां दी गिनती कल सवेरे कीती जावेगी। तमिलनाडु विच कुल 10,545 गिनती कर्मचारी 4,624 माइक्रो ऑबजरवरां दी मदद नाल गिनती ड्यूटी वास्ते तैनात कीते जाणगे। साडे पत्रकार ने दस्सिया कि 234 गिनती निरीक्षक हरेक विधानसभा हल्के लई कारवाई दी निगरानी करनगे ते कमिशन दे मौजूदा निर्देशां दी सख्ती नाल पालना नूं यकीनी बनाउणगे। पछमी बंगाल विच चोण अधिकारियां ने कहा कि सूबे भर के 77 गिनती केन्द्रां ते पारदर्शिता नूं यकीनी बनाउण लई बहुपदरी सुरक्षा दे नाल सारे प्रबंध मुकम्मल कीते गए ने। चोण कमिशन ने पछमी बंगाल दे फालटा विधानसभा हल्के दे सहायक वोट केन्द्रां समेत सारे 285 पोलिंग स्टेशनां ते दोबारा वोटिंग दे हुक्म दित्ते ने। कमिशन ने जिक्र कीता कि बुधवार नूं फालटा विधानसभा हल्के दी वड्डी गिनती च वोट केन्द्रां ते वोटिंग दौरान गंभीर चोण अपराध होए ने ते लोकतंत्री प्रक्रिया च विघन पाया गया। इस महीने की 21 तरीक नूं सवेरे 7 बजे तो शाम 6 बजे तक सारे वोट केन्द्रां ते मुड़ वोटां पैणगियां। वोटां दी गिनती 24 मई नूं होवेगी। संसदीय मामलों के मंत्री अते भारतीय

0: किए गए हैं। केरलम में असेंबली चुनाव के लिए वोटों की गिनती के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सीनियर अहलकारों ने केरलम में 140 गिनती मराकज में तैयारियों का हतमी दौर का जायजा लिया। वोटों की गिनती बिला रुकावट अमल को यकीनी बनाने के लिए गिनती मराकज के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। चुनाव कमीशन ने जुनूबी 24 परगना जिले फाल्टा असेंबली हलके में वोटिंग के तमाम अमल को मनसूख करने के गैर मामूली इकदाम किए हैं। मुआविन बूथों समेत सभी 285 पोलिंग बूथों में इस माह की 21 तारीख को दोबारा चुनाव कराए जाएंगे। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू और वजीर आला रेखा गुप्ता ने आज सुबह विवेक विहार में आग लगने के अफसोसनाक वाकये में हुए जानी नुकसान पर रंजो गम का इजहार किया है। कौमी राजधानी में आग लगने के इस वाकये में 9 अफराद हलाक हुए हैं। मीडिया के अफराद से बातचीत करते हुए फायर ब्रिगेड के अफसर मुकेश वर्मा ने बताया कि आग लगने का वाकया एक 4 मंजिला इमारत के कुछ फ्लोर में पेश आया। उन्होंने कहा कि बचाव और आग बुझाने की कार्रवाई के दौरान इमारत से 15 अफराद को बचा लिया गया है।
1: इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा। टोटल 9 इसमें चार्ड बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई।
0: मगरबी एशिया में जारी लड़ाई के दौरान ओपेक प्लस ममालिक जून में तेल की पैदावार से मुतालिक अपने अहदाफ में इजाफा करने पर उसूली तौर पर रजामंद हो गए हैं। खबरों से मालूम होता है कि 7 ओपेक प्लस मुल्कों ने अगले माह तेल की पैदावार के अहदाफ में तकरीबन 1,88,000 बैरल योमिया तक का इजाफा करने से इत्तेफाक कर लिया है। मुत्तहिदा अरब इमारात UAE के ओपेक से अलायदा होने और मगरबी एशिया में जारी बहरान के दौरान ये मुसलसल तीसरा माहाना इजाफा किया गया है। UAE के ओपेक ग्रुप से अलग होने के बाद अब ओपेक प्लस में ईरान समेत कुल 21 रुकन ममालिक हैं। पिछले हफ्ते UAE ने ओपेक से अलायदा होने का ऐलान किया था। आज दुनिया भर में प्रेस की आज़ादी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन प्रेस की आज़ादी के हक में इकदामात की हौसला अफजाई और फ़रोग देने के साथ साथ दुनिया भर में प्रेस की आज़ादी की सूरत हाल का जायज़ा लेने का मौका फराहम करता है। इस साल प्रेस की आज़ादी के आलमी दिन का मौजू है पुरअमन मुस्तकबिल की तश्कील। इस साल ये दिन इजहार राय की आज़ादी की दोबारा तौसीक करने और सहाफत, टेक्नोलॉजी, खुसूसन मसनूई ज़हानत AI और इंसानी हकूक से वाबस्ता इदारों को ऐसे अमली तरीक़ेकार पर यकजा करने का अहम मौका फराहम करता है जिनके ज़रिए मुस्तकबिल में मालूमाती निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाया जा सके। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर और BJP के सीनियर लीडर किरण रिजिजू ने इल्ज़ाम लगाया है कि अपोजिशन की सभी पार्टियां सरकारी एजेंसियों, चुनाव कमीशन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मीडिया को लगातार तनकीद का निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और वो अब अदलिया को भी निशाना बना रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब रिजिजू ने कहा कि इन पार्टियों ने ये नहीं सोचा कि वो मुल्क की जमहूरियत के अहम इदारों को तनकीद का निशाना बना रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क के अवाम इन्हें करारा जवाब देंगे और ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो उम्र भर याद रखेंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात में भारतीय तलबा आज दुबई और शारजा के इम्तिहानात के मराकज में NEET UG 2026 कौमी अहलियती और दाखिले के इम्तिहानात दे रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जरिए पेन और पेपर का ये इम्तिहान मुत्तहिदा अरब इमारात के वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक चलेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया भर में बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले एक्सचेंज के तौर पर उभरा है। ऐसा दरामदशुदा तवानाई हर मुल्क के जबरदस्त इन्हिसार के सबब हुआ है। आसमान को छूती लागत और दरामदात में दरपेश मुश्किलात की वजह से मुल्क की नाजुक बैरूनी हालत नाकाबिले बर्दाश्त दबाव पड़ रहा है। मगरबी एशिया बहरान के दौरान अगर तेल की आलमी कीमतों में इजाफा जारी रहता है तो पाकिस्तान की मुश्किलात से 2-4 मईशत दोहरे हिंदसे के इफरात जर की गिरफ्त में रहेगी। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इन बयान की मजम्मत की है जिसमें ईरानी जहाजों के जरिए مغربی جہازوں کو

जब्त किए जाने को बहरी कज़ाकी करार दिया गया है। बकाई ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैनुल अक्वामी समुद्री आमदोरफ्त के खिलाफ उनकी कार्रवाइयों की मुजरिमाना नौईयत का एक बराह रास्त और काबिल मजम्मत एतराफ है। इस्माइल ने बैनुल अक्वामी बिरादरी, अक्वामी मुत्तहिदा के मेंबर मुल्कों और अक्वामी मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से अपील की है कि वो इस तरह के बैनुल अक्वामी कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियों को मामूल का बताने को सख्ती से मुस्तरद करें। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल के चुनाव में वोटों की गिनती के सुपरवाइजर्स के तौर पर सिर्फ मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन को तकरीर करने के चुनाव कमीशन के फैसले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉय मालिया बागची पर मुश्तमिल एक बेंच ने हिदायत दी है कि कमीशन के रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल दरामद किया जाना चाहिए। इस फैसले को तृणमूल कांग्रेस के लिए एक धचके के तौर पर देखा जा रहा है, जिसने इस कदम को चैलेंज किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मैचेस खेले जाएंगे। सपहर 3:30 बजे हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा, जबकि दूसरे मैच में शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मेजबान गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। कल रात चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। 4 रियासती असम्बलियों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके के लिए कल होने वाली वोटों की गिनती के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव कमीशन ने मगरबी बंगाल में फाल्टा असम्बली हलके के सभी 285 पोलिंग स्टेशनों में दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया है। पोलिंग इस माह की 21 तारीख को होगी। दिल्ली के विवेक विहार में भयानक आग लगने के वाकये में 9 अफराद हलाक हो गए। मगरबी एशिया में जारी लड़ाई के दौरान ओपेक प्लस ममालिक जून में तेल की पैदावार से मुतालिक अपने अहदाफ में इजाफा करने पर उसूली तौर पर रजामंद हो गए हैं। आज दुनिया भर में प्रेस का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज से पहर सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: According to the Met Department, this spell of rain may continue in the coming days, which would lead to a further drop in temperature. Sakshi Singh, Akashwani News, Dehradun.
1: Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall today at isolated places over Northeast India, Kerala, Mahe, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Tamil Nadu and Puducherry. Places over Jammu and Kashmir, Ladakh, Chhattisgarh and coastal Andhra Pradesh are expected to experience thunderstorms and lightning today. Similar weather conditions also likely to prevail today over parts of Haryana, Chandigarh, Delhi, Bihar, Odisha, Kerala, Punjab and Madhya Pradesh. The weather agency further predicted heat wave conditions today in places over coastal Andhra Pradesh. According to IMD, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal are expected to witness hot and humid weather conditions till tomorrow. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad will take on Kolkata Knight Riders at the Rajiv Gandhi International Stadium in Hyderabad at 3:30 today. Sunrisers Hyderabad are currently in third place, while Kolkata Knight Riders are positioned in eighth place. In another match, host Gujarat Titans will face Punjab Kings at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. The match will start at 7:30 p.m. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Stage is set for counting of votes for four states' assemblies and one union territory tomorrow. All arrangement in place. Election Commission orders re-polling in all 285 polling stations of Falta Assembly constituency in West Bengal. Polling to take place on the 21st of this month. A massive fire claims 9 lives in Vivek Bihar area of Delhi. OPEC plus countries agree in principle to raise oil output targets next month amid ongoing West Asia conflict. World Press Freedom Day been observed today. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to take on Kolkata Knight Riders today. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना कल, सभी इंतजाम पूरे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा सीट के सभी 285 केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान के आदेश दिए। राजधानी दिल्ली के विवेक विहार क्षेत्र में भीषण आग में 9 लोगों की मृत्यु। पश्चिम एशिया में वर्तमान संकट के बीच ओपेक प्लस देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी।
3: 294 सीटों में से पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती कल होगी। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के 3 स्तरीय इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जिला पुलिस, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। मतगणना स्थलों पर केंद्रीय बलों की कुल 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। ये पूरी प्रक्रिया रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के नियंत्रण में होगी। ये पहली बार है जब मतगणना प्रक्रिया के लिए वरिष्ठ IPS अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मतगणना प्रक्रिया का प्रबंधन एक टीम करेगी। इसमें सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो पर्यवेक्षक शामिल होंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
2: केरलम विधानसभा की 140 सीटों के लिए 9 अप्रैल को लगभग 79% मतदान हुआ था।
4: वरिष्ठ अधिकारियों ने केरलम के सभी 140 मतगणना केंद्रों पर तैयारियों के अंतिम दौर की समीक्षा की है। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिससे ये प्रक्रिया सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। अधिकारियों को कल सुबह 6 बजे तक मतगणना केंद्रों पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है। मतगणना एजेंटों को भी मतगणना शुरू होने से 1 घंटा पहले रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग अधिकारियों सहित सभी कर्मचारियों के लिए जारी किए गए QR कोड वाले पहचान पत्र को साथ रखना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही मतगणना केंद्रों में प्रवेश

0: के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भी लागू की गई है। स्मिथ एम पल्लू रूथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना के लिए सुरक्षा और निगरानी के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुदुचेरी के मुख्य चुनाव अधिकारी पी जवाहर ने आकाशवाणी को बताया कि पुदुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों की मतगणना कारिक्काल, यानम और माहे में होगी।
0: पुदुचेरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना लासपेट इलाके में स्थित 3 केंद्रों पर होगी। ये मतगणना केंद्र पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इन जिलों में निर्वाचन अधिकारियों की देखरेख में पुलिस विभाग और अर्धसैनिक बलों द्वारा 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
2: सुपरविजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं।
3: सभी पार्टियों ने मतगणना प्रक्रिया की तैयारी के लिए अपने अपने प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाई है। डीएमके और टीवीके ने मतगणना के दिन गड़बड़ी की आशंका जताते हुए राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। राज्य के 234 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ था। सभी मतगणना केंद्रों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को पूरी सुरक्षा और व्यवस्था के साथ स्ट्रांग रूम से केंद्रों में भेज दिया गया है। राज्य भर के प्रमुख स्थानों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मतगणना केंद्रों के पास यातायात को भी डायवर्ट किया गया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 35 जिलों के 40 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना होगी। राज्य में 9 अप्रैल को लगभग 86% मतदान हुआ था।
4: जनादेश 2026।
5: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
4: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
5: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
4: जनादेश 2026।
1: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं की सूचना दी है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की घटनाएं भी सामने आई हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। आग लगने की घटना की जानकारी मिलने के बाद 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया।
6: इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा। टोटल 9 इसमें चार्ड बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग लगने की दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधु ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल सरकारी एजेंसियों, निर्वाचन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मीडिया पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब न्यायपालिका को भी निशाना बना रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि इन दलों को ये एहसास नहीं है कि वे देश के लोकतंत्र की नींव पर हमला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राज्य में कदाचार, शासन व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और प्रशासनिक व्यवस्था के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है।

0: ज्ञापन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में आयोजित एक दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र में नशे की हालत में भाग लिया, जो चिंता का विषय है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कल मोहाली में लोक मिलनी के दौरान कहा कि विपक्षी दल उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, क्योंकि विपक्षी दल जनता के कल्याण के लिए राज्य सरकार के कार्यों से ईर्ष्या करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री से विकसित बिहार के लक्ष्य को साकार करने पर चर्चा हुई। श्री चौधरी ने बताया कि रेल मंत्री से मुलाकात में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, बेहतर रेल संपर्क और बिहार के समग्र विकास में तेजी लाने पर विचार विमर्श हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ओपेक प्लस समूह के 7 देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, कजाकिस्तान, रूस और ओमान अगले महीने प्रतिदिन लगभग 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाएंगे। भू राजनीतिक संकट और संयुक्त अरब अमीरात के ओपेक प्लस से अलग होने के बाद ये लगातार तीसरा महीना होगा जब ओपेक प्लस तेल का अधिक उत्पादन करेगा। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी।
1: इस वर्ष प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पुष्टि करने और पत्रकारिता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित प्रौद्योगिकी तथा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भविष्य के लिए सूचना व्यवस्था मजबूत करने के व्यवहारिक तरीकों के लिए एकजुट करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। यह दिन प्रेस की स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए महत्वपूर्ण है। यह सरकारों को प्रेस की स्वतंत्रता की प्रतिबद्धता का सम्मान करने की याद दिलाता है और मीडिया पेशेवरों के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और पेशेवर नैतिकता के मुद्दों पर चिंतन करने का भी दिन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस पर आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किया गया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने कहा कि इस दिन सौर ऊर्जा का उपयोग करके अधिकतम बिजली प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है।
2: सूर्य किरण हम लोगों के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसका इतने सालों तक हम लोग व्यवहार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज उसका व्यवहार करके देश में 150,000 मेगावाट का इंस्टॉलेशन हो चुका है और भी आगे बढ़ना है हम लोगों।
0: श्री सारंगी ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत देश भर में 38,00,000 घरों को शामिल किया जा चुका है। और बात मौसम की, उत्तराखंड में कई इलाकों में रुक रुक कर वर्षा जारी रहने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज सुबह से ही हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। पिछले 3 दिनों में विभिन्न स्थानों पर हुई बारिश के कारण प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग केंद्र देहरादून के अनुसार आज और कल भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश जारी रहने की संभावना है। विभाग ने इस दौरान गर्जन के साथ बारिश और तेज आंधी तूफान की चेतावनी दी है। देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और ऊधम सिंह नगर जिलों में ओलावृष्टि और तेज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: आज पूर्वोत्तर भारत, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में बादल गरजने और बिजली गिरने की आशंका है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। कल चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हराया था। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू हुई और शाम 5 बजे तक चलेगी। संयुक्त अरब अमीरात में भी भारतीय मूल के विद्यार्थी नीट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। दुबई और शारजाह में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की निगरानी दुबई में भारत का महावाणिज्य दूतावास कर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा में शामिल हो रहे विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने

0: कि चिकित्सा का क्षेत्र करुणा, सेवा और जीवन भर सीखने की प्रतिबद्धता का क्षेत्र है। ईरान ने संघर्ष विराम के लिए अमेरिका को 14 सूत्री प्रस्ताव सौंपा है। इसमें लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करने की रूपरेखा पेश की गई है। प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया है कि कूटनीतिक प्रयासों में युद्ध विराम को केवल बढ़ाने के बजाय युद्ध की समाप्ति को प्राथमिकता दी जाए। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल इस प्रस्ताव पर असंतोष व्यक्त किया, लेकिन कहा कि वे इसकी समीक्षा करेंगे। भारत और कंबोडिया के बीच दूसरे सैन्य अभ्यास सिनबैक्स के लिए भारतीय सेना की एक टुकड़ी कंबोडिया रवाना हो गई है। सेना के अपर लोक सूचना महानिदेशक ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह अभ्यास 4 से 17 मई तक होगा, जिसका उद्देश्य दोनों देशों की सेना के बीच अर्धशहरी परिवेश में किसी भी अभियान के लिए तालमेल को और बेहतर बनाना है। पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला कल से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। कार्यशाला में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्ष 2026-27 के लिए पंचायत विकास योजनाएं 16वें वित्त आयोग की शर्तों के अनुरूप हों और ग्रामीण समुदायों के लिए स्पष्ट दिख सकने योग्य परिणाम प्रदान करें। पंचायती राज मंत्रालय ने यह भी बताया कि कार्यशाला में राज्यों के प्रतिनिधि और पंचायत से जुड़े प्रमुख पक्ष शामिल होंगे। और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना कल, सभी इंतजाम पूरे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा सीट के सभी 285 केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान के आदेश दिए। राजधानी दिल्ली के विवेक विहार क्षेत्र में भीषण आग में 9 लोगों की मृत्यु। पश्चिम एशिया में वर्तमान संकट के बीच ओपेक प्लस देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। दोपहर के 2:30 और 15 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

हमारा आज का कार्यक्रम एक ही कलाकार सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त तृप्ति जौहरी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज का कार्यक्रम केंद्रित है नरगिस दत्त पर, क्योंकि आज है 3 मई यानी उनकी पुण्यतिथि का दिन। आज वो भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम उन्हें उनकी फिल्मों में बेहतरीन अभिनय के लिए याद करते हैं। साथ ही हम याद करते हैं उनको उनके पहले पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली अभिनेत्री के रूप में।

भाई ऐसे मतवाले जिया वाली और जिनके दीवाने थे सभी, ऐसी नरगिस दत्त पर केंद्रित है हमारा आज का कलाकार कार्यक्रम। एक ही कलाकार में आज आप सुन रहे हैं नरगिस दत्त पर, जिसे आप सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इंद्रप्रस्थ चैनल पर। तो आप सभी श्रोता जानते हैं कि मदर इंडिया इंडस्ट्री की कल्ट क्लासिक फिल्म है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस फिल्म ने आज भी लोगों के दिलों में एक अलग जगह बनाई हुई है। मात्र 28 साल की उम्र में अपने हम उम्र एक्टर की माँ का किरदार निभाया और उन्हें इस फिल्म में सुनील दत्त से प्यार भी हुआ, जिनसे उनकी शादी भी हुई। इस फिल्म में नरगिस दत्त ने लीड रोल प्ले किया था और उन्होंने इसके जरिए अपने फैंस के दिलों में खास जगह बना ली। केवल एक्टिंग ही नहीं, बल्कि उनके चुलबुले अंदाज, खूबसूरती और सादगी के भी लोग कायल थे। लेकिन उनके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा कि हमारी आज की कलाकार कभी एक्टिंग में नहीं आना चाहती थी, बल्कि वो तो एक डॉक्टर बनना चाहती थी। जी हाँ, बेमन से आई थी एक्टिंग की फील्ड में। तो आगे और भी दिलचस्प बातें करेंगे, तब तक सुन लेते हैं उन्हीं की फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

तो भाई याद आ गई होगी फिल्म आवारा की ये कहानी, और इसमें घूमती मचलती हमारी नरगिस दत्त किस तरह पर्दे पर नजर आई थी, हमारी आज की कलाकार। तो बातें कर रहे थे हम नरगिस दत्त के जीवन के बारे में, तो आइए आगे की बात को आगे बढ़ाते हैं। नरगिस दत्त का असली नाम रशीद फातिमा था। उनका जन्म 1 जून 1929 को कोलकाता में हुआ था। उनकी माँ जद्दनबाई उस समय की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका, नृत्यांगना, निर्देशक और अभिनेत्री थी। जद्दनबाई भारतीय सिनेमा की पहली महिला संगीतकार भी थी। वो चाहती थी कि उनकी बेटी अभिनय की दुनिया में आए। साल 1935 में जब नरगिस महज 6 साल की थी, तब जद्दनबाई ने उन्हें बाल कलाकार के तौर पर फिल्म तलाश ए हक से एक्टिंग की शुरुआत करवाई। इस तरह नरगिस की अभिनय यात्रा शुरू हो गई, मगर मन कहीं और था।

भाई प्यार करने वाले कभी किसी से डरते नहीं हैं और डरते नहीं हैं, इसीलिए वो खुल के प्यार करते हैं। इसी तरह हमारी आज की अदाकारा, हमारी आज की कलाकार नरगिस भी नहीं डरी और उन्होंने जिनसे प्यार किया उनसे शादी भी करी और पर्दे पर भी अपने प्यार को बखूबी निभाया और ऐसा निभाया कि देखने वालों ने उनके प्यार को सराहा और इतना सराहा कि उनके दिलों में उनके अभिनय की छाप गहरी रही। लेकिन नरगिस दत्त के एक्ट्रेस बनने का किस्सा भी काफ़ी दिलचस्प है। एक दिन जदन भाई ने नरगिस को महबूब खान के पास स्क्रीन टेस्ट के लिए भेज दिया। नरगिस का बिल्कुल मन नहीं था तो बेमन से टेस्ट दे आई। उनका इरादा था कि महबूब खान उन्हें रिजेक्ट कर देंगे और वो डॉक्टर बनने का सपना अपना पूरा कर लेंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जी हाँ, महबूब खान उनकी एक्टिंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म तकदीर के लिए नरगिस को नायिका के रूप में चुन लिया। इसके बाद साल 1945 में महबूब खान की फिल्म हुमायूं आई, लेकिन असली सफलता मिली साल 1949 में राज कपूर की फिल्म बरसात और दिलीप कुमार के साथ अंदाज में, जिसने नरगिस को स्टार बना दिया। राज कपूर के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों को बहुत पसंद आई।

साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, सिर्फ और सिर्फ इंद्रप्रस्थ चैनल से, जो है आपका मनपसंद चैनल और मनपसंद प्रोग्राम, अपनी दोस्त तृप्ति जौहरी के साथ। तो भाई, आपकी कैसी प्रतिक्रिया है आज के कार्यक्रम को सुनकर और आज की हमारी कलाकार को सुनकर, जो है नरगिस दत्त पर केंद्रित। नरगिस दत्त हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री थी, जिन्हें पद्मश्री 1958 में मिला। मदर इंडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला 1958 में, और रात दिन फिल्म के लिए 1967 के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए भी मिला था। वे पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली अभिनेत्री भी थीं, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। तो भाई, अपनी ईमेल आईडी पर के जरिए हमें भेजिए जल्दी से जल्दी अपने विचार। हमारी ईमेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। हम आपके विचार पहुंचाएंगे अपने सुनने वाले तमाम श्रोताओं तक। तब तक आनंद लेते हैं इस गीत का।

तो श्रोताओं, इसी के साथ आपके संदेश हमें प्राप्त होने लगे हैं। सबसे पहला संदेश जो हमें आया है वो आया है अनिल मोहन जी का, और ये हमें भेजते हैं तृप्ति जौहरी जी, नमस्कार। तो आपको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज हम एक ही कलाकार कार्यक्रम में महान अभिनेत्री नरगिस दत्त की फिल्मों के गीत सुन रहे हैं, और उनके अभिनय को भला कौन भुला सकता है। और उनकी तारीफ लिखी है, उनके फिल्मों के नाम लिखे हैं आपने, और संदेश भेजने वाले हमारे ये अनिल मोहन जी के साथ हैं उषा मोहन टिल्लुनाया कैथल हरियाणा से आप हैं मधु नायक जी, तो आपका धन्यवाद। इसके साथ ही हमें संदेश भेजा है संदीप मक्कर जी का, हमारा भी जिया बेकरार हो जाता है जब आप नहीं आते, नाइस सॉन्ग। अरे क्या बात है, आपके संदेश से हमारा भी जिया बहुत खुश हो गया। संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत, भरत, कमल और पिंगा वाला चौक गुराया जलंधर पंजाब से। तो हमारे अगले साथी हैं तृप्ति जौहरी जी, नमस्कार। आपके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है, इसका आपका तहे दिल से शुक्रिया। शानदार प्रस्तुतिकरण के लिए आप हमारी बधाई स्वीकार करें। पीटीआई संसद मार्ग से ये हैं हमारे साथी अनिल मोहन जी, तो आपका हम हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आप जुड़े हुए हैं, लगातार हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं और समय समय पर संदेश भेजते रहते हैं। अगला संदेश हमें भेजा है सुदर्शन मुखी जी ने, ये हैं सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से। आदरणीय तृप्ति जौहरी जी, अरे बाप रे, इतना आदर और सम्मान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मगर आप स्नेह से तृप्ति भी लिखते तो मुझे वो भी प्यारा लगता। कार्यक्रम सुन रहे हैं एक ही कलाकार की, इन्होंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, जिसमें आज आप बात कर रही हैं अभिनेत्री नरगिस दत्त की। अच्छा लगा आप लोग कार्यक्रम ध्यान से सुन रहे हैं और कलाकार का नाम और साथ में आज हमारा भी नाम लिख के भेज रहे हैं। उच्च कोटि की प्रस्तुति, रोचक जानकारियां और सदाबहार गीत, बहुत कर्ण प्रिय लग रहा है। दिल से बड़ी बधाई, प्रभु आपके को सदा स्वस्थ और खुश रखे। भाई इसके लिए आपका भी कोटि कोटि धन्यवाद। और अगला जो हमारे पास संदेश आया है वो है सुरेश नारंग जी का, यह है सहारनपुर चंद्रनगर से। सुरेश नारंग, आशु नारंग, सोनाली, जब कोई बात बिगड़ जाए। भाई ये फिल्म का तो प्रोग्राम नहीं है, ये है फिल्म एक ही कलाकार, जिसमें हम एक ही कलाकार पर केंद्रित कार्यक्रम में गीत सुनवाते हैं, जो है आज नरगिस दत्त पर केंद्रित। और अगला कार्यक्रम, अगला जो संदेश आया है कार्यक्रम में वो है एक ही कलाकार कार्यक्रम में हीरा मणि वर्मा का, एक ही कलाकार कार्यक्रम में आज प्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस दत्त जी पर केंद्रित कार्यक्रम, रोचक जानकारी व बेहतरीन गीतों के साथ सुनने को मिला, दिलकश प्रस्तुति के लिए बधाई। ये है हमारे प्रेषक हीरा मणि वर्मा दत्रेंगी भाटापारा से। तो भाई आपका भी धन्यवाद। तो चलते चलते हम आखिरी संदेश लेना चाहेंगे, ये हैं हमारे साथी मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़। शुभ दोपहर, नरगिस दत्त पर केंद्रित आज का कार्यक्रम अच्छा लग रहा है इन्हें, शानदार उत्तम प्रस्तुतिकरण आपका, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही ये हैं नवी हसन जी, ये मारहरा दरवाजा एटा से, नवी हसन और शहनाज अब्बासी। और आखिर में एक और संदेश मैं ले लेती हूँ, आज संदेशों का मुझे लग रहा है कि ले लेने चाहिए ज़्यादा संदेश। कोई भी गीत सुना दे तो भाई कोई भी गीत ही सुनवा रहे हैं कि कलाकार पर केंद्रित कार्यक्रम है। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी,

अगला संदेश एक और ले लिया जाता है, ये है अजीत भवसार जी। ये तो इन्होंने सिर्फ अपना नाम ही लिखा है। तो भाई आप सभी के संदेशों के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, और इसी के साथ चलते चलते आप सभी से अनुमति चाहती हूँ। आपकी दोस्त तृप्ति जौहरी फिर किसी कार्यक्रम में आपसे मिलेगी, तब तक के लिए आप सबसे

हंसते हंसते अभी आपने सुना आज का कार्यक्रम एक ही कलाकार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब समय हुआ है कार्यक्रम ब्रज माधुरी का।

0: नृत्य गोपाल जी
1: जी चंपा जी,
0: देखो हमारे प्यारे सब भैया बहनान को और आपको आज झोरी भर भर के बधाई।
1: चंपा जी आपको बहुत बहुत बधाई, पर तनिक बता तो दो कि बधाई दे काई की रहे हो।
0: अरे नृत्य गोपाल जी बधाई तो पहले दे दे।
1: आप दे दो, हमने झोरी भर ली, अब तो बताए दो।
0: नृत्य गोपाल जी देखो बात ऐसी है के मई को महीना चल रहे हो।
1: हाँ जी।
0: और आज है मई के महीना को पहलो रविवार।
1: हाँ बिल्कुल ठीक बात है।
0: हैं और यह मई के महीना के पहले रविवार को ना प्रत्येक वर्ष विश्व हास्य दिवस के रूप में पूरी दुनिया में आज मनाया जा रहे हो।
1: ओहो,
0: तो हम आपके काजे या की बधाई दे रहे हैं।
1: जी हाँ चंपा जी, तब तो बधाई बिल्कुल बने है और हमारे सब श्रोतान को झोरी भर भर के बधाई। खूब हंसते रहे, जितनो हंसो जाए उतनो हंसे, क्योंकि हास्य तो जीवन को अद्भुत आनंद है।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी, बिना हंसवे के कहा है, हमारे ब्रज में कहावत है, हंस बोल वक्त कट जाएगो, जाने को कित को जाएगो।
1: हाँ हाँ चंपा, और यूं कहें कि जो हंसेंगे वे बसेंगे।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी आप सही कह रहे हो। देखो जो हास्य को भाव है ना, ई चाहे हमारो सामाजिक जीवन हो, चाहे हमारो पारिवारिक जीवन हो, हैं चाहे हम कहीं अकेले भी बैठे हो, या हास्य भाव की जो प्रधानता है ना वो सब जगह है।
1: चंपा जी देखो, ब्रज जीवन की तो ये विशेषता ही कही गई है। आपको याद हो तो जो नागरी दास है ना,
0: हाँ
1: जो महाराज सावंत सिंह,
0: हाँ हाँ किशनगढ़ वारे
1: उन्होंने बड़ी बढ़िया सी बात कही, ब्रज के परम स्नेही लोग, गारी दे हंस मिले गहवरे, अंतर हृदय संजोग।
0: नृत्य गोपाल जी सबसे बड़ी गारी है ना ब्रज में, रिश्ते इनकी है।

0: जैसे काऊ को भ्यास आदि हो तो कि भात ही आए हैं, पर
1: हाँ
0: ब्रज के घर में तो एक आदमी दिन में 50 बार भात ही बने। काऊ बहन को भैया आयो तो कह देंगे कि भैया सारो आयो है,
1: हाँ?
0: पर हमें तू बड़ो सारो लग रो है,
1: हाँ?
0: तो ये जो भात ही है और सारो है, हम सबके जो जीवन में ये दोनों रिश्ते इनके नाम है, पर ब्रज में तो हास्य भाव में इनकी बड़ी प्रधानता है।
1: कि चलती ब्रज नारू काउते अगर कछु कहनी हो कोई ने हंसी मजाक कर दे तो बातें कहा कहेंगे हाँ भैया के सारे वाल बताऊं तो है।
0: और यही के काजे तो हमारी ब्रज धरा जानी जावे है।
1: अरे चंपा जी हंसी कहें ठट्टा कहें मजाक कहें याते है
0: हाँ मस्खरियू तो कह में।
1: हाँ बड़ो मस्खरो है।
0: नृत्य गोपाल जी एक बात मन में आ रही है, पूछें।
1: अरे अरे तनिक बताओ तो कहा कह रहे हो।
0: जैसे ही हास्य दिवस आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है तो क्या कहीं आ की प्रेरणा हमारी ब्रजते ही तो ना ले लई।
1: हम तो यही माने कि ब्रजते क्योंकि हमारो कन्हैया हंसते रहे हो
0: हाँ
1: और हमारे यहाँ ग्वाल वाल सब हंसते रहे और देखो तो सही काका हाथ रसी जैसे हास्य सम्राट ब्रज में ही तो भाई।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी कौन सो पर्व उत्सव त्योहार ब्रज को ऐसा होएगो कि उनने हंसी की हास्य की फुलझड़ी वाना चलाई होए।
1: बृंद कवि ने कही है बोले फीकी पे नीकी लगे कहिए समय विचार सबको मन हर्षित करे जो विवाह में गारे।
0: गार सही बात कह रहे हो नृत्य गोपाल जी। तो ऐसे ही एक प्रेम भरे हास्य गीत की ओर अपने प्यारे भैया बहनान को ले चले।
1: जी हाँ चंपा तो आप श्रोताओं सुने ये प्यारा सो मनोहारी लोकगीत जाकू सुन के आपको हंसी अवश्य आ जाएगी।

0: प्यारे भैया बहनाओं और भाई आप शालिनी शर्मा के मधुर स्वर में प्रेम भरे और हास फरियास से परिपूर्ण लोकगीत को सुन रहे हते। प्यारे भैया बहनाओं आप तो यह बात को जानो हो कि जो ब्रज धरा है ना वो जानी ही अपने या निश्चल प्रेम के काजे जावे है और प्रेम भी ऐसा हो ना जो हास फरियास के बिना तो वहां पूर्णता ही ना है।
1: चंपा देखो ऐसो कहो जाए ब्रज में बोले हंसा हंसा के पेट फाड़ दिए।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी और हंसा हंसा के पेट में दर्द कर दियो।
1: हाँ और चंपा जी आप तनिक देखो हम अपने श्रोतान के संग जैसे कोई एक झलकी है आपको याद हो तो।
0: झलकी तो नृत्य गोपाल जी बहुत सारी हैं। जब आज पूरे विश्व में ही हास्य दिवस मनायो जा रहे हो है, तो अपने श्रोता भैया बहनान को हास्य झलकी सुनवाएंगे। तो प्यारे भैया बहनाओं जब आज विश्व हास्य दिवस मनायो जा रहे हो है ना तो फिर देर क्यों करें आप और हम मिलके सुने ये हास्य झलकी उद्घाटन।

0: हेलो हेलो हेलो माइक टेस्टिंग टेस्टिंग हाँ हेलो हेलो हेलो हाँ सुनिए सुनिए सुनिए मंच पे समाज सेविका सरला जी विराज चुकी हैं। अब मैं सरला जी से प्रार्थना करूंगा कि अपना वक्तव्य दें और माइक पे पधारे पधारे आइए जी आइए आइए आइए।
1: भाइयों और बहनों, जमानो बदल चुको है, अब आपको आगे बढ़ना चाहिए। अरे अरे भैया, तुम मंच माऊ चौबड़े चले आए रहे हो भैया, हैं?
2: कमाल है। अब भाई आपने ही तो कही कि जमानो बदल गए हो, आपको आगे बढ़ना चाहिए, तो आगे बढ़ो, चलवा रहा हूँ मंच माऊ।
1: अच्छा ठीक है, बैठ जाओ, चलो अपनी जगह। हाँ तो मैं आपसे ये कहना चाहूं कि भाइयों, हमें अपने पामन पे ठाड़े हैवे की कोशिश बराबर करनी चाहिए।
2: अजी साहब, बुई तो हम कर रहे हैं, पर कहा करें, जी पुलिस को सिपाही है ना, पुलिस को सिपाही, हमें बीर बीर में बैठा दे।
1: अच्छा बाबा, बैठ जाओ अपनी जगह पे। हाँ तो सबसे पहले हमें देश की गरीबी को हटाना होगा।
2: रुकिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ।

0: रहा हूं।
1: ओ मेरे देश के करंधार, पूछो का पूछना चाहो?
2: समाज सेविका जी।
1: हाँ हाँ कहो देश के रतन जी, का कहना चाहो?
2: समाज सेविका जी, एक बड़े नेता की पत्नी हैवे के नाते आप अपने फालतू समय में कहाँ काम कर रहे हैं?
1: फालतू समय में और काम की पूछ रहे हो? अरे मेरे पति नेता देश की गरीबी को देख देख के आंसू प्रोड्यूस कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं?
2: आंसू।
1: आंसू। और मैं बिन के आंसू को सुखाए सुखाए के और नॉन बनाए के विदेशन में थोक में बेच के विदेशी पूंजी आयात करूं हूं।
2: ये तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रही हो। जा नेक काम के अलावा आप कछु और करो का?
1: चौना है। देखो जी, मैं निरक्षरता दूर करवे के ताई राष्ट्रभाषा अपनाएवे को हाई स्केल पे प्रचार कर रही हूँ।
2: हाई स्केल पे?
1: हाँ।
2: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि अपने पास पड़ोस के निरक्षरन को अंग्रेजी की प्राइमर पढ़ाएवे की कोशिश कर रही हूँ।
2: अच्छो समाज सेविका जी।
1: हाँ।
2: ये बात है।
1: हाँ।
2: आप राष्ट्रभाषा को खूब प्रचार कर रही हैं। आपने कोई दूसरों नेक काम करो का?
1: नेक काम की मत पूछो, नेक काम करवे कोई तो हम जन्म ले हैं भैया। मैं रोज विदेशी चीजन की होरी जराय के और स्वदेशी वस्त्र पहरवे के काजे लोगन को प्रोत्साहित करूं हूं।
2: प्रोत्साहित करें?
1: हाँ।
2: तो कोई उदाहरण पेश करेंगी आपको?
1: उदाहरण पूछ रहे हो भैया? नेक देखो तो मेरे हिप्पी कट बार और ये इम्पोर्टेड ड्रेस ना दिख रहे हो का? अब वो पूछ रहे हो उदाहरण? अब को आ गए हो? अरे हवाल खोल हूं। अरे तू है? आ भीतर आ जा भम्मा, आ जा आ जा।
3: अरे जीजी का जीजा ते बतराए रही है?
1: अरे ना री, आ पहले कुर्सी पे बैठ के सुस्ताए ले। मैं अभी एक सभा में ते भाषण दे के लौटी हूँ।
3: हाय हाय।
1: आ ठंडा पानी लाऊंगा?
3: हाँ हाँ, ना मानो तो ले आ, बस तो मैं पी के ही आ रही हूँ।
1: ले गड़ुआ तो पकड़।
3: ये बहुत ठंडो है, करसिया को दी से सल्ला?
1: ना री, कोरे चपटा को है।
3: तो वही पर वो तेरे चीखने घड़ा जीजाजी को तो तेने कांदूप का है रखो है सल्ला।
1: बहना कहा बताओ, वे परसों की गए हैं, अब बताऊ लौटी ना, निगोड़ी मीटिंग में गए हैं।
3: अरे कब तलक भगतेंगे?
1: मैं नेता है ना नेता। देख कब गए हैं ये तो नेतान की सल रहे।
3: अरे राम राम।
1: और कब बग देंगे? जा बात है निगोड़ा, नेता जाने या नेता की पार्टी जाने।
3: अरे तो जी जी। हाँ। तो जीजा बाहर ले, ऐसे नेता की कासा कोई नेतिन मिल गई तो भौरा की तरिया वहाँ पे फूल समझ के वही पे मडरायो करेंगे।
1: अरे बम्मो तू तो गजब करे, हट परे को।
3: अरे
1: ऐसे लुगाई बदलू नेता ना है मेरे वो।
3: रहन दे जी जी, इन मर्दन की तो का कहूं, कहूं कहेंगे जा रहे हैं और कहूं पहुंच जाएंगे।
1: हट परे कू, आग लगाई रही है।
3: अरे मैंने तो यहाँ तक सुनी है
1: कहा?
3: कि जीजा ने काई नेतिन ते कोरट मैलेज कर लेनी है।
1: अरे ना है।
3: और वो वा नेतिन के संग डोलो डोलो करे।
1: देख रही भम्मो, सारी जीजान की ताई ऐसे ही ऐब लगायो करे, मैं सब समझू।
3: देख देख चोरी सल्ला, कल जीजा पातरिया की छोरी के ब्याह में कैची हाथ में लेके चौं गए।
1: कैची हाथ में लेके
3: चौं है ना, नेता लोग अपने हाथ में हरदम कैची रखे का।
1: जी बात है। अरे बाबरी, तो उस समारोह को उद्घाटन करवे के ताई वो वा कैची ते फीताए काटे, समझी के ना है?
3: अच्छा तो ऐसे ही होएगो। तब ही जीजा ने ब्याह में वो कैची चलाए देनी।
1: ब्याह में कैची का मतबल है? लेकिन समझाई के बता, खोल के बता।
3: अरे जा मैं खोल के का समझाऊ और बांध के का समझाऊ?
1: हाँ।
3: सूदी सी बात है।
1: हाँ।
3: जीजा को ब्याह में पातरिया पकड़ के ले गयो।
1: हाँ, ले गयो।
3: और जीजा भगत के आए राजधानी ते।
1: हाँ।
3: सब इन्हें बैठे बैठे औंग आए गई।
1: अच्छा सोए गए। आगे बता फिर का भयो?
3: आगे का कहूँ, जब भावर पड़ गई तो पातरिया ने

0: जा मारे जगायो कि गठबंधन में बंधे पति पत्नी को आशीर्वाद दे दो।
1: और फिर कहा भैया?
0: फिर कहा जीजा नींद ते तो जगाई,
1: हाँ
0: फिर ने पति पत्नी के गठबंधन की गांठ कैंची ते काट दियो। और बोले मैं ब्याह का उद्घाटन कर रहा हूँ।
1: तो जे भाई सामते में उस बिल्ली को छी जोड़ाई दी से। अरे ना
0: अरे सल्ला,
1: हाँ आई बोल बोल आई रुक काई को गई बोल।
0: तो सल्ला वो जीजा पे हंसी आ रही है।
1: क्यों
0: कहा जीजा जब ते नेता बने मैंने कब तक करना काई को छोड़ दी नो
1: बताओ।
0: हाँ
1: साची साची बताए ना।
0: और क्या
1: देख कभी पे नेता जो छाए गया है जी छाए गया। पहले बैयर वानिन की तरिया लंबे लंबे बार धर के मंच पे गौरव फाड़ो करते।
0: और क्या चो में है ना सल्ला, जैसे भैंस रेकत वैसे ही।
1: हाँ वैसे ही बे।
0: अरे
1: बे।
0: अरे तू रेक में लगी। भैंस की तरिया।
1: अरे का तेरे जीजा जा कवि सम्मेलन में गए भाई पैदे बजाए दीने गए, फिर वो पब्लिक ने मैंने सम्मानित कर डाला है तो पता।
0: अच्छा?
1: है और तो इस साले के ना है मैंने उपाधि दी गई है।
0: अरे कौन सी उपाधि दे दी गई
1: मैं बताऊं? मानसिक रोग कविता शिरोमणि की उपाधि दी है तेरे जीजा को।
0: मानसिक रोग कविता शिरोमणि की
1: है?
0: कोई पागल होएगा जाने बिन कुछ उपाधि दे देनी।
1: तेने ठीक अंदाज लगाया। बिल्कुल ठीक अंदाज लगाया। देख मैंने पागल खाने तीजी उपाधि बड़ी शान वान ते प्रदान की नहीं गई है।
0: सो कैसे भाई ना ठीक तरिया सुना है पार्टी बंद तरीका थे।
1: पार्टी बंद तरीका थे बताए दो बताए दो। देख एक कवि सम्मेलन ते भाज के जबे जाए रहे तो एक मानसिक रोग अस्पताल में मानसिक रोगीन कुत्ता ही मनोरंजन के ताई एक कार्यक्रम है रो।
0: अच्छा फिर
1: तेरे जीजा मौको पाए और मंच पे जाके ठाड़े है गए
0: अपने आप।
1: हाँ सुनाए भी लगी कवितान पे कविता कवितान पे कविता कविता।
0: अरे राम राम। और वो सिर्फ सुनने लग गए
1: और भेना बादेना तो सीता में गयो।
0: का भयो कैसे भयो भेना?
1: देख इनकी कविता सुन के सिगरे मानसिक रोगी सोए गए। और का करवे लगे और खर्राटे भरवे लगे। और तो और सुनता सही। यहाँ तक वही कि मानसिक अस्पताल के अधिकारी भी सोए गए होंगे लगे। फिर तो है ना जब मानसिक अस्पताल के अधिकारी की आंख खुली ना तो बाने तेरे जीजा की पीठ ठोंकड़ा।
0: अच्छा
1: और बोलो कि तुम्हारी कविता ने कमाल कर दियो।
0: अरे अच्छा
1: सिख मानसिक रोगी को सुवाई दियो।
0: सुवाई दियो?
1: हाँ।
0: और फिर क्या हुआ?
1: तो तेरे जीजा ने जवाब दियो अरे मेरी कविता ने सुन के तो सिख सोए जाए। अच्छा? यही तो मेरी कविता की खासियत है।
0: अच्छा
1: और जाई मारे मैं कभी सम्मेलन तिंडी कार हो जाऊं।
0: अच्छा
1: तब ही अधिकारी बिनते बोलो का तुम बिन को आठ दिन के ताई सुवाई सकोगा।
0: फिर है ना
1: तेरे जीजा ने कही कि मैं तो जिंदगी भर के ताई सुवाई सकूं।
0: तो है ना अधिकारी ने कहा जवाब दियो।
1: अधिकारी बोलो कि हम इन रोगीन को सोबे की गोली खवा में रोज।
0: अच्छा
1: और तो मुझे सोमे ना है।
0: अच्छा
1: पर तुम्हारी कविता में ऐसो कमाल है कि इन्हें सुन के सिग सोए गए।
0: मोए तो डर लग रहा है।
1: ना सुन तो सही कि पागल जो होए का है जिते एक सोमेंगे बिते जल्दी ठीक होंगे।
0: अच्छा?
1: ये अधिकारी ने बताया
0: तो बहना दवाई की जगह कविता की खुराक पी पी के सिग मानसिक ठीक हो गए होंगे।
1: जी तो हुआ इनकी हर कविता सुन सुन के महीना भर तोली सोमते रहे सब ठीक है।
0: तब तो दवाई इन्हीं की कविता सुन सुन के सब रे ठीक होंगे।
1: हाँ और बहना जाई मारी पब्लिक ने इनको सम्मानित करके मानसिक रोग कविता शिरोमणि की उपाधि दिलाई।
0: और तभी ते नेता बन गए होंगे।
1: हाँ तभी ते कविता बजमारी तो गई छूट।
0: अच्छा
1: पर निगोड़ी नेतागिरी ने भामर डार लाइन के संग।
0: अच्छा तो भेना अब मैं तो चलू कहूं जीजा आएगा तो कविता सुन के मैं सोए जाऊंगी।
1: ओए तू जा रही है? हाय तेरे जीजा होती तो कविता सुन लेती सो
0: जाती। मैं तो इतना ही सुन सुन के डर लगो है।
1: अच्छा।

0: अच्छा हवा लाई भैया, अरे हवा लाई, काय को किल्ला रहे हो? अरे तुम अबे आ रहे हो कहा?
1: बस बस सीधो ही चलो ही आ रहा हूँ। तू तो जानी है कि नेतागिरी को काम ही ऐसो है।
0: नेतागिरी को काम ही ऐसो है। बना लो चौजी, एक बार बताओ तुम पातरिया की छोरी के ब्याह में तो कैची चलाई थी, उद्घाटन करने पहुंच गए और घर आए मैं एक देर लगा लेनी।
1: अरे तो घर में कौन सो मुझ कैची चलाए के यहाँ कहू को उद्घाटन थोड़ी करनो है।
0: कैची तो तुम चलाओ ही हो, अपने जीव की कैंची चलाए के हतर रहे हो, उद्घाटन अपनी पकड़ी के झूठ को।
1: ओ, मैं समझो ना है तेरी बात को, मतबल कहा है काकेनो चाह रही है।
0: समझोगे कैसे? ये भाई थाई तो घर में बड़ी रो रही है और मेरी सौतन नेतिन ने लेके और उद्घाटन करते जो।
1: अरी अरी लगे काग ने जरूर तेरे कान भर दई है। मेरा नेतिन ते कहा मतबल है?
0: हाँ
1: नेतिन नेतिन
0: देखो जी, झूठ तो बोलो मत, झूठ तो नेतान को गहनो हुए और मैं कोई जनता तो हूं ना हूं, चाहे झूठ सच्चे बोल के बहला लियोगे, मैं हूँ तुम्हारी पत्नी।
1: मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ
0: को लेके कहाँ डोलो जे तो बताए दे, मेरी सौतन को
1: देख देख देख देख ऐसी झूठी तोहमत मत लगाए बे, समझ ले नहीं तो
0: नहीं तो क्या करे, क्या कर लेगा?
1: क्या कर लेगा? अरे जाने ना है क्या कर लेगो, समझी ना है क्या? ला अभी करूँ तेरा उद्घाटन, ऐसे ना मानेगी तू?
0: मेरा उद्घाटन
1: ना
0: देखा जी,
1: देखा जी,
0: तुम तो पीछे का नहीं हो उद्घाटन, तो मेरी सुन लियो, जा उद्घाटन के जुलम से तुम पे दहेज को मुकदमा चलेगा।
1: दहेज को मुकदमा?
0: हाँ, और जेल के सीख चांद में तुम्हारे उद्घाटन है जाएंगे, समझ गए कि ना?
1: अरे चुप रे, इतने एक बड़े चुप रे, इतने एक बड़े नेता को धमकी दे रही है, समझे ना? लइयो मेरी कैसी अभी करू जाकर उद्घाटन, ऐसे ना मानेगी जी।
0: तुम तो सब लेकर डोलो
1: ना, ना लइयो
0: रोती रहो, ऐसा ना होगा।
1: अरे कैसे ना होगा, लइयो अभी करू उद्घाटन जाकर।
0: जाकी कैची हती वो ले गए और का है?
1: कैची हती से ले गयो उस तरह ला, बातें करू चलो उद्घाटन, तू ऐसे ना मानेगी।
0: देखो ये धरिए तुम्हारी कैंची और ये धरो है उत्तर, और मैं तो चली पियर कूं कैंची ना सही उस तरह मांग के कर ली जाऊं उद्घाटन।
1: अरे जा जा, बहुत देखी है तू जैसी, जा चली जा, पियर जाएगी की धमकी देती रे, चली जा।
0: हाँ हाँ मैं जा रही हूँ, इतने की याद रखियो, काउ पत्रिका में भेजी गई तुम्हारी रचना की तरिया बेग बिगत के ना आऊंगी। हाँ
1: अरे सुन तो सही,
0: अरे
1: ओ सल्ला, ओ सल्ला, अरे अरे सल्ला सुन तो सही, मेरा उद्घाटन है। अरे सुनियो सल्ला,
0: सुनी मैं को बल में
1: उद्घाटन को।

0: प्यारी भैया बहनाओं, अभी आप ये हास्य झलकी उद्घाटन सुन रहे हते।
1: चंपा देखो, सुन के बड़ो आनंद आयो, ऐसे उद्घाटन को तो आप ही चली जाए करो कबो कबो।
0: अरे नृत्य गोपाल जी, हमें उद्घाटन करवे को कौन बुलावे। देखो, ब्रज के लोक जीवन की ना विशेषता यही है, वहाँ की प्रधानता यही भाव में समाहित है कि कोई भी काम कितनो भी बड़ो होए, चाहे वो सामाजिक हो या पारिवारिक हो या कैसो भी कार्यक्रम हो, कहीं ना कहीं वहाँ में ना हास्य रस की प्रधानता है, वो बनी रहनी चाहिए, हास्य को भाव आनो चाहिए।
1: हास्य रस है, हास्य योग है, और यह हास्य को जीवन में इतनो बड़ो प्रभाव हुए है कि जो हंसते रहें वे सदैव बहुत आनंदमय जीवन जी में हैं।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी, और ये भी देखो कितनी बढ़िया बात है कि दूसरो तीसरो चौथो पांचवो कोई भी व्यक्ति होए जो मनुष्य हंसे है ना, और परस्पर हंस हंस के वार्तालाप करे, बोले, बतरावे, बतरस करे ना, बाकी पास आवो, उठवो, बैठवो, बोलवो, बाकी बात को सुनो, बाकी समय देनो, या बात को ना हर कोई फिर पसंद करवे लग जावे है।
1: ब्रिज के ब्याह शादी में तो आप देखोगे जो गांव के बहुत ज्यादा हसोरिया हुए ना,
0: हाँ,
1: उनको अलग से निमंत्रण दे के ले जाएंगे, भैया चलो बारात में।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी, बिल्कुल उनके बिना कहा है।
1: हाँ
0: हाँ,
1: और वो जहाँ बैठ जाए फिर वहाँ समझ लो कि अपने आप लोग इकट्ठे है वे लग जाए,
0: और बारात की दावत अन्य, अरे के मैं खानो पीनो बाद में जाएगो, भैया कब के मारे कब मिलेंगे, पहले या समय को आनंद उठा ले। में ब्रज में यही हास्य रस के आनंद के काज यही कहो गयो है के आनंद को क्षण,
1: हाँ,
0: और अन्न को कण कभी छोड़नो ना चाहिए।
1: जी हाँ चंपा जी, देखो तो सही, हमें कितनो बड़ो संदेश छुपे भयो है।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी, तो हम तो अपने प्यारे भैया बहनान ते कह में, भैया बहनाओं आज पूरी दुनिया में विश्व हास्य दिवस मनायो जा रहे है, और वैसे वो छुट्टी को देना है, तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में खूब हंसो, खूब खेलो, खूब बोलो, खूब बतराओ, पर हर भाव में ना हास्य को भाव जरूर होए, और आप ऐसे ही हंसते रहो और ऐसे ही बसते रहो और ब्रज माधुरी कार्यक्रम को सुनते रहो।
1: जी हाँ चंपा, ऐसे मुस्कुराते भाई, हंसते भाई, हम अपने श्रोतांते आज के दिन विदा ले लें ना भैया कार्यक्रम में।
0: हाँ प्यारे भैया बहनाओं, आप तो जानो ही हो समय को संकेत अब चलवे को हो रहो है, तो प्यारे भैया बहनाओं इन्हीं प्यार भरी बातन के संग हमारो आज को ब्रज माधुरी कार्यक्रम यहीं संपन्न होवे है। मोई अपनी चंपा बहन यानी चंद्रवती शर्मा को
1: और मो नृत्य गोपाल को, कार्यक्रम प्रस्तुत करता वीके तोमर के संग जायवी की अनुमति प्रदान करें।
0: नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है हमारे नन्हे मुन्ने बाल श्रोताओं का कार्यक्रम रेडियो किड्स।

0: नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम है रेडियो किड्स, जहाँ बच्चे ही हैं असली होस्ट। हम लाए हैं आपके लिए मजेदार बातें, प्यारी कविताएं और सीख से भरा कार्यक्रम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास प्रस्तुति।
1: हम सभी आए हैं द श्रीराम यूनिवर्सल स्कूल ग्रेटर नोएडा वेस्ट से। मैं हूँ अहानो, मेरे साथ मेरे दोस्त।
2: मैं हूँ आर्ची।
3: मैं हूँ सीरत।
4: मैं हूँ अव्यान।
5: मैं हूँ प्रिंकल।
1: हम सब अलग अलग कक्षाओं से आए हैं, तो आइए मिलकर इस सफर की शुरुआत करते हैं।
6: अरे आज तो मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तो बिना वजह भी हंसने का मन कर रहा है। आप लोग भी मुस्कुरा रहे हैं ना?
0: अरे भाई, राज क्या है, इतनी हंसी किस बात की है? हमसे भी शेयर करो ताकि हम भी खुश हो जाए, कहीं कोई सीक्रेट तो नहीं?
6: आज है वर्ल्ड लाफ्टर डे। हंसना हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, इससे तनाव कम होता है और मन हल्का रहता है, इसीलिए हमें रोज थोड़ा थोड़ा हंसना चाहिए।
2: हंसी से दिल खुश रहता है और सोच सकारात्मक बनती है, यह हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखती है। जब हम हंसते हैं तो आसपास का माहौल भी अच्छा हो जाता है, यानी हंसी सच में एक दवा है।
5: वैज्ञानिक भी कहते हैं कि हंसी से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, यह हमारे रिश्तों को भी मजबूत बनाती है। हंसी हमें मुश्किल समय में भी मजबूत रखती है, इसीलिए इसे जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए।
1: हंसी है जीवन की पहचान, इससे खिलता है हर इंसान। मुस्कान बातों हर एक दिल में, यही है खुशियों का अरमान। बातें तो बहुत हुई, चलिए सुनते हैं एक गीत।

0: दोस्तों, जल ही जीवन है, ये है हम सब जानते हैं, लेकिन क्या हम सच में पानी बचाते हैं? अक्सर हम पानी को बेकार बहने देते हैं, ये आदतें हमें बदलनी होंगी।
1: पानी के बिना जीवन संभव

0: पौधे, जानवर और इंसान सबको पानी चाहिए। अगर हम आज पानी नहीं बचाएंगे तो भविष्य में हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।
1: छोटे छोटे कदम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, जैसे नल बंद रखना और पानी का सही उपयोग करना। हमें दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करना चाहिए, यही हमारी जिम्मेदारी है।
2: जल है तो कल है,
3: पानी की हर बूंद अनमोल, इसे बचाना है सबका गोल। आज बचाओ कल सवारो, यही है जीवन का उसूल।
1: बातें तो हमने बहुत कर ली, चलो अब गीत सुनते हैं। सुने क्या?
2: हाँ, सुनते हैं।

0: करते हैं आकाशवाणी की। क्या आप जानते हैं कि इसके 90 वर्ष पूरे हो चुके हैं? ये भारत की आवाज़ रही है, इसने लोगों को जोड़ने का काम किया है।
1: मैं एक छोटे से प्रश्न पूछूं आकाशवाणी से जुड़ा हुआ?
2: हाँ हाँ पूछो आहान।
1: आकाशवाणी का अंग्रेजी नाम क्या है?
2: ऑल इंडिया रेडियो। ये लोगों तक जानकारी पहुँचाता है।
1: बिल्कुल सही बताई तुमने अभियान।
3: हेलो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो किड्स।
1: हम लेकर आए हैं ज्ञान और मनोरंजन का संगम।
0: रेडियो की बात हो और उषा मेहता का नाम ना आए।
3: उन्होंने 1942 में रेडियो चलाया।
1: यह एक गुप्त रेडियो था।
0: ये गुप्त क्यों था तुम्हें पता है?
1: नहीं।
0: मैं बताती हूँ।
1: हाँ सीरियस बताओ।
0: 1942 में जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया, तब उषा मेहता और उनके सहयोगियों ने गुप्त रेडियो स्टेशन के माध्यम से देश भर में आज़ादी का संदेश प्रसारित किया।
4: उन्होंने हमें साइंस और देशभक्ति सिखाई।
5: हम भी अपने देश के लिए अच्छा काम करेंगे।
3: उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर बहुत कम उम्र में आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया और युवाओं को प्रेरित किया।
5: जो देश के लिए जीते हैं वो अमर कहलाते हैं, हिम्मत और सच्चाई से इतिहास बनाते हैं।
1: मैं एक नैतिक कहानी सुनाऊं?
0: हाँ हाँ हाँ सुनाओ।
1: एक किसान लालच में सब खो बैठा, लालच ने सब खत्म कर दिया। इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिली?
2: कि हमें लालच में नहीं पड़ना चाहिए।
1: सही कहा व्यान और प्रिंकल।
6: मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ, बोलूँ?
2: हाँ हाँ बोलो।
6: हमें संतोष रखना चाहिए, जो मिला है उसमें खुश रहो, लालच से दूर रहो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, ये जीवन का सही रास्ता है।
2: सही कहा प्रिंकल तुमने।
1: मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। चलो जल्दी सड़क पार करते हैं। नहीं पहले दोनों ओर देखो। अरे जल्दी करो, नहीं सेफ्टी पर है।
0: हमें हमेशा नियमों का पालन करना चाहिए, जीब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए और ट्रैफिक सिग्नल का ध्यान रखना चाहिए।
7: सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
0: अब अंत में एक सुंदर प्रस्तुति अभियान के द्वारा।
5: चलो मिलकर वृक्ष लगाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं, हरियाली से जीवन सजे, हम सब मिलकर मुस्कुराएं। धन्यवाद।
0: आज हमने बहुत सारी बातें की, मजा आया?
7: हाँ हाँ बहुत मजा आया।
0: अब हम मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए
7: बाय बाय।

अभी हमारे नन्हे मुन्ने बाल श्रोता सुन रहे थे उनका मनपसंद कार्यक्रम रेडियो किड्स, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या डब्ल्यू डब्ल्यू

0: www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
2: मैं हूं आपका जलदाता ग्रैंड वाटर। कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहां धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देते। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं। क्या लिखूं अपना दर्द, अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता, बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।
3: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम।
4: प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वांग। स्वांग जिसमें नाटक और संगीत के माध्यम से पौराणिक कथाओं का मंचन किया जाता है। स्वांग के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं स्वांग, नरसिंह का भात। कलाकार हैं केशव कुमार और साथी।
5: आकाशवाणी के प्यारे श्रोताओं को नमस्कार। आज आपकी सेवा में स्वांग नरसी का भात। प्यारे श्रोताओं, जूनागढ़ शहर में सेठ नरसी जो बड़े धनवान और कंजूस थे, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था हरनंदी। प्यारे साथियों, समय की कैसी विडंबना है, कोई पुत्र नहीं था, लेकिन अति कंजूस होने के कारण वो अपने दरवाजे सर किसी भिखारी को भिक्षा भी नहीं देते थे। यहां तक कर दिया कि मरने का बहाना लेकर अर्थी तक निकलवा दी, लेकिन भिखारी को भी कभी नहीं दी। प्यारे साथियों, हरनंदी जिसे रामा भी प्यार से पुकारते थे, वो सिरसागढ़ में सेठ मनसमल के यहां ब्याही थी। समय बीतता गया, अब तो सेठ मनसमल भी काफी लाड प्यार से रखते थे हरनंदी को। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने साधु के वेश में नरसी का ध्यान बदला कि संसार में खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला जाएगा, ये धनमाया तेरे काम नहीं आएगी। अब तो प्यारे साथियों, सेठ नरसी ने अपनी धनमाया गरीब बच्चों के स्कूल बनवाने, मंदिर बनवाने, गौशाला बनवाने में दान कर दी श्री कृष्ण भगवान के नाम पर, और खुद शहर से बाहर एक झोपड़ी बनाकर साधु के भेष में रहने लगे। उधर हरनंदी की लड़की की शादी आ जाती है। हरनंदी के ससुर और सास पहुंचते कि बेटी हरनंदी अपने पिता नरसी के यहां जूनागढ़ चली जाओ और भात नोताओ। किस तरह से तानों से कटाक्ष कर रहे हैं हरनंदी को, और अपनी सासू के ताने सुनकर के हरनंदी एक बात के द्वारा क्या कह रही है, ये सुनते हैं इस गीत के माध्यम से।

0: कहिए माँ।
1: मैंने सुना है तुम्हारी बेटी की शादी है,
0: हाँ माँ।
1: तो जाओ भात लोट के आओ।
0: लेकिन माँ, सिरसागढ़ में जाकर के हम क्या करेंगे? ना तो हमारा कोई भाई है, और बाबुल भी थे वो फकीर हो गए हैं माँ।
1: तो बेटी, हमने अपने बेटे से शादी इसलिए नहीं करी थी कि हम गरीब हैं। हमारे बेटे की शादी तुमने इसलिए की थी कि पीहर में जाके भात नोत के आओ।
0: लेकिन माँ, इस तरीके से ताने मत मारिए, मैं अपनी मजबूरी आप

हरनंदी अनु ने विनय करती है कि सासू जी आज मेरे बाप की बिगड़ रही है तकदीर भी, ऐसा मत कीजिए, मुझे वहाँ पर मत भेजिए। लेकिन उसके ससुर ने तो चिट्ठी लिख करके हाथ में दे दी कि चिट्ठी का सामान है, जा रथ बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है और अपने पिता के पास चली जा, भातूं किस तरह से भला।

0: प्यारे श्रोताओं, इस तरह से सास ससुर के कहने पर वो हरनंदी रथ में बैठ करके जूनागढ़ पहुंच जाती है अपने पिता की कुटिया पर। चिट्ठी पकड़ा दी कि मेरी बेटी की शादी है, भात लेकर किया जाना। चिट्ठी को लेकर के नरसी जी परेशान है कि बेटी मैं तो फकीर हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं भात में क्या दूंगा। किस तरह से दोनों के सवाल और जवाब हो रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: बेटी हरनंदी,
2: कहिए पिताजी।
1: ये चिट्ठी कैसी है?
2: पिताजी, ये हमारी बेटी की शादी है, हमारे सास ससुर ने ये चिट्ठी आपके लिए भेजी है।
1: लेकिन बेटी, आपको तो मालूम था मैं तो फक्कड़ हूँ, सब दौलत तो मैंने भगवान के नाम पर दान कर दी, मैं भात कहाँ से दूंगा।
2: लेकिन पिताजी, मैं अपने आप नहीं आई हूँ पिताजी, मुझे सब कुछ पता था, मेरे सास ससुर ने ताने मार करके ये चिट्ठी भेजाई है।
1: लेकिन कह करके बताइए बेटी,
2: सुन लीजिए मेरी बात।

0: दादाजी
1: बात नोट आ गई।
0: आप कुछ भी हो उनको इन बातों से क्या करना है। आज मैं आपके दरवाजे पे भात नोतने आई हूँ, मेरी बात
1: सुनिए। क्या कहना चाहते

0: बच्ची आपके हाथ में है, आप देख लीजिए।
1: त्रिलोकीनाथ है।
0: सुन लीजिए मेरी बात।

0: अपने घर की हालात सारे जानती हूँ। यदि आपके बस की बात भात भरना ना हो तो मेरे दरवाजे पर मत आना पिताजी।
1: लेकिन बेटी
0: कहिए,
1: जब तू मेरे दरवाजे पर भात नोतने आ गई है, तेरे माँ जाए कोई भाई भी नहीं है, तो मैं किसको भेजूंगा? मुझे तो आना पड़ेगा बेटी। अपनी बात कहिए,
0: मेरी बात सुन लीजिए।

प्यारे साथियों, इस तरह से हरनंदी समझाकर चली जाती है, लेकिन भात का दिन भी नजदीक आ गया। सगे संबंधियों भाई बंधुओं से कहा नरसी जी ने कि मेरी बेटी की शादी का भात भरने जाना है, आपको चलना है। सारा परिवार मना कर देता है। दोस्तों, कंगाली वो चीज है कि तुम ही क्या गए हो मेरे आकर करीब से, अरे दामन बचा के चलती है दुनिया गरीब से। आज तो घर वाले भी मना कर देते हैं। अब नरसी जी ने दो चार मोड़े साथ में लिए, गाड़ी बैल मांग लिए, टूटी सी गाड़ी मरे से बैल लेकर के चल देते हैं सिरसागढ़ के लिए। रास्ते में गाड़ी टूट जाती है, परेशान है नरसी जी कि आज हे मुरलीधर तू ही मेरी लाज बचा सकता है। किस तरह से उस बांके बिहारी को याद कर रहे हैं बियाबान जंगल में टूटी हुई गाड़ी के बाद में, आइए सुनते हैं।

0: साथियों,
1: इस तरह से कृष्ण भगवान का स्मरण किया नरसिंह भगत ने। अब तो वो द्वारकाधीश पहुंच जाते हैं गढ़वाले का रूप धारण करके, गाड़ी ठीक की और लेकर के गाड़ी को सिर सागर में पहुंच जाते हैं। गांव से बाहर कुछ औरतें मिलती हैं, उनसे पूछने लगे कि हम सेठ मनसामल के भाती हैं उनका, हमें रहने का स्थान बताइए कि हमारा स्थान कहाँ है। अब तो मजाक समझने लगी कि सेठ मनसामल उसके ऐसे मोढ़े बाई भाती, मजाक में गौशाला बता दिया कि गौशाला में आप ठहर जाइए। जाकर के सेठ मनसा से कह दिया कि तुम्हारा भाती आ गए हैं और उन्हें नहाने धोने का इंतजाम कराइए। किस तरह से गर्म पानी लेकर जाता है, इतना गर्म पानी ले जाता है कि उसमें हाथ भी नहीं लगा पाते हैं भगत नरसिंह। किस तरह कहने लगे ठंडा पानी मिला दे इसमें तुम्हें जल जाऊंगा। किस तरह से दोनों के सवाल और जवाब इस गीत के माध्यम से सुनते हैं। ये तो पानी बहुत ज्यादा गर्म है, इसमें थोड़ा ठंडा पानी मिला दीजिए।
2: पानी ठंडा वरना है कुछ नहीं है, जो भी है यही है, इसी में नहा लीजिए आप।
1: लेकिन इतने गर्म पानी से तो मेरी त्वचा जल जाएगी, मुझे ठंडे पानी की जरूरत है।
2: आप अपने आप को भगवान का बड़ा भगत बताते हो, क्यों ना उनसे बारिश करवा लो। आप
1: मेरी बात सुन लीजिए।
2: कहिए।
3: हे रे पानी ला दे मन नहाना।

तो प्यारे श्रोताओं, ताने सुनकर के फिर से भगवान कृष्ण का स्मरण करता है। प्यारे साथियों, बारिश होने लगती है और गर्म पानी भी ठंडा हो जाता है। उधर उन औरतों ने जाकर के हरनंदी से कह दिया कि तेरे भाती आए हुए हैं, गौशाला में ठहरे हुए हैं, जा उनका आरता करिया। उनके ताने सुनकर के हरनंदी के तन बदन में आग लग गई। जाते ही आरती की जगह दो चार कोड़े मार दिए, कोड़ा पकड़ लिया। नरसिंह भगत ने कोड़ा थाम कर अपनी लाडली से रोकर एक बात के द्वारा क्या कहने लगते हैं, आइए सुनते इस रागणी के माध्यम से।

0: मेरी लाडली मेरी हरनंदी।
1: कहिए पिताजी।
0: मेरा जिगर के टुकड़े, आज तुम्हें आरती की जगह हाथ में कौड़ा क्यों है?
1: लेकिन पिताजी, मैं आपको सारी बात समझा करके आई थी कि आपका भात भरने का बोत ना हो तो मेरे दरवाजे पे मत आना।
0: लेकिन लाडली, मैं तो इसलिए आ गया कि मेरी लाडली बीन भाई की बहन आज अपने बाप को पटड़े पर संभाल नहीं पाएगी। हर बहन की इच्छा होती है कि भात पर तेरा भाती दरवाजे पर आए तो उसका आरता करे। मैं तो इसलिए आ गया था मेरी लाडली।
1: आप तो इसलिए आ गए हैं, लेकिन ये सब मुझे ताने मार रहे हैं। इनके तानों से कैसे बचूं मैं? क्या कहना चाहते हो कह दीजिए।
0: मेरी बात सुन ले लाडली।
1: कह दीजिए।

0: इस तरह से श्रोताओं,
1: हरनंदी अपने पिता को कोड़े मारकर भगाना चाहती है, लेकिन मनसामल ने फिर आवाज लगवा दी कि आइए भात का समय हो गया है, अब तो पटड़े पर तैयारी है, आरती का थाल सजाए हरनंदी भी खड़ी है, लेकिन साथ में कुछ नहीं है। अपने मुरलीधर को पुकारने लगे, हे के मुरलीधर, हे केशव, हे कान्हा, आज मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है, भात का समय हो गया है और मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, किस तरह से कृष्ण भगवान के नाम की टेर लगा रहे हैं। नरसिंह जी आइए सुनते हैं इस भजन के माध्यम से।
2: हे रे कौन हिमाती तेरे बिना, मेरी सुन ले

इस तरह से भक्त की करुणामयी आवाज सुनकर के भगवान द्वारिकाधीश गरुड़ पर सवार होकर के वहां पहुंचते हैं। उधर आरती का थाल सजाए हरनंदी खड़ी है, ढोल बाजे बज रहे हैं। उस समय का कितना रमणीक, कितना ही सुंदर सुहावना मौसम हो रहा है। कृष्ण की छवि देखने के लिए किस तरह से भक्त उमड़ रहे हैं, आइए सुनते हैं इस रागिणी के माध्यम से।

भगवान का कैसा प्रेम भरा संगम है। आज तो भगवान भक्त विवश में होकर के पटड़े पर खड़े होकर के भात भर रहे हैं, सिर सागर में स्वर्ण का मेह बरसा रहे हैं, चाहूं और कृष्ण की छवि देखने के लोग लालायित हैं।

0: इस तरह से प्यारे श्रोताओं, भक्त और भगवान का कैसा प्यारा संगम है, भक्त भगवान के बस में है। सिरसागढ़ में भक्त के बस में होकर के कैसे भाग भरा, ये किस्सा हम यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहेंगे।
1: अभी आप सुन रहे थे बड़ा ही सुंदर और सुरीला स्वांग, नरसिंह का भात। कलाकार थे केशव कुमार और साथी। अब ये कार्यक्रम संपन्न होता है। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शिवनंदन लाल।
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी व अंग्रेजी में समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति प्रताप सिंह। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच 77 केंद्रों पर की जाएगी।
4: 294 सीटों में से पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती कल होगी। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के 3 स्तरीय इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जिला पुलिस, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। मतगणना स्थलों पर केंद्रीय बलों की कुल 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। ये पूरी प्रक्रिया रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के नियंत्रण में होगी। ये पहली बार है जब मतगणना प्रक्रिया के लिए वरिष्ठ IPS अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मतगणना

0: प्रक्रिया का प्रबंधन एक टीम करेगी। इसमें सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो पर्यवेक्षक शामिल होंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
1: उधर केरलम में 140 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सुरक्षा तथा निगरानी के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुदुचेरी के मुख्य चुनाव अधिकारी पी जवाहर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि पुदुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों की मतगणना कराईकाल, यानम और माहे में होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के लिए 35 जिलों के 40 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती की जाएगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये फैसला लिया गया है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गई। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 पर आग पर काबू पा लिया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी आई द्वारा विकसित मिशन दृष्टि को अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की एक प्रमुख उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह और भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण के प्रति जुनून का प्रमाण है। उन्होंने गैलेक्सी आई के संस्थापकों और पूरी टीम को बधाई दी। सरकार ने बच्चों में मधुमेह पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश हाल ही में संपन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण से संबंधित एक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में जारी किए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि ये दिशा निर्देश पहली बार बचपन में मधुमेह की जांच, निदान, उपचार और दीर्घकालिक प्रबंधन के लिए एक मानकीकृत राष्ट्रीय ढांचा उपलब्ध कराता है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ओपेक प्लस समूह के 7 देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, कजाकिस्तान, रूस और ओमान अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाएंगे। भू राजनीतिक संकट और संयुक्त अरब अमीरात के समूह से अलग होने के बाद ये लगातार तीसरा महीना होगा जब ओपेक प्लस देश अधिक उत्पादन करेंगे। अमेरिका ने निक स्टीवर्ट को ईरान के साथ चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए काम कर रही राजनयिक टीम के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की टीम में शामिल निक एक अनुभवी नीति विशेषज्ञ हैं। उन्होंने पहले ट्रंप प्रशासन के दौरान विदेश विभाग में ईरान से संबंधित मुद्दों पर काम किया है। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 18वें ओवर में 9 विकेट पर 156 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। उधर अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स से शाम 7:30 से होगा। आज पूर्वोत्तर भारत, केरल, माहे, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में बादल गरजने और बिजली गिरने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। Counting of votes for the assembly elections held in West Bengal, Keralam, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry will be taken up tomorrow morning. Voting for all the 126 seats in Assam, 140 in Keralam and 30 seats in Puducherry was held on the 9th of April. Polling for all the 234 assembly constituencies in Tamil Nadu and for the first phase in West Bengal covering 152 seats was held on the 23rd of April. Voting for the second phase in West Bengal took place on the 29th of last month for 142 constituencies. In Assam, 40 centres have been set up across all 35 districts for the counting process amid tight security. The fate of 722 candidates, including 59 women, will be decided. In West Bengal, all preparations have been made.

0: लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
1: नमस्कार। जी
0: सुनील भाई, देखिए लोक गीतों में लोक जीवन की झलक देखने को मिलती है और हमारे देश में प्राचीन काल से ही लोक गीतों का अपना महत्व रहा है। और लोक गीतों की बात करें तो देखिए लोक गीत अनेक प्रकार के हैं। इनमें जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले, सावन पर गाए जाने वाले, नदियों खेतों पर गाए जाने वाले, और बात करें त्योहारों पर गाए जाने वाले लोकगीत, और इन्हीं में से भाई एक प्रमुख है विवाह गीत, जो ब्याह शादियों में हमारे गांवों के अगर बात करें तो विशेषकर इस तरह के गीत।
1: और खासकर देखिए हर प्रकार के जो लोकगीतों का प्रचलन है, कहीं पर अगर कोई फसल कटाई हो रही है तो वहाँ पर कोई ना कोई लोकगीत है, क्योंकि लोकगीतों का महत्व है लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को उदासी ना आए, लोगों को एक उत्साह बना रहे, तो लोकगीतों का बहुत एक बड़ा महत्व है। कहते हैं ना कि ना ही लोकगीतों में कोई बनावट होती है और सीधे दिल से निकलते हैं और दिल तक दिल को छू लेते हैं, उनमें ढोल की थाप होती है। और भाई कहते हैं ना कि बिना गाने बजाने के तो कुछ हर चीज़ सुनी लगती है, तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सुन लेते हैं एक और ये लोकगीत ऋषिपाल खदाना और अनुराधा की आवाज़ में।

0: अश्विनी भाई, ये तो देखिए विवाहगीत सुनारी सी पल खदाना और अनुराधा से, और देखिए जितने हमारे ये लोकगीत हैं कितनी आसानी से इनमें हर तरह की बात कह दी जाती है।
1: बिल्कुल, देखिए ना नोक झोंक भी चल रही है। ये कौन से देखिए ना, कोई किताबों में पढ़ाया नहीं जाता, कोई कहीं पर, यहाँ पर ये सब बातें गुनगुनाते हुए माताएं बहनें जो होती हैं चुगला चाका करते करते गुनगुनाते हुए ये गीतों के रूप ले लेती है, और यही लोकगीतों के रूप में हमारे समाज के सामने आता है। जैसे बोलते हैं ना कि कई बार तो देखा जाता है कि चाय चाय बना लीजिए या फिर काम करते करते भी कान यहीं लगे रहते हैं, क्योंकि लोग दिन भर जो का सफ़र है इतना सुहाना होता है, लोगों को भारा होता है कि कुछ भी काम करते करते भी लोक रंजन कार्यक्रम लोग सुन रहे होते हैं। यहीं पर ये पता चलता है कि लोगों को द्वारा रचित जो गाने होते हैं वो दिल को कहीं ना कहीं दिल को छूते हैं, और फिर कहीं ना कहीं आवाज़ आती है दिल में, चलिए लौट चलते हैं गाँव की तरफ। रत्ता शर्मा भी कुछ ना कुछ ऐसा ही कह रहे हैं कि हमारा जो एक भाई गुलाबी दुपट्टा,
0: तभी तो असुनी कहा जाता है लोकगीत हमारी संस्कृति, जीवन विधान, सभ्यता और सदाचार के प्रतीक हैं।
1: बिल्कुल। आई तो आई सुनते हैं रचना शर्मा की आवाज़ में एक और लोकगीत।

तो अभी आपने सुना रचना शर्मा की आवाज़ में ये लोकगीत सुनील। तो अभी और भाई कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं, सुन लेते हैं शिवानी गोला की आवाज़ में एक और लोकगीत।

0: अश्विनी भाई, ये तो लोकगीत सुना शिवानी गोला से, और शिवानी गोला के गाए इस लोकगीत के साथ ही आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल। लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंजनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में। मैं हूं आपके साथ सिमरन सारवान। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे साथ ही हेमंत। तो आज काफी कुछ है हेमंत। आज बात करेंगे थॉमस कप पर, जो कि अभी रिसेंटली चल रहा है। साथ ही साथ बात करेंगे आईपीएल 2026 की, विमेंस को भी कहाँ पीछे छोड़ सकते हैं, विमेन क्रिकेट पर भी बात होगी, ISSF वर्ल्ड कप शॉटगन पर भी साथ ही साथ बात होगी, एशियन बॉक्सिंग को भी लिए चलेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं थॉमस कप की, जानते हैं थॉमस कप में क्या क्या हुआ। तो थॉमस कप के बारे में सुनिए ये रिपोर्ट।
1: 2 मई 2026 यानी शनिवार का दिन भारतीय बैडमिंटन फैंस के लिए उम्मीद और धड़कनों को बढ़ा देने वाला दिन था। भारतीय पुरुष टीम थॉमस कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी थी और उनका सामना था फ्रांस की टीम से। फ्रांस की टीम इस टूर्नामेंट की सरप्राइज पैकेज रही थी, जिसने ग्रुप स्टेज में 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया और क्वार्टर फाइनल में जापान जैसी मजबूत टीमों को हराकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया था। दुर्भाग्य से ये सेमीफाइनल मुकाबला शुरू होने से पहले ही भारत को एक बहुत बड़ा झटका लगा। भारत के स्टार शटलर और क्वार्टर फाइनल के हीरो रहे लक्ष्य सेन को कोहनी की चोट के चलते इस अहम मुकाबले से बाहर होना पड़ा। लक्ष्य सेन के बाहर होने से भारतीय टीम का संतुलन बिगड़ गया और टीम को एक नई रणनीति के साथ कोर्ट पर उतरना पड़ा और उनकी गैर मौजूदगी में युवा आयुष शेट्टी को पहले सिंगल्स की बड़ी जिम्मेदारी दी गई। उनका सामना दुनिया के नंबर 4 खिलाड़ी क्रिस्टो पोपोव से था। आयुष ने कोर्ट पर पूरी जान लगाई, लेकिन फ्रांसीसी खिलाड़ी की गति और उनके सटीक स्मैश के सामने वो अपनी लय ढूंढ नहीं पाए और इस मुकाबले में क्रिस्टो पोपोव ने आयुष शेट्टी को सीधे गेमों में 21-11, 21-9 से हराकर फ्रांस को 1-0 से बढ़त दिला दी। 0-1 से पिछड़ने के बाद सारी उम्मीदें अब उनके अनुभवी खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत पर टिक गई। उनका सामना फ्रांस के युवा सनसनी एलेक्स लानियर से हुआ। श्रीकांत ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए कड़ी टक्कर दी और बेहतरीन रैलियां खेली, लेकिन एलेक्स लानियर ने अहम मौकों पर अपनी नसों पर काबू रखा और श्रीकांत को गलतियां करने पर मजबूर कर दिया और नतीजा ये रहा, एलेक्स लानियर ने यह मैच 21-16, 21-18 से जीतकर फ्रांस को बढ़त दिला दी। अब भारत के लिए अगला मुकाबला करो और मरो वाला मैच था। अनुभवी एचएस प्रणय कोर्ट पर उतरे और अब उनका मुकाबला टोमा जूनियर पोपोव से था। पहले गेम में दोनों के बीच कांटे की टक्कर हुई। एक समय प्रणय 19-18 से आगे थे, लेकिन पोपोव ने गजब की वापसी करते हुए पहला गेम जीत लिया, लेकिन दूसरे गेम में पोपोव ने अपने अटैकिंग अंदाज को बढ़ाते हुए प्रणय को सेटल होने का मौका ही नहीं दिया और इस निर्णायक मैच में टोमा जूनियर पोपोव ने 21-19, 21-16 से यह मैच जीतकर फ्रांस की बढ़त 3-0 से कर दी। इस तरह भारत ये सेमीफाइनल 0-3 से हार गया। हालांकि भारत अपने खिताब का बचाव नहीं कर पाया, लेकिन टीम ने इस हार के बावजूद कांस्य पदक अपने नाम किया। ये थॉमस कप इतिहास में भारत का दूसरा पदक है। पहला पदक 2022 में जीता था। वहीं फ्रांस ने इतिहास रचते हुए पहली बार थॉमस कप के फाइनल में जगह बनाई। अपने और साथी खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर क्या कहा आयुष शेट्टी ने, आइए सुनते हैं।
2: I think all credit to him. He has really good. I mean, I was using a lot of deception, which caught me off guard. I was a bit, not really stable on the court. I think overall pace was really high, and you were putting the pressure really good. I think my overall game plan was not right. I would say. I think he just outclassed me today. I think, yeah, that's it.
1: ये तो बात हुई इंडिया वर्सेस फ्रांस के मैच की। अब बात करते हैं डेनमार्क वर्सेस चाइना की मैच की, जिसपे रिपोर्ट दे रही है सिमरन।
0: थॉमस कप के सेमीफाइनल में चीन ने डेनमार्क को आसानी से हरा दिया। चीन से हार के बावजूद डेनमार्क ने टूर्नामेंट के दौरान शानदार प्रदर्शन किया और अपने प्रयासों के फलस्वरूप कांस्य पदक जीता। एंडर्स एंटोनसेन ने शनिवार को चीन के खिलाफ मैच की शुरुआत विश्व नंबर 1 की शियुकी के साथ मुकाबले से की थी, जहां चीनी खिलाड़ी एंटोनसेन के लिए बहुत मजबूत साबित हुए और एंटोनसेन ने उन्हें 16-21, 5-21 से हरा दिया। इस दौरान शियुकी को नेट रोलर्स के साथ कई बार किस्मत का साथ भी मिला और अंत में ये पहले सेट में निर्णायक साबित हुए। दूसरे सेट में शियुकी ने अपने खेल का स्तर और बढ़ा दिया और एंटोनसेन को विश्व नंबर 1 के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। अगले मैच में किम एस्ट्रूप और एंडर्स स्कारूप रासमुसेन की पुरुष युगल टीम ने बराबरी बहाल करने की कोशिश की, लेकिन डेनमार्क के निरंतर प्रयास के बावजूद वो सफल नहीं हो पाए। वेई केंग लियांग और चांगवांग ने मैच 21-18, 21-17 से जीत कर चीन की बढ़त को 2-0 से आगे कर दिया। इसलिए मैग्नस जोहानसन को चीन के खिलाफ मुकाबले को जीवित रखने के लिए अपना एकल मैच जीतना जरूरी था। शानदार प्रदर्शन के बावजूद मैग्नस जोहानसन विश्व रैंकिंग के 7वें स्थान पर मौजूद ली शिफेंग से 19-21, 21-18, 9-21 से हार गए।
1: ये तो बात हुई कल खेले गए सेमीफाइनल मुकाबलों की, अब बात करते हैं थॉमस कप फाइनल की, जहां आज चीन का मुकाबला फ्रांस से होगा। आज शाम 9:30 बजे ये मुकाबला खेला जाएगा। वहीं ओवर कप की बात करें तो लाइव मुकाबला भी चीन और कोरिया के बीच में चल रहा है, जिसमें अभी ताज़ा स्थिति यह है कि कोरिया ने अभी बढ़त बनाई हुई है और चीन 2-1 से कोरिया अभी आगे चल रहा है, जिसमें जो 3 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 2 सिंगल्स मुकाबले खेले गए हैं और 1 मुकाबला मिक्स खेला गया है, जिसमें पहले मुकाबले में जहां बात करें पहले मुकाबले की, तो इसमें कोरिया को जीत मिली और चीन को हार का सामना करना पड़ा। और इस मुकाबले का जो स्कोर रहा, वैंग जिंग यी का मुकाबला था एन सेंग यांग से, जिसमें 10-21, 13-21 से एन सेंग यांग ने यह मुकाबला जीता। वहीं दूसरे मुकाबले की बात करें तो दूसरा मुकाबला भी इस मुकाबले में जीत मिली, और इसमें जो मैच हुआ इसमें चाइना को जीत मिली, जिसमें लियू सेंग शू और तैंग निंग की जोड़ी का मुकाबला हुआ कोरिया के जियांग नांग यून से और लिंग सोंग हिन से, जिसमें 21-15 और 21-12 से चाइना ने यह मुकाबला जीता। वहीं तीसरा मुकाबला जो खेला गया और जो सिंगल मुकाबला खेला गया, जिसमें चैन यू फाइंग और किम गो यून का मुकाबला हुआ, जिसमें कोरिया ने 19-21 और 15-21 से ये मुकाबला जीता। वहीं चौथा मुकाबला जो युगल मुकाबला भी खेला जा रहा है, जिसमें अभी स्थिति ये है कि अभी चाइना ने इस पहले सेट में बढ़त बनाई थी, 21-16 से ये मुकाबला पहला सेट जीता था, वहीं दूसरे सेट में अभी कोरिया 10-18 से आगे चल रहा है। और इसके बाद जो पांचवा मुकाबला होगा वो 4:30 बजे के बाद ये मुकाबला खेला जाएगा। तो अभी स्थिति ये है कि मुकाबले में कोरिया ने बढ़त बनाई हुई है और चाइना पीछे चल रहा है।
0: तो ये तो बात थी थॉमस कप और ऊपर ऊबर कप फाइनल की। अब आपको लिए चलते हैं आईपीएल 2026 पर, जिसमें कल का मैच था एमआई वर्सेस सीएसके, जिसमें सीएसके ने जीत के साथ बढ़त बना ली है। सुनिए ये रिपोर्ट। बीसीसीआई ने विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय महिला टीम का, इससे पहले आपको लिए चलते हैं हमारी भारतीय महिला टीम का जो चयन हुआ है, उसमें भारतीय महिला क्रिकेटर, हमारी पूर्व क्रिकेटर वैशाली माथुर से हमने बात की, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। बीसीसीआई ने विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान कर दिया है। पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप जिताने वाली कप्तान हरमनप्रीत कौर को ही टीम की कप्तानी सौंपी गई है, जबकि स्मृति मंधाना को ही वाइस कैप्टन बनाया गया है। पंजाब की नंदनी शर्मा को पहली बार वर्ल्ड कप में चुना गया है। इस टीम में स्मृति मंधाना कप्तान के तौर पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ शेफाली वर्मा, जेमीमा रॉड्रिक्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, भारती फुलमाली, श्रीचरणी, यस्तिका भाटिया, नंदनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, कृति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, श्रेयंका पाटिल और राधा यादव शामिल हैं। टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 22 जून से इंग्लैंड में होगी। भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ 14 जून को बर्मिंघम में करेगा। टीम के इस सिलेक्शन पर पूर्व क्रिकेटर वैशाली माथुर ने बातचीत में क्या कहा, आइए सुनते हैं।
3: अगर जब तक जीनियस हमारे जूनियर्स को अगर अपने साथ लेके नहीं चलेंगे, उनको सिखाएंगे नहीं, जब वो रिटायर होंगे तो पीछे वाला जो ग्रुप है वो कैसे उनकी जगह बना पाएगा। तो यही एक सही टाइम है उनको सही मोटिवेट, सही दिशा में कैसे बिहेव करते हैं ड्यूरिंग द गेम और कैसे हम खेलते हैं, वो सारा एक्सपीरियंस हम जो लेके साथ चल रहे हैं यंग प्लेयर्स को लेके, तो उनको वो एक्सपीरियंस बांटना, शेयर करना बहुत जरूरी है वुमेन टीम के लिए। क्योंकि जिस तरह से हम देखा है लास्ट वर्ल्ड कप भी हमने देखा है, उस पे हमारी टीम ने विजय प्राप्त

0: और उसी सोच के निर्भर से हमारे जो सिलेक्टर्स हैं उन्होंने ये तय किया होगा कि अब यंग प्लेयर्स का भी टाइम आने वाले टाइम में आने वाला है, तो उनको भी तैयार किया जाए।
1: तो यंग प्लेयर्स में एक नंदिनी शर्मा भी आती हैं, उन्हें भी इस टीम में चुना गया है, तो क्या
2: आईपीएल
1: देखते हैं कि उनका चयन कितना ठीक है और वो क्या उम्मीदों पर खड़ी हो पाएंगी, क्या उस दबाव को झेल पाएंगे और अपने प्रदर्शन को कितना अच्छे से दिखा पाएंगे।
0: जी, जैसे आपने बात की नंदिनी शर्मा की, नंदिनी शर्मा WPL भी खेली है रिसेंटली अभी इसी सेशन में, एंड उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। और उस परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर हम देखें एक इंटरनेशनल प्लेयर पे, तो उस जगह पे, उस स्थान पे उसने अपनी जगह बनाई है, और वहां पे इस वर्ल्ड कप पे उनको हम मान सकते हैं कि वो उनको बहुत जल्दी रख दिया गया, लेकिन जिस तरह से वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देती हुई आ रही थी, और WPL हम मानते हैं कि एक इंटरनेशनल तरीके से हम काफी यंग एंड एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, और उनके साथ खेलने के बाद भी उनका इतना आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस रहा है हर एक चीज में, तो मुझे लगता है इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर उनकी जगह बिल्कुल सही है। अगर ओवरऑल देखूं तो सिलेक्शन काफी अच्छा हुआ है, हमारे मिडल ऑर्डर भी हैं, हमारे स्पिनर्स भी हैं, हमारे मीडियम पेसर्स भी हैं, और ऑलराउंडर भी हैं। ऑलराउंडर को हम कभी भूल नहीं सकते, वो अहम हिस्सा होता है टीम का, क्योंकि वो बैटिंग में भी हमें सपोर्ट करता है, बॉलिंग में भी, और फील्डिंग तो है ही, तो मेन ऑलराउंडर का सपोर्ट होता है। और ओवरऑल ये टीम बहुत अच्छी बनी है, 11 से 12 प्लेयर्स जो मेन है वो वैसे ही हैं। आप दीप्ति शर्मा को उठा के देख लीजिए, हरलीन दियोल को देख लीजिए, या जैमिमा, या शेफाली वर्मा, या फिर आप स्मृति मंदना, हरमनप्रीत कौर, ये हमारे बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और ये टीम का हिस्सा भी है। इनके साथ कुछ प्लेयर्स जुड़ सकते हैं, श्रियंका पाटिल भी है उसमें। यही कहूंगी कि जिस तरह से हमने लास्ट वर्ल्ड कप में हमने जीता था, उसी जुनून और उसी जज्बे से हमें ये T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है, और वही जज्बे के साथ हमें ये जीत के भी लाना है वर्ल्ड कप।
2: साथ ही बात करते हैं कल खेले गए आईपीएल मुकाबले की, जहां आईपीएल 2026 अब अपने बहुत ही रोमांचक दौर से गुजर रहा है, जहां हर एक और जीत और हार बहुत मायने रखती है। और ऐसा ही अहम मैच कल खेला गया जहां दोनों टीमों के लिए जीत बहुत जरूरी थी। जी हां, बात कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के मुकाबले की, जिसमें टॉस जीतकर मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, लेकिन चेन्नई की कसी हुई गेंदबाजी के सामने मुंबई की शुरुआत लड़खड़ा गई। विल जैक्स सस्ते में पेविलियन लौट गए, इसके बाद रियान डिकल्टन ने 24 गेंदों में तेज 37 रन बनाए और नमन धीर ने 37 गेंदों में शानदार 57 रनों की पारी खेलकर मुंबई की पारी को रफ्तार देने की कोशिश की, मगर चेन्नई के गेंदबाजों ने अपने होम ग्राउंड का फायदा उठाते हुए शानदार वापसी की। अंशुल कंबोज ने महज 32 रन देकर 3 विकेट्स और नूर अहमद ने 2 विकेट झटक कर मुंबई इंडियंस के धाकड़ मिडल ऑर्डर की कमर तोड़ दी। सूर्य कुमार यादव 21 रन और कप्तान हार्दिक पांड्या 18 रन भी कोई बड़ा कमाल नहीं दिखा सके। नतीजा ये हुआ कि मुंबई इंडियंस अपने 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 159 रन का एक औसत स्कोर ही बना पाई। अब चेन्नई सुपर किंग्स के सामने था 160 रन का लक्ष्य। अपने घरेलू दर्शकों के सामने उतरी चेन्नई की शुरुआत विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के 11 रन के विकेट के साथ हुई, जिन्हें जसप्रीत बुमराह ने रियान रिकल्टन के हाथों कैच कराया, लेकिन इसके बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने कप्तानी पारी खेलते हुए एक छोर पर मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने बिना किसी दबाव के अपनी क्लास दिखाते हुए 48 गेंदों में नाबाद 67 रन बना डाले। दूसरे छोर पर उनका बखूबी साथ निभाया युवा बल्लेबाज कार्तिक शर्मा ने, जिन्होंने 40 गेंदों में नाबाद 54 रनों की एक बेहद शांत और मैच्योर पारी खेली। इन दोनों बल्लेबाजों की अटूट साझेदारी के दम पर चेन्नई ने महज 18.1 ओवरों में ही सिर्फ 2 विकेट खोकर 160 रनों का लक्ष्य बहुत आसानी से चेस कर लिया। इस तरह चेन्नई सुपर किंग्स ने इस बड़े मुकाबले में मुंबई को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। अपनी शानदार मैच विनिंग और कप्तानी पारी के लिए ऋतुराज गायकवाड़ को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस अहम जीत के साथ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पॉइंट टेबल पर 6वें नंबर पर आ गई, जबकि मुंबई इंडियंस की ये लगातार तीसरी हार थी, जिसने उनके प्लेऑफ में पहुंचने के दरवाजे लगभग बंद कर दिए। अब बात सिमरन कर लेते हैं पॉइंट टेबल की, जहां पर पंजाब किंग्स 8 मैचों में से 6 जीत के साथ नंबर 1 पोजीशन पर बने हुए हैं। वहीं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की बात करें तो 9 मैच उन्होंने खेले हैं, जिसमें से 6 मैच उन्होंने जीते हैं और 3 मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। सनराइजर हैदराबाद की बात करें तो सिमरन 9 मैच खेले हैं, 6 जीते हैं और 3 हार उनके सामने आई हैं। राजस्थान रॉयल चौथे स्थान पर, जिन्होंने 10 मैच खेले हैं, 6 जीते हैं। गुजरात टाइटन्स 9 मैचों में से 5 जीत चुके हैं और 4 मैच उन्होंने गवाए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो 9 मैचों में से 4 मैच चेन्नई ने जीते हैं, 5 मैच उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली कैपिटल्स 9 मैच में से 4 मैच जीते हैं, 5 मैच

0: में 5 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है, जिसके पॉइंट टेबल पे जो उनका जो स्थान है वो 7वें नंबर पे। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो 8 मैचों में से 2 जीत के बाद 5 हार के साथ उनका जो पोजीशन है वो 8 नंबर पे है, और टोटल जो अंक है उनके पास वो पॉइंट है जो 5 है। वहीं मुंबई इंडियंस की बात करें तो 9 मैचों में से 2 मैचों में ही उन्हें जीत का जीत जीत मिली है, बाकी 7 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। और पॉइंट टेबल पर जो उनकी जो तालिका में उनका जो नंबर आता है वो 9वें नंबर पर रहता है। और सबसे लास्ट में लखनऊ सुपर जायंट्स, 8 मुकाबलों में से सिर्फ 2 मैचों में ही उन्हें जीत मिली है, बाकी 6 मुकाबलों में उन्हें हार मिली है। और उनका जो पॉइंट टेबल पर जो है वो 10वें नंबर पे है, और टोटल उनके पास 4 अंक हैं। अब सिमरन, ये तो बात हुई कल खेले गए मुकाबलों की और पॉइंट टेबल की, अब बात करते हैं आज के मुकाबलों की, जिसमें एक मुकाबला जो है अभी खेला जा रहा है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में, और आमने सामने है SRH बनाम KKR, जिसमें KKR की नज़रें हैं अपनी जीत की लय को बरकरार रखना। लगातार 3 मैच जीतने की हैट्रिक पर, तो वहाँ घरेलू टीम की निगाह है टेबल टॉप पर। अब टॉस जहां पर जीता वो अभी टॉस जीता है SRH ने, और टॉस जीतकर बल्लेबाजी की उन्होंने, तो ट्रेविस हेड ने 61 रन बनाए 28 गेंदें खेलकर। वहीं ईशान किशन की बात करें तो 29 गेंदों में 42 रन बनाए। क्लासन कुछ खास नहीं कर पाए, लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे सिमरन, लेकिन कुछ आज खास कर नहीं पाए। और टोटल जो टीम है वो 165 रन पे ऑल आउट हो गई, जिसमें शानदार गेंदबाजी की बात करें KKR की तरफ से तो सुनील नारायण ने बहुत शानदार गेंदबाजी की, 4 ओवर में 31 रन देके 2 विकेट उन्होंने झटके। वहीं वरुण चक्रवर्ती की बात करें तो 4 ओवर उन्होंने फेंके, 36 रन केवल उन्होंने दिए और 3 विकेट उनके हाथ में आई। वहीं कार्तिक त्यागी ने भी शानदार गेंदबाजी की, पिछले मैच में सिमरन काफी महंगे साबित हुए थे, लेकिन इस बार बहुत सदी हुई गेंदबाजी के साथ 4 ओवर में 30 रन देते हुए 2 विकेट उन्होंने लिए। वहीं आज ये तो इस मैच का हाल है, क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर में ही KKR की पारी शुरू होने जा रही है। उसके बाद जो मुकाबला आज शाम को होगा वो मुकाबला होगा गुजरात जायंट्स बनाम पंजाब किंग्स, और ये मुकाबला सिमरन खेला जाएगा गुजरात के होम ग्राउंड्स यानी दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मुकाबला होगा। अब देखना ये है कि ऊँट किस करवट बैठता है।
1: बिल्कुल, देखना तो बाकी होगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। साथ ही साथ अब हम जिसपे बारे में बात करने जा रहे हैं वो है Under-23 Years एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप ट्रायल की, जो कि जिसका उद्देश्य है 23 वर्ष से कम आयु के सर्वश्रेष्ठ पहलवानों को चुनना। तो सुनते हैं हमारे जो सहयोगी हैं शाहिद आजमी, उनकी ये रिपोर्ट।
2: एशियाई Under-23 कुश्ती चैंपियनशिप के महिला वर्ग के लिए चयन ट्रायल आज राजधानी के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के KD जाधव हॉल में संपन्न हो गए। ट्रायल्स में अधिकांश मुकाबलों में उम्मीद के मुताबिक नतीजे रहे। हालांकि 59 किलोग्राम भार वर्ग में सारिका का बाहर होना एक बड़ा उलटफेर रहा। 23 से 31 मई तक वियतनाम में आयोजित होने वाली इस चैंपियनशिप के लिए जिन पहलवानों ने क्वालिफाई किया उनमें 50 किलोग्राम में हरियाणा की स्वीटी ने महाराष्ट्र की नेहा किरण को शिकस्त देकर यह पात्रता हासिल की। यह है स्वीटी।
3: मेरा नाम स्वीटी मलिक है। मैंने यहाँ एशिया चैंपियनशिप की ट्रायल्स में 50 kg में पार्टिसिपेट किया था, और यहाँ हम 4 प्लेयर थे हमारे वेट में। तो मेरी 2 फाइट हुई। मेरी पहली फाइट चंचल यूपी के साथ हुई थी, जो कि मैं 10-2 के स्कोर से जीती, और मेरी फाइनल फाइट नेहा महाराष्ट्र के साथ थी, जो कि मैं बाय फॉल जीती।
2: किस तरह तैयारी करके उतरी?
3: बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसके लिए, बहुत मूवमेंट तैयार करने पड़ते हैं। मतलब कोई ये टेक्निक नहीं होती कि हम यही टेक्निक मार के जाएंगे, बाहर से हम सोच के नहीं जाते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो हमारा उसके साथ जो मूवमेंट रहता है उस पर कोई भी टेक्निक अप्लाई करनी पड़ती है, क्विक मूवमेंट जो मेरे माइंड में डिसीजन लेना पड़ता है।
2: बाय फॉल कैसे आपने किया था वो बताइए।
3: जैसे मतलब पीछे स्कोर कवरिंग के लिए जा रही थी तो वहाँ से मैंने टांग मारने की कोशिश की तो वो डेंजर पे आई, तो फिर उस जगह पे मैंने सोचा कि अब इसको यहीं पे अगर दबा लिया तो फाइट में जीत जाऊंगी और एशिया के लिए सिलेक्ट हो जाऊंगी, तो फिर मैंने वही किया, उसको वहीं पे डेंजर में दबाया और बाय फॉल जीत ली।
2: इसी तरह 53 किलोग्राम में हरियाणा की मुस्कान ने उत्तर प्रदेश की जूली को मात देकर क्वालिफाई किया। मुस्कान ट्रायल में अपने मुकाबलों पर कहती हैं,
4: मेरा नाम मुस्कान है, मैं 53 kg में खेलती हूँ, और जो मेरी 3 बाउट हुई है वो बहुत अच्छी निकली है। आगे का टारगेट एशियन गेम्स में मेडल लेके आना है।
2: यहाँ 3 बाउट जो आपने लड़ी उसके बारे में बताइए।
4: मेरी जो मैं पिछली ट्रायल में जिससे आ रही थी वही बाउट मैंने बहुत जीती अच्छे से, और वो अच्छा लग रहा है मेरे को। जो पहले मेरे को हरा के गई थी मैं आज उसको हरा रखा है।
2: मुश्किल कौन सी बाउट थी आपकी?
4: मेरी पहली बाउट थी मुश्किल। तो
2: मुश्किल पहली बाउट क्यों थी?
4: उसको मेरी सारी पता थी किस किस तरह अटैक मारती किस तरह नहीं, बस इसलिए।
2: इसी तरह 55 किलोग्राम में अहिल्या शिंदे जो महाराष्ट्र से आती हैं ने हरियाणा की काजल जैसी मजबूत दावेदार को हराकर क्वालिफाई किया। अहिल्या से उनके प्रदर्शन पर हमने बात की।
5: मेरा नाम अहिल्या शिंदे, मैं महाराष्ट्र से हूँ। मेरी वेट कैटेगरी 55 है। मैंने काजल को टेक्निकल सुपरिटी से हराया 12-2 से। अच्छा, अभी मैं आगे जाके देश का नाम रोशन करूंगी।
6: यहाँ जितनी कुश्तियाँ लड़ी ट्रायल्स में बताई कैसी रही?
5: ट्रायल्स भी मेरी अच्छी हुई। उससे पहले दृष्टि के साथ हुई थी। दृष्टि के 5-2 से हराया दृष्टि को भी। अभी काजल के साथ हुई।
6: पूरी तरह से एग्रेसिव खेल रही थी, कुछ प्लान बना था क्या?
5: हाँ, मैंने सोचा था कि स्टार्टिंग में एग्रेसिव खेल, जितना जल्दी हो सके उतना टेक्निकल क्वालिफाई, टेक्निकल सुपरिटी से हराना है, मैंने सोचा था पहले से।
2: वहीं 57 किलोग्राम में तपस्या जो हरियाणा की खिलाड़ी हैं, उन्होंने हिमाचल प्रदेश की प्रेरणा को मात देकर क्वालिफाई किया। तपस्या कहती हैं,
7: मेरा नाम तपस्या है, मैं 57 केजी वेट कैटेगरी में खेलती हूँ। मेरा फाइनल मुकाबला प्रेरणा के साथ था और मैंने काफी अच्छा दिया, अपना बेस्ट दिया।
6: बताइए फाइनल के लिए क्या तैयारी करके उतरी थी, किस तरह से प्लान बनाया था?
7: हम तो देखो सर, ऐसा हमारे कोचेज ने सिखाया कि भाई खुद का बेस्ट देना है, खुद अपना 100% देना है। जितनी मेहनत उन लोगों ने करवाई होती है उनको पूरा भरोसा होता है कि हमारा स्टूडेंट अच्छा देगा तो फिर अच्छा देगा।
6: इस ट्रायल्स में कितनी कुश्तियाँ लड़ी थी और उन कुश्तियों के बारे में बताइए, सारी जो कुश्तियाँ लड़ी थी।
7: मेरी टोटल 3 बाउट हुई थी। तीनों ही बाउट, फर्स्ट बाउट मेरी काफी टफ थी क्योंकि मैं उस लड़की से पहले एक बार हार चुकी थी, तन्वी महाराष्ट्र, वही बाउट टफ थी तीनों में से। वो जीतने के बाद फिर हमारे कोच ने बोला कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, अच्छे से लड़ना बाकी बाउट भी, तो मैंने वैसे।
2: बात 59 किलोग्राम की करें जहां नेहा सागवान ने शिवानी शर्मा को हराकर एक बार फिर एशियाई चैंपियनशिप में खेलने का मौका हासिल किया। नेहा को भरोसा है वह एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड जीतेंगी।
8: मेरा नाम नेहा सागवान है, मैं गाँव बलाली से हूँ। अभी 59 किलो में खेल रही हूँ, सीनियर एशिया में ब्रॉन्ज था और आज अंडर 23 एशिया के लिए सिलेक्ट हुई हूँ।
6: अंडर 23 में जाएंगे अभी, सीनियर खेल के आई हैं, वहाँ से क्या सीखा और यहाँ आपने जैसे कुश्ती लड़ी आसानी से जीत ली? मैंने
8: वो सेमीफाइनल बाउट में लूज कर गई थी चाइना से, वो सभी तो सीखा है कि आगे और अच्छा करना है, एशियन गेम्स आ रहे हैं उनकी तैयारी कर रही हूँ।
6: ट्रायल्स की आपकी बाउट कैसी रही?
8: अच्छी रही, बस थोड़ी घुटने में दिक्कत आई थी, उसमें थोड़ा एडजस्ट करके बाउट लड़ी।
6: मैंने देखा था आपका सीनियर वाले जो ट्रायल्स था उससे बेहतर आज का ट्रायल हुआ, वहाँ कुछ आप मायूस थी, उसमें इसमें बहुत काफी फर्क नजर आ रहा है,
8: उनमें भी सुधार करूंगी। मैंने उसको पहले 10-0 से PWL में जो मेरी फाइट हुई थी, लेकिन शरीर ना चला इसी गलती की वजह से हो गया और आज मैं बस सर ने अच्छे से प्रिपेयर किया था उस हिसाब से ही लड़ी।
2: इसी तरह 62 किलोग्राम में महाराष्ट्र की भाग्यश्री ने जबरदस्त प्रदर्शन दिखाते हुए क्वालिफाइंग टिकट हासिल किया। भाग्यश्री से हमने बात की।
9: नमस्कार, मैं भाग्यश्री, 62 वेट कैटेगरी में, अभी मेरा 23 एशिया के लिए सिलेक्शन हुआ है और मैं महाराष्ट्र से
6: जी। आपका मैंने देखा मुकाबला, बहुत टफ मुकाबला था, बाउट आपके हाथ से निकल रही थी, फिर आपने झपट्टा मारा और एक पर एक लगातार पॉइंट हासिल करते हुए जीत दर्ज की, बताइए कैसा फाइनल था?
9: फाइनल अच्छा रहा, थोड़ी सी गलती की वजह से मेरे पॉइंट चले गए, लेकिन जिदारी करके वो कवर करने की कोशिश की मैंने।
6: कैसे इतनी ज्यादा कवर अप आपने कर लिया, 8-2 का डिफरेंस था।
9: अगर जिदारी हो तो वो इतना कुछ लगता नहीं है, बस जीतने के ये था कि इस बार एशिया में जाना ही है।
6: तितले कैसे आपने किया बनाइए?
9: जैसे टेक्निक हम लगाते तो उसके साथ ही मैंने कोशिश की कि मैं 2+2 और मतलब करती जाऊँ।
6: और जब आपको 2 पॉइंट्स और जरूरत थी, वो पॉइंट कैसे लिया आपने?
9: पट्टों में लग के।
6: ओवरऑल आपने कितनी कुश्तियाँ लड़ी, कैसी रही?
9: पहली कुश्ती तो अब एक जूनियर वाली लड़की थी, उससे 3-5 से हुई, फिर सविता के साथ हरियाणा की है जो, उससे 4-11 से रही, और अभी फाइनल में नीतिका दिल्ली वाली के साथ 10-10 के स्कोर से हुई।
2: 65 किलोग्राम में हरियाणा की पुलकित ने राजस्थान की मोनिका को शिकस्त देकर एशियाई चैंपियनशिप में खेलने का हक हासिल किया।
10: मैं पुलकित, आज मैं अंडर 23 एशिया के लिए सिलेक्ट हुई हूँ। आज मेरी 3 बाउट्स हुई, 3 बाउट्स मैंने अपने कोच के हिसाब से लड़ी, जैसे जैसे मेरे कोच ने मुझे बोला मैं बिल्कुल वैसे वैसे लड़ी। मैं अपने इस जीत का पूरा श्रेय अपने कोच को देती हूँ और अपने पापा को देती हूँ।
6: फाइनल देखा आपने, काफी चढ़कर आप लड़ रही थी।
10: हाँ, पिछले 2 कॉम्पिटिशन में हार रही थी कंटिन्यू, एक बहुत ज्यादा बर्डन था, बहुत मेंटली डिस्टर्ब थी कि भाई अब क्या होगा, पर मेरे कोच ने और मेरे पापा ने मुझे बहुत मोटिवेट किया जिस कारण मैं आज जीत गई।
6: तीनों कुश्ती के बारे में बताइए कैसी रही तीनों?
10: आज जो मेरी पहली बाउट थी वो भी बहुत इंटेंस बाउट थी, उस लड़की ने मुझे अभी पीछे जूनियर स्टेट में 5-1 से लूज किया था मैंने उसे, और आज मैंने उसे 5-1 से ही हराया। और जो दूसरी बाउट थी वो थी मेरी महाराष्ट्र के साथ, उसमें मैंने उसे 5-0 से हराया। और जो मेरी फाइनल बाउट थी वो थी मोनिका भाद्रा, इस लड़की से मैं अभी पीछे सीनियर एशिया की जो ट्रायल हुई थी उसमें लूज किया था 8-8 से, और आज मैं 11-1 से जीती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ।
2: 68 किलोग्राम भार वर्ग में मानसी लाठर ने भूमि सिंह को एक तरफा अंदाज में मात दी, जबकि 72 किलोग्राम में अमृता ने कड़े मुकाबले में दीक्षा मलिक को मैट पर धराशायी कर एशियाई चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया। जबकि दिन की अंतिम कुश्ती जो 76 किलोग्राम में खेली गई, वहां पर काजल ने इतिशा को चंद सेकंड्स में परास्त कर

0: क्वालिफिकेशन की हद को पार किया। अंत में मिलते भारतीय महिला कुश्ती टीम के चीफ कोच वीरेंद्र दहिया से, जिनको भरोसा है ये लड़कियां अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप में न सिर्फ पदक जीतेंगी बल्कि गोल्ड मेडल भी लेकर आएंगी।
1: वाकई में नहीं शाह जी, ये जितनी लड़कियां है ना सब 20 साल से नीचे की लड़कियां हैं। अंडर 23 तो चलो हमने कंपटीशन करवाया, जैसे एक बैच जो खत्म हो गया हमारा सीनियर का चला गया, हर चीज का टाइम होता है। ये सभी लड़कियां 18, 19, 20 साल की, उम्मीद के मुताबिक ही रिजल्ट रहा है। एक दो में उलट फेर हुआ है, लेकिन हमें उम्मीद थी ये लड़की सिलेक्ट होने की संभावना है और वही हुई है। ये ज्यादातर लड़की कैंप की थी, और दूसरी बात एक दो साल के बाद ये लड़की कैंप में रह के और जहाँ ट्रेनिंग करती है वहाँ ट्रेनिंग के बाद बढ़िया पॉलिश करके इनकी एंट्री सीनियर लेवल पर बढ़िया होगी।
2: किसी ने चौंकाने वाला परफॉर्म किया गया, जैसे आपने कहा एक दो को छोड़ दें, कुछ अपसेट हुए?
1: हाँ, कुछ अपसेट तो हुए हैं, लेकिन चौंकाने वाला नहीं। उन जिन्होंने अपसेट किया उनसे उम्मीद थी कि वे कर सकती हैं, और इसका मतलब ये है हमारे पास रेसलिंग की लड़कियों में बेंच स्ट्रेंथ कम नहीं है, बढ़िया है।
2: आपने पिछली बार भविष्यवाणी की थी जब सीनियर में जा रहे थे, मेडल जीतेंगे गोल्ड नहीं आएगा, वैसा ही हुआ था। अब क्या करेंगे अंडर 23 के लिए?
1: गोल्ड आ सकता है, एक दो मेडल जूनियर की लड़कियां हैं, क्योंकि वहां भी जूनियर की लड़कियां रहेंगी तो वहां मेडल नहीं हुए। हमारे यहां सीनियर लड़कियों का थोड़ा अकाल है, सीनियर लड़की जो 25, 26, 27 साल की होती है उनका थोड़ा अकाल है, लेकिन आने वाले एक दो साल में उसको पूरा करते हैं।
0: चयनित पहलवान अभी कुछ दिन ट्रेनिंग हासिल करेंगी, उसके बाद एशियाई चैंपियनशिप में पदक की उम्मीद लेकर रवाना होंगी। दिल्ली के इंदिरा गांधी खेल परिसर के KD जाधव हॉल से कार्यक्रम को प्रस्तुत करता शाहनवाज खान के साथ आकाशवाणी के लिए मैं मोहम्मद शाहिद आजमी।
3: ये तो बात हुई कुश्ती की, अब बात करते हैं निशानेबाजी की। ISF शॉटगन वर्ल्ड कप 2026 भारत का 20 सदस्यीय निशानेबाजी दल रविवार यानी आज से कजाकिस्तान के अल्माटी में शुरू हो रहे इस विश्व कप में अपनी चुनौती पेश करने के लिए तैयार है। मोरक्को में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम इस बार शानदार वापसी और पदक जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी। इस टूर्नामेंट में 42 देशों के 284 मुख्य निशानेबाज हिस्सा ले रहे हैं। इस विश्व कप की व्यक्तिगत स्पर्धाओं के विजेता सीधे दिसंबर में इटली के रोम में होने वाले ISSF विश्व कप फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। भारतीय दल में इस बार कुछ बड़े बदलाव हुए हैं और कई स्टार खिलाड़ियों की वापसी हुई है। पेरिस ओलंपिक खेल चुके मौजूदा एशियाई चैंपियन अनंतजीत सिंह नरू का वापसी कर रहे हैं, और उनके साथ ही अनुभवी ओलंपियन मेराज अहमद खान प्रूस स्कीट को ही कमाल संभालेंगे। और आइए अब बात करते हैं एशियन बॉक्सिंग अंडर 15 और अंडर 17 की रिपोर्ट पर, जहां सिमरन बता रही हैं।
0: एशियाई अंडर 23 कुश्ती।
4: अब बात करते हैं एशियन बॉक्सिंग अंडर 15 और अंडर 17 चैंपियनशिप, जहां ताशकंद उज्बेकिस्तान से भारत के लिए बहुत ही गौरवशाली खबरें आ रही हैं। एशियन अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आज भारतीय मुक्केबाजों ने रिंग में अपना दम दिखाया है। सबसे पहले बात करते हैं लड़कियों के पिनवेट कैटेगरी की। 17 साल से भी कम उम्र की 46 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की राखी ने रिंग में उतरते ही कोहराम मचा दिया। उन्होंने श्रीलंका की मुक्केबाज को पहले ही राउंड में धूल चटा दी। रेफरी ने मैच को रेफरी स्टॉप कॉन्टेस्ट के जरिए रोक दिया और राखी को विजेता घोषित किया। दूसरी जीत आई फ्लाईवेट कैटेगरी से। 17 साल से कम उम्र के 50 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की ओवी अभिजीत अंडवात का मुकाबला ईरान की बॉक्सर से हुआ। ओवी ने अपनी फुर्ती और सटीक पंचों से मैच जीत लिया। 5-0 के सर्वसम्मत फैसले के साथ ये नतीजा सामने आया। और तीसरी खबर है 42 किलोग्राम यानी लाइट बैंटम वेट कैटेगरी से, जिसमें भारत की ममता मुरलीधर राउत ने थाईलैंड की मुक्केबाज को चारखाने चित कर दिए। अब बात करते हैं वर्ल्ड रिले फाइनल्स के क्वालिफाई की, जिसमें कोई भी भारतीय टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई है। हालांकि सभी भारतीय टीम के लिए 2027 बीजिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने का एक अच्छा मौका है। इसके साथ साथ ही इसके सेकंड राउंड की बात करें तो इसमें मिक्स्ड 400 मीटर रिले क्वालिफाइंग जैसे मैचेस हैं, और साथ ही साथ अगर मेंस की बात करें तो मेंस में भी 4x100 मीटर रिले क्वालिफाइंग, इसके साथ साथ इसमें और भी इसी तरीके के मैचेस शामिल हैं। तो अब साथ ही साथ बात कर लेते हैं AFC अंडर 15 की, तो सुनिए ये रिपोर्ट जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, तो सुनते हैं ये रिपोर्ट। AFC अंडर वुमेन 17 एशिया कप 2026 में एशिया की उभरती टीमें अपने हुनर का दम दिखाने उतर चुकी हैं। भारत की युवा टीम भी 21 साल बाद इस टूर्नामेंट में वापसी कर रही है। ये प्रतियोगिता सिर्फ एक ट्रॉफी की लड़ाई नहीं है बल्कि आने वाले सितारों की पहचान का मंच भी है। चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया जैसी मजबूत टीमें इस खिताब की दावेदारी माने जा रहे हैं। भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशियन कप 2026

0: अभियान की शुरुआत हार के साथ की है। चीन के सुझाऊ ताइहू फुटबॉल स्पोर्ट्स सेंटर में खेले गए ग्रुप बी मुकाबले में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से हराया। 21 साल बाद इस टूर्नामेंट में वापसी कर रही भारतीय टीम ने मुकाबले में जुझारूपन और संघर्ष किया। कोच पामेला कॉन्टी की युवा टाइगर्स ने मजबूत ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ पूरे मैच में हिम्मत नहीं हारी। पहले हाफ में ऑस्ट्रेलिया ने गेंद पर ज्यादा कब्जा रखा और लगातार भारतीय गोल पोस्ट पर दबाव बनाया। मैच के 25वें मिनट में थियोडोरा मुइथीस ने गोल कर ऑस्ट्रेलिया को बढ़त दिलाई। भारतीय गोलकीपर मुन्नी ने कई बेहतरीन बचाव किए और टीम को बड़े नुकसान से बचाया। वहीं अब बात करते हैं संडे ऑन साइकिल के आज के इवेंट के जिसका पार्टनर था फार्मर वर्सेस फार्मर और एग्रीकल्चर स्टेक होल्डर। इसमें कई ऐसे गेस्ट भी शामिल थे जैसे कि मिसेस अनीसा नाकी जिकास जो कि शेफ हैं, स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, श्री विक्रम सिंह।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच 77 केंद्रों पर की जाएगी।
2: 294 सीटों में से पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती कल होगी। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के 3 स्तरीय इंतजाम किए गए हैं जिसमें जिला पुलिस, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। मतगणना स्थलों पर केंद्रीय बलों की कुल 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। ये पूरी प्रक्रिया रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के नियंत्रण में होगी। ये पहली बार है जब मतगणना प्रक्रिया के लिए वरिष्ठ IPS अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मतगणना प्रक्रिया का प्रबंधन एक टीम करेगी। इसमें सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो पर्यवेक्षक शामिल होंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
1: केरलम में 140 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना के लिए सुरक्षा तथा निगरानी के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुदुचेरी के मुख्य चुनाव अधिकारी पी जवाहर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि पुदुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों की मतगणना कराईकल, यानम और माहे में होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के लिए 35 जिलों के 40 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती की जाएगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर से मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी आई को दृष्टि मिशन के सफल प्रक्षेपण पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि ये मिशन भारत के निजी अंतरिक्ष नवाचार और आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती हुई ताकत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह और भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनके जुनून का प्रमाण है। उन्होंने गैलेक्सी आई के संस्थापकों और पूरी टीम को बधाई दी है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के शाहदरा स्थित विवेक विहार इलाके में हुए अग्निकांड में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है, जबकि घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। सरकार ने बच्चों में मधुमेह पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश हाल ही में संपन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण से संबंधित एक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में जारी किए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि ये दिशा निर्देश पहली बार बचपन में मधुमेह की जांच, निदान, उपचार और दीर्घकालिक प्रबंधन के लिए एक मान

0: आकाशवाणी से प्रस्तुत है चहल पहल।
1: इस अंक में आकाशवाणी के पूर्व उप महानिदेशक साहित्यकार कवि श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी द्वारा लिखित पुस्तक कवि के मन से का लोकार्पण समारोह, महाराष्ट्र स्थापना दिवस समारोह और कोंकण अल्फांसो आम उत्सव। 30 अप्रैल गुरुवार को आकाशवाणी के पूर्व उप महानिदेशक एवं साहित्यकार कवि श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी की कविता संग्रह कवि के मन से पुस्तक का लोकार्पण एवं परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष थी साहित्यकार श्रीमती ममता कालिया। आकाशवाणी से विशेष साक्षात्कार में कवि के मन से कृति के लेखक श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी ने बताया,
2: जो ये किताब है एक श्रृंखला है भारत के चुनिंदा कवियों को लेकर के, तो उसमें 21 कवि हैं और उसमें एक मैं भी हूँ। तो ये हमारी काव्य यात्रा को लेकर के इसमें मुख्यतः जो है वो छंदमुक्त कविताएं हैं, कुछ गजलें भी हैं, हाइकू वगैरह भी है, कुछ नवगीत वगैरह, तो एक मिला जुला सा इसमें है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें छंदमुक्त कविताएं हैं जो पहले कभी नहीं प्रकाशित हुई, गजलों के संग्रह आए थे, तो उसका यह लोकार्पण है। और बड़ी खुशी की बात है कि साहित्य जगत के बड़े बड़े हस्तियां जैसे ममता कालिया जी हैं, बाल स्वरूप राय जी हैं, बहुत सारे दिग्गज जो है साहित्यकार यहाँ शुभकामनाएं देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं, और हमें उम्मीद है कि ये जो संग्रह है ये लोगों तक जाएगा और मेरी बात वहाँ तक पहुँचेगी।
1: इस अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए इस आयोजन की अध्यक्ष श्रीमती ममता कालिया ने कहा,
3: ये कविता के अमिताभ बच्चन है, भगवान ने व्यक्तित्व भी ऐसा दिया है, आवाज बहुत अच्छी दी है और रेडियो की इतनी लंबी शिक्षण प्रशिक्षण सब इनके अंदर समाई हुई है। इनकी कविता में विचार है, वे खंडित प्रतिमाएं इनकी एक कविता है, मुझे इतनी अच्छी लगी और वो मैं हर बार सोचती हूँ जितनी बार दिवाली आती है कि अब पेड़ के नीचे मुझे सब ठिठुरते हुए मिलेंगे। ठंड आती है, दिवाली आती है तो थोड़ी ठंडक हो जाती और तब हम लोग अपने लक्ष्मी गणेश को उठा के किसी पेड़ के नीचे रख देते हैं। ये कविता पढ़ के मुझे लगा कि कवि ने कितना अच्छा सोचा, ये दोनों कविता जो है अपने आप में अद्भुत है। अब ये सब की सब रखती गई है एक पुराने बरगद के नीचे, यही तरीका है शायद कि संभव नहीं हो नदी में विसर्जन तो रख देते हैं खंडित प्रतिमाओं को किसी पेड़ के नीचे। अच्छा वो खंडित भी नहीं होती है, साल भर उनकी इतनी झाड़ पोंछ और लाड़ दुलार किया जाता है, थोड़ी सी धुआं भले ही लग गया हो खंडित कभी नहीं होती वो कभी, लेकिन हम लोग उसको जाकर क्या करते हैं पेड़ के नीचे रख देते हैं। पूजा घरों में प्रतिदिन इन्हीं के सामने खड़े होते थे लोग, अपनी संपूर्ण दयनीयता विनम्रता और भक्तिभाव समेटे जोड़े हुए कातर हाथ, यही बचाती थी बच्चों को रोगों से, दिलाती थी परीक्षाओं में नंबर, सुधार देती थी बिगड़ा हुआ पेपर, सुरक्षित ले आती थी बच्चों के पिता को दूसरे शहर से, ध्यान रखती थी हॉस्टल में पढ़ रही बेटी का, पूरी हुई कितनी मिन्नते इन्हीं की, मन्नते इन्हीं की पूजा से अभी उपेक्षित कर दी गई है। आते जाते कुछ राहगीर अभी भी जोड़ देते हैं हाथ श्रद्धावश, तब क्या करें इन्हें भी मिलती होगी उतनी ही खुशी जितनी की मिलती है स्वयं को उपेक्षित महसूसते वृद्ध पिता को लंबे अरसे बाद अपने बेटे का संदेश पाकर। इतना काव्यात्मक उसको बना देना आज की शाम बहुत अच्छी गई, शुभकामनाएं।
1: इस अवसर पर साहित्यकारों के आग्रह पर श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी ने अपनी कविता सुनाया।
4: वे लोग डिबिया में भरकर पिसी हुई चीनी तलाशते थे चींटियों के ठिकाने, छतों पर बिखेरते थे बाजरे के दाने की आकर चुक सके चिड़िया, वे घर के बाहर बनवाते थे एक हौदी की आते जाते प्यासे जानवर पी सके पानी, भोजन प्रारंभ करने से पहले वे लोग निकालते थे गाय और दूसरे प्राणियों का हिस्सा, सूर्यास्त के बाद वे लोग नहीं तोड़ने देते थे पेड़ से पत्ती तक, कि सूर्यास्त के बाद वे लोग नहीं तोड़ने देते थे पेड़ से पत्ती तक, कि खलल न पड़ जाए सोए हुए पेड़ों की नींद में, कि खलल न पड़ जाए सोए हुए पेड़ों की नींद में, जब चिड़ियों के झुंड आ जुटते थे उनकी फसलों पर, जब चिड़ियों के झुंड आ जुटते थे उनकी फसलों पर, तो वे उन्हें भगाने की बजाय कहते थे राम की चिड़ियां राम के खेत और खावरी चिड़ियों भर भर पेट।
1: एक मई शुक्रवार को कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित महाराष्ट्र सदन द्वारा महाराष्ट्र स्थापना दिवस एवं

0: कोंकण अल्फांजो आम उत्सव का आयोजन किया गया। आकाशवाणी से विशेष साक्षात्कार में महाराष्ट्र सदन की रेसिडेंट कमिश्नर एवं सचिव महाराष्ट्र सरकार आर विमला ने बताया,
1: सेलिब्रेशन किया, फ्लैग होस्टिंग की। 1960 में जब स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन हुए थे बेस्ड ऑन लैंग्वेजेस, तो गुजरात और महाराष्ट्र दो स्टेट्स बने थे और आज के दिन हम इसी को सेलिब्रेट करते हैं बहुत ही धूमधाम से। चूंकि दिल्ली में महाराष्ट्र सदन यहाँ के इम्पोर्टेंट सेंटर है, तो हम चाहते कि लोगों तक यहाँ का जो है कल्चर महाराष्ट्र का हो या इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स, वो तो हम दिखाते ही आ रहे हैं। इस बार भी जैसे हमने सुबह फ्लैग होस्टिंग करने के बाद, जो हमारी महाराष्ट्र की परंपरा है, बेसिकली हमने मैंगो फेस्टिवल एक ऑर्गेनाइज किया था। कोकण का जो मैंगो है, हापुस अल्फोंसो नाम से जाना जाता है, और इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें पल्प नहीं होता है, जिस तरह का मेल्ट इजिली हो जाता है, तो ये इसकी खासियत है। इसका स्वीटनेस बिकॉज लैटराइट सॉइल में होता है, तो वो एक अलग से स्वाद होती है, खुशबू भी अलग होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है इस साल हमने जो लाया हुआ, ये पिछले साल भी हमने कोशिश की थी, GI टैग्ड है, और इसमें ट्रेसेबिलिटी कि आपको ये मैंगो किस फील्ड से निकला हुआ है, किस पेड़ से है, तो UID इसको टैग होता है। तो हर मैंगो के ऊपर हम लोग ये मशीन से चेक करके कि इसमें कुछ फॉल्ट तो नहीं है, पूरा स्कैनिंग होती है, उसके बाद उसमें GI टैग रहता है क्योंकि इसका कौन से लोकेशन से है, और उसकी ट्रेसेबिलिटी के लिए हम लोग इसके ऊपर एक वो उसका नंबर भी लगाते हैं। तो ये इसकी खासियत है, मुझे लगता है कि हम लोग हर मैंगो को ट्रेस कर सकते हैं, और ऑथेंटिसिटी की बात है, क्योंकि बाजार में आज हम लोग देखें तो दिल्ली में कई जगह मैंगोज बिक रहे हैं महाराष्ट्र के, पर ऑथेंटिसिटी के बारे में हम कह नहीं सकते। तो इसलिए हम चाहते थे कि महाराष्ट्र का जो मैंगो किंग ऑफ फ्रूट सबसे फेमस है, तो महाराष्ट्र डे के साथ जोड़कर जो हमने फ्लैग होस्टिंग की, उसके बाद ये शुरू करवाना बड़ा अच्छा लगा हमको। और इवनिंग में हमने एक यहाँ पर एक लोक उत्सव का कार्यक्रम रखा है, जिसमें महाराष्ट्र की लोक कला है, बिकॉज महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली अगर हम लोग देखें तो अलग अलग प्रकार के फोक डांसेस तो है ही, जैसे तारपा हो या अमरावती साइड की कोई डांसेस हो, लावणी तो बहुत फेमस है, सबको पसंद भी है, पुवाड़ा जो हीरोइक गीत होते हैं वो होता है, ये सारा हम लोगों को पेश करने के लिए इवनिंग में एक रंगारंग कार्यक्रम भी रखा हुआ। दो तीन चीजें कंबाइन करने की वजह से मुझे लगता है महाराष्ट्र को हम अच्छी तरह से पेश कर पाएंगे। तो बहुत सारे ख्याल थे महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र की सुंदरता या टूरिज्म, बड़े अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पे। 2027 में यहाँ पे कुंभ मेला भी होने वाला है जो नासिक में, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि महाराष्ट्र अलग अलग तरीके से, शिरडी बहुत ही फेमस है, तो हम लोग यहाँ पे एक हेल्प डेस्क भी स्थापन करने का सोच रहे हैं। पर सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि जो मैंगोज हमारे यहाँ आए, तो लोगों ने हमें इतना सराहा, एक्चुअली 3 ही घंटे में सारे 1000 बॉक्सेस जो थे खत्म हो गए, इसलिए हमने सोचा कि अगले साल इसको ज्यादा बड़े पैमाने पे यहाँ ले आए। और उसके लिए हमने ऐसे भी सोचा है कि 2 या 3 समय में लाए, कि इस साल क्या हो गया था कि काफी सारे मैंगोज बारिश जो अलग अलग समय पे आई, तो नुकसान काफी क्रॉप का हुआ था। तो अगले इस बार हम लोग सोच रहे कि शुरू से हम लोग जैसे मार्च एंड में एक बार, अप्रैल के फर्स्ट सेकंड वीक में 1-2 बार, और फिर लास्ट में जब अभी मई का रहता है, लास्ट वाला जो लॉट रहता है उसको ले आए, ताकि लोगों का रिस्पॉन्स देकर हम लोग उस तरह से प्लान करके एक्स्ट्रा मैंगोज भी ला सकते हैं।
0: इस अवसर पर आम की गुणवत्ता से जुड़े हुए एक प्रदर्शक श्री प्रशांत यू यादव ने आकाशवाणी से विशेष साक्षात्कार में बताया,
2: GI UID ट्रेसेबिलिटी सील्स को पिछले 3 साल से पेटेंट ग्रांट हुआ है, और एक पेटेंट टेक्नोलॉजी में पिछले 2 साल से देवगढ़ के अल्फांसो यानी हापुस आम पे हमने ये प्रयोग किया है। कृषि विभाग महाराष्ट्र शासन के हेल्प से हमने यहाँ पर आम लाए थे, और इस कार्यक्रम की विशेषता ये है कि देवगढ़ को जो GI आइडेंटिफिकेशन मिला है, उसकी कुछ वैशिष्ट, उसकी कुछ इम्पोर्टेंट चीजें ऐसी है कि उसकी जो लैंड है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसके वजह से इस आम का टेक्स्चर, अरोमा, मतलब उसकी जो सुगंध है, ये बहुत ही अलग हो जाती है किसी और टाइप के हापुस या अलग मैंगो से। चीजें ऐसी है कि आप जैसे बनाना पील करते हैं, वैसे मैंगो को पील कर सकते हैं, अरोमा बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। ये ट्रेसेबिलिटी के UID यूनिक सील्स हम उस मैंगो पे लगा रहे हैं, उसके वजह से होता है ऐसा है, आप जब चेक करते हैं कि ये आम जेन्युइन है कि नहीं, उसको ऑथेंटिकेशन करने के बाद ग्राहक के मोबाइल पे ये संदेश आता है कि ये इट इज अ जेन्युइन मैंगो, ये मैंगो इस फार्म से आया हुआ है, इसकी हार्वेस्टिंग ये तारीख को हुई, स्प्रेइंग ये तारीख को हुई, इस फार्मर ने उगाया है, ये फार्मर का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसका एड्रेस, और ये सब देवगढ़ तालुका आंबा उत्पादक सहकारी संस्था के अंदर हुआ है। तो इस तरह से हैंड होल्डिंग हो जाती है फार्मर की और कंज्यूमर की। तो डायरेक्ट सेल भी चालू हो गया है, इसके वजह से कम्युनिकेशन अच्छा बढ़ गया है, ट्रस्ट बढ़ गया है, ब्रांड वैल्यू देवगढ़ की अच्छी हो रही है। दिल्ली जैसे शहर में, इतने बड़े शहर में, इस महाराष्ट्र सदन में, इतना बड़े फैसिलिटी में हम फार्मर्स को लेके आके।
3: इसी के साथ चहल पहल का आज का ये अंक यही संपन्न होता है।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चहल पहल। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़। DRM

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को
1: राम राम।
0: अश्वनी भाई, देखिए आज के समय में तनाव, चिंता और अवसाद जैसी अनेक समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं
1: जी।
0: और ऐसे में भाई हंसी की अगर बात करें तो हंसी एक प्राकृतिक दवा की तरह काम करती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हर साल जो मई महीने का जो पहला रविवार आता है, जैसे कि आज है
1: जी,
0: वो भाई विश्व हास्य दिवस रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को हंसाने के लिए प्रेरित करना और साथ ही तनाव मुक्त जीवन की ओर बढ़ना है। और भाई इस दिन का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि देखिए विश्व हास्य दिवस की शुरुआत एक खास मिशन के तहत हुई थी, जिसका मकसद दुनिया भर में शांति और भाईचारे को बढ़ावा देना है। यह दिन हेल्दी और पॉजिटिव लाइफस्टाइल की ओर एक और कदम है। यहाँ जानिए विश्व हास्य दिवस की शुरुआत कैसे हुई। तो देखिए भाई, इसकी शुरुआत 11 जनवरी 1998 में मुंबई में हुई। और हंसी के द्वारा तनाव कम करना, सकारात्मक फैलाना और दुनिया को स्वस्थ बनाना, साथ ही हंसने के सुनी भाई और भी फायदे हैं कि इससे देखिए शरीर में ऑक्सीजन का संचार बढ़ता है और तनाव कम होता है और मानसिक शांति भी मिलती।
2: और देखिए ना कहीं भागती दौड़ती जैसे दुनिया में ज़िंदगी में तनाव, जैसे आप बात कर रहे हैं तनाव और चिंता की कि परेशानी हो कि आम हो गई है, ऐसे में अगर कोई चीज़ हमें तुरंत सुकून देती है तो वो है सच्ची दिल से निकली हुई हंसी। जैसे देखते हैं ना आजकल, आप जैसे आपने बताया 1998 में इस दिवस की शुरुआत की गई और इसके फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं। देखिए ना, हंसते हंसते जब हम प्रोग्राम करते हैं तो आप कि जो मांसपेशियां हैं वो फैल जाती हैं, खून का जो दौरा है वो बढ़ जाता है, जिससे दिमाग में ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है, जिससे जो तनाव आपके अंदर आने वाला है या आ रहा है तो वो हंसी कहीं ना कहीं उसे कम कर देती है, जिससे आपको गुस्सा, उस समय जो गुस्सा आ रहा है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है और दिल और दिमाग तरोताज़ा रहता है, रिश्तों में मिठास रहती है। क्योंकि देखिए ना, जब भी तनाव आएगा तो आपस में एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं झगड़ा होने की संभावना बढ़ जाती है, वहीं पर अगर हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों में मधुरता अधिक फैलती है।
0: बिल्कुल असुनी भाई, हम तो देखिए अपने सभी बहन भाइयों को यही कहेंगे, हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है, हंसकर किया हुआ काम आपकी पहचान बढ़ाता है, तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ देखिए मुस्कुराते, आप आज देख रहे हैं कि आजकल इतना तनाव हो गया है, लोगों के वर्क प्रेशर इतना बढ़ गया है, काम का प्रेशर इतना बढ़ गया है कि लोग कहीं ऐसे लगता है कहीं ना कहीं मुस्कुराना उन्होंने वो भूल गए हैं। तो ऐसे ही इन दिवसों को मनाया जाता है कि इसकी महत्वता आप समझिए, मुस्कुराइए, काम कीजिए और मुस्कुराते मुस्कुराते इस ज़िंदगी के सफ़र को आगे ले जाइए।
0: बिल्कुल, देखिए विश्व हास्य दिवस के साथ साथ आज 3 मई है, तो भाई आज हम विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी मना रहे हैं। और इस दिवस को जो मनाने का उद्देश्य है, प्रेस की स्वतंत्रता के सिद्धांतों की रक्षा करना, पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन पत्रकारों को श्रद्धांजलि देना है जिन्होंने अपनी जान गंवाई। और यह दिवस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्र जो पत्रकारिता के महत्व को रेखांकित करता है।
2: बिल्कुल, इस दिवस को जो शुरुआत, चूँकि जो शुरुआत है संयुक्त राष्ट्र शिक्षित वैज्ञानिक एवं संस्कृति संगठन यूनानी यूनेस्को द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य था पत्रकारों की स्वतंत्रता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना, मीडिया के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना, सच्चाई और पारदर्शिता को बढ़ावा देना। ये एक ऐसा समाज न तो आगे बढ़ सकता है और ना ही न्यायपूर्ण बन सकता है, इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता बेहद बेहद बेहद ज़रूरी है।
0: तो चलिए सुनी भाई, बातचीत भाइयों से और करेंगे। देखिए आज पत्रोत्तर पर आधारित लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम है, भाइयों की जो बेसब्री से इंतजार होगा कार्यक्रम का।

0: और भाई जो आज के हमारे पहले कलाकार हैं वो है योगेश कुमार, और योगेश कुमार से जो रागनी सुनने के लिए खत आपके हाथ में दिखाई दे रहे हैं।
1: जी पहला खत मैं ले लेता हूँ, ये योगेश कुमार को सुनना चाहा है, हमारे साथी हैं पराली छत्तीसगढ़ से, इन्होंने भेजा है। नितेश कुमार देवगन, दुर्गा प्रसाद देवगन और तनुजा देवगन, ईशांत देवगन, उनका पूरा परिवार और गांव।
0: इसी क्रम
1: जी
0: में जो
1: जी
0: अगली फरमाइश हमें मिली है, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवीर जसी सीता और गीता, और इसी क्रम में अगली फरमाइश हमें मिली है कबीर रेडियो श्रोता संघ छत्तीसगढ़ से, देवशंकर तुमारिया, अजय देव, तुषार देव और उनका समस्त परिवार।
1: और ये वांडी खेड़ा पंजाब से लिखते हैं, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा और उनका पूरा परिवार। ये जसपुर उत्तराखंड से लिखते हैं, जिन्होंने सुनना चाहा है योगेश कुमार को। ये हुसैन, नायजा बेगम सिद्दीकी और मोहम्मद रेहान, समीर परवीन और उनका पूरा परिवार।
0: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है, ये फरमाइश हमें मिली है चंडीगढ़ से, और इसको भेजने वाले हैं सतीश नेजा, बिमला नेजा, आप भी योगेश कुमार को सुनना चाहते हैं।
1: ये गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी और उनका पूरा परिवार जो सुनना चाहता है योगेश कुमार को। और एक और पत्र शामिल करते हैं, ये है पुराना तालाब डुमराऊ से है, वलीउल्लाह अंसारी, बेगम नवाज अंसारी और उनका पूरा परिवार। जेल रोड बक्सर से एक और राज एस डी अंसारी, फातिमा राज अंसारी, उनका पूरा परिवार।
0: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है वो मिली है दुर्गा कॉलोनी हांसी से, और भेजने वाले हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और उनका समस्त परिवार। साथ ही हमें जो फरमाइश मिली है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश, पूनम, विशाल, प्रिया और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: और ये करनाल से हमें पत्र में भेजा है, ये है सोमनाथ कालिया जी का पत्र है इन्होंने, और उनका पूरा परिवार है। ये पत्र और मिला है वो ऊपर कोट मोहल्ला चौकटी बुलंदशहर से, मोहम्मद साबिता अंसारी, शहनवाज अब्बासी, सफदरजंग अब्बासी, फरीदीन अब्बासी और उनका पूरा परिवार।
0: योगेश कुमार को ही सुनना चाहते हैं कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा।
1: और ये पत्र भेजा है, कलानौर से पत्र मिला है, ये नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा और उनका पूरा परिवार।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा और बबीता भोट की।
1: फैतमा कॉलोनी श्री रामपुर महाराष्ट्र से है, ये नासिक शेख, साहिदा और सईदा, उनका पूरा परिवार।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है भाई ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से, और इसको भेजने वाले हैं बलकरण वर्मा, अंजलि, ज्योति, निधि और उनका समस्त परिवार।
1: और एक पत्र पढ़ देते हैं, जिन्होंने सुनना चाहा है इसको योगेश कुमार को। ये गांव खोखरी वाला से पत्र मिला है, विनोद कुमार बरसाना, विशाल बरसाना, विकास बरसाना, रोशनी बरसाना और सुगम बरसाना और उनका पूरा परिवार।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से, उसको भेजने वाले हैं ताज मोहम्मद, गुलाम साबिर और उनका समस्त परिवार। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं योगेश कुमार से ये रागनी।
1: जी

0: खाना पीना छुट जागा तेरा दूध मलाई का रे। हाँ
1: सुनी भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर रागनी सुनी योगेश कुमार से, और किस्सा था सत्यवान सावित्री का
2: जी।
1: और देखिए, सरकार द्वारा जो देश के विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाई जाती रही हैं, ऐसी एक योजना है स्वदेश दर्शन योजना। और इस योजना का जो जो मुख्य उद्देश्य है वो भारत में पर्यटन की क्षमता को बढ़ावा देना, विकसित करना, उसका दोहन करना, और साथ ही स्वदेश दर्शन योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय सर्किट के जो संरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों और प्रशासन को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना की परिकल्पना स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया आदि जैसे अनेक अन्य योजनाओं के साथ साथ मेल बिठाने के लिए की गई है, जिसमें पर्यटन क्षेत्र को रोजगार सृजन, आर्थिक विकास के लिए शक्ति, विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल बनाने तथा पर्यटन को अपनी क्षमता का एहसास हो सके एक प्रमुख इंजन के रूप में स्थान दिया गया।
3: बिल्कुल। और देखिए ना, योजना कोई सी भी क्यों ना हो, सरकार पूरी की पूरी इसकी रूपरेखा तैयार करती है, जो जाके कहीं ना कहीं योजनाएं लाई जाती है और उसका रूप निखारा जाता है। और कहीं ना कहीं देखिए, इस योजना का जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं महत्व बहुत अधिक जब बढ़ जाता है, जब जब इससे

0: और रोज़गार के जो अवसर हैं ना वो पैदा होते हैं। देखिए अब अगर हम अगर इस योजना से सबसे बड़ा फ़ायदा हमें मिल सकता है कि होटल है, गेस्ट हाउस है, गाइड है, ट्रांसपोर्ट है, हस्तशिल्प स्थानीय उत्पादों की बिक्री है, इसके ना इस इसके अलावा ना केवल पर्यटन बढ़ता है बल्कि गांव में छोटे शहर और अधिक रूप से मौजूद बनते हैं स्थानीय। देखिए ना, कहीं हम ये देखते हैं बार बार कि जो गाँव का युवा है वो पढ़ लिख कर शहरों की तरफ जाना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, गांव में रहना ही नहीं चाहता। मतलब ये चाहता है कि खेती बाड़ी से जुड़ना नहीं है, बल्कि खेती बाड़ी और इसकी अपार संभावनाएं हैं इस उस खेती बाड़ी को लेकर। पशुपालन भी हो सकता है कहीं पर, और है ना, वहाँ पर पशु पाले भी जा सकते हैं, मछली पालन भी हो सकता है, मधुमक्खी पालन भी हो सकता है। वैसे ही ऐसे गाँव में रहकर भी उद्योग धंधों को अपनाया जा सकता है, जिससे इस सुविधा का आप लाभ उठा सकते हैं। हमारे युवा गांव में रहकर ही ऐसी इस संरचनाएं विकसित कर सकते हैं जिससे गांव का विकास होगा तभी शहरों का विकास होगा, और शहरों का प्रजा का विकास होगा तभी हमारे देश का संपूर्ण विकास हो सकता है। ऐसी योजनाएं सरकार लाती हैं, तो इन सब योजनाओं का फ़ायदा हमें ज़रूर ज़रूर उठाना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा सुनी भाई। और आज के हमारे अगले कलाकार हैं यशवीर, और यशवीर को सुनने के लिए जो पहली फरमाइश मिली है ये रश्मि झरना और भरत कुमार की, लेकिन इन्होंने अपनी जगह का नाम लिखा है भाई। हम
0: जी
1: कार्यक्रम के माध्यम से कहते
0: जी
1: रहते हैं कि भैया अपनी जगह का नाम भी आप लिखा करें।
0: बिल्कुल, ये हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से है, सुल्तान सिंह, कपिल देव इमानी और उनका पूरा परिवार, और छत्तीसगढ़ डुमराव गांव से ये पत्र में लिखा है राजपाल भगेजिया, राधिका तमन्ना और उनका पूरा परिवार।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली है गांव खारिया ढाणी जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह, देवेंद्र, राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही हमें फरमाइश मिली है बठिंडा रोड मंडी से, उसको भेजने वाले राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और उनका समस्त परिवार।
0: और ये पत्र भेजा है आदर्श नगर मालोट पंजाब से है, राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेडी शर्मा और उनका परिवार जिन्होंने सुनना चाहा है यशबीर जी को। और एक और ये पत्र हम शामिल कर लेते हैं, ये पत्र मिला है हमें गांधी गुजरात से, सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल राठौड़ उनका पूरा परिवार।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश हमें हनुमानगढ़ से मिली है, इसको भेजने वाले जाक मोहम्मद समीम बेगम और उनका समस्त परिवार। साथ ही हमें फरमाइश मिली है भाई नूर महल महसूल सीतामढ़ी से, और इसको भेजने वाली है मुर्शद जहाँ और उनका समस्त परिवार।
0: और ये एक और पत्र मिला है, ये है नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाजा मंजिल महलौल सीतामणि से है, ये अकरम जी हैं, वसीम, रुबीना, नदीम, शमी व उनका पूरा परिवार।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली छत्तीसगढ़ हसदा नंबर 2 कमलेश साहू और जितेंद्र साहू, पायल साहू की। इसी क्रम में अगली फरमाइश हमें मिली है ग्राम रजौनी जिला महोब बुलंदखंड उत्तर प्रदेश से, उसको भेजने वाले उदयपाल, जयंतपाल, दीक्षापाल, प्रतीक्षापाल और उनका समस्त परिवार।
0: ये कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी वाली से पत्र लिखते हैं, ये इन्होंने सुनना चाहा है यशबीर जी को, ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय उनका पूरा परिवार। ये दुबहिया नेदवाला जिला गाजीपुर से पत्र भेजा है, प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय उनका पूरा परिवार।
1: तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं यशवीर से ये रागनी।

0: अश्विनी भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद का रागनी सुनी यशवीर से, और किस्सा था गोपी चंद का। और देखिए, आज के जो अगले कलाकार हैं वो तेजवीर विदुड़ी, और तेजवीर विदुड़ी को सुनने के लिए पहली फरमाइश मिली गांव चौधरी वास हरियाणा से, मांगे राम सतौड़, रितु हिमानी और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: जी
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है भाई गांव पनियार चक्कर हरियाणा से, उसको जो भेजने वाले हैं
1: इन्होंने
0: भाई।
1: देखो असल भाई, इन्होंने कहा है कि जो ग्राम जनसा कार्यक्रम बहुत ही ज़ोरदार है, बहुत ही अच्छी रागनी उससे मजा आती है, और हमें हमें कोई भी रागनी में शामिल कर लें। देखिए अब श्रोता जो है वो जो मोलू कसवाना है वो इतना तारीफ़ कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम की, क्योंकि अपार बहुत दूर दूर तक अब हमारा कार्यक्रम जाता है और लोग बहुत उसको सुनते हैं।
0: और इसी
1: और
0: क्रम में अगली फरमाइश मिली रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से, लाल सिरवाला हेमलता हीना और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही हमें फरमाइश मिली है संदीप मकड़ पिंगा वाला चौक जालंधर से।
1: ये पत्र हमें मिला है शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया इब्राहिम और इनका पूरा परिवार सहारनपुर कुमारहेड़ा गांव से लिखते हैं।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है धनोरी तेले वाला उत्तराखंड से, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू की।
1: सादुल शहर से पत्र राजस्थान से लिखते हैं राजकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़, उनका पूरा परिवार।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश हमें मिली है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, अनिल मोहन, उषा मोहन और टीलू नायक की। साथ ही फरमाइश मिली है कैथल हरियाणा से, मधु नायक।

0: और ये भोला कॉलोनी घोंगड़ा जिला करनाल हरियाणा से पत्र में हमें लिखते हैं, जिन्होंने सुनना चाहे तेजपुर भदौड़िया को, विजेंद्र कुमार जयान, कांता रानी, गुंजन साहिल और उनका पूरा परिवार।
1: और देखिए सुनी भाई, काफ़ी फरमाइश और भी हमें मिली हैं जो हम अपने अगले कार्यक्रम कृषि जगत में शामिल करेंगे। तो देखिए भी 7:05 कार्यक्रम कृषि जगत अवश्य सुनते रहिए। और अब सुनवाते हैं आप सभी की पसंद पर तेजरी विदुड़ को।

सुनी भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर रागनी सुनी तेजवीर विधुड़ी से, और तेजवीर विधुड़ी की गाई इस रागनी के साथ ही आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल, ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम, राम।

नमस्कार, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 केंद्रों पर की जाएगी।
1: 294 सीटों में से पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती कल होगी। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के 3 स्तरीय इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जिला पुलिस, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। मतगणना स्थलों पर केंद्रीय बलों की कुल 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। ये पूरी प्रक्रिया रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के नियंत्रण में होगी। ये पहली बार है जब मतगणना प्रक्रिया के लिए वरिष्ठ IPS अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मतगणना प्रक्रिया का प्रबंधन एक टीम करेगी। इसमें सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो पर्यवेक्षक शामिल होंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
0: उधर केरलम में 140 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। तमिलनाडु में 62 और असम में 40 केंद्रों पर वोटों की गिनती की जाएगी। पुदुचेरी के मुख्य चुनाव अधिकारी पी जवाहर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि पुदुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों की मतगणना कराईकाल, यानम और माहे में होगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद यह निर्णय लिया गया है। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप गैलेक्सी स्पेस ने आज स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से अपने उपग्रह मिशन दृष्टि का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, जिससे भारत के निजी क्षेत्र ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। ये मिशन वैश्विक प्रक्षेपण मंच पर भारत के उन्नत स्वदेशी नवाचार का प्रदर्शन करता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दृष्टि मिशन के सफल प्रक्षेपण पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह मिशन भारत के निजी अंतरिक्ष नवाचार और आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह और भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण के प्रति जुनून का प्रमाण है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गई। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अग्निकांड में हुए जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उन खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि आधार कार्ड का स्वरूप इस साल के अंत तक बदलकर केवल एक फोटो और एक QR कोड वाला हो जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। ईरान ने शांति वार्ता में गतिरोध समाप्त करने के प्रयास में आज अमेरिका को एक नया प्रस्ताव भेजा है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के इस नए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि अमेरिका द्वारा किसी भी ऐसे ढांचे को स्वीकार करने की संभावना नहीं है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने की ठोस गारंटी शामिल न हो। IPL क्रिकेट में हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद के 166 रन के लक्ष्य को कोलकाता ने 19वें ओवर में 3 विकेट पर 169 रन बनाकर हासिल कर लिया। दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: अश्विनी भाई, देखिए, अनाज भंडारण का सही तरीका और उपकरणों का जो रखरखाव फसल की सुरक्षा और उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल।
0: तो भाई, भंडारण से पहले हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक तो देखो, अनाज को 2 से 3 दिनों तक तेज धूप में अच्छी तरह सुखाएं ताकि नमी 10 से 12% से अधिक ना रहे।
1: जी।
0: साथ ही भाई, साफ सफाई का देखे, भंडारण वाले स्थान को कोठी गोदाम की दरारें सीमेंट से बंद कर दें अगर दरारें कोई हैं तो। और साथ ही भाई देखे, जूट के बोरे में अगर आप भंडारण करते हैं तो बोरियों में अनाज को जमीन से 2-3 फीट ऊंची लकड़ी के चबूतरे या रैक पर रखें जो दीवार से 1.5 या 2 मीटर दूर रहे, जिससे कि सीलन वगैरह ना आए।
1: बिल्कुल।
0: और साथ ही देखे भाई, मिट्टी की जो कोठी या लोहे के ड्रम में अनाज भंडारण, उसे अच्छी तरह से एयर टाइट कर दें। भंडारण के बाद आप उसके जो ढक्कन के दरवाजे को अच्छी तरह से टाइट कर दें। साथ ही गोदाम में अगर चूहों के बिल हैं या इस तरह के जो चूहे दिखाई देते तो भाई उनका भी नियंत्रण करना है और चूहेदान आदि के प्रयोग से उनको पकड़ना है।
1: और देखिए, साथ साथ में देखिए, उपकरण की बात आती है तो जैसे जैसे ट्रैक्टर है, जैसे प्रेशर है, प्रेशर मशीन है आदि, जो हमारे सच्चे साथी हैं, अगर इनका सही रख रखाव ना किया जाए तो काम में रुकावट आएगी और खर्च भी बढ़ सकता है। तो इनके उपकरणों का को हर उपयोग के बाद उपकरण को साफ़ करें, मिट्टी और गंदगी सब हटा दें और समय समय पर जाँच और मरम्मत करें। ढीले बोल्ट और नट कस दें, खराब हिस्सों को तुरंत बदल दें और तेल और ग्रीसिंग का उपयोग करें। मशीनों को समय समय पर ऑयलिंग और ग्रीसिंग करें। इससे मशीनें की उम्र भी बढ़ती है और साथ साथ जब हम उनका काम लेते हैं तो भी वो आसानी से शुरू हो जाती हैं। उपकरणों को वो सूखी और सुरक्षित जगहों पर रखें, बारिश और धूप से बचाएं और साथ साथ में ध्यान रखें कि उपकरणों का उपयोग सावधानी से करें और काम करते समय सुरक्षा नियमों का पालन ज़रूर करें।
0: तो देखिए भाई, इस तरह से सुनी भाई ने बताया, छोटी छोटी बातों का आपको अवश्य ध्यान रखना है। और जैसा कि हमने पिछले कार्यक्रम में बताया भाई, कुछ फरमाइश हमें और भी मिली हैं
1: जी।
0: तो आज के हमारे कलाकार हैं जो विकल गुजर, और उनसे उपदेश सुनने के लिए पहली फरमाइश मिली है भाई गांव कलाना तहसील भादरा हनुमानगढ़ राजस्थान से। उसको भेजने वाले विक्रम, सचिन, सतीश, योगेश और उनका समस्त परिवार।
1: और ये एक और पत्र पढ़ लेते हैं। ये है पदमपुर ज़िला गंगानगर राजस्थान से, मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा और उनका पूरा परिवार। और ये कुंडी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से है, रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान और बेबी गर्वी और उनका पूरा परिवार। और ये एक और पत्र शामिल करते हैं, ये है ताला वार्ड महेंद्रगढ़ से विजय सिंह प्रकाश सूबेदार और उनका पूरा परिवार।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है गांव मुरादगढ़ जिला करनाल हरियाणा से रमेश कुमार कम्बोज, पिंकी वंश और उनके समस्त परिवार की तरफ से। पदमपुर जिला श्री गंगानगर से फरमाइश मिले हैं मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही फरमाइश मिली है कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से, और इसको भेजने वाले रमेश चंद्र और उनका परिवार।
1: ये बाबा कुट्टी रायगढ़ से पत्र में लिखा है, जिन्होंने सुनना चाहे विकल गुजर को। यह है शिव कुमार चौहान, सक्रांति चौहान, रिश्तेश कुमार, उनका पूरा परिवार। और एक और पत्र में यहाँ पर शामिल कर लेता हूँ, ये है टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से है, विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा और उनका पूरा परिवार।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है ग्राम ममना जिला अमीनपुर बुलंदखंड उत्तर प्रदेश से रामचरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना और उनके समस्त परिवार की तरफ से। इसी क्रम में अगली फरमाइश हमें बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल, कौशल्या, हेमलता, डिंपल और उनके समस्त परिवार की तरफ।
1: ये भोपालगढ़ राजस्थान से पत्र में मिला है, दीपेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिवार उनका परिवार, जिन्होंने सुनना चाहे विकल गुजर को। और ये दादरी गेट भिवानी से पत्र में लिखते हैं, कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, उनका पूरा परिवार। और
0: साथ ही हमें फरमाइश मिले मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप नूतन और उनके समस्त परिवार।
1: जलालपुर जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से पत्र लिखते हैं, यशवंत कुमार प्रजा।

0: प्रजापति, शिवम प्रजापति और मुनिश देवी और उनका पूरा परिवार।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश मिली हनुमानगढ़ नज़दीक बस स्टैंड से भेजने में रमन वर्मा, अवन वर्मा और दिव्यांश वर्मा और उनका समस्त परिवार।
0: भिलाई छत्तीसगढ़ से पत्र में मिला है मुकेश शर्मा, गौरव गरिमा और उनका पूरा परिवार जिन्होंने सुनना चाहे बिल्कुल गुजर को। और ये है बादलापुर मुंबई से लिखते हैं सिद्धांत, पंडिता, अर्जुन उनका पूरा परिवार।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है संबलपुर।

0: ज्योति यादव और ओजस्वी यादव की। साथ ही हमें फरमाइश मिली है भाई फारस रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से, इसको भेजने वाले राजेश साबेल पाटिल, राजदीप और उनका समस्त परिवार।
1: ये जनकपुरी सहारनपुर से पत्र हमें मिला है जॉन डिकोस्टा, रोजी डिकोस्टा, पाटिल डिकोस्टा और उनका पूरा परिवार।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है अनारकली वजार जगरो से, इसको भेजने वाले हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और भाई सुचा सिंह पाठक, विनोदपुरी और जयपाल यादव।
1: ये पत्र हमें मिला है गांव हंडीखड़ा जिला से हिसार से राधे राम शर्मा, इंद्र शर्मा, साधक शर्मा और सुनना चाहे विकल गुजर को।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है जटवाड़ा गाजियाबाद से शीशपाल अकेला की।
1: ये जिला अम्बाला से पत्र हमें लिखते हैं रवि कुमार, राहुल, रंजीत कुमार, जयप्रकाश और उनका पूरा परिवार। और एक और पत्र शामिल कर लेते हैं, ये है अब ये पत्र मिला है भिवानी हरियाणा से, ये है महिपाल जी, नीरू और दीपांश और उनका पूरा परिवार।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश हमें मिली है हर गोविंद नगर और इसको भेजने वाले हैं सुरेंद्र संधु, अनिता संधु, रोहित संधु और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही हमें फरमाइश मिली है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से सुरेश गरोर, बेबी गरोर, उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: ये बाधा पुराना पंजाब से पत्र मिला सरदार जी, परमजीत सिंह और गगनदीप सिंह, गुरदीप सिंह और उनका पूरा परिवार। और एक और पत्र ले लेते हैं यहाँ पर गांव गोविंदगढ़ माझीवाला कानपुर से पत्र लिखते हैं, ये है राजू उर्मिला, जीनू, टुंडे पाल और मिस्त्री का और उनका पूरा परिवार।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है भाई पटियाला से भेजने वाले मुकेश भट्ट, नीलम भट्ट और इसी क्रम में अगले फरमाइश हमें मिली है MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्य आर्य और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: ये नांदोड़ छत्तीसगढ़ से पत्र मिला है जिन्होंने सुनना चाहे विकल गुजर को, ये है महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी और उनका पूरा परिवार। यहीं पर एक और पत्र शामिल कर लेते हैं, ये है सुनील शर्मा, ललिधर शर्मा, मिंटू शर्मा, राजू अग्रवाल, ये लिखते हैं गांव शेरजा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से पत्र में भेजा इन्होंने।
0: और इसी क्रम में अगली फरमाइश मिली है गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राहुल हरमन और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही फरमाइश मिली है ढाणा नरसाना भिवानी से और इसको भेजने वाले हैं जगदीश चिंडालिया, राजू चिंडालिया, सतीश चिंडालिया और समस्त परिवार। साथ ही हमें फरमाइश मिली है भाई गांव रामसावाला जिला सहारनपुर यूपी से भेजने वाले ब्रजपाल, श्यामवीर, पूजा देवी, मोनी देवी और उनका समस्त परिवार।
1: ये पत्र मिला है हमें चिट्ठी मंदिर रोड यमुनानगर से और भेजने वाले हैं तेजपाल सिंह प्रजापति, अनुराधा, शमा, शिवा और उनका पूरा परिवार।
0: और ये फरमाइश हमें और भी मिली है पटेल नगर मालोट से डॉक्टर रामेश कुमार, गीता रानी और उनके समस्त परिवार की तरह से। गांव चोलदा बागपत से संजय डिंगिया, नमन डिंगिया, अपार डिंगिया की। और साथ में हमें फरमाइश और भी मिली है भाई, ये फरमाइश मिली है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय और उनके समस्त परिवार की तरफ से। और एक और हमें फरमाइश सोनी भाई मिली है
1: चौधरीवास से
0: राजू अग्रवाल, केशव लीलाधर शर्मा उनके समस्त परिवार की तरफ से। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं विकल गुजर से ये उपदेश।

0: चल भाई, अभी भाइयों ने सुना अभी कल गुजर को अपनी फरमाइश पर, और अभी कार्यक्रम को बड़े आगे बढ़ाते हैं, एक पत्र अपने कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। ये पत्र हमें भेजा है विनोद जी ने, गांव काकूपुर यूपी से है। ये लिखते हैं कि मेरा खेत खाली हो गया है और मूंगफली की फसल की बिजाई करना चाहता हूँ, इसके लिए कौन कौन सी मिट्टी ज़्यादा उपयोगी रहती है और इसमें कौन कौन सी किस्में ली जाएँ जिससे अधिक उत्पादन हो, और क्या क्या कार्य कर सकते हैं इस फसल के साथ साथ।
1: तो देखिए विनोद भाई, मूंगफली की बिजाई आप करना चाहते हैं तो समय की अगर बात करें तो खरीफ में मूंगफली की बिजाई का सही समय जून के तीसरे सप्ताह से जुलाई के दूसरे सप्ताह तक सबसे उचित माना जाता है। और मिट्टी के चयन की बात करें, वैसे तो देखिए मूंगफली सभी प्रकार के मिट्टी में उगाई जा सकती है, लेकिन हल्की बलुई दोमट मिट्टी मूंगफली फसल के लिए सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। साथ ही भाई एक बात का आपने ध्यान रखना है कि भाई चिकनी मिट्टी और भारी मिट्टी इसके लिए अनुपयुक्त मानी जाती है, तो कोशिश करें कि उसमें मूंगफली ना लगाएं। और यदि भाई देखिए गुच्छेदार आप किस्मों की बात करें तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर सबसे उचित मानी जाती है। गहराई की बात करें तो 5 से 7 सेंटीमीटर उचित मानी जाती है, और प्रति हेक्टेयर जो 60 से 80 किलोग्राम बीज पर्याप्त माना जाता है। जहाँ तक खरपतवार नियंत्रण की बात है तो मूंगफली की खेती में निराई गुड़ाई का विशेष महत्व है। बुआई के 15 दिन तक खरपतवार में अधिक वृद्धि होती है, अतः फसल में 2 बार निराई गुड़ाई अवश्य करनी चाहिए, बुआई से 12 से 15 दिन के पश्चात और करीब 15 से 20 दिन के पश्चात फिर दूसरी निराई गुड़ाई करनी चाहिए। सामान्यतः बरसात में जो के मौसम में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वर्षा न हो और सूखे की स्थिति में आवश्यकतानुसार 2-3 सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। और वही देखिए मूंगफली में कई तरह के रोग व बीमारी लग जाते हैं, जैसे रोजेट रोग, टीका रोग, रोमली, मूंगफली की माहू और लिक माइनर आदि जो लग जाते हैं, इनसे भी भाई फसल को आपने बचाना है। और सिंचाई की हमने बताई कि भाई आवश्यकता, साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना है कि भाई जो ये बीमारियां और रोग लगते हैं इनसे फसल को आप बचाएं। और कटाई की बात करें तो जब पौधे पीले रंग के हो जाएं और अधिकांश नीले नीचे की जो पंक्तियां गिरने लगे, पत्तियां गिरने लगे, तो भाई उस समय निराई कटाई कर लेनी चाहिए। इस प्रकार छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, समय पर बिजाई करेंगे, अच्छी किस्म लेंगे और समय पर कटाई करेंगे तो आप ले पाएंगे मूंगफली फसल से भरपूर उत्पादन।
0: तो यहाँ पर विनोद भाई का जो जो प्रश्न था, जो जो उसका जवाब दे दिया गया है। आप छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो अपनी मूंगफली की जो जो खेती है, जो फसल है, उसका अधिक उत्पादन ले सकते हैं। खासकर अपना कीट प्रबंधन और सिंचाई और निराई गुड़ाई का भी ध्यान रखें, जिससे जिससे जो भी पोषक तत्व तो आप अपनी फसल को देते हैं उसमें वो सारे के सारे पोषक तत्व तो आपके फसल को मिले, इसलिए आप अधिक से अधिक खत पर नियंत्रण ज़रूर रखें।
1: तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और विजय से सुन लेते हैं ये उपदेश।

0: अश्विनी भाई, ये तो भाइयों ने सुना ब्रजेश उपदेश। और अब देखिए भाई, मौसम की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान आने वाले समय में 35 से 37 डिग्री तक रहने की उम्मीद जताई जा रही है, और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 23 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में देखिए भाई, जो किसान भाइयों के जिनके खेत खाली हो गए हैं, तो भाई वो खेतों की गहरी जुताई अवश्य कर दें, क्योंकि इससे मिट्टी में छुपे हुए जो हानिकारक कीट कीड़े और रोगों को तेज़ धूप से नष्ट किया जा सकता है। रबी फसलों का भंडारण की बात करें तो भाई रबी फसलों के में चना, गेहूँ, सरसों की गहराई और गहाई और सफाई करने के बाद उन्हें नमी युक्त स्थान पर स्टोर करें। साथ ही भाई देखिए, सब्जियों की अगर बात करें तो भिंडी, लौकी, तोरी, करेला, कद्दू और बैंगन की बुआई इस समय की जा सकती है। चारा फसलों में देखिए, मक्का, ज्वार, बाजरा और लोबिया की बुआई करें, जो गर्मी में तेज़ी से बढ़ती है। कपास की बुआई के लिए भी समय उपयुक्त है। सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो फलदार पौधों, नींबू, आम, अमरूद और सब्जी की फसलों में नमी बनाए रखने के हल्की और नियमित सिंचाई अवश्य करें। इस तरह से भाई देखिए, मौसम को ध्यान में रखते हुए छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है।
1: यहाँ पर सुनी भाई, यहाँ छोटी सी बात यहाँ पर और रहेगी कि जब खेती बाड़ी के साथ जो हमारे पशु जो हैं, जो हम पालते हैं, जो हमारे पशुपालक हैं, उनका भी ध्यान रखें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, उनका भी ध्यान रखें, उनको भी ठंडी जगह पर बांधें और साफ़ पानी पिलाएं, ताज़ा पानी पिलाएं, जिससे पशुधन भी हमारा स्वस्थ हो। जैसे हम कृषि की फसल की देखभाल करते हैं, वैसे अपने पशुओं की भी देखभाल करते हैं।
0: जल्दी से कल के कार्यक्रमों के बारे में बता दें, कल 5:30 पर कार्यक्रम लोक रंजनी और 6:30 पर कार्यक्रम ग्राम संसार में खनिक दिवस और आत्मनिर्भर भारत ऊर्जा की बचत के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही वैद्य के 7:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत। और इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल। कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स। शाम के 7:30 हुए हैं और अब सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल।

चंदन दास की आवाज़ में अभी आपने ये गज़ल सुनी। इसी के साथ गज़लों का एक कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: राजधानी के विवेक विहार क्षेत्र में भीषण अग्निकांड में 9 लोगों की मृत्यु। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल तथा मुख्यमंत्री ने घटना पर शोक व्यक्त किया। दिल्ली में यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्ती बढ़ी। मुख्यमंत्री ने नई चालान निपटान प्रणाली की घोषणा की। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर ठगी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अंतर्राष्ट्रीय सौर दिवस पर दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गई। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। श्री संधू ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। उपराज्यपाल ने बताया कि अधिकारियों को घायलों की सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और सहायता प्रदान करने को भी कहा गया है। श्रीमती गुप्ता ने दुर्घटना को अत्यंत दुखद बताते हुए कहा कि दिल्ली सरकार इस कठिन समय में पीड़ित परिवारों के साथ हर परिस्थिति में मजबूती से खड़ी है। वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और दुर्घटना को हृदय विदारक बताया।
1: लगभग पहली कॉल जो है पुलिस को 3:47 में मिली और 3:52 पे पहली फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है। लगभग 14 गाड़ियां हैं जिन्होंने पूरी आग को काबू करने का काम किया है। 20 लोगों की जान बचाई गई है और 9 लोग इसमें हताहत हुए हैं। उनके परिवारजनों से भी मिला हूं और जो दृश्य है वो बड़ा हृदय विदारक है। अब जांच की जाएगी। हमारे लिए प्राथमिकता यह है जो लोग घायल हैं उनको सही इलाज मिल जाए और जो नुकसान हुआ उसकी कैसे भरपाई हो।
0: इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, स्थानीय विधायक संजय गोयल, पार्षद पंकज लोथरा और शाहदरा जिलाध्यक्ष दीपक गाबा ने भी आज सुबह पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्रियों ने भी इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से कल से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव नई दिल्ली में इसका उद्घाटन करेंगी और उनके नेतृत्व में स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि सुरक्षा की शपथ दिलाई जाएगी। दिल्ली में यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्ती बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई डिजिटल और समयबद्ध चालान निपटान प्रणाली लागू करने की घोषणा की है। नई प्रणाली के अंतर्गत अब हर चालान का निपटारा तय सीमा के भीतर करना अनिवार्य होगा।
2: इस निर्णय के अनुसार चालान मिलने के बाद 45 दिनों के भीतर भुगतान या चुनौती देनी होगी, अन्यथा उसे स्वतः स्वीकार माना जाएगा। इसके अलावा चालान को अदालत में चुनौती देने के लिए पहले 50% राशि जमा करना अनिवार्य होगा। इसके विपरीत समय सीमा समाप्त होने पर वाहन को अयोग्य के रूप में चिन्हित कर दिया जाएगा और ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन पंजीकरण से जुड़े सभी कार्य रोक दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष में 5 या उससे अधिक बार यातायात नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित या रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा श्रीमती गुप्ता ने कहा कि चालान की पूरी प्रक्रिया अब डिजिटल निगरानी में रहेगी और कैमरों तथा ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से चालान भेजे जाएंगे। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि ऑनलाइन चालान 3 दिनों के भीतर और फिजिकल नोटिस 15 दिनों के भीतर संबंधित व्यक्ति तक पहुँचा दिए जाएंगे। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर ठगी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 1 बैंक अधिकारी भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने फर्जी ट्रेडिंग ऐप के माध्यम से हाई रिटर्न का लालच देकर 45 लाख से अधिक रुपए की ठगी की है। इस मामले में आगे की जांच जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि उनके योगदान से सभी क्षेत्रों में नवाचार और विकास को गति मिलेगी। श्री मोदी ने उनके नए कार्यकाल के बेहतर उपयोगी और प्रभावशाली होने की कामना की। कैबिनेट सचिवालय ने राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम और डॉक्टर अनिया की नियुक्ति के बारे में जानकारी दी। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा में शामिल सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि चिकित्सा का क्षेत्र करुणा, सेवा और जीवन भर सीखने की प्रतिबद्धता का क्षेत्र है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी की हरियाली ही इसकी जीवन रेखा है और इसकी सुरक्षा सभी की साझा जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश के माध्यम से मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी दिल्ली हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।
3: हमारी दिल्ली में पेड़ कटने से बचाना होगा तो बारिश का मौसम होगा तो इस बार दिल्ली शहर में हम उतने पेड़ लगाएंगे जितने आज तक कभी किसी ने ना सोचा होगा ना लगाया। आज के इस मौसम में क्या करना, आज हमको जो लगे हुए पेड़ है उसको बचाना है और उसके लिए जरूरी है कि जहां भी आपको ये दिखाई दे कि कोई भी पेड़ कोई काट रहा है तो तुरंत 1800118600 पे कॉल करना।
0: नई दिल्ली नगर पालिका परिषद उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने चाणक्यपुर स्थित बापूधाम हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। इस दौरान उन्होंने नागरिकों की समस्याएं मौके पर ही सुनकर संबंधित विभागों को तय समय सीमा में समाधान के निर्देश दिए। अभियान के तहत हर रविवार शहर में पौधारोपण किया जाएगा जिससे लोग पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी भी लेंगे। उन्होंने कहा कि यह पहल सिर्फ पेड़ लगाने तक सीमित नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण और जनभागीदारी का एक भावनात्मक आंदोलन है जो स्वच्छ और हरित नई दिल्ली के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा। राजधानी में अंतिम छोर तक पहुंच को मजबूत करने और शहरवासियों को सुविधाजनक तथा सुरक्षित परिवहन उपलब्ध कराने में दिल्ली मेट्रो का बहुत योगदान है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के 32वें स्थापना दिवस पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शहरवासियों और मेट्रो कर्मियों को बधाई दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली मेट्रो शहर की लाइफलाइन और आधुनिकता की पहचान है। उन्होंने कहा कि मेट्रो करोड़ों लोगों के सपनों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम भी है। वहीं दिल्ली मेट्रो ने अपने 32वें स्थापना दिवस पर इसे समर्पण, उपलब्धियों और निरंतर प्रगति का महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। मेट्रो रेल निगम ने कहा कि दिल्ली NCR को जोड़ने में समय पालन, सुरक्षा और विश्वसनीयता इसकी प्रमुख विशेषताएं रही हैं। राजधानी में मेट्रो की सेवाएं 1995 में शुरू हुई। पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला कल से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। कार्यशाला में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्ष 2026-27 के लिए पंचायत विकास योजनाएं 16वें वित्त आयोग की शर्तों के अनुरूप हो। पंचायती राज मंत्रालय ने भी यह बताया कि कार्यशाला में राज्यों के प्रतिनिधि और पंचायत से जुड़े प्रमुख पक्ष शामिल होंगे। आकाशवाणी समाचार के व्हाट्सएप चैनल ने 1 लाख फॉलोअर्स का आंकड़ा हासिल कर महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से प्रतिदिन समाचार अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज और अलर्ट उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में गंभीर रीढ़ विकृतियों के इलाज में बड़ी सफलता मिली है। एम्स ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि पिछले 7 सालों में इस प्रक्रिया ने उन मरीजों में नई उम्मीद जगाई है जिन्हें पहले सर्जरी के दौरान बहुत ज्यादा जोखिम का सामना करना पड़ता था और इलाज के सीमित विकल्प थे। वर्ष 2020 में एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रकाशन

0: में बताया गई यह तकनीक पोस्टीरियर वर्टेब्रल कॉलम रिसेक्शन का एक संशोधित रूप है। यह तकनीक सर्जरी के दौरान रीढ़ की स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है और जटिलताओं के जोखिम को कम करती है। डॉक्टरों के अनुसार जिन मरीजों को पहले सर्जरी में उच्च जोखिम का सामना करना पड़ता था, वे अब सफल ऑपरेशन के बाद सामान्य जीवन की ओर लौट रहे हैं। देशवासियों के बीच फिटनेस के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत नई दिल्ली में आज संडे ऑन साइकिल का 72वां संस्करण आयोजित किया गया। इस अवसर पर फिट इंडिया के निदेशक सुशांत कंडवाल मौजूद रहे। उन्होंने लोगों के साथ साइकिल चलाई और फिटनेस तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। श्री कंडवाल ने कहा कि हमारी कोशिश रहती है कि समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों को एक साथ लेकर चलें और इस बार हमने किसान भाइयों को अपने साथ लिया है।
1: हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अलग अलग समाज के जो हमारे अलग अलग जो पिलर हैं उनको हम साथ लेके चलें। इस बार हमने अन्नदाता को साथ में लिया, सारे हमारे किसान भाई जितने भी हमारे जो लोग इन्वॉल्व हैं हमें रोज का अन्न प्रोवाइड करने में, हमने उनके लिए भी, भारत सरकार के लिए भी और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन था कि फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, मुझे लगता है हम बहुत सक्षम रूप से उसे पूरा कर पा रहे हैं।
0: अंतर्राष्ट्रीय सौर दिवस पर आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किया गया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने कहा कि इस दिन सौर ऊर्जा का उपयोग करके अधिकतम बिजली प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है।
2: सूर्य किरण हम लोगों के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसका इतने सालों तक हम लोग व्यवहार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज उसका व्यवहार करके देश में 150,000 मेगावाट का इंस्टॉलेशन हो चुका है और भी आगे बढ़ना है हम लोगों।
0: आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। यह प्रेस की स्वतंत्रता पहलों को प्रोत्साहित करने और विकसित करने तथा विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने का अवसर है। इस वर्ष का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। एक रिपोर्ट।
3: इस वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पुष्टि करने और पत्रकारिता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित प्रौद्योगिकी तथा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भविष्य के लिए सूचना व्यवस्था मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में यूनेस्को के 1991 में 26वें महासभा सम्मेलन में अपनाई गई एक सिफारिश के बाद की गई थी। यह अवसर प्रेस की स्वतंत्रता के मूलभूत सिद्धांतों को मान्यता और विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता का मूल्यांकन करने का है। यह सरकारों को प्रेस की स्वतंत्रता और प्रतिबद्धता का सम्मान करने की याद दिलाता है और मीडिया पेशेवरों के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और पेशेवर नैतिकता के मुद्दों पर चिंतन करने का भी दिन है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस के अवसर पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि तेंदुआ प्रकृति के सबसे सुंदर और शक्तिशाली वन्य जीवों में से एक है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने तेंदुआ की महत्वपूर्णता को दर्शाते हुए कहा कि उनके संरक्षण का संकल्प लेना समय की मांग है। और अब चलते चलते राजधानी के मौसम की खबर। आज दिन के समय में धूप के साथ धीमी हवा चली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहने की संभावना है, वहीं दोपहर के समय में और सुबह के समय हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के विवेक विहार क्षेत्र में भीषण अग्निकांड में 9 लोगों की मृत्यु। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल तथा मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त किया। दिल्ली में यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्ती बढ़ी। मुख्यमंत्री ने नई चालान निपटान प्रणाली की घोषणा की। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर ठगी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और अंतर्राष्ट्रीय सौर दिवस पर दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए हास्य कवि सम्मेलन। प्रतिभागी कवि है श्री आरपी शर्मा, श्री जयसिंह मान, श्रीमती सीमा रंगा और श्रीमती ममता जयंत। कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे हैं श्री जयसिंह मान।
1: आओ हंसे और हंसाए, आज फिर हास्य कवि सम्मेलन है और देखना है आपको।

0: कि कितना दम होता है कवियों की वाणी में। दो कवियत्री और दो ही है कवि, कहीं नहीं मिलेगी समानता की ऐसी छवि। सबसे पहले आज के इस हास्य कवि सम्मेलन में जो आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उन मैडम के बारे में बता देता हूँ कि हास्य कवि सम्मेलन की शुरुआत करेंगी मैडम श्रीमती सीमा रंगा। और नारी शक्ति के जमाने में इनके पति भी नहीं लेते इनसे पंगा, और इनकी कविता इतनी पवित्र और निर्मल जितनी है माँ गंगा। प्रकाशित पुस्तकें 19 से होने वाली है 20, और हमारी दुआ इनके साथ और प्रभु का आशीष। कम समय में कैसे करूं इन सबका मैं गुणगान, और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सारस्वत तिरंगा गौरव गोपाल दास नीरज साहित्य सम्मान मैडम सीमा रंगा।
1: आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। एक बार क्या हुआ
2: जी,
1: मैं एक कवि सम्मेलन में गई हुई थी, एक महिला मुझे काफी देर से घूर रही थी
2: जी,
1: तो मैं देख रही सब हंस रहे हैं, सिर्फ ममता जी वो महिला ही नहीं हंस रही थी
2: जी।
1: तो फिर मैंने देखा इनसे पूछना चाहिए, मैंने उनसे पूछा आप क्यों नहीं हंस रहे, बाकी सब हंस रहे हैं, क्या मेरे चुटकुले आपको पसंद नहीं आए? फिर उन्होंने जवाब दिया मुझे, मैडम चुटकुले तो आपके पसंद आए हैं, लेकिन जो आपकी शकल है मेरी सास से मिलती है। और एक बार क्या होता है, एक पति शराब पी के आया, और उसको पता था अभी घर पे जाऊंगा तो पत्नी की सुननी पड़ेगी, तो उसने क्या किया, घर जाते ही लैपटॉप खोला और लैपटॉप पे टाइप करने लगा। पत्नी किचन से आई, बोली आज फिर शराब पी के आ गए? बोला नहीं पी के आया। बोला झूठ बोल रहे, पी के आए हो? बोला नहीं मैं नहीं पी के आया। बोला अगर आप पी के नहीं आए तो अटैची खोल के क्या टाइप कर रहे हो? और एक बार एक पत्नी का सताया हुआ पति थाने जाकर बोलता है, दरोगा साहब मेरी एक बार रिपोर्ट लिख लो, और अपनी पत्नी की महिमा गा रहा है, कैसे सुनिएगा। करू पत्नी की दिन रैन पूजा, काम न मुझको कोई दूजा, डर के साये में रहता हूँ सदा, बाहर निकल पाता हूँ यदा कदा, इंस्पेक्टर साहब मुझे बचाओ, पत्नी को अभी यहाँ बुलाओ, तुम उसे सजा दिलाओ। दरोगा बेचारा वो भी शादीशुदा था, पागल हम नहीं बचे पत्नी से, तुझे कैसे बचा लें, आजा तू भी थाने में रह ले हमारे साथ। दरोगा बोलता ये तो ऐसी जेल है भाई, जिस जिस के हिस्से है आई, नींद चैन उसने है खोया, हंसना बोला जी भर रोया, तुझे बचाएंगे हम कैसे, हम तो खुद ही तेरे जैसे, संग हमारे आकर रह ले, पर दुख अपना खुद ही सह ले।
2: वाह बहुत अच्छा।
1: और एक दिन एक पत्नी मुंह फुला के बैठी हुई थी, बच्चे देख रहे हैं आज तो मेरी मम्मी मुंह फुला रही है, बड़ी उदास लग रही है, पापा को शिकायत कर रहे हैं, पूछ पूछ कर बालक हारे, हमें बताओ पापा प्यारे, घेरे बैठी घोर उदासी, बदन दर्द है या खांसी, कम है बीपी है या हाई, हंसना भूली क्यों है माई। सुनते ही पापा चिल्लाए, माँ की चिंता तुम्हें सताई, जिसके कारण भूला हंसना, मत उसकी बातों में फंसना, जब से ये जीवन में आई मैंने अपनी हंसी गवाई।
2: क्या बात, बहुत अच्छी।
1: और एक बार एक पति पत्नी दोनों गाड़ी से जा रहे थे, रास्ते में पुलिस वाले ने रोक लिया, बोला भी तेरी गाड़ी की तलाशी लेंगे, तो बोला हाँ सर ले लो, बोला कागजात दिखाओ अपने, तो उसने सारे कागज निकाल के दे दिए। पुलिस वाला सोचा इसने तो सारे कागज दिखा दिए, तो उसने दिमाग लगाया, बोला ये साबित करो जो महिला तेरे साथ बैठी है वो तेरी पत्नी है
2: जी।
1: पहले तो पति सोचता रहा, फिर उसने दिमाग लगाया, बोला सर एक बार इधर आइए। बोला क्या? कान में धीरे से बोलते हैं, अगर आप ये साबित कर दो ये मेरी पत्नी नहीं है, मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। एक बार एक पोता अपने दादा के पास आता है और बोलता दादाजी दादाजी। बोला क्या? एक बार टैं बोलो ना। बूढ़ा सोचता है बोल देता हूँ, बोला टैं। दोबारा फिर बच्चा खेल खेल के भाग के आता है, बोला दादाजी दादाजी। बोला हाँ। बोला टैं बोलो। बोला बूढ़ा सोचता है फिर टैं बोल देता हूँ, बोला टैं। तीसरी बार फिर बच्चा आया, बोला दादाजी दादाजी। बोला हाँ बेटा। बोला टैं बोलो। अब की बार बूढ़े को गुस्सा आ गया और उसकी गर्दन पकड़ ली, बोला ये बता पहले चक्कर क्या है तेरा? बोला दादा चक्कर तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं अंदर रूम में गया ना जब मेरी माँ ये बोल रही थी, एक बार ये बूढ़ा टैं बोल दे फिर बड़ा टीवी लगाएंगे घर में। और एक दिन एक बूढ़ी सुबह सुबह अखबार पढ़ रही थी और जोर जोर से पढ़ रही थी, और उसमें पहले ही पेज पे खबर छपी हुई थी, हरियाणा में विधवा पेंशन 2000 रुपए कर दी, और साथ में बूढ़ा ही बैठा हुआ था। बूढ़ी बूढ़े की तरफ देखती है, बूढ़ा बोलता मेरे को क्यों घूर रही है? बोला आपकी वजह से हर महीने 2000 का नुकसान हो रहा है। और एक आखिरी सुनिएगा, समाज दुनिया में क्या चल रहा है पूरे देश को चिंता है, पर हम महिलाओं को एक ही चिंता है, कल कौन सी साड़ी पहनूं और कौन सी सब्जी बनाऊं। पीके जी, दुनिया ने कितनी तरक्की कर ली हो पर हमारी समस्याओं का समाधान है ही नहीं। पूछिएगा जरा एक बार कौन सी समस्याएं हैं
2: जी, बताएं।
1: मेरे पास कपड़े नहीं है और कल मैं कौन सी पहनूं? सब्जियों से फ्रीज मेज भरा पड़ा है पर कल क्या
2: क्या बनाऊं
1: क्या बनाऊं। अलमारी खोलो तो कपड़े ऐसे स्वागत करते हैं जैसे का फूलों की मालाओं से स्वागत होता है
2: जी।
1: ऐसे ही हमारे कपड़े स्वागत करते हैं, पर समस्या वही की वही है पीके जी, हमारे पास तो कपड़े नहीं है
2: जी।
1: लड़के बेचारे नौकरी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं और हम महिलाएं एक मैचिंग फाल के लिए 10 दिन लगा देती हैं। अब मेरे पति तो सर एक दिन बोल भी रहे थे मुझे, धन्य हो देवी तुम जो मुझे एक बार में ही पसंद कर लिया, अगर साड़ी की तरह देखती मैं तो आज तक कुंवारा ही रहता।
0: तो अब हमारी अगली कवित्री, हास्य में जिनकी कोई नहीं है समता, हमारी अगली हास्य कवि है मैडम ममता। जी हाँ, ममता जयंत मैडम का कर रहा हूँ उल्लेख, जिनके पत्र पत्रिकाओं में छपते रहते हैं लेख और आलेख, और इसके अलावा प्रकाशित हुई जिनकी कई किताब और राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों में भाग लेने वाली प्रतिभा को हमारा आदाब। मैडम ममता,
3: देखिए अपनी बात शुरू करती हूँ मैं
2: जी।
3: हमारे चारों तरफ ना दो तरह के पशु रहते हैं
2: जी,
3: कुछ पशु तो चौपाए होते हैं
2: जी,
3: हाँ
2: जी,
3: है ना, पर हमारे चारों और कुछ पशु दोपाए भी होते हैं
1: जी,
3: है ना। तो ये जो मेरी कविता है ये दोपाए पशुओं को लेकर है,
2: अच्छा,
3: सुनिएगा। दोपाए जी जी, दोपाए पशु अधिक खतरनाक होते हैं चौपाए पशुओं से
2: जी।
3: दोपाए पशु अधिक खतरनाक होते हैं चौपाया पशुओं से, ये माहिर है मुस्कुराकर मारने में।
2: क्या बात,
3: ये माहिर है मुस्कुराकर मारने में, इस कदर कि मारक क्षमता भेद जाती है
2: जी,
3: इस कदर कि मारक क्षमता भेद जाती है जड़ जंगल जमीन को भी
2: जी, बिल्कुल ठीक बात,
3: इस कदर की मारक क्षमता भेद जाती है जड़ जंगल जमीन को भी। देवता से दिखने वाले ये दैत्य रहते हैं रूप कला में पारंगत, रहते हैं रूप कला में पारंगत, जानते हैं दिलनुमा जमीन पर चलना, दिल पर तो ऐसे सहज सहज चलते हैं
2: जी।
3: जानते हैं दिलनुमा जमीन पर चलना, लेना रसना से औजार का काम, लेना रसना से औजार का काम, नहीं दिखते इनके निशान।
2: क्या बात, बहुत बढ़िया,
3: नहीं दिखते इनके निशान पर उभर आते हैं बरसों बाद भी, नहीं दिखते इनके निशान पर उभर आते हैं बरसों बाद भी। ना मालूम पशुओं की कोई जाति है
2: जी,
3: ना मालूम पशुओं की कोई जाति है या है आदम का कोई नाता इनसे।
2: क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया,
3: या है आदम का कोई नाता इनसे। अगली कविता, कविता है मेरी चांद पर,
0: बहुत बढ़िया।
3: हो रही है चांद की कम कल से आज चांदनी,
2: क्या बात है,
3: हो रही है चांद की कम कल से आज चांदनी, पर मिसाल सादगी की बन लुटाता रोशनी।
2: वाह वाह, बहुत बढ़िया,
3: पर मिसाल सादगी की बन लुटाता रोशनी, शीतलता की सौम्यता बन गई है रागनी, पहुंचा रहा है धरा तक दूधिया सी चांदनी।
2: बहुत अच्छा,
3: पहुंचा रहा है धरा तक दूधिया सी चांदनी, नहीं होता और दृश्य इससे मनोहारी कोई, नहीं होता और दृश्य इससे मनोहारी कोई, सजता है तारों के संग आसमां पर चंद्रमा।
2: क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा,
3: सजता है तारों के संग आसमां पर चंद्रमा, टिमटिमाते तारों और चांद के उजालों से, टिमटिमाते तारों और चांद के उजालों से, होती है मसरूर सदा आदमी की सभ्यता।
2: क्या बहुत,
3: होती है मसरूर सदा आदमी की सभ्यता, पूर्णिमा का देख रूप बोल उठी चांदनी, क्षितिज की है चांद गरिमा कवियों की है कल्पना।
2: क्या बात,
3: क्षितिज की है चांद गरिमा कवियों की है कल्पना।
2: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।
0: आज के इस हास्य कवि सम्मेलन में अभी मैं अपने तीसरे कवि को आमंत्रित करता हूं, श्री आर पी शर्मा, वरिष्ठ हास्य कवि
2: जी।
0: इनके बारे में क्या कहें, जिनकी अंतरराष्ट्रीय छवि न्यूज चैनलों पर करते हैं तीखी बहस, लेकिन घरवाली से भी ये नहीं करते कभी बहस, समय कम है गिना नहीं सकते इनको जो मिले अवार्ड, इनका नाम छाप चुकी है एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड
2: जी।
0: श्री आर पी शर्मा जी,
2: देखिए मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ, बात लॉकडाउन के दिनों की है, तो मेरी पत्नी परेशान रहती थी, घर में वक्त नहीं देते, हमेशा कहती थी
1: जी।
2: अब वर्किंग डे वाले दिन तो वक्त ही नहीं होता था, और छुट्टी वाले दिन मैं पूरा दिन सोता था, पर जब लॉकडाउन की बात रेडियो ने बतलाई तो मेरी पत्नी खुशी से फूले नहीं समाई, बोली अब चाय क्या खाना भी आप बनाएंगे, और ये वक्त हम घर में मिलकर प्यार से बिताएंगे। फिर क्या था, कभी चाय कभी पकौड़े और नए नए पकवान बनते थे, और हम तो निढल्ले खाते पीते सोते रेडियो सुनते और मस्त रहते थे, पर काम इतना बढ़ गया कि नौकरानी भाग गई

0: तुरंत थैले के साथ सामान की लिस्ट थमाई। फिर उस दिन बाहर क्या निकले मेरे भाई, अगले 8 दिन खटिया में पड़े पड़े करते रहे शिकाई, और 9वें दिन वो दोबारा कराने को ठुकाई, एक नई योजना लेकर आई। बोली सूजन कम हो गई है बोली सूजन कम हो गई है और चलने में भी नहीं है कोई लड़खड़ाहट, थोड़ा बाहर घूम आओ, दिखाया अपने ठाट वाट, अब भी तुम घर का काम नहीं सीखोगे तो डायल कर दूंगी हेल्पलाइन और 14 दिन को करा दूंगी तुम्हें क्वारंटाइन। फिर क्या था, वक्त का मारा ये बादशाह बेचारा बन गया गुलाम, और रोते गाते सीखे घर के सारे काम। प्याज काटते काटते रोता था, प्याज काटते काटते रोता था, और रोते रोते कपड़े धोता था। पर लॉकडाउन के नियम मैं अब भी पूरी तरह निभा रहा हूँ, सुबह शाम पत्नी के पैर भी दबा रहा हूँ। पहले मैं केवल दफ्तर के काम जानता था और मेरा बेटा मुझे केवल एक कर्मचारी के रूप में जानता था, पर अब तो पूरा का पूरा परिवार मुझ पर निर्भर रहता है और मेरा बेटा मुझे हाउसवाइफ कहता है।
1: शर्मा जी कोई एक और कविता सुनाइए।
0: जी जी बिल्कुल, एक प्रेम की बात पे सुनाता हूँ। हर इंसान प्रेम करना चाहता है, लेकिन प्रेम मिलना ना मिलना अलग बात है। हम वैलेंटाइन डे मनाते हैं जी। तो एक बार मैंने भी कोशिश की, मेरा क्या हाल होता है मैं आपको बताता हूँ कि वैलेंटाइन एक प्यार का दिन है, वैलेंटाइन एक प्यार का दिन है या एक दिन का प्यार, नौजवानों के लिए प्यार का त्योहार। प्यार करने वाले कसमे खाते हैं हजार और दिमाग पर चढ़कर बोलता है प्यार का खुमार। अब एक बार हम पर भी प्यार का भूत हुआ था सवार।
1: अच्छा जी।
0: एक बार हम पर भी प्यार का भूत हुआ था सवार, पर पिताजी ने जूते से उतारा था बुखार। पर हमने भी हार नहीं मानी, हमने भी हार नहीं मानी, बल्कि एक बात मन में ठानी कि अपना भी बनाएंगे कोई वैलेंटाइन, तब दिखेगा चारों ओर फाइन ही फाइन। अब इरादों में तो बड़ा दम था, पर वजन ज्यादा था तो चांस बड़ा कम था। खैर नए कपड़े पहन के लगने लगा था कूल, ऊपर से खरीद लिए मैंने ढेरों फूल। तो पहली लड़की ने फूल लेने से पहले ही दे दी गाली, दूसरी ने भी बेइज्जती कर डाली, तीसरी को मैं लगा जोकर, और चौथी मुझको कह गई लोफर, और पांचवी बोली फूल दिया तो थप्पड़ मारूंगी, और छठवीं बोली भाग जा नहीं तो पुलिस बुला लूंगी, और सातवीं ने तो गजब ढा लिया, तुरंत फोन करके अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया और बोली डार्लिंग यही है बदमाश लोफर गुंडा, तभी पीठ पर जोर का पड़ा उसके बॉयफ्रेंड का डंडा। 2 घंटे रोया तब जाके दर्द पड़ा ठंडा, उसके बाद मैंने कभी नहीं उठाया प्यार का झंडा, किसी ने दिखाया चांटा तो किसी ने डांटा, बहुत मुश्किल से मित्रों आधा दिन काटा, ढेरों फूल और मेहनत हो गई बेकार, और डलिया में देखा तो फूल बचे थे केवल 4। प्रण किया कि इन फूलों को तो नहीं करेंगे बेकार, कम से कम इनको तो दिलाएंगे इज्जत और प्यार। तो पहला फूल मैंने मंदिर में भगवान जी को चढ़ाया, पंडित जी ने माथे पे इज्जत से चंदन लगाया, दूसरा फूल स्कूल से आती बच्ची को दिया, बदले में उसका प्यार भरा थैंक यू लिया, और बचे नोटों से मैंने माँ का नया चश्मा खरीदा। और खरीदी बहन की किताब। जो खरीदना था उनका महीनों पुराना ख्वाब, घर जाकर बहन को किताबों के साथ दिया फूल, और उनकी नम आंखों ने उनको किया कबूल। अब देखिए आखिरी फूल बचा है
1: जी।
0: अब आखिरी फूल मैंने माँ के चरणों को चढ़ाया, और माँ की आंखों को नया चश्मा लगाया, उस दिन पहली बार मैंने खुशी में माँ को रुलाया, और मेरी रोती प्यारी प्यारी बूढ़ी माँ ने मुझे सीने से लगाया और बोली तू धुंधला सा दिखता था महीनों से अनेक, अब तेरी छवि साफ दिखती है, तू ही है सर्वश्रेष्ठ। अब पिता के साथ भी सब कुछ लगने लगा था फाइन ही फाइन, मेरा पूरा परिवार ही निकला मेरा सच्चा वैलेंटाइन।
1: वाह, आपने परिवार में सबको बांटे फूल, लेकिन नारी शक्ति के जमाने में पत्नी को गए भूल।
0: अब जो आज का संचालन कर रहे हैं, इतना बढ़िया संचालन कर रहे हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, श्री जय सिंह मान जी को, जो कि दिल्ली के निवासी हैं और सेवानिवृत्त वायु सैनिक हैं। सैनिक जो होता है वो आजीवन सैनिक रहता है, भारत माता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध होता है। तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, आदरणीय श्री जय सिंह मान जी।

0: धन्यवाद शर्मा जी, असल में मेरा कोई परिचय पूरा देता ही नहीं है। मेरा पूरा परिचय मैं खुद दे देता हूँ
1: जी,
0: कि मैं हूँ जय सिंह मान
1: जी,
0: एक पत्नी दो संतान,
1: क्या बात है,
0: और बाहर खुश घर में परेशान,
1: क्या बात है।
0: अक्सर बीवी रोज रोज कहती है कि ये तुम्हारा कसूर है, मैं उनको बोलता हूँ ये तुम्हारा कसूर है
1: जी।
0: तो मैंने एक दिन उनको बड़े प्यार से समझाया कि ना तेरा कसूर है ना मेरा कसूर है, ना तेरा कसूर है ना मेरा कसूर है, हम दोनों को फंसाने वाला या तो तेरा ससुर है या मेरा ससुर है।
1: बहुत बढ़िया।
0: तो आजकल नारी शक्ति का जमाना आ रहा है
1: जी,
0: तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा शर्मा जी
1: जी
0: कि घर कब लौटोगे
1: जी,
0: घर कब लौटोगे, जाने से पहले ही घरवाली को बता
1: जी,
0: वरना
1: जी
0: तलाक का मुद्दा बन सकती है आपकी ये खता। आजकल बच्चे शादी नहीं कर रहे हैं
1: जी, बिल्कुल हाँ,
0: लड़के 30-32 साल के हो रहे हैं
1: जी,
0: मना कर देते हैं, लड़की पसंद नहीं आती
1: जी।
0: तो मैंने बेटे को कहा
1: जी,
0: बेटा तुझे लड़की पसंद ना आए तो बेशक शादी की हाँ मत करना
1: जी
2: जी,
0: बेटा तुझे लड़की पसंद ना आए तो बेशक शादी की हाँ मत करना, लेकिन अगर मैं तेरे लिए दूसरी मम्मी ढूंढ लूं तो ना मत करना। और नारी शक्ति पे ही बता देता हूँ
1: जी
0: कि कोई नहीं रोक पाया परिवर्तन की गति
1: जी,
0: कोई नहीं रोक पाया परिवर्तन की गति, सदियों से औरत होती रही सती
1: जी,
0: और नारी शक्ति कानून से समय का चक्र घूमेगा
1: जी,
0: सावधान अब जी, सती होने की तेरी बारी है पति। और किस किस को दोष दें
1: जी,
0: किस किस को दोष दे, जमाना ही बदल गया असल में, हमने तो देखा है मासूक को भी कबूतर की नस्ल में,
1: क्या बात है,
0: हमने तो देखा है मासूक को भी कबूतर की नस्ल में, हर दिन जोड़े बदल रहे हैं शहर में, कभी इस बगल में तो कभी उस बगल में।
1: वाह बहुत बढ़िया।
0: तो मैं आपको एक पत्नी चालीसा सुना देता हूँ जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए सुनाइए।
0: किसी भी चालीसा से पहले एक दोहा होता है
1: जी,
0: तो पहले एक दोहा
1: जी,
0: मन करे पत्नी को तज ठीक होवे सभी बीमारी, और जिसने कर रखी है खटिया ही खड़ी हमारी, माँ बाप की मान कर पहना दिया था हार, बल बुद्धि विद्या मेरी कर दी बंटा धार। तो अब चालीसा शुरू होती है
1: जी,
0: ससुर कहे मेरे घर आकर तुझको दुल्हन दूंगा लाकर,
1: क्या बात,
0: समझा नहीं मैं उसका ड्रामा, पटा लिए मेरे फूफा मामा, दान दहेज की नहीं है तंगी, छोरी ब्याहूं इसी के संगी, फिर वर मिले ना इसके जैसा, लड़की छोटी लंबे कैसा,
1: क्या बात,
0: ढोल इसी के घर पे बाजे, करूंगा टीका इसका आजे, कुछ चावल कुछ लेकर चंदन, रिश्ते का ये बांधा बंधन, शादी जल्दी करने को आतुर, मेरा ससुर बड़ा ही चातुर, फेरे हो गए तुरंत में फसिया, बीवी मेरे मन ना बसिया, सूक्ष्म रूप धरी माँ धमकावा, विकट रूप धरी बाप डरावा, भीम रूप धरी डर के मारे, अगले दिन थाने गए सारे, कुछ की जमानत ली करवाए, बाकी सभी जेल में पाए, सिर पर आ बैठी कर डाई, तो कोर्ट में लड़ी लड़ाई, तारीख पर तारीख लग जावे, जज वकील हमको समझावे, पत्नी रूप लिया अग्निशा, लिखा दिया नाम जीजा भगनी का, रिश्तेदार जो मिला जहां ते, वो ही उठवा लिया वहां ते, जिनने कोई कसूर न कीना, वो भी केस में फसवा दीना, नारी का आ गया जमाना, नरकी चले न सब जग जाना, मुझसे बोली सुन लो जानू, मेरी सब मानो तो मानू, बना लिया मुझे घर जमाई, सारे केस खत्म करवाई, बोली नीति ये अपना लेते तो सब क्यों क्यों हम जेल में देते, सारी तनखा ली रखवारे, मैं हूँ खाली बिन पैसारे, रहता अब बीवी की शरणा, जीवन भर डरना ही डरना, पूरी अपनी चलाती आपे, हम तो उसकी हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जब पत्नी का नाम सुनावे, मेरी दूर करो ये पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, तीनों टेम खाना बनवावे, झाड़ू पोचा बर्तन धुलवावे, मेरा घर में ना कोई साझा, नौकर बन गया मैं था राजा, दोपहर उठे श्याम ही सो जावे, उठते ही सब

0: पै चिल्लावे, खा जाती राशन वो सारा, इसके साथ न होवे गुजारा। रिश्तेदार घर आवे हमारे, घर में घुसते ही धिक्कारे, उसकी बहन और जीजा आता, भाभी बच्चों सहित भराता, पियर रसायन उसके पासा, मेरे घर वाले सब दासा, पियर वाले ही सब खावे, हम सारे भूखे सो जावे, मेरे संग माँ बाप सताई, सारे कष्ट न जाए बताई, मुझको भी वो चितना धरही, दिन और रात जुलम वो कर ही, संकट कटे मिटे सब पीरा, धक्का दूजम ना के तीरा, घर उसने फिर डुबकी खाई, लौट के फिर वो घर ना आई, जो सत बार पाठ करे कोई, झटपट दूजी बीवी टोही, जो ये पढ़े पत्नी चालीसा, तुरंत ही दर्शन हो साली का, जय सिंह माग डाल कहीं डेरा, जो सबका हाल वही है तेरा। आखिर में भी एक दोहा होता
1: है, जी, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है।
0: तो वो दोहा आज मैं प्रस्तुत नहीं करूंगा,
1: अच्छा।
0: क्योंकि समय की कमी है और नारी शक्ति का जमाना है, तो इसके बारे में मैं कुछ मुक्तक पढ़ देता हूँ जो अभी बराबरी में आ रही है हमारी माताएं बहने
1: जी।
0: के मुझसे हद कद पद में छोटा है पति,
1: क्या बात है,
0: मुझसे हद कद पद में छोटा है पति, खरी खरी सुनता है खोटा है पति, क्या क्या खोट उसके गिनाऊं मैं सहेलियों, क्या क्या खोट उसके गिनाऊं मैं सहेलियों, किसी दल का मुखोटा है पति, खरी खरी सुनता है खोटा है पति।
1: बहुत बढ़िया।
0: शादी के समय बड़ा छबीला था पति,
1: क्या बात है,
0: शादी के समय बड़ा छबीला था पति, हट्टा कट्टा तन से गठीला सा पति, गोरी चमड़ी थी और चेहरा भी लाल था, गोरी चमड़ी थी और चेहरा भी लाल था, पत्नी ने रंग दिया पीला पीला सा पति, शादी के
1: अच्छा
0: समय बड़ा छबीला था पति।
1: बहुत अच्छा।
0: अब क्या आरोप लगाती हैं पत्नियां पति पर,
1: जी जी,
0: के चोर बेईमान बड़ा झूठा है पति, सब झूठ है मैंने खसूटा है पति, गाजर मूली नहीं जो कच्चा खा जाऊं मैं, गाजर मूली नहीं जो कच्चा खा जाऊं मैं, भून भून खाने का ये भुट्टा है पति, चोर बेईमान बड़ा झूठा है पति। और क्या बोलती हैं
1: जी,
0: के समझ ना आए ये अनूठा है पति, गाय के गले में पड़ा खूटा है पति, रखती

0: समझ ना आए ये अनूठा है पति। और क्या कहते हैं पति
1: जी,
0: के नौकरी मैं करूं तू घर चाकरी पति,
1: अच्छा
0: तू क्या मुझे देगा अब भाकरी पति।

0: ही हो तुम आखरी पति, नौकरी में कर तू घर चाकरी पति। पति कितना डरता है
1: जी जी,
0: के बंदरी से डरता लंगूर सा पति। बंदरी से डरता लंगूर सा पति, कसूरवार हुआ बेकसूर सा पति। हीरा था जो कभी मर्दों के संसार का, हीरा था जो कभी मर्दों के संसार का, पत्नी ने किया चूर चूर सा पति। बंदरी से डरता लंगूर सा पति। अब क्या कहती है श्रीमती जी,
1: जी
0: के तुम सीरी सीरी हो खाली कहाँ है मती।
1: क्या बात है।
0: के तुम सीरी सीरी हो कहाँ है मती, सीरी मती में सदा ही रहती है मती। पत्नी उड़ाती है जहाज आकाश में, पत्नी उड़ाती है जहाज आकाश में, ताश खेलते हैं चौपाल में पति। सीरी सीरी हो खाली कहाँ है मती।
1: बहुत बढ़िया।
0: तो पति क्या करेगा फिर बेचारा
1: जी,
0: के बचने के ताने बाने पूरता पति।
1: बहुत बढ़िया।
0: बचने के ताने बाने पूरता पति, टूट टूट हुआ चकना चूर सा पति। प्रेम वश भी नजर मुझ पर डाली तो, प्रेम वश भी नजर मुझ पर डाली तो, केस बनवा दूंगी कि घूरता पति। बचने के ताने बाने पूरता पति। ना सास समझाए ना ससुर समझाए, ना सास समझाए ना ससुर समझाए कि

0: से करे शिकायत साले मारने को आए, पत्नी सताए तो हमको बताए।
1: जी बिल्कुल, क्यों
0: बोलते
1: ठीक
0: हैं
1: है।
0: कुछ लोग बोलते हैं ना
1: कि
0: पत्नी सताए तो हमको बताए, हम सब रो रहे हैं आप हमारे साथ आए। तो ये था नारी शक्ति पे
1: जी,
0: और थोड़ा समय बाकी है तो हम शर्मा जी से गुजारिश करेंगे कि वो कुछ और।
1: देखिए नारी की बात हो रही है, मैं बताता हूँ आपको नारी क्या है। कभी परीक्षा अग्नि की दी, कभी परीक्षा अग्नि की दी कभी चौंचर पर हारी, कभी परीक्षा अग्नि की दी कभी चौंचर पर हारी, जन्म से पहले दुश्मन घर में बाद शत्रु दुनिया सारी, कांटे भरी हर राह है तेरी फिर भी हिम्मत कभी न हारी, शीश झुकाता हूँ मैं तुमको, हो सदा जय जयकार तुम्हारी, हो सदा जय जयकार तुम्हारी, जय हो नारी, जय हो नारी, जय हो नारी।
0: एक बार की जरा सी गलती से आजीवन भाग्य मेरा फूटा
1: जी,
0: और 30 साल से मेरी पत्नी मुझको दिखलाती रोज अंगूठा
1: जी,
0: झाड़ फूंक टोटका प्रार्थना याचना आदि लाख जतन किए लेकिन पीछा मेरा आज तलक नहीं छूटा, मैंने ही अनसुनी कर दी वरना फेरों के समय हो गई थी आकाशवाणी
1: जी,
0: कि जिसको गाजे बाजे से ब्याह कर ले जा रहे हो
1: जी,
0: वो शादी के बाद ना तो आपको खाना देगी ना पानी।
1: अच्छा,
0: बेशक अग्नि के सम्मुख हाँ कर दे लेकिन फेरों की कसमें इसको आती नहीं निभानी
1: जी,
0: उसने दिखलाया वही खेला और 30 साल तक मैंने उसको झेला।
1: बहुत बढ़िया।
0: आखिर महाकुंभ में भेजी लेकर प्रभु का नाम
1: जी,
0: अफसोस भगदड़ से मरने वालों की सूची में नहीं था उसका नाम।
1: जी,
0: उससे मुक्ति पाने का एक और सुअवसर मिला उसके बाद में, लेकिन उसकी फ्लाइट छूट गई थी जो जहाज गिरा अहमदाबाद में। फिर एक और आइडिया आया मेरे खुरापाती ब्रेन में, मैंने बहुत समझाया लेकिन गई नहीं यूक्रेन में। कल भी मैंने कहा प्रिय क्या रखा है जयसिंह मान में, क्या रखा है इस दिल्ली में, क्या रखा है हिंदुस्तान में, जा चली जा वहां जहां बम बरस रहे हैं, ईरान में या लेबनान में।
1: अच्छा।
0: एक और सुनहरा मौका है घरवाली के पास मुक्ति पाने का मेरे अंदाज में, के स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में चली जा बैठकर किसी तेल के जहाज में
1: जी,
0: ताकि वहां जाकर प्रिय इतनी मझधार में फंसे मैं आकाशवाणी में कविता पढ़ूं और श्रोता हंसे।
1: क्या बात है।
0: लेकिन पंडित जी ने बताया प्रिय पत्नी सदा सुहागिन रहेगी, डस डस कर खून चूसेगी, मेरे बाद भी जिंदा नागिन रहेगी। धन्यवाद। हाँ, तो ये था आज का हमारा हास्य कवि सम्मेलन। श्रोताओं का धन्यवाद करते हैं और आगे भी कार्यक्रमों में हम आपसे मिलते रहेंगे।
2: अभी आप हास्य कवि सम्मेलन सुन रहे थे। प्रतिभागी थे श्री आरपी शर्मा, श्री जयसिंह मान, श्रीमती सीमा रंगा और श्रीमती ममता जयंत। कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे थे श्री जयसिंह मान। इसी के साथ कवि गोष्ठी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अभी आपने कवि गोष्ठी का आनंद लिया। आपसे कुछ ही क्षण बाद यानी ठीक 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 8:45 पर समय होगा समाचार संध्या का और ठीक 9 बजे सुनेंगे आप इवनिंग न्यूज़। 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू में खबरें और 9:30 पर समय होगा रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम का। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब वक्त हो चला है आपके पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत का। इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ तलत। तो शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन कार्यक्रम की इस जबरदस्त गीत के साथ। फिल्म है ताल और इस गीत को गाया है सुखविंदर सिंह ने।

जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक पल का इंतजार रहता है कि वो एक पल ऐसा आ जाए कि सदियों का जो दुख है, जो तकलीफ है, वो मिट जाए। और कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो आपको एक पल मिल जाता है और आपकी सारी दुख, तकलीफ, परेशानियाँ वो ख़त्म हो जाती हैं। अब ये दोनों बातें बहुत अलग हैं, लेकिन इसमें कनेक्शन सिर्फ इतना है कि आपका भरोसा बना रहना चाहिए।

अपना ख्याल रखिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अपने अपनों का भी ख्याल रखिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। अब इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत फिल्म है तनुवट्स मनु, और इस गीत को गाया है ज्योति नूरा ने।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही क्षण बाद यानी ठीक 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या और 9 बजे आप सुनेंगे इवनिंग न्यूज़। 9:15 पर समय होगा उर्दू में खबरों का। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी, सुचारू मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल परीक्षण किया। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस प्रक्षेपण की उपलब्धि पर

0: सराहना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान अस्थायी रुकावट के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के कई गंतव्यों के लिए सामान्य उड़ानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। दूसरे मैच में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सवेरे 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम के माध्यम से कई चरणों में मतगणना होगी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और केंद्रीय बलों, राज्य पुलिस कर्मियों और चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि मतगणना प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। रिकॉर्ड तोड़ मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें कल के नतीजे पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि अगले 5 वर्षों तक पश्चिम बंगाल पर किसका शासन रहेगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
0: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर से मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस बार के चुनाव में राज्य के सियासी मैदान में कई नए चेहरे नजर आए हैं। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि नई पीढ़ी ने राज्य की चुनावी राजनीति में गंभीरता से दिलचस्पी दिखाई है। वॉल राइटिंग, चित्रकारी, दीवारों पर पोस्टर लगाने की संस्कृति पर प्रतिबंध लगने के बाद राजनीतिक दलों ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। मतदान के दिन युवाओं की भागीदारी भी जबरदस्त रही और हर युवा वोटर की सोशल मीडिया प्रोफाइल और पर्सनल अकाउंट पर उंगली पर नीली स्याही वाली सेल्फी भी अपडेट होती रही। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 14,59,039 मतदाता पहली बार के वोटर रहे। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: केरलम में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: केरलम के 140 विधानसभा सीटों के लिए कल होने वाली मतगणना में 43 जगहों पर 32,000 से अधिक पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है। जिला चुनाव अधिकारियों को आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पाबंदियां लगाने का निर्देश भी दिया गया है। मतगणना की मेजों पर अधिकारियों की तैनाती और रैंडमाइजेशन का तीसरा दौर कल सुबह 5 बजे होगा। मतगणना शुरू होने में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में सीपीएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने इस बार बेहतर प्रदर्शन का पूरा भरोसा जताया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं करिश्मा राय।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
4: पुदुचेरी में राजनीतिक पार्टियां और आम जनता विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मतगणना कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। 9:30 बजे से शुरुआती रुझानों के सामने आने की उम्मीद है। ईवीएम और वीवीपैट की गिनती के लिए कुल 166 टेबल लगाए गए हैं, साथ ही डाक मतपत्र के लिए 35 टेबल लगाए गए हैं। मतगणना के लिए कुल 859 अधिकारियों को तैनात किया गया है। मतगणना में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें सिविल पुलिस, सशस्त्र पुलिस और केंद्रीय बल शामिल है। पुदुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी जवाहर ने सभी संबंधित पक्षों से गिनती की प्रक्रिया को सुचारू, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने में पूरा सहयोग देने की अपील की है। पुदुचेरी से बिपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: उधर असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी।
5: असम में मतगणना की प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रबंध किया गया है। मतगणना राज्य के 35 जिलों में स्थापित 40 केंद्रों में होगी। अधिकांश जिलों में जिला मुख्यालय पर एक एक केंद्र बनाया गया है, जबकि कोकराझार

0: तिनसुकिया और जोरहाट में दो दो केंद्र तथा नौगांव में तीन केंद्र स्थापित किए गए हैं। पूरी प्रक्रिया की निगरानी 126 काउंटिंग ऑब्जर्वर्स द्वारा की जाएगी। उनके सहयोग के लिए लगभग 6000 काउंटिंग कर्मी और 2300 से अधिक माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग गोयल ने 2026 के विधानसभा चुनाव को ऐतिहासिक बताया है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुद्दुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
1: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
2: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
1: जनादेश 2026।
3: भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि मिशन दृष्टि अपनी उन्नत, हर मौसम में 2400 घंटे पृथ्वी को अवलोकन करने की क्षमता के साथ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण में उनके जुनून का प्रमाण है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के बारे में हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट।
4: IIT मद्रास से शिक्षा प्राप्त करने के बाद 5 विद्यार्थियों द्वारा स्थापित गैलेक्स आई ने आज मिशन दृष्टि के द्वारा विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। सुयश सिंह, डेनिल चावड़ा, किशन ठक्कर और अन्य युवाओं द्वारा बेंगलुरु में 2021 में आरंभ किए गए इस स्टार्टअप ने आज भारत की क्षमता का परिचय दिया है। उनके द्वारा तैयार किए गए सैटेलाइट विश्व का एकमात्र ऐसा यान है जिसमें सिंथेटिक अपर्चर रेडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजरी सेंसर का मिला जुला उपकरण डाला गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
3: दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सवेरे 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने इस अग्निकांड में हुई जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच सरकार ने कहा है कि वो ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह से बहाल कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगाए गए सभी अस्थायी सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं। भारतीय और संयुक्त अरब अमीरात की विमान कंपनियां संयुक्त अरब अमीरात से भारत के विभिन्न गंतव्यों के लिए उड़ानों का संचालन कर रही हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अब तक सड़क मार्ग के माध्यम से ईरान से 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहायता की है। ईरान ने शांति वार्ता में गतिरोध को समाप्त करने के प्रयास में आज अमरीका को नया प्रस्ताव भेजा। हालांकि अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो पश्चिम एशिया संघर्ष को खत्म करने के लिए ईरान के इस नए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ये भी

0: संकेत दिया है कि अमरीका द्वारा किसी भी ऐसे ढांचे को स्वीकार करने की संभावना नहीं है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने की ठोस गारंटी शामिल न हो। ईरान ने संकेत दिया है कि यदि अमरीका अपनी सैन्य उपस्थिति को कम करता है और ईरानी तेल निर्यात पर प्रतिबंध समेत आर्थिक दबाव में ढील देता है तो वो हॉर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास तनाव को कम करने के लिए तैयार है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और विदर्भ में आंधी और ओलावृष्टि का भी अनुमान व्यक्त किया गया है। विभाग ने असम, मेघालय, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल गरज के साथ तेज बारिश की आशंका जताई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार पुणे जिले के नासरापुर में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। आकाशवाणी समाचार के व्हाट्सएप चैनल ने 1,00,000 फॉलोअर्स का आंकड़ा हासिल कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस व्हाट्सएप चैनल के जरिए प्रतिदिन समाचार अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज और अलर्ट्स उपलब्ध कराए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उन खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें यह कहा गया था कि आधार कार्ड का स्वरूप इस साल के अंत तक बदलकर सिर्फ एक फोटो और एक QR कोड वाला हो जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से कल से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देशभर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। IPL क्रिकेट में हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद के 166 रन के लक्ष्य को कोलकाता ने 19वें ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। कोलकाता के वरुण चक्रवर्ती को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब ने 17 ओवर में 6 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। सरकार ने बच्चों में मधुमेह पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश हाल ही में संपन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण से संबंधित एक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में जारी किए गए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी। सुचारू मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट से दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि की सराहना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान अस्थायी रुकावट के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के कई गंतव्यों के लिए सामान्य उड़ानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. All set for counting of votes tomorrow for West Bengal, Assam, Keralam, Tamil Nadu and Puducherry assembly elections. Robust security arrangements in place for smooth counting. Indian space startup Galaxy launches Mission Drishti, world's first Optosar satellite aboard SpaceX's Falcon 9 rocket. Vice President and Prime Minister hail the feat. UAE resumes normal flight of

0: गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाओं के पेशेनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मेहमान सनराइजर्स हैदराबाद को शिकस्त दी, जबकि एक और मैच अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के दरमियान जारी है। अब खबरें तफसील से। चार रियासतों मगरबी बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, आसाम और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके पुदुचेरी में असेंबली इंतखाबात की कल होने वाली वोटों की गिनती के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। आसाम में वोटों की गिनती के लिए सभी 35 ज़िलों में 40 मराकज़ कायम किए गए हैं। 59 ख़वातीन समेत 722 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फ़ैसला होगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: आसाम में वोटों की शफाफ और बिला रुकावट गिनती को यकीनी बनाने के लिए कसीर जहती हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। गिनती के पूरे अमल पर 126 काउंटिंग मुशाहिदीन करीबी नज़र रखेंगे। इस अमल में मदद के लिए वोटों की गिनती से वाबस्ता तकरीबन 6000 अहलकार और 2300 से ज़्यादा माइक्रो मुशाहिदीन तैनात किए गए हैं। आसाम के आला इंतखाबी अफसर अनुराग गोयल ने 2026 के इंतखाबात को तारीखी करार दिया है, क्योंकि यहाँ तकरीबन 3 दहाइयों के बाद वाहिद मरहले में पोलिंग कराई गई है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं रजी अहमद।
0: मगरबी बंगाल में 77 गिनती मराकज पर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: चुनाव कमीशन के मुताबिक पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती की जाएगी, उसके बाद कई राउंड में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से डाले गए वोटों की गिनती होगी। गिनती के अमल को शफाफ और बिला रुकावट बनाने के लिए मरकजी फोर्सेस, रियासती पुलिस अहलकारों और चुनाव अहदेदारों को तैनात किया गया है। स्ट्रांग रूम्स और काउंटिंग हॉल्स में सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं और कसीर जहती हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। कोलकाता से संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: इस दौरान चुनाव कमीशन ने जुनूबी 24 परगना के फाल्टा असेंबली हलके में वोटिंग के पूरे अमल को मनसूख करने का गैर मामूली कदम उठाया है। इस हलके में सभी 285 पोलिंग बूथों पर इस महीने की 21 तारीख को फिर से वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। तमिलनाडु में वोटों की गिनती के लिए 10,545 अहलकार तैनात किए जा रहे हैं, जिनकी मदद 4,624 माइक्रो मुशाहिदीन करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: इस चुनाव में रियासत की सियासत में बहुत से नए किरदार शामिल हुए हैं, साथ ही नई नस्ल ने इंतखाबी अमल में काफ़ी दिलचस्पी दिखाई है। सियासी पार्टियों ने सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया है और ऑनलाइन जबानी बहस और तकरार भी हुई है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: पुदुचेरी में भी वोटों की गिनती के लिए वसी हिफाजती इकदाम किए गए हैं। आकाशवाणी से बातचीत करते हुए पुदुचेरी के आला इंतखाबी अफसर पी जवाहर ने बताया कि पूरा अमल चुनाव कमीशन के मुकर्रर करदा मुशाहिदीन की निगरानी में शफाफ तरीके से किया जाएगा। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: अब जबकि चुनाव के नतीजे आने में बहुत कम वक्त रह गया है, सियासी पार्टियां और आम लोग नतीजे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो अगले 5 साल के लिए पुदुचेरी के मुस्तकबिल के लिए अहम होगा। वोटों की गिनती के लिए 859 अहदेदार तैनात किए गए हैं। गिनती के सभी मराकज पर मीडिया सेंटर्स कायम किए गए हैं, ताकि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को तेजी से मुसद्दका मालूमात फराहम किए जाने को यकीनी बनाया जा सके। पुदुचेरी से बेबीन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं रजी अहमद।
0: केरलम में सभी 140 गिनती के मराकज पर सीनियर अहदेदारों ने तैयारियों का जायजा लिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: रियासत भर में 43 मकामात पर 32,000 से ज्यादा पुलिस अहलकार तैनात किए गए हैं। जिला इंतखाबी अफसरों को हिदायत दी गई है कि अगर वो जरूरी समझें तो इजाफी बंदिशें आयद करें। अब जबकि वोटों के शुरू होने में कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं, सीपीएम की सरबराही वाले एलडीएफ, कांग्रेस की सरबराही वाले यूडीएफ और बीजेपी की सरबराही वाले एनडीए ने बेहतर कारकर्दगी के यकीन का इजहार किया है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलुरुथिस की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत के खलाई शोबे के स्टार्टअप गैलेक्स आई ने आज दुनिया का पहला ऑप्टोसार सयारचा कामयाबी के साथ खला में भेजा है। स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट के जरिए इस मिशन दृष्टि को अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया से खला में भेजा गया है। इस मिशन का वजन

0: 190 किलोग्राम है। ये ज़मीन के मुशाहदे वाला अब तक का सबसे बड़ा मस्नूई सैयारचा है और इसे किसी प्राइवेट भारतीय कंपनी ने तैयार किया है। ये नए दौर के स्टार्टअप्स में शामिल है जो खलाई टेक्नोलॉजी को मजीद वसत दे रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: बेंगलुरु में कायम गैलेक्स आई की बुनियाद 2021 में आईआईटी मद्रास के 5 साबिक तलाबा ने रखी थी, जिनमें दीगर के अलावा सोयाज सिंह, दैनिल चावड़ा और किशन ठक्कर शामिल है। इस स्टार्टअप को मिशन दृष्टि की कामयाबी पर दुनिया भर से तवज्जो हासिल हुई है। इस सैयारचे को खला में दागा जाना भारत की खलाई टेक्नोलॉजी से मुतालिक स्टार्टअप्स की बढ़ती हुई सलाहियतों के मैदान में एक बड़ी पेशरफ्त है। ये ज़मीन का मुशाहदा करने वाला अपनी नौइयत का दुनिया का पहला मस्नूई सैयारचा है जो बादलों और अंधेरे के पार भी तस्वीरें ले सकता है। स्टार्टअप्स गैलेक्स आई ने इसरो के खला में पेशरफ्त और ऑथोराइजेशन कौमी मरकज इन स्पेस का शुक्रिया अदा किया है कि उसने इनकी आजमाइशी बुनियादी ढांचों को ये शरफ बख्शा। अब इसरो का नया स्पेस इंडिया लिमिटेड इस स्टार्टअप्स की मदद कर रहा है कि वो अपने सैयारचे से खींची हुई तस्वीरों को आलमी सतह पर तकसीम करे। बेंगलुरु से सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मिशन दृष्टि इख्तरा और मुल्क की तामीर के तई नौजवानों के जज्बे का सबूत है। उन्होंने गैलेक्स आई के बानी अफराद और इसकी पूरी टीम को मुबारकबाद दी है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने अपने पैगाम में कहा है कि इस पेशरफ से खला से मुतालिक प्राइवेट शोबे में भारत की बढ़ती हुई ताकत का अंदाज़ा होता है। उन्होंने ये भी कहा कि मिशन दृष्टि भारत के खला के कमर्शियल इको निज़ाम की राह में एक अहम कदम है और यह मिशन सभी मौसमों में ज़मीन की हमा वक्त मुशाहदाती सलाहियत का हामिल है। मुत्तहदा अरब इमारात की जनरल शहरी हवाबाजी अथॉरिटी ने यूएई के फ़जाई हदूद के अंदर मामूल की सभी फ़जाई खिदमात दोबारा शुरू करने और मग़रबी एशिया में उभरती हुई सूरत हाल के दरमियान किए गए आर्जी एहतियाती इकदामात को ख़त्म करने का ऐलान किया है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि भारत और मुत्तहदा अरब इमारात की एयरलाइंस ने यूएई से भारत में कई मकामात पर परवाज़ें बहाल कर दी हैं। वजारत ने कहा है कि तेहरान में भारतीय सिफारतखाने ने अब तक 2,500 भारतीय शहरियों को ज़मीनी सरहद के रास्ते मुल्क से बाहर जाने में सहूलतें फराहम की हैं। हुकूमत ने आज कहा है कि वह मग़रबी एशिया में तनाज़े के पेश नज़र तवानाई की सप्लाई, बहरी खिदमात और भारतीय शहरियों की मदद को यकीनी बनाने के सभी इकदाम कर रही है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने कहा है कि LPG की जख़ीरांदोज़ी और काला बाजारी रोकने के लिए मुल्क भर में कार्रवाइयाँ जारी हैं। वजारत ने मजीद बताया कि कल तक 1,900 से ज्यादा छापे मारे गए थे। मुल्क भर में LPG सिलेंडरों की ऑनलाइन बुकिंग में कुल सनती बुनियाद पर 99% का इजाफा किया गया। इस साल मार्च से अब तक तकरीबन 6,04,000 PNG कनेक्शन दिए गए हैं और 2,68,000 इजाफी कनेक्शन के लिए बुनियादी ढांचे कायम किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT की वजारत ने आज उन खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट को मुस्तरद कर दिया है जिनमें कहा गया है कि इस साल के आखिर तक आधार की शक्ल महज एक फ़ोटो और एक QR कोड कर दी जाएगी। वजारत ने वजाहत करते हुए कहा है कि इस तरह की तब्दीलियों का कोई मंसूबा नहीं है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स ने सर्जरी की एक नई तकनीक तैयार की है जिसे रीढ़ की हड्डी में शदीद किस्म की खराबियों के इलाज के सिलसिले में एक बड़ी पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। एम्स ने एक बयान में कहा है कि यह तरीक़ाकार पिछले 7 सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे उन मरीजों के लिए एक उम्मीद पैदा हुई है जिन्होंने बीमारी के इब्तदाई दौर में सर्जरी के शदीद खतरात और इलाज के महदूद मुतबादिल का सामना किया है। हुकूमत ने बच्चों में डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में एक रहनुमा दस्तावेज जारी किया है। यह दस्तावेज़ सेहत आमा खिदमात बहम पहुँचाने में बेहतरीन तौर तरीक़ों के बारे में हाल ही में अख्ताम पजीर कौमी कॉन्फ्रेंस में जारी की गई। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत ने बताया कि इस पहल से भारत उन खास मुल्कों के ग्रुप में शामिल हो गया है जिन्होंने बचपन में ही हो जाने वाली ज़ियाबतिस की देखभाल को सेहत आमा के निज़ाम में शामिल कर लिया। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत ने हाल ही में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS के दोयम के रहनुमा खतूत जारी किए हैं। इस ताज़ा फ्रेमवर्क से 4 अनासिर पर मबनी तरीक़ाकार को इस्तेहकाम हासिल होता है जो इस तरह हैं: पैदाइश के वक्त खामियां, बीमारियां, कमियां और नशोनुमा में ताखीर। इसमें सेहत को दरपेश नए दौर के चैलेंजेस भी शामिल हैं जो इस तरह हैं: गैर मुतअद्दी बीमारियां, दिमागी सेहत और रवैया जाती तशवीश। इसमें किसी बच्चे की नशोनुमा के हर मरहले में अलग से की जाने वाली मुदाखलतों की बजाय लगातार देखभाल पर जोर दिया गया है। आकाशवाणी के खबरों के व्हाट्सएप चैनल ने 1,00,000 फॉलोअर्स का संगमील तय कर लिया है। व्हाट्सएप चैनल पर रोजाना की खबरें, ताज़ा तरीन खबरें और अलर्ट्स फराहम किए जाते हैं। दिल्ली में आज सुबह शाहदरा के विवेक विहार इलाके में एक 4 मंजिला इमारत में बड़े पैमाने पर आग लग जाने के हादसे में 9 अफराद हलाक हो गए। समझा जाता है कि ये आग एक एयर कंडीशनर फट जाने की वजह से लगी। आग बुझाने वाली 14 गाड़ियों को काम पर लगाया गया, जिन्होंने जल्द ही आग पर काबू पा लिया। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आग के इस हादसे में जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने इस हादसे में मरने वालों के करीबी रिश्तेदारों के लिए वज़ीर आज़म के कौमी राहत फंड से 2,00,000 रुपये की इमदादी रकम का ऐलान किया है। जख्मियों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। भारत के महकमे मौसमियात ने कल शुमाली भारत के बेशतर इलाकों में तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ शदीद बारिश की पेशगोई की है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और विदर्भ में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने आज मेज़बान सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। सनराइजर्स हैदराबाद के जरिए दिए गए 166 रन के निशाने को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 18 ओवर्स और 2 गेंदों में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। अहमदाबाद में खेले जा रहे आज के दूसरे मैच में पंजाब किंग्स ने मेज़बान गुजरात के सामने जीत के लिए 164 रन का निशाना रखा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने 9 विकेट पर 163 रन बनाए हैं। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। मगरबी बंगाल, आसाम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी असेंबली इंतखाबात में डाले गए वोटों की गिनती के लिए जो कल कराई जाएगी, ये अमल खुशसलूबी से जारी रहे, इसके लिए वसी हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। भारत के खलाई शोबे के स्टार्टअप गैलेक्स आई ने आज दुनिया का पहला ऑप्टोसार सयारचा कामयाबी के साथ खला में भेजा है। सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म ने इस कारनामे पर मुबारकबाद दी है। मुत्तहदा अरब इमारात ने मगरबी एशिया तनाज़े के दौरान अपनी परवाज़ों को कुछ दिन तक मुअत्तल रखने के बाद भारत की कई जगहों के लिए परवाज़ें दोबारा मामूल के मुताबिक चलानी शुरू कर दी हैं। भारत के महकमे मौसमियात ने कल शुमाली भारत के बहुत से इलाकों में मूसलाधार बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज़ हवाओं के पेश नज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुत्तहदा अरब इमारात की जनरल शहरी हवाबाजी अथॉरिटी ने यूएई के फ़जाई हदूद के अंदर मामूल की सभी फ़जाई खिदमात दोबारा शुरू करने और मगरबी एशिया में उभरती सूरत हाल के दरमियान किए गए आर्जी एहतियाती इकदाम को ख़त्म करने का ऐलान किया है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि भारत और मुत्तहदा अरब इमारात की एयरलाइंस ने यूएई से भारत में कई मकामात पर परवाज़ें बहाल कर दी हैं। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने आज मेज़बान सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। सनराइजर्स हैदराबाद के जरिए दिए गए 166 रन के निशाने को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 18 ओवर्स और 2 गेंदों में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। इससे कबल सनराइजर्स हैदराबाद टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 19 ओवर्स में 165 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। अहमदाबाद में खेले जा रहे आज के दूसरे मैच में पंजाब किंग्स ने मेज़बान गुजरात के सामने जीत के लिए 164 रन का निशाना रखा है। इसी के साथ
2: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में अप्रैल माह से प्रारंभ 3 कड़ियों की श्रृंखला में दूसरा रूपक, साहित्य और संस्कृति की सतत आवृत्ति आकाशवाणी। आलेख आनंद श्रीवास्तव का है, प्रस्तुत करता है नवोदिता मिश्रा। आइए सुनते हैं रूपक, साहित्य और संस्कृति की सतत आवृत्ति आकाशवाणी।
3: समय की तरंगों पर तैरती एक ऐसी आवाज जिसने 9 दशकों तक भारत के हृदय की धड़कन को शब्द दिए हैं। आज जब आकाशवाणी अपनी यात्रा के 90 वर्ष पूरे कर रहा है तो हम लौट रहे हैं उस विरासत की ओर जहां स्वर और शब्द मिलकर राष्ट्र की चेतना जगाते थे।
4: ये आकाशवाणी है।
3: ये शब्द सिर्फ एक सूचना नहीं, एक संस्कृति की धड़कन है। जब किताबें कुछ ही लोगों की मेज तक सीमित थी, तो इस आवाज ने बंद दरवाजों को खोलकर साहित्य और संस्कृति को आम आदमी के चूल्हे चौके और बैठक तक पहुंचाया।
5: एक ऐसा मंच जहां शब्द पन्नों की कैद से आजाद होकर सीधे हिंदुस्तान के दिल में उतर गए। 90 साल और एक अटूट रिश्ता, ये कहानी है आकाशवाणी और भारतीय साहित्य के साथ संस्कृति के उस मिलन की जिसने भारत की सोच को गढ़ा।
6: साहित्यकार जो देना चाहता है वो अनेक आगत युगों तक रहेगा और उसकी रचना कालजयी हो सकती, समय की सीमा को पार करती है। साहित्यकार को जीवित रखने के लिए उसके सृजनात्मक शक्ति को अक्षय रखना होगा।
3: यह आवाज थी कवयित्री महादेवी वर्मा की। 50 और 60 के दशक में आकाशवाणी के गलियारे भारत के साहित्यिक संसद जैसे थे। यहाँ निराला अपनी गूंजती आवाज में कविता पढ़ते थे, तो बच्चन अपनी मधुशाला की रूह उतारते थे।

0: ये थी हरिवंश राय बच्चन के स्वर में उनकी कृति मधुशाला की कुछ पंक्तियां।
1: पद्मश्री से सम्मानित हिंदी पत्रकार और लेखक विजयदत्त श्रीधर का मानना है कि साहित्यकारों को मंच प्रदान करने के साथ साथ भाषा और विषयों के चयन को लेकर आकाशवाणी ने अपनी अनूठी पहचान दशकों से कायम रखी है।
2: आकाशवाणी का भारत के जनजीवन में लोक प्रसारक के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है और उसका महत्व जब अकेला प्रिंट मीडिया था सामने तब भी बरकरार था, टेलीविजन मीडिया आया तब भी बरकरार रहा, अब सोशल मीडिया और निजी चैनलों की बाढ़ आ गई है तब भी आकाशवाणी का महत्व बरकरार है और इसका कारण है उसकी विश्वसनीयता, उसकी भाषा में, प्रस्तुति में, विषयों के चयन में संयम है, एक सुसंस्कृति है। फिर आकाशवाणी ने कई बहुत अद्भुत काम किए, पहले किसानों की, विज्ञान संबंधी, युवाओं के लिए कितनी सारी जानकारियाँ ये नियमित रूप से आकाशवाणी समाज तक पहुँचाता रहा है।
0: कई साहित्यकारों के लिए आकाशवाणी एक संस्कार रहा है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित लेखिका ममता कालिया अपनी यादों को साझा करते हुए कहती हैं,
3: मुझे सन 50 का जमाना याद आ रहा है जब मैं 9 साल की थी। मेरे पिता ने तब आकाशवाणी ज्वाइन किया। मेरे पिता का नाम था श्री विद्या भूषण अग्रवाल और मेरे चाचा भी रेडियो में थे, उनका नाम था श्री भारत भूषण अग्रवाल और विख्यात कवि थे वो। और मेरी साहित्य की यात्रा में रेडियो ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और देखो, रेडियो कहता था इस बार कविताएं ब्रॉडकास्ट करेंगे, आप कविताएं लिख के लाइए, तो रेडियो की वजह से मैंने 10-10 कविताएं लिख दी। मेरी भाषा में जो आज सरलता है जिसके कारण शायद लोग पढ़ लेते हैं मुझे, मुझे याद है कि बचपन में जैनेन्द्र कुमार तक ऐसे थे कि वो अपनी कहानी लिख के पापा को दिखाते थे कि देख लो रेडियो के लायक है कि नहीं, इसमें कोई कठिन शब्द तो नहीं है। पापा हमेशा कहा करते थे कि भाई रेडियो की भाषा सरल भाषा होनी चाहिए। विष्णु प्रभाकर के नाटक देखिए, रेडियो से ही वो इतने विख्यात साहित्यकार बने क्योंकि रेडियो में जो था कि उनकी कहानी नाट्य रूपांतर हुआ था और वो जा न सकी। गृहस्थी नाम की कहानी थी उनकी जो अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में प्रथम आई थी, उसी पर रेडियो का नाटक बना और वो नाटक जाने कितनी बार खेला गया। मैंने ही अनुवाद किया था जब मैं एमए में आई तो मेरे डॉक्टर फॉस्टस मार्लो का जो प्ले है दिल्ली स्टेशन से ब्रॉडकास्ट हुआ, वो बहुत सुना गया। आप समझो उस समय आकाशवाणी एक गढ़ था कि जो भी अच्छी रचना है तो सबसे पहले सोचते थे इसको रेडियो को दे दें।
1: बहुत सारे श्रोताओं को ये सुनकर आश्चर्य होगा कि साहित्यकारों को भी आकाशवाणी में ऑडिशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है। वरिष्ठ साहित्यकार अब्दुल बिस्मिल्ला एक ऐसा ही अनुभव साझा करते हुए कहते हैं,
4: आकाशवाणी से संबंध बना तब मुझे लगा कि ये तो केवल गाने तक सीमित नहीं है भाई, और केवल समाचार तक सीमित नहीं है, और सामान्य जनता जो है वो गाने गानों पर, लोकगीतों की बड़ी बहार थी साहब, इसमें साहित्य भी कहीं होता है ये तो हमें पता ही नहीं था, ये तो सब पता चला।

0: जब पहली बार मुझे ही जब पहली बार बुलाया गया, ये बात मैं कर रहा हूँ 74 से 80 के बीच का कोई सन रहा होगा, कि जबकि बनारस में रेडियो स्टेशन खुला। अच्छा, रेडियो में तो ये भी था कि समय के आधार पर उतने समय में वो समाप्त हो जाए। मेरी कहानी पहुंची जब वहाँ, तो डायरेक्टर साहब ने मुझे बुलवाया। इसमें फिर ऑडिशन होता है, कहानी हमारी उनके पास थी, कहा कि इसको कुछ नहीं करना, पढ़ना है आप और इतने मिनट में इसको खत्म करना है। तो पता चला हर तीसरे महीने हमें बुलाया जाने लगा वहाँ। हाँ, तो कभी कविता पाठ, तो कभी कहानी पाठ, कभी वार्ता के लिए कोई विषय दे दिया, कभी कोई बड़ी हस्ती पहुंच गए तो कहते थे साहब इंटरव्यू आप ले लीजिए। इसके बाद तो फिर साहब फिर वो इतने प्रसारण शुरू हो गए, और मुझे यह देखकर वाकई प्रसन्नता हो रही है कि वो आज भी जारी है। जबकि जैसा कि लोग कहते हैं कि अब तो आ गया मोबाइल का युग, लेकिन इसके बावजूद भी आकाशवाणी न केवल सक्रिय है बल्कि ये भी भूमिका को अदा कर रहा है और आज भी साहित्य को महत्व उतना ही दे रहा है। आप लोगों के लिए भी गर्व की बात है और हमारे लिए भी गर्व की बात है, क्योंकि हम इसका भाग रहे हैं, हिस्सा रहे, अंग रहे हैं।
1: आकाशवाणी के जरिए साहित्य सिर्फ महानगरीय हिंदी तक सीमित नहीं रहा, आकाशवाणी के क्षेत्रीय केंद्रों ने भारतीयता के असली रंग बिखेरे। जालंधर से हीर रांझा की गूंज हो, कोलकाता से टैगोर की रचनाएं, या चेन्नई से संगम साहित्य की चर्चा, आकाशवाणी ने भारत को एक सूत्र में पिरोया।
2: आकाशवाणी का ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन सर्व भाषा कवि सम्मेलन इसी दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास रहा है, जिसका प्रसारण 1956 से होता आया है और ये सिलसिला आज भी जारी है। आकाशवाणी सर्व भाषा कवि सम्मेलन का हिस्सा रहे वरिष्ठ साहित्यकार और कवि अब्दुल बिस्मिल्ला अपने अनुभवों को कुछ यूं साझा करते हैं।
0: 26 जनवरी जो होती है उस पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन यह आकाशवाणी कराता था, हमको इसकी जानकारी थी नहीं। तो जो कविता हमारी चुनी गई थी, कविता हमें भेजी गई और हमसे कहा गया कि आप इसका अंग्रेजी अनुवाद, तो अंग्रेजी अनुवाद जरूरी होता है, क्योंकि वो अंग्रेजी से फिर वो विभिन्न भाषाओं में अनुवाद होता है, यानी हर भाषा की कविता का हर भाषा में अनुवाद होता है।
2: उत्तर पूर्व से लेकर पूरे देश तक आवाजों को जोड़ने वाला सेतु रहा आकाशवाणी। कवि और नाटककार राजीव कुमार फुकन के अनुभव इसे और खास बनाते हैं।
3: बचपन से ही रेडियो पर प्रसारित होने वाली कविताएं, नाटकों और साहित्य के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता गया। लेखन के दौरान रेडियो पर प्रसारित होने वाली नाटक, उनकी कहानियां और पात्र मेरे मन में बसे रहती है। अखिल भारतीय रेडियो के कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे भारत का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित होता है। जब मेरी कविताएं या नाटक अखिल भारतीय रेडियो पर प्रसारित होते हैं, तो मुझे उनका जीवंत रूप दिखाई देते हैं। जीवन के हर क्षेत्र के लोगों का आकाशवाणी से गहरा जुड़ाव रहा है और यह आज भी कायम है।
2: सिर्फ कविता कहानी ही नहीं, हवा महल और झलकी जैसे कार्यक्रमों ने कहानी कहने की कला को पुनर्जीवित किया। रेडियो नाटकों ने अंधा युग और आषाढ़ का एक दिन जैसे कालजयी नाटकों को उस व्यक्ति तक पहुंचाया जिसने कभी थिएटर नहीं देखा था।
1: और इन सब से लोगों में पढ़ने की ललक जगी। रेडियो पर सुनी गई कहानियों ने पुस्तकालयों की कतारें लंबी कर दी। आकाशवाणी सिर्फ एक मंच नहीं बल्कि एक ऐसी पाठशाला रही जहां कलाकारों को तराशा गया।
2: नाटकों के माध्यम से अपना करियर शुरू करने वाले और बाद में टीवी और फिल्मों में लोकप्रिय अभिनेता बने राजीव वर्मा अपने शुरुआती दिनों को कुछ यूं याद करते हैं।
4: पहले तो मैं आकाशवाणी को ही धन्यवाद करना चाहूंगा कि इसने मेरे रंगमंच, टेलीविजन और सिनेमा के जो मेरा एक लंबा अरसा रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान मैं आकाशवाणी का मानता हूँ। आकाशवाणी ने मेरी आवाज़ को, मेरे तलफ़ुज़ को, उच्चारण को और मेरी जो एक अभिव्यक्ति की जो एक कला है, उसको जो परिमार्जन किया है आकाशवाणी ने ही किया।

0: आकाशवाणी से मेरा संबंध मुझे लगता है कि 1967 से है। 67 में मैं यहाँ ऑडिशन दिया था और उसके साथ फिर युवावाणी में भी मैं काफी काम किया हूँ कि एक कैजुअल अनाउंसर की तरह। तो ये मैं ये समझता हूँ कि मेरे मेरे व्यक्तिगत जीवन की और मेरे व्यक्तित्व के निर्माण और परिमार्जन की सबसे बड़ी जो शिक्षा मुझे मिली है वो आकाशवाणी से मिली है। और उस समय यानी हम लोगों को शहर में और कहीं भी अगर जाते थे तो आकाशवाणी के कलाकार के नाम से जाना जाता था। मुझे ये सौभाग्य रहा कि मैं कुछ साल दिल्ली में भी रहा, कुछ साल बल्कि काफी साल मैं 4-5 साल इंदौर में रहा और बंबई में तो 30-35 साल गुजारे। मैंने सारी जगह मैं आकाशवाणी विविध भारती से कनेक्टेड रहा और लगातार मैं वहां जाता रहा। तो ये नशा जो है ये खत्म नहीं हो सकता, श्रोताओं के दिमाग से भी ये सबसे बड़ी बात है।
1: एक दौर था जब शास्त्रीय संगीत महफिलों तक सीमित था, लेकिन आकाशवाणी ने इसे आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के माध्यम से वैश्विक पहचान दी। खजुराहो हो या कोणार्क, हर बड़े उत्सव की गूंज आकाशवाणी के माध्यम से करोड़ों कानों तक पहुंची।

0: सूत गणे। प्रख्यात ध्रुपद कलाकार पद्मश्री उमाकांत गुंदेचा बताते हैं,
1: मैं और मेरा छोटा भाई रमाकांत, हम दोनों भाई जो है वो 1985 में जो है हमने पहला ऑडिशन दिया था और उस समय हमें सीधा बी हाई ग्रेड मिला था। उस समय बी हाई एकदम डायरेक्ट आना बहुत बड़ी बात होती। ये हम लोगों की भी खुशकिस्मती रही कि फिर कहीं हम लोग गए नहीं, यानी यहाँ इस आकाशवाणी से शुरुआत किया और अभी तक हम इसी आकाशवाणी से यानी आकाशवाणी भोपाल से हम लोग जुड़े हुए हैं। आकाशवाणी का अपना जो स्टाफ कलाकार स्टाफ रहा है वो भी एक बहुत बड़ा योगदान आकाशवाणी का रहा है कि जो अच्छे अच्छे कलाकार जिन्होंने रेडियो आकाशवाणी में अपनी सेवाएं दी हैं और सेवाएं देकर के जो है उन्होंने अपना घर भी चलाया है, उस तरीके से उनकी कला को भी एक बल मिला है। तो मैं समझता हूं कि आकाशवाणी का प्रसारण होने वाला कार्यक्रम है ये तो अपनी जगह है, लेकिन वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान कलाकार समाज को इकट्ठा करके कलाकारों को जो है यहाँ पर रखा।
0: भारत के महान शास्त्रीय गायक या गायिकाएं, चाहे ध्रुपद हो, ख्याल हो या ठुमरी, हर कलाकार की एक ही चाह, आकाशवाणी का ग्रेड। आकाशवाणी का ग्रेडेशन सिस्टम केवल एक प्रमाण पत्र नहीं बल्कि कलाकार के लिए सम्मान की सबसे बड़ी मुहर बन गया। ए ग्रेड या टॉप ग्रेड कलाकार होना भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में एक तपस्या की सिद्धि जैसा माना जाता है। उस्ताद अमजद अली खान,
2: ऑल इंडिया रेडियो का बहुत पुराना संबंध है मेरा। मैं बहुत छोटा था, अपने पिताजी के साथ ग्वालियर से आता था यहाँ। उस वक़्त पिताजी को टॉप ग्रेड आर्टिस्ट थे वो, ऑल इंडिया रेडियो के 150 रुपया मिलता था। अर्ली 60s की बात है। That was the highest fee of All India Radio, top great musicians.

0: दिल्ली के भव्य स्टूडियो से दूर आकाशवाणी के क्षेत्रीय केंद्रों ने भारत के असली हृदय यानी लोक संस्कृति को जीवित रखा। आकाशवाणी के लोक संगीत कार्यक्रमों ने यह साबित किया कि भारत केवल राज्यों का समूह नहीं बल्कि लोक संस्कृतियों का एक अटूट सूत्र है।
1: गुणवत्ता को सर्वोपरि रखते हुए हर तरह के कार्यक्रमों को जगह देना, हर वर्ग के श्रोताओं को अपने साथ जोड़ना आकाशवाणी की सबसे बड़ी ताकत रही है। पद्मश्री से सम्मानित गायिका मालिनी अवस्थी कहती हैं,
2: 2:30 बजे लोक संगीत का कार्यक्रम प्रतिदिन आकाशवाणी से होता था, अब वक्त बदल गया।

0: शायद वो समय एक होता था, वो आकाशवाणी गोरखपुर के लिए भी, लखनऊ के लिए भी, सारे आकाशवाणी केंद्रों के लिए अलग अलग कलाकार रोज गाते थे वहां भी यहाँ भी, वो हम लोग उसको सुनने के लिए, क्योंकि वहां पे खाटी कलाकार गाते थे। तो वो गाना अलग होता है कि आप सीख कर कुछ गाएं, लेकिन 2:30 बजे से आता था जो वहां के पारंपरिक लोक कलाकार, उसमें कुमाऊनी भी बजता था, गढ़वाली बजता था, रसिया बजता था, अवधी भी सब गाते थे और मुरारी लाल जी को भी सुनते थे हम लोग। तो बड़ा कमाल का एक वो। अब शास्त्रीय संगीत का तो प्रतिदिन कार्यक्रम होते थे। एक कार्यक्रम जो आपका एक होता था स्वर सरिता, सुबह 7:15 बजे दिल्ली आकाशवाणी से होता था, जिसमें एक राग लेते थे और उस राग से उसको फिल्म में के स्वर आरोह अवरोह पकड़ो फिर एक वो। बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम था, क्योंकि जिनको नहीं शास्त्रीय संगीत समझ में आता है वो उस फिल्म के गाने से ये समझ जाते थे, ओह अच्छा सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस उनका वैसे तो कभी भी गाते थे, लेकिन मंगलवासी संगीत सभा में गाने का एक अलग गोल्ड स्टैंडर्ड होता था। मंगलवासी में हम गा रहे हैं, सुनिएगा जरूर। लोग कहते थे भैया, लोग सुनते थे, सुन करके वापस बताते थे कि आपने क्या गाया। संस्कार रोपने में रेडियो का बहुत बड़ा हाथ रहा। आराधना, रामचरितमानस भजन रोज बजते थे, तो बड़ा खूबसूरत बैलेंस म्यूजिक का 24 घंटे में रेडियो ने कर रखा था कि सबके हिस्से में सब कुछ था, कुछ इग्नोर नहीं था।
1: कुछ ऐसे कार्यक्रम जिन्होंने इतिहास रचा, वंदना के भक्ति स्वर हूँ, विविध भारती का रंगारंग सफर, संगीत सरिता, संगीत का राष्ट्रीय कार्यक्रम, रेडियो रूपक या फिर रेडियो नाटक, इन कार्यक्रमों ने कला और संस्कृति को आम आदमी की भाषा में पिरोया। शास्त्रीय संगीत और खासकर कर्नाटक म्यूजिक को गरिमा प्रदान करने में आकाशवाणी ने महती भूमिका निभाई है। भारत के कई आकाशवाणी केंद्रों में बतौर प्रशासक और प्रसारक जुड़े रहे डॉक्टर वागीश शास्त्री, जो अपने आप में बड़े संगीतज्ञ रहे, उनके अनुभव किसी दस्तावेज से कम नहीं है।
2: मुझे बड़े बड़े कलाकारों से मिलने का मौका जरूर मिला। रविशंकर जी, विजय राघव राव जी, हाफिज अहमद खान साहब, सुमति मुटाटकर जी, कर्नाटक म्यूजिक में डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्णा, शमंगुड़ी श्रीनिवास अय्यर, जी एन बाल सुब्रमण्यम, श्रीरंगम गोपाल रत्नम, संध्यावंदनम श्रीनिवास राव, टी के गोविंद राव, येमिनी शंकर शास्त्री, महान कलाकार आकाशवाणी के साथ जुड़े थे। ये तरह वाद्य वृंदा भी एक हिंदुस्तानी यूनिट दिल्ली में, और चेन्नई में एक कर्नाटिक यूनिट साउथ इंडियन म्यूजिक बेस करके, तो उसमें पूर्ण चंद्र राव, कामा शास्त्री, येमिनी शास्त्री, शंकर शास्त्री, ऐसे लोग उधर काम किया। दिल्ली में सचदेव पवार जी जैसे लोग भी, उसका कंडक्टर जैसे काम किया, और बहुत सारे गेस्ट कंडक्टर्स जैसे पंडित रविशंकर जी, वायलिन विद्वान लालगुड़ी जयरामन, टीवी गोपाल कृष्ण जी, बहुत सारे लोग आके मध्य वृंदा में नया नया रचना कंपोज करके, तो हर प्रकार से आकाशवाणी का शास्त्रीय संगीत कर्नाटिक हिंदुस्तानी दोनों सिस्टम का कायम रखने के लिए बहुत प्रयास किया है और सफल प्रयास किया है।

0: Hello there, listeners. Welcome to the magical world of music.
1: Those were such happy times and not so long ago.
0: Come, dream away in a session of Western music where we try to dream a rainbow to every cloud.
1: But they're back again, just like a long lost friend.
2: आकाशवाणी ने जहां भारतीय संगीत की परंपराओं को सहेजा, वहीं पाश्चात्य संगीत के श्रोताओं के लिए भी हमेशा कुछ नया, कुछ अनूठा प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यही वजह रही कि एक समर्पित श्रोता वर्ग आकाशवाणी के पाश्चात्य संगीत कार्यक्रमों को सराहता आया है। इन्हीं प्रयासों की कहानी वरिष्ठ प्रसारक और आकाशवाणी की पाश्चात्य संगीत इकाई से जुड़े रहे मनोज माइंडकर अपने अनुभवों के जरिए कुछ यूं साझा करते हैं।
3: न सिर्फ भारतीय कला संस्कृति बल्कि विश्व की कई विधाओं को भी आकाशवाणी ने अपने श्रोताओं तक पहुंचाया है सुलभ अंदाज में। आकाशवाणी में पाश्चात्य संगीत जैसे विधा से मेरा संबंध लगभग 37 वर्षों का रहा है। मेरे कार्यकाल के दौरान 1989 में जब मैंने ज्वाइन किया था आकाशवाणी, मैं उन लोगों के भी संपर्क में आया जिन्होंने मुझसे पहले शायद 37 या 37 से ज्यादा समय इसी क्षेत्र में बिताए थे। आकाशवाणी के पास वेस्टर्न म्यूजिक की जितनी वैरायटी, जितनी विधाएं, जितनी उपविधाएं रही हैं और हैं, उतनी संभवतः किसी अन्य चैनल पर आपको सुनने को नहीं मिलेंगी। अच्छा, बात सिर्फ वेस्टर्न क्लासिकल की नहीं है, वेस्टर्न म्यूजिक में बहुत सारी विधाएं हैं और आकाशवाणी पॉप से लेकर रॉक, फिर रॉक की उपविधाएं, जैज, कंट्री, डिवोशनल, वर्ल्ड म्यूजिक, न जाने कितने तरह का संगीत अपने श्रोताओं के लिए प्रस्तुत करता था। कुछ कार्यक्रम ऐसे थे, अ डेट विथ यू, फोर्सेस रिक्वेस्ट्स, या युवाणी चैनल पर संडे रिक्वेस्ट्स, और प्रस्तुतिकरण का अंदाज, एक इनफॉर्मल स्टाइल जो होता है, वो एफएम के आने से पहले भी रहा है पाश्चात्य संगीत अनुभाग के कार्यक्रमों में। तो मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि वसुधैव कुटुंबकम का जो सार हमारे पूरी कार्यप्रणाली में निहित है, हमारा जो वेस्टर्न म्यूजिक का बुके रहा है, वो उसका एक बहुत ही खूबसूरत एक सिंबल है, एक सूचक है। ये प्रवाह थमने वाला नहीं है।

0: इंडी पॉप जैसी विधा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली आवाज उषा उथुप के लिए आकाशवाणी एक गाइड, साथी और प्रेरणा रहा है।
1: हमारे दिनों में तो आकाशवाणी सुनती थी, ऑल इंडिया रेडियो, इसी से मैं बड़ी हुई हूँ। मैं तो हमेशा से कहती आ रही हूँ दैट रेडियो इज माय कंपेनियन, माय इंस्पिरेशन, माय गाइड, माय एवरीथिंग। अगर रेडियो ना होता तो इट वुड बी इम्पॉसिबल। द रेडियो इज द मोस्ट पावरफुल मीडियम इन द होल वर्ल्ड एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड दैट वी हैव ऑल इंडिया रेडियो। हमारी फेवरेट प्रोग्राम थी मधुर गीतम, जिसमें सारे लैंग्वेजेस होते थे, मलयालम, तेलुगु, फिर कन्नड़ा, तमिल, सब होता था। तो इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट एंड फौजी भाइयों की फरमाइश, दैट वाज माय फेवरेट प्रोग्राम।
2: फिल्मों और फिल्मी गानों को हिट कराने में भी आकाशवाणी का कोई सानी नहीं रहा है। वरिष्ठ फिल्म निर्माता और निर्देशक केसी बुकाड़िया बीते दौर को कुछ यूं याद करते हैं।
3: आकाशवाणी ने हमेशा हम लोगों के गाने बजाए, उन गानों के माध्यम से, इनके माध्यम से गाने लोगों तक पहुंचते रहे, गाने हिट हुए और हिट होने की वजह से फिर लोग पब्लिक सिनेमा हॉल में आते थे। तो आपका बहुत योगदान फिल्म इंडस्ट्री में रहा है और आपको मैं फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: क्या आपने कभी रंगों को सुना है या कभी पत्थर पर चलती छेनी की संगीतबद्ध टंकार को महसूस किया है? आकाशवाणी ने इस असंभव काम को भी संभव कर दिखाया। अचरज की बात है कि एक ऐसा माध्यम जो केवल सुनाई देता है, उसने चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला को भी करोड़ों लोगों की कल्पनाओं में जीवंत कर दिया।
4: The builders of a great empire needed to establish their authority on Indian soil, to make their presence seen and felt. This is how they did it, through architecture, to leave a mark on Indian skies.
2: अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्र हों या आधुनिक शिल्पकार रामकिंकर बैज की विशाल प्रतिमाएं, आकाशवाणी के रेडियो फीचर ने इन मूक कलाकृतियों को भी जबान दी।
0: आकाशवाणी के आर्काइव्स आज दुनिया की सबसे बड़ी सांस्कृतिक संपत्तियों में से एक हैं। महात्मा गांधी की आवाज हो या महान संगीत साधकों की दुर्लभ धरोहर, यहाँ इतिहास सांस लेता है।
2: चाहे वो बंगाल का बाउल हो, झारखंड का झुमेर, छत्तीसगढ़ की पंडवानी या दक्षिण भारत की यक्षगान शैली, आकाशवाणी ने इन विलुप्त होती कलाओं को न केवल मंच दिया बल्कि उन्हें रिकॉर्ड कर भविष्य के लिए सुरक्षित भी किया। लेखक, कवि और अभिनेता के साथ साथ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय

0: कला केंद्र के सदस्य सचिव, कार्यकारी और अकादमिक प्रमुख सच्चिदानंद जोशी कहते हैं,
1: हम सब जानते हैं कि लोक संगीत अलग अलग क्षेत्रों में होता है, लेकिन अगर उसे व्यापकता देने का कहीं काम किया है तो वो आकाशवाणी ने किया है। बुंदेली लोकगीत कौन सा हो, बघेली लोकगीत कौन सा हो, निमाड़ी लोकगीत कौन सा हो, मालवी लोकगीत कौन सा हो, वो सब लोकप्रिय कराने में आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो दूरस्थ अंचल है वहाँ पर जाने वाला माध्यम आकाशवाणी ही है, तो चाहे वहाँ पर उनकी उनकी संस्कृति को पहुँचाने का काम हो, चाहे बाहर की कोई और संस्कृति की झलक उस क्षेत्र में पहुँचाने का काम हो, तो दुर्गम से दुर्गम स्थानों पर आकाशवाणी की पहुँच है। भारत के पूरी लोक गीतों की परंपरा का ये संभवतः विश्व में सबसे बड़ा आर्काइव होगा, और उसमें भारत के हर प्रांत की तमाम जनजातियों के गीत संग्रहित हैं। आकाशवाणी का अपना बहुत अच्छा क्लासिकल म्यूजिक का भी बहुत अच्छा आर्काइव है, थिएटर का, नाटकों का तो निश्चित तौर पर है ही आर्काइव, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और देश के, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा मूर्धन्य साहित्यकार होगा जो आकाशवाणी पर नहीं आया होगा, निश्चित तौर पर उस समय तो आए ही हैं। तो ये इतना बड़ा काम, सहेजने का काम आकाशवाणी करता है।
2: जाने माने साहित्यकार, व्यंगकार और पत्रकार यशवंत व्यास साहित्य और संस्कृति के नजरिए से आकाशवाणी को एक समृद्ध खजाना मानते हैं।
3: आकाशवाणी एक ऐसी बूंद है जो मन पर गिरते ही यादों को जिंदा कर देती है। कितनी ही विलक्षण आवाजें इसकी दुनिया में सुरक्षित हैं। शब्द, गीत, संवाद, संगीत, सुबह उठने की धुन और रात के आखिरी गीत, वे दिन थे जब युवाणी में कविता सुनाकर आदमी मशहूर हुआ जाता था। नाटक और खबरों की पहली और आखिरी पनाहगाह थी रेडियो की वो फ्रीक्वेंसी। अभी भी वो खजाना है, अभी भी वो सबक है तमाम शोर शराबे के बीच यादों के उजाले का। आकाशवाणी अभी भी अपने साथ रहती है उसी तरीके से।
0: शब्दों और आवाजों की इस विरासत ने पीढ़ियों को जोड़ा है, संस्कृतियों को सवारा है और प्रतिभाओं को पहचान दी है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक माध्यम नहीं बल्कि भारत की आत्मा की गूंज है। सुनते रहिए आकाशवाणी।
4: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में तीन कड़ियों की श्रृंखला में दूसरा रूपक, साहित्य और संस्कृति की सतत आवृत्ति। आकाशवाणी, आलेख आनंद श्रीवास्तव, वाचन स्वर आनंद श्रीवास्तव और नवोदिता मिश्रा, स्वरांश सहयोग आकाशवाणी भोपाल, आकाशवाणी लखनऊ, आकाशवाणी संग्रहालय और प्रसार भारती संग्रहालय, प्रस्तुति सहयोग सरबजीत सिंह, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

ये आकाशवाणी है। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आज प्रस्तुत है नीरज मिश्र का सितार वादन। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सितार वादक नीरज मिश्र बनारस घराने की सुदीर्घ समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। संगीत के क्षेत्र में उनका प्रवेश मात्र 5 वर्ष की अवस्था में हुआ, जब उन्होंने अपने पिता और गुरु सुप्रसिद्ध सितार वादक अमरनाथ मिश्र से सितार वादन की विधिवत शिक्षा आरंभ की। गहन प्रशिक्षण के पश्चात नीरज मिश्र ने प्रयाग संगीत समिति से प्रभाकर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से सितार में स्नातकोत्तर और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एमफिल की डिग्री हासिल की। आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार नीरज मिश्र ने देश विदेश में अनेक प्रतिष्ठित संगीत समारोहों में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। इनमें संकट मोचन संगीत समारोह, गंगा महोत्सव, ताज महोत्सव, कबीरा महोत्सव, ICCR संगीत समारोह प्रमुख

0: उन्होंने यूरोप और मध्य पूर्व के देशों में भी सितारवादन की मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियां दी हैं, जिनमें इटली, स्विट्जरलैंड और फ्रांस शामिल हैं। आज के कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर संगत की है आकाशवाणी के बी हाई ग्रेड कलाकार देव नारायण मिश्र ने। नीरज मिश्र अपने सितारवादन का आरंभ राग दरबारी में आलाप, जोड़ और झाला से कर रहे हैं। विलंबित मसीद खानी गत, मध्य लय और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स एडिशन ऑफ रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू सितार रिसाइटल बाय नीरज मिश्रा, अ डिस्टिंग्विश्ड एंड इंटरनेशनली अक्लेम्ड सितार माइस्ट्रो रिप्रेजेंटिंग द रिच कल्चरल एंड म्यूजिकल हेरिटेज ऑफ रिनोन्ड बनारस घराना। बॉर्न इन वाराणसी, नीरज मिश्रा'स फॉर्मल इनिशिएशन इनटू द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक बिगेन एट अर्ली एज ऑफ 5 अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ हिज फादर एंड गुरु अमरनाथ मिश्रा। लेटर ऑन नीरज मिश्रा अर्न्ड हिज प्रभाकर फ्रॉम प्रयाग संगीत समिति एंड कम्प्लीटेड एम म्यूज इन सितार फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड एम फिल फ्रॉम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी, नीरज मिश्रा हैज परफॉर्म्ड इन वेरियस प्रेस्टिजियस फेस्टिवल्स अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड, सच एज संकट मोचन संगीत समारोह, काशी गंगा महोत्सव, ताज महोत्सव, कबीरा फेस्टिवल, ICCR होराइजन सीरीज, वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल इन इंडिया एंड हैज कैप्टिवेटेड ऑडियंसेज अक्रॉस यूरोप, मिडिल ईस्ट, इटली, स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस। इन टुनाइट्स प्रोग्राम अकंपनिंग हिम ऑन तबला इज देव नारायण मिश्रा, अ बी हाई ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी। नीरज मिश्रा इज बिगिनिंग हिज सितार रिसाइटल टुनाइट विथ आलाप, जोड़, झाला इन राग दरबारी। विलंबित मसीद खानी गत, मध्यलय एंड द्रुत गत इज सेट टू तीन ताल।

0: आपने सुना राग दरबारी। नीरज मिश्र अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग बागेश्री में सितार वादन। विलंबित मसीद खानी गत 3 ताल में, मध्यलय 1 ताल में और द्रुत गत 3 ताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग दरबारी। नीरज मिश्रा इज नाउ प्रेजेंटिंग।

0: आपने सुना राग दरबारी। नीरज मिश्र अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग बागेश्री में सितार वादन। विलंबित मसीद खानी गत 3 ताल में, मध्य लय 1 ताल में और द्रुत गत 3 ताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग दरबारी। नीरज मिश्रा इज नाउ प्रेजेंटिंग।

0: राग बागेश्री के पश्चात नीरज मिश्र आज अपने कार्यक्रम का समापन सितार पर प्रस्तुत राग मिश्र भैरवी में धुन से कर रहे हैं।
1: आफ्टर राग बागेश्री नीरज मिश्रा इज कंक्लूडिंग हिज सितार रिसाइटल टुनाइट विथ धुन कंपोज्ड इन राग मिश्र भैरवी।

0: आप सुन रहे थे सितार पर प्रस्तुत राग मिश्र भैरवी में धुन। कलाकार थे नीरज मिश्र। आज के रविवासरीय संगीत सभा में आपके साथ तबले पर संगति की देव नारायण मिश्र ने। आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र पर रिकॉर्ड इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: दिस वॉज धुन इन राग मिश्र भैरवी प्लेड ऑन सितार बाय नीरज मिश्रा इन टू नाइट्स रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा। अकम्पनिंग हिम ऑन तबला वॉज देव नारायण मिश्रा। रिकॉर्डेड अर्लियर एट आकाशवाणी वाराणसी, दिस प्रोग्राम केम टू यू फ्रॉम दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम के माध्यम से कई चरणों में मतगणना होगी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और केंद्रीय बलों, राज्य पुलिस कर्मियों और चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि मतगणना प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। रिकॉर्ड तोड़ मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें कल के नतीजे पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि अगले 5 वर्षों तक पश्चिम बंगाल पर किसका शासन रहेगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
0: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्ना द्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस बार के चुनाव में राज्य के सियासी मैदान में कई नए चेहरे नजर आए हैं। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि नई पीढ़ी ने राज्य की चुनावी राजनीति में गंभीरता से दिलचस्पी दिखाई है। वॉल राइटिंग, चित्रकारी, दीवारों पर पोस्टर लगाने की संस्कृति पर प्रतिबंध लगने के बाद राजनीतिक दलों ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। मतदान के दिन युवाओं की भागीदारी भी जबरदस्त रही और हर युवा वोटर की सोशल मीडिया प्रोफाइल और पर्सनल अकाउंट पर उंगली पर नीली स्याही वाली सेल्फी भी अपडेट होती रही। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 14,59,039 मतदाता पहली बार के वोटर रहे। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: केरल में भी मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। उधर असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में भी आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स आई के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान

और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से कल से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देशभर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच सरकार ने कहा है कि वे ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह से बहाल कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगाए गए सभी अस्थायी सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अब तक सड़क मार्ग के माध्यम से ईरान से 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहायता की है। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 164 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17 ओवर में 5 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: for Women Chairperson Vijay Rahatkar also strongly condemned the incident, calling it deeply disturbing and a blot on humanity. She said, the commission has written to the National Commission for Protection of Child Rights seeking immediate action. She also demanded strict action under the POXO Act. Defence Minister Rajnath Singh will inaugurate a North Tech Symposium on the theme Raksha Trivedi Sangam, where technology, industry and soldiering converge in Prayagraj, Uttar Pradesh tomorrow. The three-day event is being jointly organized by the Northern Command and Central Command of the Indian Army and the Society of Indian Defence Manufacturers, that is SIDM. The Ministry of Defence informed that the symposium will serve as a vibrant platform to showcase and integrate state-of-the-art indigenous technologies to overcome operational challenges. Ministry of Health and Family Welfare, in collaboration with all states and union territories and relevant central ministries and departments, will observe a Pan-India Fire Safety Week from tomorrow to raise awareness on the importance of prevention and mitigation of fire hazards across healthcare facilities in the country. In IPL cricket, chasing the target of 164 runs set by Punjab Kings, Gujarat Titans were 147 for 5 in 17.5 overs in Ahmedabad when reports last came in. Earlier in another match, Kolkata Knight Riders defeated Sunrisers Hyderabad by 7 wickets at Rajiv Gandhi International Stadium in Hyderabad. Chasing the target of 166 runs set by Sunrisers Hyderabad, Kolkata Knight Riders scored 169 for 3 in 18.2 overs, and that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़। श्रोताओं, रात्रि के 11:10 हो चुके हैं और समय हो गया है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। आपकी फरमाइश में अपने सभी श्रोताओं का मैं अमित स्वागत करता हूँ। और श्रोताओं, मेल की शुरुआत हो चुकी है, ईमेल के माध्यम से श्रोतागण हमसे जुड़ चुके हैं और तमाम तरह की जो अपनी फरमाइशें जो हैं वो हमें भेजने लग गए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फरमाइश का कोई गीत शामिल किया जाए तो आप भी कृपया हमें ईमेल के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और हमें अपनी पसंद बता सकते हैं। तो पहले सबसे पहले हमारे पास जो फरमाइश आई है वो मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ जो है इन्होंने जो है हमें संदेश भेजा है। गंज ढूंढवाड़ा से शमसूल कमर राही, शाहीन, फातिमा, अदनान खान और अनु खान ये लिखते हैं कि कोई भी गीत इन्हें सुनवा दिया जाए। ग्राम रजौनी, जिला महोबा, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से उदयवान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश और का पूरा परिवार कहते हैं कि आदरणीय प्रस्तुतकर्ता जी सादर नमस्कार, किसी भी गीत में हमें आप शामिल कर लीजिए। राजेश वर्मा हमें अपना संदेश भेजते हैं, गोल्डन रेडियो श्रोता संघ, राज पैलेस, मऊनाथ, भंजन, उत्तर प्रदेश से। साथ ही इनके साथ है प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकर, पिंकी।

बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में। फिल्म का नाम था तीन देवियाँ। और अगले गीत के लिए फरमाइश हमें भेजी है गगनदीप धांदी ने। इन्होंने स्नेह भरा नमस्कार भेजा है गांव टोरोवाल नवाशहर पंजाब से। साथ ही साथ तृप्ता कुमार धांदी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, प्रियम, बेबी वामिका और वाणी। अगला संदेश हमें भेजा है नंदकिशोर घाटे ने बीड शहर महाराष्ट्र से। साथ ही जयश्री महत्रे, अंजलि करवा, बाला साहब करवा। मुकेश बट्टा लिखते हैं कोई भी गीत सुनवा दीजिए। साथ ही नीलम बट्टा, निहारिका, हार्दिक और वंश बट्टा को भी शामिल करने की बात कही है। सतीश अनेजा हमें कहते हैं कि प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करते हैं और शामिल करने की गुजारिश करते हैं चंडीगढ़ सिटी से। साथ ही साथ बिमला अनेजा ने भी इनके साथ जो है हमें संदेश भेजा है। रेणु मल्होत्रा सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। साथ ही टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर और डॉक्टर अमनदीप। वहीं कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज ये चाहते हैं कि इन्हें किसी भी गीत में शामिल कर लिया जाए। साथ ही साथ अगला संदेश हमें मिला है मजनू का टीला से। कमल बालूजा, मधु, सागर और सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक। तो आइए सुनते हैं अगला गीत मुकेश की आवाज़ में। फिल्म का नाम है रजनीगंधा।

और श्रोताओं, अगले गीत की फरमाइश हमें भेजी है केवल कमली ने। ये लिखते हैं आदरणीय जी, किसी भी गीत में शामिल करें मजनू का टीला से। और इसके अलावा हमें फरमाइश मिली है सतीश अनेजा की। हरजिंदर शिंदा पंजाब से अपनी फरमाइश भेजते हैं, साथ ही जसवीर जस्सी, सीता और गीता, ये कहते हैं कि अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए। राजकुमार डुड्डी गांव फरासी हिसार से, साथ ही साथ पुष्पेंद्र डुड्डी और प्रमोद। अनिल मोहन लिखते हैं पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, उषा मोहन, टिल्लू नायक, साथ ही कैथल हरियाणा से संदेश मिला है मधु नायक का। नवी हसन लिखते हैं मारहरा दरवाज़ा एटा से, साथ ही नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल, अनम अब्बासी, रसीद वारसी, यशफ, ये कहते हैं आपका अच्छे अच्छे गाने सुनवाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। साथ ही साथ हमें संदेश मिला है नगर निगम वार्ड 28 नाज मंजिल मैसौल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस का, बेगम इशरत, वसीम, रुबीना, आरिज, नदीम, शमीम, ममता रानी, पूनम कुमारी, कोआच बिहार से शेख जफर हसन और नरगिस जफ़र। ये लिखते हैं कि आप प्लीज़ अपनी पसंद के किसी भी गीत में हमें शामिल कीजिए। तो इसी के साथ हम उनको सुनवा रहे हैं अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में, फिल्म का नाम है कामचोर।

संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव का संदेश हमें मिला है। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा और टिल्लू, इनका संदेश हमें मिला है।

वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा कहते हैं कि कोई भी गीत हमें सुनवा दीजिए। बिट्टू गगनेजा जी का संदेश आया है, राम राम जी जलालाबाद वेस्ट से। साथ ही साथ सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा को भी अपने गीत में शामिल करने के लिए कहा गया है। सुनील पाठक का संदेश मिला है कि प्रस्तुतकर्ता जी को प्यार भरा नमस्कार। इनके साथ ही फरमाइश है सुनील, कमल, दीपिका, गाव्या मल्होत्रा और भाई सुच्चा सिंह पाठक। चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, इनका संदेश हमें मिला है। आमिर हुसैन जी लिखते हैं, आदरणीय अमित जी, आपको प्यार भरा आदाब, नमस्ते। अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए, आपकी मेहरबानी होगी। जी बिल्कुल नहीं, आप हमारा काम है आपको संगीत आपकी पसंद का सुनवाना, और हम चाहते हैं कि आप अपनी पसंद का कोई गीत ज़रूर हमें भेजें। हम कोशिश करेंगे कि आपकी पसंद का गीत आपको सुनवाएं। इनके साथ ही इन्होंने गीत में शामिल करने को कहा है आमिर हुसैन, बेगम तैयबा शेख, फौजिया, आहिल, अरहान और परिवार के सभी सदस्य। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, निवान, सौरव, शाइना और मेहंदी, इन्होंने हमें संदेश भेजा है। एनी सॉन्ग प्लीज़ हमारे मैसेज को शामिल करें। जी बिल्कुल, आपके संदेश को है वो बिल्कुल शामिल कर लिया गया है। किशन सकपाल संदेश भेजते हैं, साथ ही आशा सकपाल, सोनिया और विशाल।

सुखविंदर सिंह जोड़ा, कृष्णा पार्क दिल्ली से, साथ ही सीटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबराय नमस्कार लिखते हैं और कहते हैं कि कोई भी गीत सुनवाकर कृतार्थ करें। संजय ढींगिया बागपत उत्तर प्रदेश से हमें संदेश लिखते हैं और नमस्कार करते हैं और फिल्म साजन का एक गीत सुनवाने की फरमाइश करते हैं। इस गीत को हम अगले उसमें शामिल ज़रूर करेंगे और अभी सुनते हैं ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है हिना।

उषा मोहन जी का संदेश हमें मिला है, लिखते हैं, नमस्कार अमित जी, आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए गीत जो है बेहद पसंद आ रहे हैं, शानदार प्रस्तुतिकरण के लिए बधाई। साथ ही साथ अनिल मोहन जी का भी संदेश इसमें शामिल है। इसके अलावा मोहम्मद कमर प्यार भरा नमस्कार लिखते हैं, आदाब अर्ज़ हो, गन्नौर से। साथ ही आदिल कमर, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली, इन्होंने गीत में शामिल करने की फरमाइश लिखी है। सादिक अली हमें लिखते हैं, एनी सॉन्ग एनी फिल्म, कस्बा अग्रवाल मंडी बागपत से। साथ ही साथ आसिफ अली खान को भी शामिल करने की गुजारिश की गई है। अकमरुद्दीन प्रिंस नूर मोहल महसौल सीतामढ़ी बिहार से लिखते हैं। साथ ही मुसर्रत जहां नाज, तलत जहां, फरत जहां, रिफत जहां, नुजहत जहां, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी, इन्होंने लिखा है कि हमारी फरमाइश को भी इस गीत में आपके कार्यक्रम में शामिल करें और कोई भी पसंद का गीत जो है वो सुनवा दीजिए। अहमद फूलवाले हमें लिखते हैं, होस्ट जी आदाब व नमस्कार, हमें निराश और नज़रअंदाज मत करना, हमारे मेल ज़रूर शामिल करें। और लिखते हैं, रफू चक्कर का कोई गीत सुना दीजिए या अपनी पसंद के किसी गीत में हमें शामिल कर लीजिए। बिल्कुल, आपको अपनी ही पसंद के किसी गीत में शामिल ज़रूर किया जाएगा। साथ ही साथ छोटा बलिया फिल्म सिटी मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फूलवाले, इमरान अहमद, कापासेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मच्छा, आशु अहमद फूलवाले और समस्त फूलवाले फैमिली। छोटे अंसारी लिखते हैं, वाह जी वाह, क्या बात है, प्रोग्राम बेहद शानदार है। साथ ही साथ पंजू सराय संबल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, असद अंसारी, और लिखते हैं कि कोई भी गीत सुनवा दीजिए। तो सुनते हैं अगला गीत फिल्म साजन से, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में।

बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आपने सुना फिल्म सत्ते पे सत्ता से। और अगले गीत की फरमाइश हमें भेजी है शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और

हैप्पी हूँ। साथ ही राजेश कुमार वर्मा, प्रीति और कार्तिक आर्यन का संदेश मिला है राज पैलेस मऊनाथ उत्तर प्रदेश से। साथ ही साथ रुनकुदीन मंथल का संदेश हमें मिला है कर्नाटक गुलबर्ग से। इनके साथ शामिल करने के लिए कहा है मोहम्मद रुकनुद्दीन मंठाल, शब्बीर आसिफ। छोटे अंसारी का संदेश हमें मिला है किशन सकपाल हमें लिखते हैं। साथ ही साथ आशा सोनिया और विशाल सकपाल का संदेश हमें मिला है। कृष्णा पार्क दिल्ली से सीटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबराय इनका संदेश हमें मिला है। कहते हैं कि कोई भी गीत में शामिल कर लीजिए। और सुनते हैं ये अगला गीत आशा भोसले और आर डी बर्मन की आवाज़ में। फिल्म का नाम है कारवां।

आशा भोसले और आरडी बर्मन की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना फिल्म कारवा से। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। इसी के साथ मुझे यानी अमित को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़। रात्रि के 12 बजने को हैं। इन मीटरों पर हमारे प्रसारण अब संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव 24/7 पर हमारे प्रसारण जारी रहेंगे। और अब रात्रि के 12 बजने को हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर दी हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। इन मतदान केंद्रों की मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। केरल में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
1: आज सुबह 8:30 बजे से
2: मतगणना की पल पल की खबर,
1: हर सीट की सटीक जानकारी,
2: संवाददाताओं से ताजा हाल
1: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
2: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए।
1: जनादेश 2026।
0: पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 3 विधानसभा सीटों की मतगणना के लिए सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। सीएपीएफ और पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। सुचारू और पारदर्शी मतगणना प्रक्रिया के लिए मतगणना केंद्र के अंदर ड्रोन, मोबाइल फोन और ज्वलनशील वस्तुओं के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स आई के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से आज अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल सरकार का कहना है कि ये क्षेत्र उसकी संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीर्थ यात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उससे परामर्श नहीं किया गया था। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति भारत द्वारा जून और अगस्त के बीच यात्रा आयोजित करने की घोषणा के कुछ दिनों बाद आई है। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच सरकार ने कहा है कि वे ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह से बहाल कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगाए गए सभी अस्थायी सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। इससे पहले गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। गुजरात टाइटंस की ओर से जेसन होल्डर ने 4 विकेट लिए। होल्डर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। साथियों, समय हुआ है 12:10। साथियों, ये समय होता है एक बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम का। जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम सुरों का सफ़रनामा। साथियों, आज वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन सुरों का सफ़रनामा कार्यक्रम होने वाला है और आज मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। हम बात कर रहे हैं महान पार्श्व गायक सुरेश वाडकर की। जी हाँ, वाकई बहुत ही सुंदर आवाज के मालिक हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं सुरों का सफ़रनामा, वो महफिल जहाँ हर धुन दिल की धड़कन बन जाती है, हर नगमा यादों के खूबसूरत बनकर बिखर जाता है। सुरों की बारिशों में भीगता रहा जमाना, सुरों की बारिशों में भीगता रहा जमाना, किसी ने दर्द गाया तो किसी ने प्यार का फसाना, मगर कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों जो रूह तक उतर जाएं, और वही होता है तराना। जी हाँ, जिसकी आवाज़ में मिट्टी की महक भी है और इबादत का सुकून और मोहब्बत की चमक भी है, जिसने हर एहसास को सुरों में ढाला। जी हाँ, जिसने हर एहसास को सुरों में ढाला है, आज उसी फनकार का ये खूबसूरत सिलसिला है। दोस्तों, आज का हमारा विशेष कार्यक्रम समर्पित है भारतीय संगीत जगत की उस महान आवाज को, जिनकी गायकी में शास्त्रीय संगीत की गहराई, भक्ति का सुकून और फिल्मी गीतों की मिठास एक साथ सुनाई देती है। जी हाँ, आज का सुरों का सफ़रनामा समर्पित है महान पार्श्व गायक सुरेश वाडकर को। तो आइए सुनते हैं एक सुंदर खूबसूरत गीत, और फिर बात करेंगे सुरेश वाडकर जी की बहुत सारी बातों के साथ, फिर से हाजिर होंगे। तब तक एक खूबसूरत गीत आ रहा है आपके पास, सुनिएगा इस प्यारी खूबसूरत

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर, बेहतरीन, खूबसूरत गीत से शुरुआत की है हमारी जो सुरेश वाडकर जी हैं। बहुत ही प्यारे, मधुर, खूबसूरत आवाज़ में सुंदर रचना। जी हाँ, सीने में जलन फिल्म गमन से ये शानदार, बेहतरीन, खूबसूरत रचना भी आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर की आवाज़ में। तो आइए बढ़ते हैं, एक और कुछ जानकारी की ओर बढ़ रहे हैं हम। जी हाँ, सुरेश वाडकर, पूरा नाम सुरेश वाडकर जी का है। अगर परिचय की बात करें, सुरेश वाडकर जीवन परिचय की बात करें, तो हम उनका पूरा नाम सुरेश ईश्वर वाडकर है और जन्म 7 अगस्त 1955 को हुआ था। जन्म स्थान कोल्हापुर, महाराष्ट्र, भारत में हुआ था और पेशा है उनका, यानी कि पार्श्व गायन और संगीत शिक्षक

जी हाँ साथियों, बहुत ही सुंदर मधुर बेमिसाल खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे मैं कहा हुआ गुलाब हो तुम। जी हाँ, फिल्म आधार शिला से सुरेश वाडकर और दिलराज कौर की आवाज़ में शानदार बेहतरीन नगमा। आधार शिला फिल्म 1982 में प्रदर्शित हुई थी और इस गीत को सजाया था रंजीत कपूर ने। जी हाँ, अपने संगीत से सजाया रंजीत कपूर ने। साथियों, वाकई सुरेश वाडकर साहब की जब बात याद आती है तो वाकई एक से एक सुंदर बेहतरीन खूबसूरत गीतों का जो सिलसिला शुरू किया वाकई बहुत ही शानदार रहा। सुरेश वाडकर जी ने उन चुनिंदा गायकों में शामिल हैं जिन्होंने फिल्म संगीत में शास्त्रीयता की बेहद खूबसूरती से निभाया है। जी हाँ, शास्त्रीयता को बेहद खूबसूरती से निभाया है। उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा महान गुरु पंडित जियालाल वसंत से प्राप्त की थी।

बेहतरीन, लाजवाब, खूबसूरत गीत, वाह क्या बात है। साथियों, वाकई बहुत ही सुंदर सुंदर गीत गाए हैं सुरेश वाडकर साहब ने, उनका साथ दिया है अलग अलग जो फीमेल सिंगर हैं, वाकई बहुत ही सुंदर चुनिंदा खूबसूरत गीतों का संकलन है। जी हाँ, वाकई साथियों, संघर्ष जो किया है, यूँ तो फिल्म इंडस्ट्री में जो भी, चाहे वो डायरेक्टर हों, प्रोड्यूसर हों, गीतकार हों, संगीतकार हों, चाहे वो गायक हों, तो सभी की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं संघर्ष तो होता ही है। संघर्ष की कहानी भी बड़ी अजीब होती है ना दोस्तों। हर महान कलाकार की तरह सुरेश वाडकर जी का सफ़र भी आसान नहीं था। शुरुआती दिनों में उनका सपना पार्श्व गायक बनने का नहीं था, बल्कि संगीत शिक्षक बनने का था। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। सन 1976 में उन्होंने प्रतिष्ठित सुर सिंगर कंपटीशन जीता। इस प्रतियोगिता में जज थे लता मंगेशकर, मदन मोहन और सुधीर फड़के। तो आइए साथियों, एक और खूबसूरत गीत सुनवाते हैं आपको उनकी फिल्मों से, जो गाया हुआ गीत है, फिर सुनाते हैं शानदार रचना।

जी हाँ साथियों, वाकई बहुत ही सुंदर ऐ ज़िंदगी गले लगा ले, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत गीत। जी हाँ, फिल्म भी एक ऐसी ही है, सदमा। जी हाँ, सदमा फिल्म से अभी आप एक सुंदर खूबसूरत गीत सुन रहे थे, वाकई बहुत ही लाजवाब और अनमोल खूबसूरत गीत। जी हाँ दोस्तों, ऐसे सुंदर गीत बहुत ही कम सुनने को मिलते हैं। जी हाँ, ऐ जिंदगी गले लगा ले फिल्म सदमा से सुरेश वाडकर की बेहतरीन लाजवाब आवाज में सुंदर रचना। सदमा फिल्म 1983

प्रदर्शित फिल्म रही है और गीत गा रहे हैं एनसी सिप्पी और ऋषिकेश मुखर्जी, और इस गीत को सजाया था अपने संगीत से एलिया राजा ने। तो आइए सुनते हैं और आगे की कुछ कहानी। जी हाँ, बहुत ही सुंदर बेहतरीन गीतों का जो समावेश बन रहा है उनकी गायकी में, वाकई दिल खुश हो रहा है। सभी साथी सुन रहे हैं सुंदर खूबसूरत गीत को। जी हाँ, और सही मायने में एक बहुत ही खूबसूरत गीत आ रहा है, और यदि हम उनके गीतों की बात करें, ना जाने कितनी ही फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज़ दी है, जैसे कि गमन फिल्म में बहुत ही शानदार, सीने में जलन। और सीने में जलन की अगर हम बात करें तो इस गीत ने साबित कर दिया कि सुरेश वाडकर सिर्फ गायक नहीं, एहसासों की आवाज़ है, है ना। ऐ जिंदगी गले लगा ले सदमा फिल्म, वाकई आज भी ये गीत जीवन की थकान पर मरहम जैसा लगता है। 1981 प्रदर्शित फिल्म थोड़ी सी बेवफाई, हजार राहें मुड़ के देखी, चल चमेली बाग में मेला दिखाऊंगा, मेघारे मेघारे, ऐसे तमाम फिल्मों में काम किया है। बहुत ही सुंदर प्यासा सावन फिल्म से शानदार खूबसूरत रचना। जिंदगी प्यार का गीत है फिल्म सौतन से, ऐ जिंदगी गले लगा ले, सुरमई अखियों में नन्ना मुन्ना एक सपना दे जा रहे, ये गीत भी सदमा फिल्म से है, वाकई बहुत ही सुंदर फिल्म रही है सदमा। साथियों, तमाम गीत हैं और कुछ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में और भी जानकारियां हम बताने जा रहे हैं। और ये गीत, ये लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। सन 1976 में उन्होंने प्रतिष्ठित सुर सिंगर कंपटीशन जीता। इस प्रतियोगिता में जस थे लता मंगेशकर और मदन मोहन और सुधीर फड़के जी। कहते हैं जब सुरों में सच्चाई हो तो दुनिया खुद रास्ता बना लेती है। यहीं से शुरू हुआ एक महान सफर। शुरुआती फिल्म सफर उनकी शुरुआती बड़ी पहचान बनी पहेली और क्रोधी जैसी फिल्मों से। और लेकिन जिस गीत ने उन्हें घर घर पहुंचा दिया था वो था सीने में जलन। जी हाँ, यहीं से ही उनकी जो गायकी थी और ज्यादा उत्कृष्ट होती चली गई और उन्हें पीछे मुड़के कभी जिंदगी में देखा ही नहीं। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर।

जी हाँ दोस्तों, वाकई मेघारे मेघारे, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ दोस्तों, और इतनी सारी फिल्में हैं जिनके नाम भी हम बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतने सारे गानों की फहरिस्त है इनके पास। जी हाँ, बहुत ही सुंदर सुंदर गीत हैं, चाहे वो विरह के गीत हो, विरह में जब ये जैसे चांदनी की एक फिल्म है, बाकी बहुत ही सुंदर है, और ओ राम जी बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने, लगी आज सावन की फिर ये घड़ी है बारिश, विरह और सूरज, विरह और सुरेश वाडकर की आवाज़ मानो एहसासों का संगम होता है। मेघारे मेघारे में अपनी एक अलग शैली, मुरे सैया जी उतरेंगे पार, साथिया तूने क्या किया, लव फिल्म जो 1994 में फिल्म प्रदर्शित हुई थी, और एक फिल्म है बहुत ही बहुचर्चित फिल्म रही है, चप्पा चप्पा चरखा चले। जी हाँ, फिल्म माचिस।

तो फिलहाल हम एक गीत सुनवा रहे हैं, एक फिल्म है, बहुत ही प्यारी है, सुंदर है, बेहद खूबसूरत फिल्म है, और इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं। और साथियों, इतने कम समय में बड़ा मुश्किल हो जाता है एक समाहित करना एक खूबसूरत कार्यक्रम को। हजार राहें ये टाइटल है, थोड़ी सी बेवफाई से सुंदर खूबसूरत रचना है लता मंगेशकर और वाडेकर की आवाज़ में। 1981 प्रदर्शित फिल्म रही है, आइए सुनते हैं ये शानदार

जी हाँ साथियों, वाकई बहुत ही सुंदर। दरअसल कार्यक्रम तो काफ़ी लेंदी हो सकता है, लेकिन समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा कर रहे हैं आपके साथ। संगीतकारों के साथ सफ़र उन्होंने काम किया महान संगीतकारों के साथ, आर डी बर्मन साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और खयाम साहब, और साथ में हृदयनाथ मंगेशकर और ए आर रहमान के साथ। अगर हम पुरस्कारों की बात करें, उन्हें सम्मान देने की बात करें, तो पुरस्कार और सम्मान संगीत नाटक अकादमी सम्मान से नवाजा गया, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से भी नवाजा गया, और अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी उन्हें

उनकी गायकी को सिर्फ पुरस्कार नहीं, करोड़ों दिलों की मोहब्बत मिली है। परिवार और निजी जीवन सुरेश वाडकर जी ने बेहद सरल और आध्यात्मिक व्यक्तित्व के इंसान माने जाते हैं। उन्होंने संगीत को सिर्फ पेशा नहीं, साधना माना है। वे मुंबई में संगीत शिक्षा से जुड़े हुए रहे और नई पीढ़ी और शास्त्रीय संगीत सिखाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मध्य भाग की अगर हम बात करें, ट्रांजिशन की बात करें, तो दोस्तों कुछ आवाज़ें वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, बल्कि हर दौर में नई लगती हैं। फिलहाल एक गीत सुनवा रहे हैं।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही चर्चित खूबसूरत गीत चप्पा चप्पा चरखा चले। बढ़ते हैं आगे। जो सुर दिल से निकलते वो दुआ बन जाते हैं, कुछ नगमे उम्र भर की वफा बन जाते हैं। हर किसी को कहाँ मिलती है ऐसी आवाज़, कुछ फनकार खुदा की अदा बन जाते हैं। ना शोर था ना दिखावा था, बस सुरों से सच्चा, सुरों में सच्चा बहाव था। इसलिए आज भी दिल करता है कि वो गायक नहीं, पूरा एहसास था। साथियों, ये समय कितनी जल्दी गुजर जाता है ना? वाकई कुछ लोग चले जाते हैं, मगर उनकी आवाज़ें सफ़र करती रहती हैं। हर दिल में, हर मौसम में, हर याद में बिखरती है, बिखरती रहती है। सुरों की ये महफिल यूं ही सजती रहे, दिलों में मोहब्बत की रोशनी जलती रहे। जिस आवाज़ ने हमें जीना सिखाया, वो हर दौर में यूं ही सुनाई देती रहे। इसे खूबसूरत एहसास के साथ मैं यानी कि ललित कुमार को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक और नई आवाज़, एक नए फनकार और सुरों के नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए सुनते हैं, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और छोड़े जा रहे हैं एक सुंदर गीत के साथ। नमस्कार।

0: साथियों, सुरों का सफर अब समाप्त होता है। एक बजने को हैं, अब हिंदी में और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। इन मतदान केंद्रों की मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन अन्ना द्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। केरल में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
2: जनादेश 2026।
3: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
2: आज सुबह 8:30 बजे से
3: मतगणना की पल पल की खबर,
2: हर सीट की सटीक जानकारी,
3: संवाददाताओं से ताजा हाल
2: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
3: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए।
2: जनादेश 2026।
1: भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स आई के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से आज अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जून के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य बढ़ाने पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की है। संयुक्त अरब अमीरात के बाहर निकलने के बाद अपनी पहली वर्चुअल बैठक में ओपेक प्लस के सात देशों ने अगले महीने तेल उत्पादन लक्ष्य को लगभग 188,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस वृद्धि में शामिल सात देश सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान है। ये वृद्धि फिलहाल प्रतीकात्मक है क्योंकि होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने और पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों के कारण तेल आपूर्ति पहले से ही प्रभावित है। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल सरकार का कहना है कि ये क्षेत्र उसके संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीर्थयात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उससे परामर्श नहीं किया गया था। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति भारत द्वारा जून और अगस्त के बीच यात्रा आयोजित करने की घोषणा के कुछ दिनों बाद आई है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स द्वारा 164 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस ने एक गेंद शेष रहते जीत हासिल कर ली। गुजरात टाइटंस की ओर से जेसन होल्डर ने 4 विकेट लिए। होल्डर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने आज उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर गीत गीत सुनहरे के अंतर्गत शानदार बेहतरीन खूबसूरत रचनाएं अभी आप सुन रहे हैं। एक और खूबसूरत है, जी हाँ, इतना प्यारा गीत सुना है आपने, वाकई लाजवाब। ठंडी हवा के झोंके, वाकई बहुत ही सुंदर। भाई बहन फिल्म से शानदार खूबसूरत रचना। ये फिल्म 1950 प्रदर्शित फिल्म रही, शमशाद बेगम की आवाज़ में शानदार खूबसूरत रचना। जी हाँ, संगीत से सजाया है इस सुंदर गीत को श्याम सुंदर ने। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये गीत आ रहा है आपके पास, तो बस हो जाइए तैयार इस सुंदर गीत को सुनने के लिए। जी हाँ, सुनो, गजर किया गए। जी हाँ, फिल्म बाजी, गीता दत्त और कोरस की आवाज़ में सुंदर बेहतरीन रचना। बाजी फिल्म 1950 प्रदर्शित फिल्म रही है, गीतकार रहे हैं साहिर साहब और संगीत से सजाया है RD बर्मन, SD बर्मन साहब ने। आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। साथियों, कार्यक्रम चल रहा है गीत सुनहरे। साथियों, वाकई बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होता है, बहुत ही सुंदर खूबसूरत रचनाएं आती हैं। अभी तक आप सुन रहे थे बहुत सारी रचनाएं। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये गीत भी बेहद खूबसूरत है, लाजवाब है। और इस गीत के बारे में यदि हम बात करें तो ये है कहानी नमाज की, अब्दुल्ला फिल्म से है और मुकेश साहब की आवाज़ में शानदार रचना। अब्दुल्ला फिल्म 1960 प्रदर्शित फिल्म रही है, इसी फिल्म का ये गीत आ रहा है। तो आइए सुनिए ये शानदार खूबसूरत गीत।

0: पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। केरलम में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
1: आज सुबह 8:30 बजे से
2: मतगणना की पल पल की खबर,
1: हर सीट की सटीक जानकारी,
2: संवाददाताओं से ताजा हाल
1: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
2: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
1: जनादेश 2026।
0: भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स आई के लिए के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से आज अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उन खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि आधार कार्ड का स्वरूप इस साल के अंत तक बदलकर केवल एक फोटो और एक QR कोड वाला हो जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल सरकार का कहना है कि ये क्षेत्र उसके संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीर्थ यात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उससे परामर्श नहीं किया गया था। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति भारत द्वारा जून और अगस्त के बीच यात्रा आयोजित करने की घोषणा के कुछ दिनों बाद आई है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जून के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य बढ़ाने पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की है। संयुक्त अरब अमीरात के बाहर निकलने के बाद अपनी पहली वर्चुअल बैठक में ओपेक प्लस के 7 देशों ने अगले महीने तेल उत्पादन लक्ष्य को लगभग 188,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस वृद्धि में शामिल 7 देश सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान है। ये वृद्धि फिलहाल प्रतीकात्मक है क्योंकि होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने और पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों के कारण तेल आपूर्ति पहले से ही प्रभावित है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स द्वारा दिए गए 164 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस ने एक गेंद शेष रहते जीत हासिल कर ली। गुजरात टाइटंस की ओर से जेसन होल्डर ने 4 विकेट लिए। होल्डर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेनू कटारिया। All preparations are in place for counting of votes for the assembly elections in 4 states, West Bengal, Keralam, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry to be held today. The counting will begin at 8 in the morning. Counting of postal ballots will be taken up first and counting of electronic voting machines will start at 8:30 a.m. Early trends are expected to emerge by noon. Election Commission has put in place robust security arrangements for smooth counting at 4 states and 1 union territory. Voting for all 126 seats in Assam, 140 in Kerala and 30 seats in Puducherry was held on the 9th of April. Polling for all 234 assembly constituencies in Tamil Nadu and for the first phase in West Bengal covering 152 seats was held on the 23rd of April. Voting for the second phase in West Bengal took place on the 29th of last month for 142 constituencies.
0: Janadesh 2026.
3: Special program on results of assembly elections in Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and Puducherry.
0: Today, the 4th of May 2026.
3: Our correspondents on the ground will bring the latest developments for you.
0: For in-depth analysis by the experts and latest update of vote counting.
3: Tune into Akashvani Gold along with additional frequencies.
0: From 8:30 a.m. onwards today.
3: Janadesh 2026.
1: Indian space startup Galaxy has launched Mission Drishti, world's first Optosar satellite aboard SpaceX's Falcon 9 rocket from California in United States. Weighing 190 kilograms, Mission Drishti is the largest Earth observation satellite ever built by a private Indian company. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi lauded the successful launch of Mission Drishti satellite, highlighting it as a major milestone in India's space and innovation journey. The Ministry of External Affairs, MEA, stated that Lipu Lake Pass has been a long-standing route for the Kailash Mansarovar Yatra since 1954 and said this is not a new development. Official spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, answered the media questions regarding comments made by the Foreign Ministry of Nepal on the border issue in the context of the Kailash Mansarovar Yatra. Jaiswal said Lipu Lake Pass has been a long-standing route for the Kailash Mansarovar Yatra since 1954 and the Yatra through this route has been going on for decades. This is not a new development. The United Arab Emirates has resumed normal flight operations to multiple destinations in India after brief suspension amid West Asia conflict. It comes after the UAE General

का दामन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो।

0: श्रोताओं, गीत बहार कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मुझे यानी अपने दोस्त ललित कुमार को दीजिए अनुमति। 3 बजने को हैं, अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। केरला में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
2: जनादेश 2026।
3: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
2: आज सुबह 8:30 बजे से
3: मतगणना की पल पल की खबर,
2: हर सीट की सटीक जानकारी,
3: संवाददाताओं से ताजा हाल
2: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
3: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए।
2: जनादेश 2026।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और जमैका के संबंध निरंतरता और परिवर्तन से परिपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये संबंध साझा इतिहास पर आधारित है और भविष्य में अपार संभावनाओं से भरा है। जमैका के एक निजी समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को अधिक मजबूत साझेदारी बनाने के लिए मिलकर काम करना जारी रखना चाहिए। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जून के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य बढ़ाने पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की है। संयुक्त अरब अमीरात के बाहर निकलने के बाद अपनी पहली वर्चुअल बैठक में ओपेक प्लस के 7 देशों ने अगले महीने तेल उत्पादन लक्ष्य को लगभग 188,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस वृद्धि में शामिल 7 देश सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान है। ये वृद्धि फिलहाल प्रतीकात्मक है क्योंकि होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने और पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों के कारण तेल आपूर्ति पहले से ही प्रभावित है। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल सरकार का कहना है कि ये क्षेत्र उसके संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीर्थ यात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उसे परामर्श नहीं किया गया था।

कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति, भारत द्वारा जून और अगस्त के बीच यात्रा आयोजित करने की घोषणा के कुछ दिनों बाद आई है। अटलांटिक महासागर में एक क्रूज जहाज पर हंता वायरस के संदिग्ध प्रकोप के कारण 3 लोगों की मौत हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि हंता वायरस का एक मामला पुष्ट हो गया है, जबकि 5 अन्य संदिग्ध मामलों की जांच चल रही है। हंता वायरस मुख्य रूप से चूहों और अन्य कृंतकों के मलमूत्र से फैलता है और ये इंसानों के लिए जानलेवा श्वसन रोग का कारण बन सकता है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स द्वारा दिए गए 164 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस ने एक गेंद शेष रहते जीत हासिल कर ली। इससे पहले गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का विकल्प चुना। गुजरात टाइटंस की ओर से जेसन होल्डर ने 4 विकेट लिए। होल्डर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अब प्रस्तुत है भगवान मुर्गन को समर्पित कुछ भक्ति रचनाएं। स्वर TM सौंदरराजन का है। अर्चना कार्यक्रम में पहले प्रस्तुत है NS चिदम्बरम की रचना

0: इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम नाद ब्रह्म। कलाकार हैं पी रामाचंद्रम और राग है मधु मायावती।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नाद ब्रह्म। कलाकार थे पी रामाचंद्रन और राग था मध्य मवाती। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 4 मई 2026। सुबह के 4:53 और 45 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए आपको आगे प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। पांच बजकर 10 मिनट पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम आओ योग करें, जबकि 5:20 पर आप देशभक्ति संगीत का आनंद उठा सकते हैं। 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वर रंजनी। कलाकार हैं अभिषेक लोधी और राग है नट भैरव।

सुबह 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जबकि अंग्रेजी में समाचार का वक्त होगा 6:05 का। 6:10 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम वंदना। 6:40 पर आप सुनेंगे चिंतन।

6:45 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम रामचरितमानस, जबकि 6:55 पर प्रसारित किए जाएंगे संस्कृत में समाचार। सुबह 7 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जबकि अंग्रेजी में समाचार का वक्त होगा 7:05। 7:10 से लेकर

0: 7:30 पर आप संगीतिका कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। अब 5 बजने को हैं, आइए सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। उधर तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन अन्ना द्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। केरलम में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में भी आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
2: जनादेश 2026।
3: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
2: आज सुबह 8:30 बजे से
3: मतगणना की पल पल की खबर,
2: हर सीट की सटीक जानकारी,
3: संवाददाताओं से ताज़ा हाल
2: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
3: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
2: जनादेश 2026।
1: भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि मिशन दृष्टि अपनी उन्नत हर मौसम में 2400 घंटे पृथ्वी अवलोकन क्षमता के साथ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण के जुनून का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लिपुलेख दर्रा 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक प्रमुख मार्ग रहा है और इस मार्ग से यात्रा दशकों से जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल कैलाश मानसरोवर यात्रा के संदर्भ में नेपाल के विदेश मंत्रालय की टिप्पणियों के संबंध में मीडिया के प्रश्नों का जवाब दिया। नेपाल के क्षेत्रीय दावों के संबंध में उन्होंने कहा कि ऐसे दावे ना तो उचित हैं और ना ही ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित हैं। इससे पहले नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे के उपयोग पर आपत्ति जताई। नेपाल सरकार का कहना है कि ये क्षेत्र उसके संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीर्थयात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उससे परामर्श नहीं किया गया था। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जून के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य बढ़ाने पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की है। संयुक्त अरब अमीरात के बाहर निकलने के बाद अपनी पहली वर्चुअल बैठक में ओपेक प्लस के 7 देशों ने अगले महीने तेल उत्पादन लक्ष्य को लगभग 188,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस वृद्धि में शामिल 7 देश सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स द्वारा दिए गए 164 रन के लक्ष्य के जवाब में गुजरात टाइटंस ने एक गेंद शेष रहते जीत हासिल कर ली। मौसम विभाग ने आज उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. All arrangements are in place for counting of votes today for the assembly elections in Assam, West Bengal, Kerala, Tamil Nadu and Union Territory of Puducherry. The counting will begin at 8 this morning. Counting of postal ballots will be taken up first and counting of electronic voting machines will start at 8:30 a.m. Counting of votes will be taken up for 126 assembly seats in Assam, 140 in Kerala, 234 in Tamil Nadu and 30 seats in Puducherry. In West Bengal, counting of votes will be taken up for 293 seats today. The re-poll for the Falta Assembly will be held on 21st of May and the counting will be held on 24th of May.
2: Janadesh 2026.
3: Special program on results of assembly elections in Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and Puducherry.
2: Today, the 4th of May 2026.
3: Our correspondents on the ground will bring the latest developments for you.
2: For in-depth analysis by the experts and latest update of vote counting.
3: Tune into Akashvani Gold along with additional frequencies.
2: From 8:30 a.m. onwards today.
3: Janadesh 2026.
1: Indian space startup Galaxy has launched Mission Drishti, world's first Optosat satellite, aboard SpaceX's Falcon 9 rocket from California in United States. Weighing 190 kilograms, Mission Drishti is the largest Earth observation satellite ever built by a private Indian company. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi lauded the successful launch of Mission Drishti satellite, highlighting it as a major milestone in India's space and innovation journey. The Minister of External Affairs, MEA, stated that Lipu Lake Pass has been a long-standing route for the Kailash Mansarovar Yatra since 1954 and said this is not a new development. Defence Minister Rajnath Singh will inaugurate a North Tech symposium on the theme Raksha Triveni Sangam, where technology, industry and soldiering converge in Prayagraj, Uttar Pradesh today. The three-day event is being jointly organised by the Northern Command and Central Command of the Indian Army and the Society of Indian Defence Manufacturers. On the occasion of the Delhi Metro Rail Corporation's DMRC 32nd Foundation Day, Delhi Chief Minister Rekha Gupta announced the 7 new corridors to be constructed under Metro Phase 5B. She said these corridors will have a combined length of 97.58 kilometers and 65 new stations will be built along them. The estimated cost for all 7 corridors to be constructed under Metro Phase 5B is approximately ₹48,204.56 crore. Ministry of Health and Family Welfare, in collaboration with all states and union territories and relevant central ministries and departments, will observe a Pan-India Fire Safety Week beginning today to raise awareness on the importance of prevention and mitigation of fire hazards across healthcare facilities in the country. The United States and Iran appear no closer to a breakthrough as Washington pushes back on key elements of Tehran's proposed roadmap to end the conflict, even as a fragile ceasefire remains under pressure across West Asia. Iran's government spokesperson Ismail Baghai said the United States has responded to Tehran's 14-point plan aimed at ending the war, adding that the response is currently under review. U.S. President Donald Trump, speaking to Israeli media, said he had examined the proposal and described it as not acceptable. He said Iran has not yet paid a big enough price, signaling Washington's tougher stance as talks remain indirect and mediated. In IPL cricket, Gujarat Titans defeated Punjab Kings by 4 wickets at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad last night. In another match, Kolkata Knight Riders defeated Sunrisers Hyderabad by 7 wickets at Rajiv Gandhi International Stadium in Ahmedabad. Today, Mumbai Indians will face Lucknow Super Giants at Wankhede Stadium in Mumbai. The match will begin at 7:30 this evening. And that is the end of this news bulletin.
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक वक्त हो चला है 5:10:22 और ये वक्त है कार्यक्रम आओ योग करें का। इसके अंतर्गत आज आप अर्ध मत्स्येन्द्रासन के बारे में जानेंगे।
5: योग सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह गुणतापूर्ण भावनात्मक एकीकरण एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, जिससे हमें सभी कल्पनाओं से परे स्थित आयाम की एक झलक मिलती है। योग एक पूर्ण विज्ञान है, यह शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट करता है। यह व्यक्ति को शांति और आनंद प्रदान करता है। व्यक्ति के व्यवहार, विचारों और रवैये में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। योग के दैनिक अभ्यास से हमारी अंतः शांति, संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान और जागरूकता बढ़ती है। योगासन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। योगासन खुली एवं ताजा हवा में करना सबसे अच्छा माना गया है। फिर भी अगर ऐसा करना संभव ना हो तो किसी भी खाली जगह पर आसन किया जा सकता है। योग सीधे जमीन या फर्श पर बैठकर न करें, इसके लिए दरी या कालीन जमीन पर बिछाकर योगासन करें। किसी भी योगासन को झटके से न करें। योग उतना ही करें जितना आप आसानी से कर पाएं। योगासन करने के तुरंत बाद स्नान ना करें, क्योंकि व्यायाम करने के बाद शरीर गर्म हो जाता है और अगर आप गर्म शरीर में ही स्नान करेंगे तो सर्दी, जुकाम, बदन दर्द जैसी तकलीफ हो सकती है। इसलिए योग करने के एक घंटे बाद ही स्नान करना चाहिए। आज बात करेंगे अर्ध मत्स्येन्द्रासन की। अर्ध मत्स्येन्द्रासन को हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोज भी कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो अर्ध मत्स्येन्द्रासन तीन शब्दों के मेल से बना है, अर्ध, मत्स्य और इंद्र। अर्ध मतलब आधा, मत्स्य यानी मछली और इंद्र मतलब भगवान। अर्ध मत्स्येन्द्र का अर्थ है शरीर को आधा मोड़ना या घुमाना। अर्ध मत्स्येन्द्रासन आपके मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी के लिए अत्यंत लाभकारक आसन है। यह आसन सही मात्रा में फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है अथवा जननांगों के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। यह आसन रीढ़ की हड्डी से संबंधित है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए। अर्ध मत्स्येन्द्रासन की प्रक्रिया को आपको समझाते हैं। सबसे पहले पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए बैठ जाएं। दोनों पैरों को साथ में रखें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। अब बाएं पैर को मोड़ें और बाएं पैर की एड़ी को दाहिने कूल्हे के पास रखें, या आप बाएं पैर को सीधा भी रख सकते हैं। दाहिने पैर को बाएं घुटने के ऊपर से सामने रखें। बाएं हाथ को दाहिने घुटने पर रखें और दाहिना हाथ

0: बैठ जाएं। अब इसी प्रक्रिया को दूसरी तरफ दोहराएं। अर्ध मत्स्येन्द्रासन के लाभ। इससे मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी को मजबूती मिलती है। छाती को फैलाने से फेफड़ों को ऑक्सीजन सही मात्रा में मिलती है। अर्ध मत्स्येन्द्रासन में रीढ़ की हड्डी का लचीलापन बढ़ता है, जिससे उसकी कार्य कौशलता में सुधार होता है। पीठ में दर्द और कठोरता से राहत मिलती है। यह आसन छाती को खोलता है और फेफड़ों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। अर्ध मत्स्येन्द्रासन बाहों, कंधों, ऊपरी पीठ और गर्दन में तनाव को कम करता है। अर्ध मत्स्येन्द्रासन स्लिप डिस्क के लिए चिकित्सीय है, लेकिन यह आसन करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। यह आसन पेट के अंगों की मालिश करता है और पाचन में सुधार लाता है, जिससे कब्ज जैसी स्थिति में लाभ होता है। अग्नाशय के लिए लाभदायक है, मधुमेह रोगियों के लिए उपयोगी है अर्ध मत्स्येन्द्रासन। यही आसन डायबिटीज, कब्ज, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, मूत्रपथ विकारों, मासिक धर्म की परेशानियां और अपच के लिए चिकित्सीय है। अर्ध मत्स्येन्द्रासन के दौरान कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। गर्भावस्था और मासिक धर्म के दौरान यह आसन वर्जित है, नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जिनके दिल, पेट या मस्तिष्क की ऑपरेशन की गई हो, उन्हें अर्ध मत्स्येन्द्र आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। उनके लिए भी आसन वर्जित है। पेप्टिक अल्सर या हर्निया वाले लोगों को यह आसन बहुत सावधानी से करना चाहिए। इसी तरह अगर आपको रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट या समस्याएं हैं, तो आप यह आसन ना करें। हल्के स्लिप डिस्क में इस आसन से लाभ हो सकता है, लेकिन गंभीर मामलों में इसे नहीं करना चाहिए। इस कार्यक्रम में आज इतना ही। कल आपसे पुनः भेंट होगी इसी चैनल पर इसी समय। योग करते रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें। इसके अंतर्गत अभी आपने अर्ध मत्स्येन्द्रासन के बारे में जाना। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं देशभक्ति गीत।

पई भक्ति जैसी, अर भक्ति जैसी नहीं कमाई, भजन करे तो भय भी के, हरि कीर्तन धाम समझ ले, मैलगात में रह भी के, संतोष बराबर सबर।